ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण इस संसार की महान आत्माएं हैं, जिन पर रोज भगवान की नजर पड़ती है। सभी को याद रखना चाहिए कि रोज सवेरे सवेरे बाबा अपने हर बच्चे को दृष्टि देते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, समस्याओं का हल सुझाते हैं। अगर सवेरे सवेरे हम अपनी बुद्धि को शांत करके, स्थिर करके योग में बैठेंगे तो बाबा के बहुत ही सुंदर अनुभव होते रहेंगे। इस सुंदर अमृत वेले को कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुंदर अनुभव कराता है। हम सभी ध्यान दें, ये जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। इस यात्रा में सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, निंदा स्तुति, जय पराजय सब होती है, होगी ही। हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हम ये न सोचें कभी हमारी हार हो ही नहीं, हम ये भी न सोचें कभी हमारी ग्लानी हो नहीं, हमारा अपमान कभी हो नहीं। देखिए, जो भी मनुष्य आज तक महान बना है, जिसका इतिहास में या धर्म के फील्ड में बहुत नाम है, उनको इन सभी बातों से बहुत गुजरना पड़ा। स्वामी विवेकानंद को ही लीजिए, अपनी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां से उनका नाम प्रख्यात हुआ, उन्हें कितने कष्ट झेलने पड़े, और नाम प्रख्यात होने के बाद भी उनका नाम बदनाम करने की कितनी कोशिशें हुई। लेकिन जो महावीर मनुष्य अपने लक्ष्य पर निरंतर अग्रसर रहता है, जो इन बातों को अपने मार्ग में बाधक बनने नहीं देता, जो इन पर कोई रिएक्ट नहीं करता, वो सचमुच अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, महान बन जाता है। तो आज का दिन हम सभी प्रभु मिलन के सुंदर अनुभव में रहेंगे। हम आपको बताए हैं कि रोज सवेरे और शाम बाबा से मिलन का सुंदर अनुभव, उसकी दृष्टि लेने का अनुभव, उसे वरदान लेने का अनुभव एक बार सवेरे एक बार शाम को अवश्य करना है, ताकि हमें प्रभु मिलन के सुखों का अभाव महसूस न हो। आज के लिए हम बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूं, क्योंकि हमें इस प्रकृति को पवित्रता की सकास देनी है, हमें वायुमंडल को पवित्र बनाना है, और इस संसार में जो काम वासना की आंधी चल चुकी है कि हर मनुष्य, युवक, बूढ़ा, बच्चा सब काम वासना से पीड़ित हो रहे हैं, हमें इसको समाप्त करना है। हम आत्माएं बहुत जिम्मेदार हैं, हम पूर्वज हैं, हमारी वाइब्रेशंस का इफेक्ट संसार की हर मनुष्य आत्मा तक जाता है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। हम ये न सोचे हमारे वाइब्रेशंस कुछ काम करेंगे या नहीं, हम जड़ों में हैं। अगर जड़ों में पानी डाला जाता है तो उसका इफेक्ट पूरे वृक्ष पर तत्काल देखा जा सकता है, पौधे पर देखा जा सकता है। हम भी पूर्वज हैं, पवित्र वाइब्रेशंस जब संसार को देंगे तो तुरंत संसार में भी जैसे हरियाली आ जाएगी। तो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मुझसे पवित्र वाइब्रेशंस निकलकर मेरे ब्रेन को जा रहे हैं, पूरे देह में फैल रहे हैं, कर्मेंद्रियों को शीतल कर रहे हैं, ब्रेन को डिविनाइज कर रहे हैं, और फिर चलेंगे परम धाम, पवित्रता के सागर के पास कुछ देर बैठेंगे।
उसकी पवित्र किरणें हम में समा जाएंगी, फिर नीचे आएंगे, भ्रकुटी सिंहासन पर बैठेंगे। ये ड्रिल 10 बार भी कर सकते हैं सवेरे शाम, लेकिन हर घंटे में 2 बार जस्ट एक एक मिनट के लिए करनी है। इससे हम संसार को सकास दे पाएंगे और ये हमारे लिए भी बहुत बड़े पुण्य की बात होगी। तो आज सभी ये अभ्यास करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है आज का आपका दिन पवित्र वाइब्रेशंस फैलाते हुए व्यतीत होगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत। रेडियो मधुबन पर बुजदिली इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है। बुजदिल लोग कभी भी नेता नहीं बन सकते। जिन लोगों को आगे बढ़ना है और उन्नति करनी है, उनके चरित्र में ये गुण अवश्य होने चाहिए। एक तो निर्भयता और दूसरा मौलिकता। निर्भयता और मौलिकता वाले प्राणी आगे बढ़ते समय कभी भी रूढ़िवाद समाज की परवाह नहीं करते। वे लोग सदा यही सोचते रहते हैं कि इस रूढ़िवादी समाज को कैसे प्रगति की ओर ले जाना है, इस समाज में कैसे परिवर्तन करके उसे सुधारा जा सके। वे लोग रूढ़ियों के गुलाम बनकर पुरानी घिसी पिटी राहों पर चलना पसंद नहीं करते। जो लोग नई सभ्यता को जन्म देते हैं, उन्हें हर हाल में समाज में परिवर्तन लाना ही होता है, भले ही उनके विरोधी कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो। ऐसे ही लोग जीवन के इस मार्ग पर चलकर अपनी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। इन लोगों में प्राकृतिक शक्ति होती है, तप होता है, अपने आप में आत्मविश्वास होता है। वे कभी हार नहीं मानते, भले ही वे अकेले ही क्यों न पड़ जाए, मगर उनमें यह विश्वास होता है कि एक दिन लोग उनकी बात को समझेंगे और अपने आप उनके पीछे चले आएंगे। उन्हें यह निर्णय लेने में देर नहीं लगती कि नई विचारधारा को अपनाए बिना उनकी गुजर नहीं हो सकती। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले अपनी अलग पहचान बनाओ। मौलिक बनने से डरो मत। कभी भी भूल से अपने माता पिता, दादा दादी, किसी अन्य परिचित या किसी पड़ोसी की नकल करने का प्रयत्न मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह सबसे बड़ा पागलपन माना जाएगा। कभी चमेली के फूल गुलाब के फूलों की जगह ले सकते हैं? फिर यदि गुलाब के फूल के पास एक और गुलाब का फूल खिल जाएगा तो उसकी अपनी विशेषता कहाँ रहेगी? हाँ, यदि गुलाब के फूल के पास चमेली का फूल खिला होगा तो उसकी अलग से पहचान होगी। ऐसा करने से दोनों की ही अलग से पहचान बन जाती है। फिर क्यों आप किसी की नकल करके अपनी पहचान खोना चाहते हैं? ऐसा करने से क्या आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है। ऐसा करने से आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। महान पुरुष कभी भी एक दूसरे का रूप धारण करने का प्रयत्न नहीं करते। यदि उन्हें महान बनना है तो फिर रूढ़िवाद का सहारा क्यों लें? आप स्वयं अपनी मंजिल खोजोगे तो ही अपनी इच्छा पूरी कर पाओगे। किसी महापुरुष की नकल करके अथवा उसके विचारों के प्रभाव से आप कभी भी महापुरुष नहीं बन सकते। स्वयं को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करो। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा करो कि लोग आपको अपना मसीहा मान

मौलिकता मौलिकता ही होती है। बैसाखियों के सहारे चलने वाले इंसान रेंग रेंग कर चल तो सकते हैं, मगर कभी दौड़ नहीं सकते। स्वयं विश्व विजेता सिकंदर और नेपोलियन ने किसी की नकल मारकर तो युद्ध नहीं किया था। उनकी अपनी ही बुद्धि थी। उस बुद्धि के बल पर ही उन्होंने विजय पर विजय प्राप्त की थी। हिटलर जैसे सफल योद्धा ने दूसरा विश्व युद्ध अपने ही ढंग से लड़ा था। उसने किसी की नकल नहीं की, परंतु इस पर भी उस अकेले इंसान ने सारी दुनिया को हिला दिया। जो कुछ भी उसने किया, अपने ही बलबूते पर किया। रूस जैसे देश के आधे भाग पर कब्जा कर उसने दुनिया को बता दिया कि युद्ध लड़ने के लिए रूढ़िवाद का सहारा नहीं, बल्कि मौलिकता के सहारे की जरूरत है। कुछ बड़े लोग, नेतागण, मंत्री महोदय, शासन चलाते समय रूढ़िवाद को इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं जनमत हमारे विरुद्ध ना हो जाए। ऐसे लोग अपनी झूठी लोकप्रियता बचाने की लालच में सत्य से भटक जाते हैं। जो करना उनके लिए सबसे जरूरी होता है, उसके करने से डरने लगते हैं, जबकि ऐसा करना कभी भी उनके हित में नहीं होता। पुरानी प्रथाएं नवीन प्रथाओं से पीछे रह जाती हैं। अतीत का महत्व क्या है? कुछ नहीं, केवल इन यादों को सीने से लगाकर आप कब तक बैठे रहेंगे? उसका लाभ भी तो आपको क्या हो सकता है? कभी आपने प्रकृति के सिद्धांतों को देखा है? पतझड़ में वृक्षों के पत्ते टूटकर पेड़ों से अलग हो जाते हैं। वृक्ष उन पत्तों को देखकर रोते नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति स्वयं उनके जख्मों को भर देती है। उनके स्थान पर नए पत्ते आ जाते हैं। कोई भी नकल करने वाला प्राणी अपनी पहचान तो खो ही बैठता है, परंतु साथ साथ वह अपनी बुद्धि को भी कुंद बना लेता है, क्योंकि दूसरों की नकल करते समय अपनी अकल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे वह अपनी बुद्धि से काम लेना बंद करके दूसरों की बुद्धि पर ही निर्भर करने लगता है। ऐसे लोग क्या कोई आविष्कार करेंगे अथवा ऐसा कोई चमत्कार दिखा पाएंगे जिससे इतिहास में उन्हें कोई स्थान मिल सके? नहीं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि वे लोग कुछ भी नहीं कर पाए जो दूसरों के पीछे चलते थे। उनकी अपनी संपूर्ण शक्ति और योग्यता इसीलिए नष्ट हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता की बजाय दूसरे की योग्यता का सहारा लेना शुरू कर दिया था।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सफलता के द्वार उनके लिए ही खुल सकते हैं जो अपना रास्ता स्वयं तलाश करके अपनी अलग पहचान बनाते हैं। वे किसी को क्या रास्ता दिखा पाएंगे जो स्वयं ही रास्ते से भटक गए हैं। लोग उन्हें खोखले और नकलची समझकर साधारण लोगों से भी नीचे समझने लगते हैं। उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बन पाती। ऐसे लोग लक्ष्यहीन ही माने जाते हैं जो लक्ष्य की तलाश में भटकते रहते हैं। किसी की भी नकल करने से पूर्व यह बात मत भूलें, जो भी लोग मौलिक चिंतन करते हैं अपने लिए अपना मार्ग खोजते हैं, मौलिक रूप से अपनी योजनाओं को तैयार करते हैं और उन योजनाओं की पूर्ति के लिए स्वयं ही प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही लोग एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचकर हर वह चीज प्राप्त कर लेते हैं जिसकी वे इच्छा करते हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय नेता बनते हैं, इनमें से ही विद्वान बनते हैं। सफलता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो कुछ नया लेकर आते हैं। जिस प्राणी के पास अपना कोई नया विचार ही नहीं है, वह क्यों अपने आप को बड़ा बनाने के प्रयास में दूसरों के विचारों का सहारा लेता है? वह यह क्यों नहीं सोचता कि बड़ा बनने के लिए अपने प्रयत्न करने पड़ते हैं? उधार की जिंदगी कभी भी काम नहीं आती। अपना ही अपना कहलाएगा, गैर कभी अपना नहीं होता। नहीं उससे वफा की उम्मीद रखनी चाहिए। अपनी शक्ति पर भरोसा रखकर जो भी करोगे वही आपका अपना होगा। दूसरों की शक्ति का सहारा कब तक लोगे और उसका आपको लाभ भी क्या पहुंचेगा? परछाइयों के पीछे भागने से क्या लाभ हो सकता है? जो भी इंसान अपने लिए मौलिक चिंतन करता है, मौलिक मार्ग तलाश करता है और उसे यह दृढ़ विश्वास हो कि मैं जो भी काम करूंगा मुझे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, वही अपनी हर इच्छा पूरी करने में सफल होता है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास के साथ मौलिकता का होना बहुत जरूरी है। मौलिकता ही आत्मविश्वास की जड़ है। जो लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अति आवश्यक है कि वे अपने मन में दृढ़ विश्वास पैदा करें और मौलिकता के मार्ग से दूर न जाएं। यह बात सदा याद रखो कि जिस व्यक्ति के पास नया विचार है एवं दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसके लिए संसार में रास्तों की कोई कमी नहीं। लोग उसके लिए रास्ते स्वयं छोड़ देते हैं।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

आज के युग में केवल मौलिक व्यक्ति की ही प्रतीक्षा होती है, जबकि अतीत में ऐसा नहीं था। लोग मौलिकता की इतनी पहचान नहीं कर पाते थे जितनी की आज पहचान हो रही है। लोग मौलिक व्यक्ति की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए रहते हैं, ऐसे लोगों की उन्हें तलाश रहती है। जब भी लोग किसी घिसी पिटी राह पर चलते चलते ऊब जाते हैं, तभी वे किसी नई चीज की खोज करते हैं। क्या आप यही चाहते हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन लाने के इच्छुक हैं? क्या आप नए डॉक्टर, नए वकील, नए इंजीनियर बनने के इच्छुक हैं? यदि आप यह सब चाहते हैं, तो फिर आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि आप इसमें कोई नयापन लाएं, पुरानी बातों से हटकर कोई नई बात सोचें, तो ही लोग आपकी विशेषता को समझेंगे। यदि आपके पास नवीनता के नाम पर कुछ नहीं है, तो फिर इन सब बातों के करने का लाभ क्या है? यदि आप अपने को महान बनाना चाहते हैं, तो कुछ नया करके दिखाओ, ताकि संसार के सामने आपकी कोई पहचान बन सके। जिन लोगों ने कुछ नया करके दिखाया, आज वही इतिहास के पृष्ठों पर अमर हैं। जरा उस पहले डॉक्टर को याद करके देखो, जिसने मानव जाति के रोगों को दूर करने के लिए नए नए परीक्षण किए, जो जीवन के इस लंबे सफर को सरल और सुखद बनाने के लिए दिन रात सोचते रहे। आज ऐसे ही लोगों की कृपा से हम जटिल से जटिल रोग से मुक्ति पा लेते हैं। उन लोगों ने मानव रोगों के विषय में जानकर उनके निदान हेतु दवाओं का आविष्कार किया। क्या रेलगाड़ी का आविष्कार करने वालों को भूल पाएंगे आप? बिजली का आविष्कार करने वाला भी तो आप जैसा ही एक इंसान था, जिसने रात की अंधेरे को प्रकाश में बदल दिया। टेलीफोन, तार, रेडियो, टीवी, ऐसे सैकड़ों आविष्कार करने वालों को हम इसीलिए तो आज भी याद करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी मानव जाति को दिया, वह आधुनिक युग की जरूरत थी। ऐसी जरूरत को सबसे पहले उन लोगों ने महसूस किया, मगर एक आविष्कार ने दूसरे की नकल करने का प्रयत्न नहीं किया। जो कुछ भी किया, वह किसी एक की समझ का ही परिणाम था, तभी तो उसे आविष्कार कहा जाता है। उनके पश्चात करोड़ों अरबों लोगों को इसका लाभ हुआ जरूर है, और आने वाले समय में भी होगा, मगर इस बात को हम कैसे भुला सकेंगे कि उनकी इस देन का समाज, पूरा विश्व आभार मानता है और हमेशा आभार मानता रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं, तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कंफर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम ले आने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति हमारी सही समझ को बेहतर करना है। हम पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य से जुड़े हुए अनेक चीजों को जानते आए हैं, मगर जितना जितना ज्यादा हम प्रगतिशील होते जा रहे हैं, जितना ज्यादा हम वैज्ञानिक और एक विज्ञान से ओतप्रोत सोच से गुजर रहे हैं, जितने आसानी से हमारे हाथों में टेक्नोलॉजी और जानकारी आती जा रही है, उसके कारण हम प्रायः इंटरनेट पे जिन चीजों को देख लेते हैं उन्हें ही सत्य मान लेते हैं। जो सोची समझी चीजें थी, जो सदियों से हम करते आ रहे थे, या परंपरागत चिकित्सा की जो हमारी विधियां थी उसकी जो समझ थी, वो भी हम खोते चले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, व्यक्ति मुझे कितने बजे खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए क्या नित्य कर्म करने चाहिए, इस पर भी लोगों की समझ दिनों दिन घटती चली गई है। और हर चीज के लिए हम या तो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, या फिर किसी भी जानकारी को जब हम डॉक्टर्स या किसी चिकित्सा कर्मी से सुनते भी हैं, तो भी उसे हम इंटरनेट पर सर्च करके उसे रीवेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसे सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जो भी जानकारी हम इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं वो संपूर्ण नहीं हो सकती है। जब आप एक चिकित्सकीय सलाह ले रहे हैं तो उस सलाह को सही अर्थों में समझने का प्रयास करने की भी जरूरत है। शरीर में जब भी कोई व्याधियां आती हैं या कोई ऐसी बीमारी आती है तो उसका कारण यही होता है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण वो व्याधि के रूप में शरीर में प्रस्तुत होती है। आइए स्वास्थ्य जगत के ही कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि रोग क्यों हो रहे हैं और उनसे निदान पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य जगत से एक ऐसे ही एक्सपर्ट जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं। साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है और आज भी स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो इसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, हम हमेशा स्वास्थ्य के प्रति क्या इतने इग्नोरेंट रहे हैं या बेसमझ रहे हैं, या पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ कुछ चीजें स्वास्थ्य संबंधी मिलती आई हैं, एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो जानकारियां पहुंचाते आए हैं लोग, मगर आज यकायक क्या हम इन चीजों से दूर हो गए, या कोई कारण रहा है जिसके कारण हम आज ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं? प्रायः लोग ये उदाहरण देते हैं कि हमारे दादाजी के जमाने में इतनी बीमारियां नहीं थी, वो लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे जितने हम पड़ रहे हैं। ये चीज अक्सर सुनने को मिलती है। आप एक चिकित्सकीय दृष्टि से इस चीज को कैसे देखते हैं?
1: अब हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इसके लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गई है, दूसरा हमारी जनसंख्या बहुत हो गई है, और तीसरा हमारा भोजन पूरा गड़बड़ हो गया है, और शारीरिक श्रम जो है हमारा वो कम होता चला जा रहा है। श्री भैया के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने अपना बचपन एक ऐसी जगह बिताया जहां मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी, वो एक फैक्ट्री या एक ऐसे परिसर में रहे, और बातचीत में भैया ने बताया कि 2 मंजिले और 3 मंजिले तक वहां पे घर था। और मैं भी ये बात अच्छे से जानता हूं कि मेरे शहर में भी जब विश्वविद्यालय बना था तो वहां पर 2 मंजिला इमारतें बनी थी लोगों को रखने के लिए, जो मेडिकल कॉलेज बना था वो 2 मंजिला बना था। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मेरे पूरे शहर में लिफ्ट जो थी वो सिर्फ फर्टिलाइजर फैक्ट्री में लगी थी, वो भी चिमनी में ऊपर जाने के लिए, और वो लिफ्ट लिफ्ट नहीं था, एक लोहे का जाल था से घिरा हुआ एक ट्रे थी जिसमें खड़े होकर आप ऊपर जा सकते हैं। और हम लोग बड़े खुश होते थे जब छोटे थे तो फैक्ट्री विजिट में वो आपको ऊपर ले जाते थे और वहां से पूरा शहर दिखता था। आज अमूमन बहुत सारे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में लोग रहने लगे हैं, वहां लिफ्ट लग गई है, लोग जो है वो सीढ़ी चढ़ना को अवॉइड करने लगे हैं, फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करने लगे हैं। पहले ऋतु अनुसार ही फल मिलता था, जब ठंडक थी तब सेब मिलता था, गर्मी थी तो आम मिलता था, और फल देख के हम लोग समझने लगते थे कि हाँ हाँ ऋतु में परिवर्तन आ गया है। पहले बहुत सारे लोगों के घर में सिर्फ पंखा था, और जो निम्न वर्गीय परिवार थे उनके यहाँ पंखा भी नहीं था। जो श्रोतागण जिनकी उम्र आज 40 से ऊपर होगी, उन्होंने बचपन में हाथ से झलने वाला पंखा देखा होगा, आज वो कहीं नहीं दिखता है। अमूमन सबके घर में जो एक लालटेन और एक हाथ से झरने वाला पंखा, ये दोनों चीजें गायब हो गई हैं, क्योंकि अब लालटेन की जगह टॉर्च आ गया है, इन्वर्टर आ गया है, हमारी बिजली की सप्लाई अच्छी हो गई है, और जो पंखा है वो मैकेनिकल पंखे की जगह अब मोटराइज्ड पंखे सबके घर में लग चुके हैं। और पंखा छोड़िए, अब तो बहुत सारे लोगों के घर में एसी लग गया है। पहले गर्म पानी नहाने के लिए करना पड़ता था, गैस के ऊपर गर्म पानी होता था। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में एक पीतल का बहुत बड़ा सा ड्रम था, उसके बीच में एक लोहे का पाइप डला हुआ था, उस लोहे के पाइप में कोयला जलता था, और उससे लोग गर्म पानी जो था वो इस्तेमाल करते थे। अमूमन चिकित्सालय के कमरों में भी गीजर नहीं लगा था। तो हम पहले उस वातावरण में थे जहां हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ठंडा हो या गर्म, वो झेल ले रहे थे। हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे थे, और हम ऋतु के अनुसार भोजन कर रहे थे, हम बीमार कम पड़ रहे थे। और उसका एक और बड़ा रीजन कि पर्यावरण बहुत शुद्ध था। हम लोग ने कभी ये बात नहीं करी कि पॉल्यूशन है, या नदी पॉल्यूटेड है, या वातावरण में पॉल्यूशन है। जो तो अक्सर हम लोग जब बातचीत करते हैं सुनते हैं कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि स्मॉग बन गया है, ये चीजें हम लोग ने सुनी ही नहीं थी बचपन में। हम लोग सिर्फ कोहरा जानते थे कि कोहरा बहुत हो गया, कैसे निकलेंगे। हम लोग पॉल्यूशन के बारे में कभी ये नहीं सुने थे कि पॉल्यूशन इतना आ जाएगा कि हम लोग देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, हमारा जो पूरा का पूरा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाएगा। हम लोग ने भैया बचपन में पानी हैंडपंप से पिया है, नलों से पिया है, आज आप देखिए कि व्यक्ति बोतलों में पानी पी रहा है। आज बच्चे जो है वो, उनको ये बात मालूम ही नहीं है कि ट्रेन में जब चला करते थे तो पानी का बड़ा वाला कैंपर लेके चला जाता था, उसमें भर, क्योंकि पानी कभी बोतलों में बिकता ही नहीं था। तो समय के साथ पर्यावरण में कमी आई, हमारे रहन-सहन जो है गड़बड़ हुआ, हमारा एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, वो चीजें कम हुई। अच्छा, हम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग कहेंगे अरे हम पहले तो व्यायाम करते नहीं थे, देखिए अब तो मैं आधी घंटा कर रहा हूं, पर पहले हम जाने अनजाने में बहुत व्यायाम कर रहे थे। हम साइकिल चला रहे थे, हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, हम बाजार से सब्जी लेने जा रहे थे, इतनी हमारे पास संसाधन ही नहीं थे कि हम रोज रोज बाहर का खा पाएं। तो अब चीजें सुलभ हो गई हैं, चीजें जल्दी मिल पा रही हैं, बहुत ज्यादा मिल पा रही हैं, तो इसका जो असर है वो हमारे शरीर पे दिखने लगा है।
0: ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं कि कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव के कारण हम अपने रहन-सहन को, अपने खान-पान को बदलते आ रहे हैं, हमारे आहार विहार में जो परिवर्तन आता जा रहा है, शारीरिक श्रम की कमी, ये सारी चीज़ों की वजह से आज स्वास्थ्य में और बढ़ती हुई आबादी के कारण भी हम ये चीज़ें ज़्यादा देखते हैं कि भाई व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और इस बीमारी के लिए वजह हम स्वयं हैं और हमारी जीवन शैली है ज़्यादातर। अब जब हम पिछले दिनों बातचीत कर रहे थे तो एक ऐसी चीज जिसके बारे में व्यक्ति अक्सर बातचीत करने से शर्माता है वो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या, यानी कब्ज की समस्याएं। और कब्ज के बारे में आप ये बात बता रहे थे कि अगर हम अपने भोजन पर ही ध्यान दें तो फिर कब्ज की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। प्रायः ये चीज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मीटिंग में बैठा हुआ है या फिर ऑफिस के काम में लगा हुआ है, या कोई ऐसे जगह पर है जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पा रहा है या समय पर भोजन नहीं कर पा रहा है। कई लोग शौचालय साफ सुथरे नहीं मिलेंगे या घर के बाहर शौच पर जाना मुश्किल है, इसलिए वो अपने जो नेचुरल कॉल है जब उन्हें शौच में जाने जैसा लगता भी है तो उसे रोक लेते हैं। तो ये सारी चीजें कारण बन रही हैं कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की, ये बात समझ में आती है। अब प्रश्न उठता है कि कब्ज आखिर कब तक, मतलब कब तक अगर मैं इस चीज को बिना ट्रीट किए हुए, इग्नोर करते हुए अगर ऐसे ही चलता रहूं तो फिर क्या होगा? क्योंकि प्रायः लोग कह देते हैं अरे कोई बात नहीं, चल तो रहा है ना गाड़ी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 2-3 दिन में एक बार पेट साफ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो रहा है, उसे भी एक नया नॉर्मल, एक न्यू नॉर्मल समझ के लोग चलते हैं। तो क्या ऐसे चलना सही है? अगर हम कब्ज जैसी चीज को इग्नोर करते जाते हैं तो आगे क्या समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं?
1: हमारी बड़ी आंत में बहुत बड़ी ताकत है पानी को सोखने की। और एक चीज समझिए कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा मल है, वो पेट से, जब पेट से निकल के छोटी आंत में जाता है तो उससे सारे न्यूट्रिएंट या जो ताकत की चीजें हैं वो सोख ली जाती हैं। और जब वो बड़ी आंत में जाता है तब उससे पानी सोखा जाता है। और आप सोचिए कि जो क्रिया 12-14 घंटे में सोखने की होती है, वो जब आप उसी क्रिया को 24 घंटे, 48 घंटे करवाइएगा तो वो ज्यादा पानी सोख लेगा। और इससे जो हमारी जो मल है वो इतना कड़ा हो जाएगा कि उससे निकालने में हमें ताकत लगानी पड़ेगी। और कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की खराबी ये है कि वो आपके पाचन तंत्र में जो गंदगी है उसे लंबे समय तक रहने देगा, वो निकल नहीं पा रही है। और कब्ज में जब वो लंबे समय तक रहेगी तो पानी के बाद जो टॉक्सिन्स है उनको भी खींच लेगा और हमारे शरीर में जो चीज हमें नहीं चाहिए वो मिलती चली जाएगी। ये तो हुआ शरीर के ऊपर नुकसान। जो फिजिकल नुकसान है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से या कब्ज से, वो है बवासीर, आप जिसको अंग्रेजी में हिमरॉइड्स या पाइल्स भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग नर्व्स अपने कब्ज के बारे में बात करते हैं और न अपने बवासीर या पाइल्स या हिमरॉइड्स के बारे में बात करते हैं। आप खुद देखिए कि सब की मतलब इस बवासीर के नाम पे और पाइल्स के नाम पे सबसे बड़ी ठगी चल रही है। आप हजारों नीम हकीम, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, आपको ऐसे ऐसे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, और जो मतलब डॉक्टर हैं भी नहीं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं किए हैं, डॉक्टरी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और अपने आप को डॉक्टर क्लेम करते हैं, वो लोग इसका इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने दीवार पर इसके बारे में इश्तेहार देखे होंगे कि मिलिए इनसे और ये आपका बवासीर ठीक कर देंगे। तो ये क्रॉनिक कब्ज के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या जिसको हो सकती है व्यक्ति को, वो है बवासीर या हेमोराइड्स। आदमी अपना पेट साफ होने की तो बात ही नहीं कर पा रहा है और उसके बाद नीचे से कोई और मस्सा निकल गया तो उसके बारे में कहाँ बात करेगा। तो पता चलता है कि समस्या जो एक बड़ी हो गई थी कब से, वो महा बड़ी समस्या के रूप में आदमी उसको उससे परेशान हो चुका है और वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है।
0: बात न करने की जब ये चीज सुनते हैं तो समझ में आता है कि लोग इन चीजों से थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं या कभी कभार वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि ये चीज हम किसके सामने बोलें और बोलेंगे तो क्या समझा जाएगा हमारे बारे में। और जैसे आपने कहा कि भाई कॉन्स्टिपेशन ही जब क्रोनिक फॉर्म में बढ़ जाता है, वो उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप हो जाता है, तो आगे बवासीर और पाइल्स जो आप बात कह रहे थे वहां तक बात पहुंच जाती है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये क्या कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते करते यहां तक पहुंचे हैं, तो ये बीमार हो रहे हैं, ये कैसे अपने आप को समझा जाए, कैसे देखा जाए कि हाँ मेरे को ये तकलीफ हो रही है और कब हमें एक चिकित्सीय सलाह लेने की जरूरत है?
1: सबसे पहली बात, बवासीर कोई रोग नहीं है, ये एक रोग का लक्षण है। पहले हम ये समझें कि बवासीर हो क्यों सकता है। एक जैसा हम और आपने बात की कि क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक अगर आपको पेट नहीं साफ हो रहा है तो आपको बवासीर हो सकता है। आप लंबे समय तक आपको अगर डायरिया भी चल रहा है, आपका पेट बह रहा है, तो भी आपको ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो आपका नीचे जो गुदा द्वार बंद होता है वो ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है। आप बहुत लंबा समय बैठते हैं, अगर अपने काम में आप बैठे ही रहते हैं, आप बहुत मोटे व्यक्ति हैं, क्योंकि मोटापा जो है, जो हमने सबसे बड़ी बीमारी देखिए, हमने पहली जो जिस बीमारी को हमने डिस्कस किया वो मोटापा ही थी, क्योंकि मांसपेशियों के बीच में जो फैट सेल्स है, हमारे मोटापे की कोशिकाएं हैं, वो जमा होने लगती हैं और वो उस मांसपेशी की ताकत को कमजोर करती चली जाती हैं। तो अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको उससे भी परेशानी होगी। महिलाओं में जब उनको प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारी महिलाओं को बवासीर की समस्या प्रेगनेंसी के समय होती है, और उम्र के साथ जब हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं तब भी उनको पाइल्स या बवासीर हो सकता है। ये बवासीर क्या है? सबसे एक समझ लीजिए कि हमारा जो गुदा द्वार है वहां रक्त की कुछ कोशिकाएं हैं, और ये मेरे अंदर भी है और जितने लोग सुन रहे हैं सबके अंदर ये कोशिकाएं हैं, किसी कोई नई चीज नहीं है, और ये मांसपेशी के बीच में है। ये जब ताकत इनमें रहती है, ये मजबूत रहती हैं, ये इन कोशिकाओं को ये जो गुदा द्वार

0: है इसके त्वचा के अंदर रखी रहती हैं। और जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, या आप मोटापा होता है, या आप प्रेगनेंसी होती है, तो ये मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। तो ये रक्त कोशिकाएं जो है वो एक मस्से के रूप में जो है गुदद्वार के पास आ जाती हैं। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। मेरे पास एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो कि बहुत बड़ी एक कंपनी में काम करते थे, वो आरोग्य मंदिर में आए और उन्होंने जो कंप्लेन की वो ये थी कि उनको थकान हो रही है। उम्र उनकी करीब 48 साल थी और वो सिर्फ ये बोलते थे कि मैं बहुत अच्छा खाता हूं, मैं बहुत अच्छा भोजन करता हूं, मुझे कभी कभार कॉन्स्टिपेशन होता है और मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लगाता हूं, मैं बहुत उच्च पद पे आसीन हूं तो मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है तो मुझे थकान लगती है। और तब भी वो हमारे चिकित्सालय में अपनी समस्याएं बता नहीं रहे थे और मुझे बहुत थकान हो रही थी, बहुत थकान हो रही थी। तो ऐसे डॉक्टर, उनके पास कोई ब्लड रिपोर्ट भी नहीं थी, कोई खून की जांचें भी नहीं थी, तो हम लोग ने कहा कि एक जांच करा लिया जाए, कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है। हाँ, और हम लोग सोच रहे थे कि उनको कोई बड़ी समस्या निकलेगी, तो मालूम चला कि उनका हीमोग्लोबिन जो है, जो लाल रक्त कोशिकाओं वाला हीमोग्लोबिन है, वो करीब जो नॉर्मली 11 से 14 के बीच में होना चाहिए वो सिर्फ 7 था। और जैसे ही रिपोर्ट आई और जब उनसे मिला गया तो उनसे पूछा गया, क्या आपके जो मल है उसमें खून तो नहीं आता है? तो उन्होंने संकुचाते हुए बोला, हाँ आता तो है पर हम किसी को बताए नहीं। तो सोचिए, ये व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, उच्च पद पे आसीन है, वो अपनी समस्या नहीं बता पा रहा है, तो हम और लोगों से क्या सोचें? तो आप यदि अपनी समस्या की बात नहीं करेंगे तो उसका निवारण नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको बवासीर की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो किसी भी डॉक्टर से या कोई भी जो हेल्थ प्रोफेशनल है जिसको आप मानते हैं, उससे सलाह जरूर लीजिए। लोग इसके बारे में, भैया जो बहुत भारी काम करते हैं, बहुत भारी सामान उठाते हैं, उनको भी इसकी समस्या होती है और वो ये सोच लेते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमको हो रहा है। या आपको अपनी जो चीजें नॉर्मल नहीं है और आपको अगर हो रही हैं, तो उसके बारे में आपको जरूर बात करनी चाहिए। यदि आपको थकान लग रही है, आपके मल रास्ते से खून आ रहा है, आपको भयंकर कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज है, आपको रेगुलर डायरिया हो रहा है, या आपको ऐसा काम करते हैं जो आप बहुत मोटे हैं, आप भारी वजन उठाने का काम करते हैं, तो आपको अपनी समस्या के बारे में जरूर बताना चाहिए कि आपको थकान लग रही है। अच्छा लोग, भैया जैसे श्री भैया बुखार होता है तो आदमी तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है, बड़ा छोटी समस्या है, तब भी वो तुरंत दौड़ जाता है कि अरे डॉक्टर साहब एक बार देख तो लेंगे, और डॉक्टर साहब उसको अब छू के थर्मामीटर डाल के या तुरंत उसकी नब्ज चेक करके देख लेते हैं, तेज तो नहीं चल रही है, छूते ही मालूम चल जाता है। इस समस्या जब पूरी विकराल रूप ले लेती है तब वो जाता है। और तब भी मानव, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा, क्यों मैंने कहा कि हम लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि अरे हमें कोई पहचान तो नहीं लेगा हम कौन हैं, लोग छुपते हैं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तो हम लोग सर्जरी के ओपीडी या जनरल मेडिसिन के ओपीडी में जब पेशेंट आता था तो वो कान के पास आके बोलना चाहता था, हम लोग उससे बोलते दूर होके बोलो, हम और तुम ही हैं कमरे में, बाकी कोई नहीं है मत, पर वो वहां भी खुल के नहीं बोलना चाह रहा था कि क्या समस्या है। तो यदि आपको भयंकर कब्ज है, आपको मसा कोई नीचे महसूस हो रहा है आपको, या खून आ रहा है, तो कृपा करके तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाइए।
1: जैसे आप ये बात बता रहे थे तो मैं समझ सकता हूँ कि एक व्यक्ति का असहज होना या शर्मिंदगी महसूस करना या उसके अंदर हिचकिचाहट होना इस बीमारी को और ही बढ़ा सकता है, इसकी समस्या को और बढ़ा सकता है, और समय पर इलाज न लेने से वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से इस समस्या से लंबे समय तक जूझता रहेगा, और जो चीज आसानी से ठीक की जा सकती थी वो चीज ठीक करने में बहुत ज्यादा लंबा समय लग सकता है। हालांकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर समय इशारा करता है कि यहाँ रुकना होगा। मगर आज आपने जो जानकारी दी है कि व्यक्ति सही जानकारी को न जानने के कारण और कभी-कभार पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपने शरीर के बेसिक स्वास्थ्य संबंधी चीजों के बारे में सजग न होने के कारण अपने आप को बीमारियों की तरफ आगे ले जाता है। कब्ज को अगर आप सही समय पर ठीक नहीं करते तो फिर बवासीर जैसी समस्याएं भी आपके लिए शारीरिक व्याधि के रूप में आ सकती हैं। इन चीजों के बारे में जानकारी आज हासिल हुई है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर हमें सही जानकारी मुहैया कराई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में ये चीज समझ में आई है कि हमारे शरीर का ख्याल रखना भी हमारा ही काम है। अगर हम इस जिम्मेदारी को न निभाएं, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों या छोटी मोटी समस्याओं को अगर हम दरकिनार कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूं, या मैं काम बहुत ज्यादा कर रहा हूं, या मेरे पास समय नहीं है, या मैं डॉक्टर से मिल नहीं सकता, तब तक मैं इन चीजों को टालते रहूं जब तक वो हमें पीड़ा देने वाले या बहुत ज्यादा समस्या का विकराल रूप धारण करने तक रुकते रहें, तो फिर उसके इलाज में भी लंबा समय और ज्यादा व्याधि हमें महसूस करनी पड़ सकती है। इसलिए जब भी समस्याएं आपके शरीर में दिखें तो तुरंत ही चिकित्सीय सलाह देखने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स के पास जाकर मिलकर सही राय करना बहुत आवश्यक है, और साथ साथ अपने खान पान, भोजन इत्यादि आहार विहारों पर भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक चीज है। आज के सेहत स्वास्थ्य में ये रुकते हैं। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पर चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी में। आपकी जिंदगी का एक लम्हा चुराते हैं, एक वो पड़ाव जब आप ऑफिस से घर पहुंचे, थके हारे घर पहुंचे तो क्या देखते हैं दरवाजा खोलने पर कि दोनों बच्चे घमासान युद्ध में भिड़े हुए हैं। कोई किसी के बाल खींच रहा है, कोई चिल्ला रहा है। ऐसे में आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? कहीं ना कहीं गुस्सा अंदर से बाहर आता है और उस पागलपन में आप भी पागल हो जाते हैं। कितना भी कंट्रोल कर लें लेकिन वो गुस्सा आपके हाथ से या आपके सामने आ ही जाता है। क्या इस गुस्से को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये गुस्सा जायज है? क्या गुस्सा जो है वो हमारे हाथ में है? गुस्सा क्या हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है? क्या कारण होते हैं गुस्से के? डिप्रेशन से जुड़े कितने ही मुद्दों को हमने अपनी पूरी श्रृंखला में तलाशा है, जानने की कोशिश की है कि क्या कारण है कि डिप्रेशन होता जाता है। आज हमने आपसे वादा किया था कि हम गुस्से के ऊपर कुछ ज़्यादा बातें करेंगे। क्यों आता है गुस्सा, क्या कारण होते हैं और किस तरह से उसे हम अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
5: ओम शांति।
3: ओम शांति। उसी सिनेरियो की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब की। गुस्सा जो है, अभी तक हम कई बार ये कहते थे कि वो जेन्युइन है, वो आता ही है, कितनी भी कोशिश कर ले गुस्सा आ ही जाता है, स्वतः हो जाता है। अब ये सिचुएशन अगर हम देखते हैं कि अपने ही बच्चे दोनों की आपस में भिड़े हुए हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे लेकिन गुस्सा आ जाता है, वो जो पागलपन जब दिखता है तो हम भी कहीं उसमें पागल होने लगते हैं, क्या इसे कंट्रोल कर सकते हैं?
4: डेफिनेटली कर सकते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये आवश्यक नहीं है कि आप गुस्सा करो। ये भी थोड़ा सोचो कि भी गुस्से से क्या उसमें बेनिफिट होना है, आप भी डिस्टर्ब होंगे और बच्चे पीसफुल नहीं होने।
3: ये हम जानते हुए भी कि गुस्सा मुझे नहीं करना है, वो जो आ जाता है, जो आता ही एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ की तरह मान लेते हैं हम कि एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे मुझे स्नीज करना ही है तो मैं मानती हूँ कि स्नीज अगर मैं करूँगी या छींकूंगी तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। सिमिलरली अगर ये सब कुछ मैं देख रही हूँ तो मुझे गुस्सा आएगा ही, क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन है या नहीं? गुस्सा जो है वो हमारे अपने कंट्रोल में है।
4: वास्तव में रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, वो आपका एक प्रकार से रिएक्शन है। अभी यही सिनेरियो आप देखो कि जैसे आपके घर में हुआ, पड़ोसी के घर में ये होता हो तो आपको गुस्सा नहीं आता। सीन तो वही है परंतु यहाँ पर आपकी इमोशंस अटैच है। आप चाहते थे कि मैं घर जाऊं तभी सब कुछ पीसफुल होना चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, शांति से बैठे हैं, पर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, इसके कारण आपको गुस्सा आया। तो जो मूल कारण है गुस्से का कि जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है तब आपको क्रोध आता है।
3: बिल्कुल, एक ये कारण बहुत बड़ा सा हमारे सामने आता है कि जब हमारी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं हो रही है तब हमें गुस्सा आता है। सिस्टर शिवानी, हमारी इच्छा के कारण नहीं हो रहा जैसा हम चाह रहे हैं, वैसा नहीं हो रहा, गुस्से को हम जायज़ मान लेते हैं कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्यों ऐसा नहीं, लोग मैं तो सही कह रही हूँ, क्यों ये सही तरीका नहीं है, ऐसे लड़ना थोड़ा अच्छी बात है, तो सही तरीके से जीना चाहिए इन्हें, तो ये क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे और इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है।
5: जो आपने कहा कि रिफ्लेक्स एक्शन है, इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ये समझते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस नेचुरल रिएक्शन है, इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सामने सीन है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है। क्या ये सेम रिएक्शन आप हर टाइम करेंगे जब भी वो सीन आपके सामने आएगा? नहीं। जिस दिन आप ऑफिस से बहुत अच्छे मूड में आ रहे हैं आपका जो डिस्टर्बेंस लेवल होगा वो कम होगा, जिस दिन आप बहुत अपसेट हैं किसी बात से उस दिन आप छोटी सी बात को देखकर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। अगर वो एक रिफ्लेक्स इनवॉलेंट्री एक्शन होता, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, स्व इच्छा

0: या ऑटोमेटिक है? अगर वो ऑटोमेटिक होता तो वो बाहर की परिस्थिति के अनुसार हमेशा हो जाता, जैसे ही झगड़ा देखा ऑटोमेटिक रिएक्शन, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, कभी कभी कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, तो ये
1: सुनते हैं
0: ऑटोमेटिक
1: हमें
0: नहीं
1: जो
0: है। हमारी जो इंटरनल एनर्जी लेवल हम उस दिन कैरी कर रहे हैं या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अक्यूमुलेट हो गई है, ये बाहर की परिस्थिति सिर्फ एक ट्रिगर होती है, और वो भी हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स बनी हुई हैं कि इनको अगर ठीक करना है अभी तो गुस्सा ही करना पड़ेगा, ये बहुत बिगड़े हुए हैं, इनको अगर चुपचाप बिठाना है तो एक जोर से चिल्ला दो अभी चुपचाप बैठ जाएंगे। दीज ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स जो हमने क्रिएट करके रखे हैं, दिस ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन। लेकिन वो सब कुछ इतनी फास्ट हो जाता है कि वी थिंक दैट यू नो ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। उस समय शायद हम लॉजिकली सोच के गुस्सा नहीं करते, ऑब्वियसली हम वी डोंट गो थ्रू दैट प्रोसेस, लेकिन हमने वो प्रोसेस बहुत लॉजिकली बनाया हुआ है अंदर कि दिस इज द वे इट वर्क्स। आप इवन जैसे स्कूल में देखिए, टीचर एंटर करती है, बच्चे जोर जोर से शोर मचाते हैं, वो उन्होंने एक लॉजिकल सोच के प्रोसेस बनाया कि और जोर से चिल्लाती हैं, यू नो लाउडर देन द नॉइज ऑफ द क्लास टू से प्लीज कीप क्वाइट। एंड यू नो समटाइम्स व्हेन यू कांट शाउट सो लाउडली, आप वो डस्टर लेकर जोर जोर से यू नो टेबल पर बैंग करते हैं, तो नॉइज है, उसको आप नॉइज से खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट मैसेज आर वी गिविंग द पीपल कि आप डिस्टर्ब्ड हैं तो मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ आपके साथ।
1: और मैं अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं या है एक डिस्टरबेंस, तो उसे लाउडर डिस्टरबेंस ज्यादा स्ट्रांगली अगर मैं करूंगी तो वो मैं कंट्रोल में ले
0: इट्स
1: लूंगी।
0: लाइक सेइंग कि ये पोल्यूशन कर रहे हैं, इनकी पोल्यूशन को खत्म करने के लिए मुझे और पोल्यूशन करनी है। इट जस्ट वोंट वर्क लाइक दैट, यू नो। सो इट्स पीस विच विल फिनिश दैट रेस्टलेसनेस रादर देन एंगर विच विल फिनिश दैट
1: सो
0: एंगर।
1: अगेन यू नो ये जो हमारे मिथ है, हमारे जो जो रॉन्ग बिलीफ्स हैं कि ये एक रिएक्शन है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, मुझे पता ही नहीं चला, ये उसके इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। कई तरह के गुस्से होते हैं, हम उन कारणों पे आते हैं कि डॉक्टर साहब की क्या क्या वजह है जो गुस्सा हमें आता है
2: पहला
1: बेसिकली।
2: कारण तो जिस परिस्थिति में भी हमने देखा कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, एक छोटा सा फायदा भी है। किसी ने मेरे वर्कशॉप में भी कहा कि जब मैं गुस्सा करता हूँ ना तो मैं औरों को मैनिपुलेट कर पाता हूँ। तो मैं गुस्सा करता हूँ, मेरी इच्छा अनुसार होता है, आई एम एबल टू कंट्रोल अदर्स, तो इसलिए भी लोग गुस्सा करते हैं। भले एक शॉर्ट टर्म है परंतु वो छोटा सा ही फायदा है, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है।
0: लेकिन ये प्रैक्टिकल में दिखाई देता है ना होते हुए।
2: हाँ ये बात
0: दैट्स
2: सही
0: व्हाई
2: है
0: इट्स
2: यार
0: बिल्ड्स अप द बिलीफ सिस्टम कि इट्स द इजीएस्ट वे टू गेट वर्क डन। आप चिल्ला
2: बट इट्स
0: दीजिए और
2: रॉन्ग
0: काम हो जाएगा।
1: सबॉर्डिनेट्स के साथ, खासकर अगर हम घर पे देखते हैं,
0: नहीं इवन
1: अगर
0: हस्बैंड वाइफ के साथ, इवन पेरेंट्स चाइल्ड के साथ, किसी के साथ भी इट वर्क्स ना। आप
2: बट हाउ इट वर्क्स, अगर नहीं आप साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म थोड़ी देखो कि क्रोध से डर निर्माण होता है और डर के कारण आप लोगों को चेंज कर पाते हैं, मैनिपुलेट कर पाते हैं। परंतु डर जो है वह बहुत ही एक कमजोर मोटिवेटिंग फैक्टर है। डर से लंबा समय काम नहीं हो सकता। जैसे आप चाहो कि भी मेरे डर से बच्चे पढ़े, तो जब तक आप उनके सर पे खड़े हैं वह पढ़ेंगे, परंतु जैसे ही आप और कुछ करने लगे वह भी दूसरे काम
1: और
2: में
1: जैसा कि
2: बिजी हो
1: आपने कहा कि
2: जाएंगे।
1: मोटिवेटिंग फैक्टर, यू नो, सो मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि दूसरे को मोटिवेट करने के लिए कोशिश करें ना कि दूसरा काम कर पाए। सो उसके लिए अगर वो मोटिवेटिंग फैक्टर पॉजिटिव होगा
2: तब वो
1: तभी तो
2: करेगा।
1: पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। बिकॉज अगेन बीच, ये तो हम कहते ही आ रहे हैं कि थॉट से डेस्टिनी है या बीच से पेड़ फल तक अगर हम जाते हैं तो द बीच हैज टू बी
0: एंड
1: द
0: मोस्ट
1: ट्रू।
0: इम्पोर्टेंट है कि आप काम तो करवा लेंगे शायद, लेकिन रिलेशनशिप का क्या हुआ? चाहे वो पेरेंट चाइल्ड है, कोई भी रिलेशनशिप है, उसकी फाउंडेशन तो कमजोर होती जा रही है ना। हर टाइम आपने एंगर को एक मोटिवेटर यूज किया या फियर को मोटिवेटर यूज किया, नेगेटिव ब्रिक आप रखते जा रहे हैं अपनी फाउंडेशन के ऊपर। काम ऊपर लेवल पे जो काम है वो होता जा रहा है, हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन फाउंडेशन बहुत कमजोर है तो एक दिन वो
1: रिलेशनशिप भी ब्रेक
0: क्रैश
1: हो
0: हो
1: जाएगा
0: जाएगा।
1: एंड दूसरी तरफ प्रोपोगेट हो जाएगा यही थॉट प्रोसेस।
2: लेकिन
1: अगर
2: जल्दी भी नहीं
1: आपके
2: हो रहा है अगर आप
0: इट
2: सचमुच
0: एक्चुअली विल
2: देखो।
0: नॉट
2: हाँ
0: हैपन।
2: क्योंकि ना व्यक्ति अपने फुल पोटेंशियल से नहीं
1: नहीं
2: करेगा।
1: देगा जी।
2: जैसे ना आप बच्चा पढ़ रहा है लेकिन जबरदस्ती पढ़ रहा है, कहाँ तो ये भी पॉसिबल आपको गालियां दे कि भी कैसी माँ है मुझे खेलने नहीं देती है। यही बात सबॉर्डिनेट के साथ भी होगी कि
0: और वो
2: बहुत
0: काम
2: ही
0: कर रहे हैं उस
2: एकदम
0: नेगेटिव एनर्जी के साथ
1: दैट्स
0: अंदर,
1: व्हाट आई एम सेइंग कि कहीं ना
0: तो
1: कहीं एक नेगेटिव के साथ पूरा हो रहा है। तो दिस एंगर, सो ओके, वन फैक्टर विच कम्स टू आवर माइंड, लाइक हमने जब कहा
2: दिस टू
1: बात की कि
2: कंट्रोल अदर्स,
1: टू कंट्रोल अदर्स, दैट क्रिएट्स एंगर।
2: नो टू कंट्रोल अदर्स यू बिकम एंग्री और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है मैंने कईयों को पूछा भी है आप भी अगर कभी लोगों को पूछेंगे कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि मैं चाहूं वैसे ही होना चाहिए थिंग मस्ट गो माई वे आप देखना जिसकी भी ये अगर पर्सनालिटी है तो उसको सदैव ज्यादा गुस्सा आता है क्यों क्योंकि ये संभव नहीं मैं चाहूं कि सदैव मेरी इच्छा के अनुसार हो ये 100% पॉसिबल नहीं है और जब भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होगा तो मुझे गुस्सा आएगा और इसके पीछे भी जो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि जब वो व्यक्ति छोटा होता है तब माता पिता ने उनकी हर इच्छा को पूरी की है उसने पानी मांगा तो उसे दूध दे दिया गया हाँ कभी भी उसे फ्रस्ट्रेशन या तो ना नहीं कहा गया और इसके कारण बचपन में ये स्थिति बन गई कि थिंग मस्ट गो माई वे और बड़े होने के बाद भी वही जो साइकोलॉजिकल एक सेटअप रही और उसके कारण गुस्सा ज्यादा आता है
0: क्या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि बचपन में आई डिड नॉट गेट थिंग्स माई वे शायद जब मेरे पास पावर नहीं थी अब जब मेरे पास पावर आई है आई टेंड टू कैसे अपब्रिंगिंग है वो कैसे हमारी पर्सनालिटी पर अफेक्ट करती है आगे कई बार अगर बिल्कुल मेरी मेरे मर्जी अनुसार अगर नहीं हुआ आई डिड नॉट गेट टू डू थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डू फिर जब मैं उस एज पर पहुंचती हूँ आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग माई वे आई वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीबडी क्योंकि वो भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर
1: कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ बिकॉज समवेयर दिस इज नॉट गुड सी व्हेन आई रियलाइज कि मैं इस वजह से एंग्री हूँ कि मेरी तरह से काम होना चाहिए सो फर्स्ट इज द रियलाइजेशन हैज टू सेट इन या मुझे खुद ये एहसास होना जरूरी है कि मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ तभी तो फिर मैं कारणों पे जाऊंगा बेसिकली वंस आई अंडरस्टैंड द रीजन कैन आई हेल्प इट नाउ
0: या बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि नोबडी एल्स विल बी एबल टू डू इट द सेम वे लाइक मी Because everybody is unique, everybody is different. And if everybody started doing things the way I do, the world will be very boring. Sab log ek hi tarah se agar kaam karne lag gaye, ek hi tarah se sochne lag gaye, the world will be very boring. आज ये दुनिया इतनी सुंदर इसीलिए है क्योंकि आप अलग हैं और मैं अलग हूँ अगर आप और मैं एक तरह करने लग गए वी वोंट बी एबल टू सिट लाइक दिस
1: देयर हैज टू बी सो बोरिंग यस डॉक्टर साहब मैं भी एग्जांपल एक ही देना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़े अफसर से मैं एक जगह एक दिन मिली और वो अपने एक सबॉर्डिनेट को बहुत ही बुरी तरह से डांट रहे थे एक लड़की थी टाइपिस्ट थी उनकी और वो बाहर गई और उसके बाद वो एकदम से नॉर्मल हो गए तो मैंने बोला कि आपने मेरे सामने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी क्यों क्यों आपने ऐसे किया कहता ये सात्विक गुस्सा है गुस्सा भी कई तरह के होते हैं एंड ही वॉज नॉट एंग्री बेसिकली ही सेड आई वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री एंड ये सात्विक गुस्सा है कि इसमें मेरे इसके जो मैंने ये गुस्सा किया है उसके अंदर एक उस व्यक्ति के लिए हित छुपा है क्योंकि वो मैं इतना प्यार देता हूँ कि कई बार वो सर पे चढ़ जाते हैं तो अब उनको वो उतारना मतलब पर मेरे सामने किसी बाहरी आदमी के सामने ये करना तो मेरे लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग है और उस व्यक्ति के लिए तो और भी एम्बैरेसिंग होगा कहते नहीं ऐसा नहीं है ये एक सात्विक गुस्सा है और मुझे ये हमेशा काम आता है तो उसके बाद उन्हें समझ में आ जाएगा लोगों को इनको कि भाई अगर मेरे साथ आप ये करना चाहते तो यहाँ मैं उनको कोई जवाब ही नहीं दे सकती थी लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर ये फील हुआ कि दिस वाज नॉट राइट समवेयर आई थिंक फॉर बोथ ऑफ देम दिस वाज नॉट गुड लेकिन क्या ऐसा होता है कि ये साथ ही वाज नॉट एंग्री ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री सो व्हाट इज दिस एक्चुअली
2: बट वन थिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट जैसे ये जो आप जिसको सात्विक गुस्सा कहते हैं ना साइकोलॉजी में एक दूसरी टर्म है जिसको कहा फेक एंगर एज अ लास्ट रिसोर्ट भी पहले और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं उन चीजों को अपनाइए फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो कई बार आप झूठ-मूठ का गुस्सा कर सकते हैं परंतु बहुत मुश्किल है उसके लिए बहुत एक्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जब भी आप अपना आवाज बढ़ाते हैं कुछ जोर से बोलते हैं तो अंदर में फीलिंग्स भी आती है
1: बट वॉज दिस राइट
2: इट इज नॉट राइट क्योंकि अगर उसे पता है वो लड़की को पता है कि भी मेरे बॉस ऐसे ही झूठ मूठ ही गुस्सा करते हैं आवाज बढ़ाते फिर ठीक है लेकिन तो रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर उसे पता है कि भाई ऐसे नाटक कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज आना नहीं है
1: और अगर उसे नहीं पता
2: नहीं पता है तो फिर तो उस पर इफेक्ट होगी सात्विक गुस्सा कैसे कहा वो खुद तो फील करेगी ना
1: फील करेगी
2: उल्टा उसका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगा इसके बाद वो जो काम करेगी एकाग्रता से नहीं कर सकती है, सारा दिन इसी बारे में सोचेगी, वह सही निर्णय नहीं कर सकती है, क्रिएटिव नहीं बन सकती है, तो सात्विक गुस्से जैसी कोई चीज नहीं।
1: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लेरिफाई एक्चुअली, कि ऐसा कुछ नहीं है। एक और होता है राइटियस गुस्सा, लोग झूठ बोलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग झूठ बोल रहे हैं, तो क्या मेरे पास ये अधिकार है कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं? लेकिन आई हैव आल्सो बीन लाइक दिस, बट सडनली आई एम रियलाइजिंग दैट डू आई हैव द राइट टू बी एंग्री, दिस इज देयर लाइफ।
2: और इसमें तो ये सोचना है कि गुस्से से क्या लोग सच बोलेंगे? अगर सच बोलेंगे तो भले गुस्सा करो, परंतु क्रोध करने से बच्चे सच नहीं बोलेंगे, उल्टा प्यार से उनको एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चे सच बोलेंगे। सबॉर्डिनेट भी सच नहीं बोलेंगे गुस्से से, उल्टा इसमें तो यह चाहिए कि भी आप चाहते हैं कि बच्चे सच बोले तो आप भी सच बोलो, नो यू बिकम ट्रूथफुल, तो ऑटोमेटिकली बच्चे हम जो सिखाते हैं वैसा नहीं सीखते, हम जो करते हैं उससे ऑटोमेटिकली बच्चे सीखते हैं।
1: इवन सिस्टर शिवानी, हम अगर वो देखें जो सेलिब्रिटीज अपने कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, बहुत बार ये देखा गया है व्हाट मेक्स यू एंग्री एंड द आंसर इज व्हेन पीपल लाई, तो अगेन यू नो लाइक
0: अगेन आई एम गिविंग अ जस्टिफिकेशन फॉर माय एंगर। ठीक है, जैसे परमात्मा हमें बहुत सुंदर बात एक यहाँ पे सिखाते हैं कि अगर दूसरे ने गलती की, चलो मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि दूसरे ने गलती की, तो क्या उसकी गलती सुधारने के लिए आप उससे बड़ी गलती करेंगे? यू नो, उसने गलती की, आपने भी गलती की, तो फिर आपको क्या हक रहा उसको ठीक करने का? क्योंकि उसने झूठ बोला, उसने गलती की, आपने गुस्सा किया, आपने गलती की।
1: लेकिन मैं तो कहता हूँ कि झूठ बोलने से बड़ा तो पाप है ही नहीं, गुस्सा तो कोई पाप ही नहीं है।
0: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को, अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सच बोलने का, अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। लेकिन इधर विद अ जूनियर और विद अ चाइल्ड,
1: लेकिन उनको हम इस बात का तो एहसास करा दें कि हमें पता है कि आपने सही नहीं बोला है।
0: नहीं, अगर जब उन्होंने कोई गलती, देखो झूठ कहाँ से स्टार्ट होता है, हम झूठ कब बोलते हैं? हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। जब हमें ये पता होगा कि अगर मैंने सच बताया मुझे डांट नहीं पड़ेगी, इफ़ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ़ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो ईजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी,
1: तो अगेन ट्रस्ट भी आ जाता,
0: ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें। आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद, लेकिन उसके पीछे रीजन यही है,
1: और फिर आदत पड़ती जाती है धीरे धीरे,
0: धीरे धीरे संस्कार बन जाएगा,
2: फिर आदत होगी।
1: तो यहाँ ये हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोई झूठ बोले, जो मुझे भी गुस्सा बहुत आता था कि भाई झूठ बोलते हैं तो आई जस्ट कांट टॉलरेट, दिस इज लाइक लॉट ऑफ पीपल सेइंग दिस कि आई जस्ट कांट टॉलरेट, सो व्हाट हैज टू बी डन, क्या करना है?
2: पहले तो मैं समझता हूँ, और थोड़े ने गुस्से के कारण मैं बता दूं आपको, और जिससे ये है ना झूठ बोलने के, ऐसे दूसरे एक बात है, अन्याय को कुछ लोग सहन नहीं कर सकते, जब भी अन्याय होता है तो उनको गुस्सा आ जाता है,
1: गलत हो रहा होता
2: है। हाँ, गलत हो रहा हो तो उनको गुस्सा आता है, अभी भले बात ठीक है, ऊपर से तो ये लग रही है कि भी अन्याय को क्यों सहन करे, गलती को क्यों सहन करे, परंतु फिर भी सोचना यह है कि गुस्से करने से क्या अन्याय कम होगा? गुस्सा अन्याय को कम करने वाला नहीं, आप भले गांधी जी की तरह कैंपेन करो, नहीं और कुछ करिए, वह राइट है, परंतु क्रोध से आपको भी नुकसान है, सामने वालों को भी हानि है, तो इसके कारण जब अन्याय हो तब भी सोचिए कि और कोई स्ट्रेटेजी को मुझे अपनाना है, कि जिसके द्वारा आपको एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे, क्रोध से नहीं मिलेंगे।
0: क्रोध एक ऐसा वेपन
1: है,
0: एंगर इज अ वेपन, इट्स अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं, और उससे चोट
1: हमें खुद को लगती है,
0: दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा थोड़ी देर बाद। और डॉक्टर साहब ने तो कितना अच्छा बताया, वो पूरा जो बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को हानि
1: तो
0: मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करी जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देंगे। बहुत ईजी है ख़त्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा फिर।
1: सचमुच खत्म कर सकते हैं,
2: और कुछ कारण भी देखते हैं ना, क्योंकि थोड़े अगर कारण अच्छे से डिस्कस हुए तो सभी इसका उपयोग भी कर सकेंगे। कुछ हमें छोटे से फायदे भी होते, इसलिए लोग गुस्सा करते हैं। एक तो अगर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में मुझे लगता है कि मेरी हार हो रही है, आपकी जीत हो रही है, तो उसी क्षण में गुस्से में आ जाता हूँ, ताकि चर्चा वहीं बंद हो जाए और मुझे हार को स्वीकार नहीं करनी पड़े। छोटा सा फायदा है, परंतु वहां भी अपने आप को समझा है कि सबसे अच्छा है कि मैं हार को स्वीकार करूं, ताकि दोबारा मैं अपने लॉजिक को और इम्प्रूव करूंगा।
1: और हो सकता है जो दूसरा कह रहा है उसके लॉजिक को मैं समझ के उसे इनकॉर्पोरेट कर लूं।
2: बिल्कुल दूसरी एक ऐसी भी बात है कि कोई चीज को आप पोस्टपोन कर रहे हैं, आपको कोई काम दिया गया, आप नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है जवाब देने का, तो उससे बस थोड़ा समय पहले आप गुस्से में आ जाते हैं, ताकि आपके लिए तैयार बहाना है कि क्योंकि बच्चों ने गुस्सा दिलाया, इसके कारण मैं काम नहीं कर पाया। तो ऐसे सूक्ष्म बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, वो एक इंटरनल मैकेनिज्म्स है, उसको हम अंडरस्टैंड करें तो भी बहुत फायदा होगा। और एक चीज यह भी है कि जो लोग अपने आप को इन्फीरियर फील करते, जो हीनता के शिकार है, उनको भी गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि जब वो गुस्सा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है और उसके कारण वो बार बार करते हैं,
1: एम्पावर्ड फील करते
2: हैं। हाँ, नहीं तो आमतौर पर वो वीक फील कर रहे हैं, लगता है कि भी मेरे में कोई शक्ति नहीं है, परंतु गुस्सा करने से उनमें शक्ति आ जाती है,
1: बाहरी
2: अच्छा फील करते
1: शस्त्र लेके, जैसे आपने कहा वहाँ वो एक शस्त्र लेके, एक वेपन की तरह यूज
2: करते हैं। और कुछ अगर कारण देखने कि जब आपको नींद की कमी है, नींद आपको ठीक से नहीं आई, कब आपको बहुत भूख लगी है, जो लोग बीमार है ज्यादा, स्पेशली बूढ़े लोग की भी जो लंबे समय से बीमार है, तो भी आप देखेंगे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो दूसरों पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, शायद अपने आप से ऐसी उनकी स्थिति है, क्योंकि बीमारी के कारण ही वो अपने आप को वीक महसूस करते हैं। इन सब कारणों को एक बार अच्छे से समझना चाहिए, और जब आपको समझ में आ जाए कि मुझे क्रोध क्यों आता है, तो फिर उसका निवारण सचमुच जो आप पूछ रहे वह भी पॉसिबल है।
1: तो मतलब पहला जो मुकाम हमें तय करना है वो है कि कारण तक पहुंच जाए, उसके बाद हमारे जो निवारण की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो निवारण इज अगेन सेल्फ काउंसलिंग कैन बी रियली हेल्पफुल
0: एंड अंडरस्टैंडिंग। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा था। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल, सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
2: और जो सरल सी बात, तो हम बच्चे थे तब से हमको ये बताई गई है कि जब गुस्सा आए तब उसको पोस्टपोन कर,
1: दस्तक गिन लो, पानी पी लो,
2: बहुत कुछ करो, ये जो सब दे वर्क, इफ यू रियली डू इट एवरी टाइम, सिर्फ हमको राइट मोमेंट पर करना चाहिए।
1: एक्चुअली वो पॉज जो है वो आपको एकदम से इंटरनलाइज कर लेगा कि कारण क्या था, एंड देन अगेन इफ वी आर एबल टू रिमेंबर दैट इट्स अ वेपन व्हिच विल नॉट वर्क, सो द मोमेंट वी विल रिमेंबर दैट दिस इज अ वेपन व्हिच विल, इफ इट्स नॉट गोना वर्क, हमारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा, वी शुड एक्चुअली, वी कैन एक्चुअली कम बैक,
2: हम कुछ और करेंगे। समझो आपने पानी पी लिया और यू गॉट इन टच विद रियलिटी, क्योंकि क्रोध व क्षणिक पागलपन है, वो पागलपन अगर आपका 15-20 सेकंड में कम हो गया, तो फिर आप राइट टाइप ऑफ रिएक्शन भी दे सकेंगे। और कहीं और एक अच्छी युक्ति है, गहरा सांस लो। एक बार मेरी एक वर्कशॉप हुई थी, तो जिसमें एक टीचर ने कहा कि मुझे इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि एक बार मैंने अपने प्रिंसिपल को पीट दिया और फिर कोर्ट में केस हो गया, करीब 10 साल तक मुझे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, और ये सारी प्रक्रिया में मैं अंत में अभी यह सीखा हूँ कि जब क्रोध आए तो 4-5 गहरे सांस लो, तो उससे भी एक समय मिल जाता है, और समय मिलने के बाद आप राइट रिएक्शन दे सकते।
1: हम वो एक्शन तक नहीं पहुंच पाते ना, क्योंकि वो एक्शन ही हो गया, इतना एक्सट्रीम केस था। तो डॉक्टर गिरीश पटेल, आज पूरा हमने ये जानने की कोशिश की कि गुस्सा जो है उसके कारण क्या हैं, क्योंकि कई तरह के कारण सामने आए. सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो जो कि एक बहुत इनहेरेंट कारण है, इनहेरेंट वजह है, वो ये कि दूसरे मेरी तरह

समझें, जो मैं कह रहा हूँ उस तरह हो जाएं, तब अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मुझे गुस्सा आता ही है। उसके अलावा एक सात्विक गुस्से की हमने बात इसको ढूंढने की कोशिश की कि दूसरों को चेंज करने के लिए, दूसरे के भले के लिए, कोई कोई अगर झूठ बोल रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तब मुझे गुस्सा आता है। वो सारे गुस्से कहीं ना कहीं एक शस्त्र के रूप में है हमारे हाथ में, जिसका कहीं कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। अगर हमने अन्याय के खिलाफ भी लड़ना है तो गुस्से की ज़रूरत नहीं है, कई और तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं। तो डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली कड़ी में हम गुस्से की हमने इतनी बातें कर ली है, अब थोड़ा खुशी को भी तलाशने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि गुस्से का एंटीडोट जो है वो खुशी यानी हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस हमारी ज़िंदगी में कैसे आ सकती है? अभी हमने ये जाना कि गुस्से के कारण क्या है और गुस्सा कैसे हटाया जा सकता है। जैसे कारण पता चलेगा तो हम हटा भी देंगे, जैसे ही हटेगा तो शायद हैप्पीनेस आ जाएगी। तो चलिए इस मोड़ पर आपसे ये भी कह देते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कैसे ज़िंदगी में खुशी को हम अपना सकते हैं, तलाश सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। 8:08 रेडियो मधुबन की घड़ी पर और मैं हूँ आरजे शुभा। सुबह की पहली किरण एक पैगाम लाई है, नई उम्मीदों की सौगात साथ लाई है। सुबह की पहली किरण एक पैगाम लाई है, नई उम्मीदों की सौगात लाई है। जो बीत गया उसे मुस्कुरा कर जाने दे, आज की सुबह को दिल से अपनाने दे, आज की सुबह को दिल से अपनाने दो। सुप्रभात सभी साथियों को, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। और आइए इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को जान करके। शक संवत 1948 है, श्रावण शुक्ल पंचमी सोमवार है, आज विक्रम संवत 2083 है, अंग्रेजी तारीख है 17 अगस्त सन 2026। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु है, राहुकाल सुबह 7:30 से 9:01 तक है, पंचमी तिथि शाम को 5 से लेकर के मिनट तक है, उपरांत षष्ठी तिथि का आरंभ है। चित्रा नक्षत्र अगले दिन तड़के 4:58 यानी कि 18 अगस्त तक, उपरांत श्वाति नक्षत्र का आरंभ है। शुभ योग अगले दिन तड़के 3:29 तक, उपरांत शुक्ल योग का आरंभ है। बालवकरण है शाम को 5 तक, उपरांत कोलवकरण का आरंभ है। चंद्रमा अपराह्न 4:19 तक कन्या राशि पर और उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 5:51 तक, सूर्यास्त का समय 6:59 तक। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी आज के पंचांग के साथ। और राष्ट्रीय शाके 1948, 26/01 श्रावण सोमवार है आज, और इसके साथ साथ इस्लामी हिजरी है 1448/03 रबीउल अव्वल पीर अव्वा है आज के दिन। तीसरा श्रावण सोमवार व्रत है आज, और भगवान शिव जी के निमित्त व्रत किए जाते हैं श्रावण महीने में। तो इस मास में शिव की पूजा का विशेष विधान है। कुछ भक्त तो पूरे मास ही भगवान शिव की पूजा आराधना और व्रत करते हैं। अधिकांश व्यक्ति केवल श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार का ही व्रत करते हैं। श्रावण मास के सोमवारों में शिव के व्रतों और पूजा और शिव जी की आरती का विशेष ही महत्व है। शिव के ये व्रत शुभदायी और फलदायी मानते हैं। तो कई 16 सोमवार रखते हैं, कई सौम्य प्रदोष भी रखते हैं, और सोमवार सिर्फ भी कई श्रावण महीने में सिर्फ सोमवार भी रखते हैं व्रत के लिए। तो इस व्रत को श्रावण माह के आरंभ करना शुरू माना जाता है। सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे प्रहर तक किया जाता है। ओम नमः शिवाय से शिव का तथा ओम शिवाय नमः से पार्वती का भी कहते हैं कि 16 पूजन किया जाता है आज के दिन। इस मोड़ पर एक श्रोता मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: हेलो जी, नमस्कार
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ, कार्यक्रम को सुनकर के आनंद ले रहा हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
1: एक भजन है सर,
0: कोशिश करेंगे प्ले करने के लिए, बोलिए।
1: मन मेरा मंदिर है, शिव है पूजा।
0: जी जी, कोशिश करेंगे आपको ये भजन सुनाने के लिए।
1: इससे बड़ा कोई न दूजा, ये भजन अगर ये हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बोलिलाम जी जी। एक एक बात पूछूं आपसे, अगर ये भजन नहीं प्ले होगा तो आपको आनंद नहीं आएगा? आपने बोला, आप हमेशा बोलते आनंद आ जाएगा, मतलब आपके आनंद भजन प्ले होने से डिपेंड है क्या? या कोई भी गाना अगर रेडियो में प्ले होता है, ऐसा नहीं है ना? ठीक है फिर, छा जाती है। ठीक है, सही बात है, लेकिन हमारी खुशी उसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए कि मेरा गीत बजा या नहीं बजा।
1: एक बार रेडियो को सुन लेते हैं, हमारे मन के अंदर शांति मिल जाती है।
0: ओके, धन्यवाद धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद। लेकिन भूरे राम जी, भूरी लाल जी है ना, भूरा राम जी भी हमारे एक लिसनर हैं, भूरी लाल जी हैं ये। तो सभी लिसनर से मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी खुशी रेडियो पे फ़ोन लगे नहीं लगे, बात हुई नहीं हुई, गाना प्ले हुआ नहीं हुआ, उसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो हमारी खुशी उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी गाना ज़रूर प्ले करेंगे हम। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम और सुनते हैं एक शिव जी के ऊपर आधारित भजन, फिर वापस आएंगे इस भजन के बाद।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नई किरण और मैं हूं शुभा। आइए चलते हैं हम कहां, जी हां, अबुरुड रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि सफर सुहाना हो, रास्ते आसान हो, हर मंजिल तक पहुंचने के इंतजाम हो, और जब सफर हो रेल का तो जानकारी हो पूरी, ताकि सफर रहे सुरक्षित और खुशहाल। तो श्रोताओं, अब समय है रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी का, ट्रेन का समय, यात्रा से जुड़ी जरूरी बातें और आपके सफर को आसान बनाने वाली उपयोगी जानकारियां। बने रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम के साथ। गाड़ी संख्या 22547 ग्वालियर से साबरमती तक जाने वाली ये सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 8:25 पर, यानी कि अभी 8:26 हुई है, अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, 8:35 पर रवाना होगी। दो नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है ये गाड़ी। अरावली एक्सप्रेस 14702 8:30 पर पहुंचने वाली है और 8:40 पर रवाना होगी ये गाड़ी, संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 है। वंदे भारत एक्सप्रेस 12461 आज 11 देरी से चल रही है, 9:16 पर पहुंचेगी 9:05 की जगह पर। जम्मू तभी साबरमती एक्सप्रेस 19224 9:45 पर पहुंचने वाली है अबुरुड रेलवे स्टेशन पर। अजमेर से बेंगलुरु तक जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस 16531 10:10 पर अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। जोधपुर सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचने वाली है। योगा एक्सप्रेस 19032 10:50 पर पहुंचने वाली है अबुरुड रेलवे स्टेशन पर। वहीं पर गाड़ी संख्या है 16312 ये गाड़ी 11:05 पर अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और ये थिरुवनंतपुरम नॉर्थ से निकल कर के श्रीनगर तक जाने वाली ये गाड़ी है, श्रीगंगानगर तक जाने वाली ये गाड़ी 11:05 पर अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन है ये। और वहीं पर पुणे भगत की कोठी एक्सप्रेस 11090 11:30 पर पहुंचेगी। दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 19412 7 की मामूली देरी से चलती हुई 11:37 पर अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, संभावित प्लेटफॉर्म है 2। और वहीं पर गाड़ी संख्या है साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस का 14822 11:40 पर ऑन टाइम अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे रेलवे इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप भी अपने समय से पहले ज़रूर पहुंच जाइएगा रेलवे स्टेशन पर। आपकी यात्रा मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: और सोमवार की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ आप सुन रहे हैं अपना ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। और नए हफ्ते की शुरुआत तो हो चुकी है, तो आइए जानते हैं आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है और क्या आसमान साफ रहेगा या तापमान में होगी बढ़ोतरी या मौसम लेगा फिर से करवट। चलिए सुनते हैं आज का मौसम अपडेट। सबसे पहले चलते हैं हम राजधानी जयपुर की ओर और यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की बहुत ही कम चांसेस हैं आज के दिन राजधानी जयपुर में। और अभी मौसम जानकारी हम दे रहे हैं तो इस बीच में आपके कॉल्स हम नहीं ले सकते हैं, इस बात के लिए हम क्षमा चाहेंगे। अब चलते हैं हम उदयपुर की ओर और यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है और आसमान पर बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना दिन के समय बहुत ज़्यादा है। आबू रोड में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। 84% तक संभावना दिन के समय बारिश होने की है, रात्रि के समय 63% तक संभावना है। यानी कि दिन के समय बादल भी छाए रहेंगे और जोरदार बारिश होने की भी संभावना है कुछ समय के लिए। बात करें अगर माउंट आबू के बारे में, यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर और जोरदार बारिश होने की संभावना दिन के समय कम, रात्रि के समय ज़्यादा है माउंट आबू में। बात करें अगर हम पाली जिले के बारे में, 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश होने की बहुत ही कम संभावनाएं हैं आज के दिन। लगभग आप कह सकते हैं पाली जिले में ना के बराबर बारिश होने की संभावना है आज के दिन। जोधपुर में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर भी आसमान पर बादल छाए रहेंगे और थोड़ा सा सूरज फिर थोड़ा सा बादल आपको देखने को मिलेगा आसमान पर। बारिश की संभावना बहुत ही कम है आज हमारे जोधपुर में। अभी बात करते हैं सूरत में, 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना बिल्कुल 80% तक है दिन के समय भी और रात्रि के समय भी। मेहसाणा में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना दिन के समय बहुत ज़्यादा है, रात्रि के समय थोड़ा कम। आइए चलते हैं राजकोट की ओर, यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर और बारिश होने की संभावना रात्रि के समय ज़्यादा है, दिन के समय थोड़ा कम है। गांधीनगर अहमदाबाद के अंचल में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। दिन के समय आसमान पर बादल देखने को मिलेंगे लेकिन आज सूरज चाचा को भी आप देख सकते हैं अहमदाबाद और गांधीनगर में, लेकिन रात्रि के समय थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है। लेकिन 55% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की गांधीनगर और अहमदाबाद के अंचल में रात्रि के समय। राजधानी दिल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ पर 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बौछार होने की संभावना है। बात करें कोलकाता की तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना जोरदार है, लगभग 97% तक बारिश होने की संभावना है हमारे कोलकाता में। आइए चलते हैं हम बेंगलुरु की ओर, 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 20 डिग्री तक जा सकता है। दिन के समय 60% तक बारिश होने की संभावना है, रात्रि के समय 55% तक और 95% से ज़्यादा बादल छाए रहेंगे आसमान पर। यानी कि आसमान पर आपको सिर्फ बादल और बादल ही दिखाई देंगे। मुंबई के बारे में बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है मुंबई में। बारिश होने की संभावनाएँ दिन के समय बहुत ज़्यादा है और लगभग 91% तक और फिर रात्रि के समय 58% तक संभावना है बारिश होने की। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है आज मुंबई में। चेन्नई के बारे में बात करें तो चेन्नई में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है आज के दिन। बारिश होने की संभावना है चेन्नई में भी, रात्रि के समय ज़्यादा है 90% तक, दिन के समय 63% तक है। जिला सिरोही के बारे में बात करें तो जिला सिरोही में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ पर दिन के समय बारिश होने की संभावना लगभग 56% तक है और रात्रि के समय 55% तक है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर लगभग 84% तक। और यहाँ इस मोड़ पर एक हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं, हवा के शुद्धता के बारे में बात करें तो हमारे जिले में 48 है, यानी कि शुद्ध हवा है, साफ हवा है। इस मोड़ पर एक दोस्त है हमारे साथ। हेलो नमस्ते।
1: दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सूरज बोलता हूँ जटाना से, कैसे हो दीदी?
0: गुड मॉर्निंग, बढ़िया, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, बात सुन रहे हैं, आपकी कार्यक्रम सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं।
0: जी जी,
1: आज सोमवार है हमारे तो यहाँ, सावन महीना
0: तीसरा सोमवार। अच्छा, गुजरात में आज पहला है?
1: जी आज पहला सोमवार है हमारे इधर।
0: जी जी जी,
1: हमारे 15 दिन बाद बता है यहाँ सावन महीना।
0: जी,
1: और आपके 15 दिन पहले होता है।
0: जी, तो आपने आज क्या नाश्ता किया कि उपवास है आज आपका?
1: नहीं नाश्ता, मैं तो उपवास नहीं करता हूँ कोई भी।
0: जी,
1: मैं क्या है, मेरे डायबिटीज का प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए मैं भूखा नहीं रह सकता।
0: राइट,
1: इसीलिए मैं कोई उपवास नहीं करता हूँ, लेकिन बस पास में जाता हूँ भगवान के तरीके आए दी गई मंदिर में।
0: जी, और कर्म अच्छा करने पे फोकस करते हैं और उस पे विश्वास करते हैं ताकि सबको टाइम पे कपड़े मिल जाए, सब खुश हो, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, टाइम से काम कर लेते हैं, काम देते हैं भी लोगों को।
0: जी, बहुत खूब, बहुत खूब, तो बहुत बढ़िया कि आप अपने कर्मों के ऊपर फोकस करते हैं। जी,
1: आज सोमवार है, भोले बाबा का दिन है, तो हो जाए एक अच्छा गाना। दीदी गाना मुझे जहन में है, आपको शायद आपको मिले तो जरूर सुना देना। दीदी एक कोई गाना है कि सावन का महीना पवन करे तो, भोले बाबा का गाना है वो, ऐसे कोई फिल्मी गीत नहीं है लेकिन इस पर एक गाना बहुत भोले बाबा का बनाया हुआ है।
0: सावन, अच्छा, भोले बाबा का भजन बनाया हुआ है इस धुन में?
1: हाँ, भजन बनाया हुआ है।
0: ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे मिले तो मैं आप जरूर प्ले करूंगी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। ये थे हमारे सुरेश भाई दर्जी फ्रॉम जोटाना से, जिन्होंने कहा कि डायबिटीज़ है उनको, तो वो भूखा तो नहीं रह सकते, है ना? तो अपना शरीर का ध्यान भी रखना है, काम भी करना है, लेकिन कर्म कैसे करना है इसके ऊपर वो ध्यान रखते हैं, जो भगवान हमें सिखाते हैं कि कोई हमसे दुखी ना हो, कोशिश करें हम कि हम किसी को दुख ना दें, सबका धन्यवाद करते हुए सबका काम भी टाइम पर पूरा कर देना चाहिए। जैसे वो टेलरिंग का काम करते हैं तो सबको कपड़ा सही तरीके से और सही टाइम पे मिल जाए, इस बात का वो ध्यान रखते हैं। तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं जब आप कर्म करते हैं, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। कई ऐसे हमारे श्रोता होंगे जो नाम जपते जपते भी कर्म करते होंगे, तो आप भी बता सकते हैं कि आप कैसे नाम जपते हैं, कैसे भगवान को याद करते हुए कर्म करते हैं। इस मोड़ पर एक और हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते।
2: हेलो, सुबह बहन
0: जी। जी जी कंचन भाई, बहुत दिनों की बात बात हो रही है आपके साथ, कैसे हैं आप? स्वास्थ्य ठीक है?
2: हाँ बिल्कुल बहन जी, आप कैसे?
0: बढ़िया बढ़िया, और घर पे सब ठीक? आपकी धर्म पत्नी कैसे है?
2: कुशल मंगल है, ठीक है सभी।
0: जी जी,
2: और दशा माँ का स्थापन किया है व्रत का।
0: जी, दशा माँ के व्रत कर रहे हैं। जी
2: बहुल सुबह शाम आरती वगैरह ये करते हैं सब, और श्रावण महीना भी हमारे गुजरात में तो वहाँ तो 15 दिन ऊपर हो गया,
0: आज है प्रथम सोमवार गुजरात में।
2: हाँ गुजरात में तो अभी मंदिर में गए थे, गुरु जी का आश्रम है, श्री बाबा का ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर, तो बिलीपत्र चढ़ाने की बारी की है पूरे गाँव की, जो गुरु भक्त है इन्होंने बारी बारी से दो दो भाइयों की बारी की है, तो इसको बिली पत्र लाने का और दूसरे दिन चढ़ाने का।
0: अच्छा ओके, तो आपका नंबर कब है?
2: हमारा तो आज देखा मैंने तो बाद में है, लास्ट में हमारा तो।
0: जी जी,
2: तो तभी
0: जी
2: तो आगे किया है कि भाई सब करो, और जो बिली पत्र चढ़ेगा उसी दिन रात को प्रसाद की भजन कीर्तन का आयोजन है 9 से 11 बजे तक, महिला मंडल का और भाइयों का भी।
0: तो चलो बहुत बढ़िया,
2: प्रसाद भी जो बिली पत्र चढ़े उसका दोनों भाइयों का प्रसाद भी रात को लाना पड़ेगा, और प्रसाद भी
0: करते
2: कार्यक्रम हमारे तो पूरे श्रावण महीने का है।
0: ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंचन भाई। और बारिश का क्या हालचाल है वहाँ पर?
2: उपवास की बात की तो हमारे तो यहाँ क्या है कि उपवास जब पूरे घर के करते हैं तो हमें भी करना पड़ता।
0: अच्छा, उपवास। हाँ जी।
2: हमें 70 साल हुए हमारे, लेकिन अभी डायबिटीज हमारे घर में भी किसी को नहीं है, हम मेरे घर से भी नहीं है, किसी को डायबिटीज नहीं है, इसलिए
0: चलो धन्यवाद भगवान का, है ना।
2: सभी करते हैं पूरे घर वाले, तो हमारे लिए क्या बनाए अकेले के लिए, तो हम भी करते
0: जी। उपवास रहना भी कभी कभी अच्छी बात है ना, अपने पेट में क्लींजिंग हो जाती है, इसलिए तो भारत की संस्कृति में था।
2: रात को बैठना पड़ता है भजन कीर्तन में भी 11 बजे तक, तो जो रात को जो भोजन करते हैं तो बैठ नहीं सकते,
0: नींद आती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल,
2: चलो हम भी करते।
0: बहुत बढ़िया, शरीर की सफाई भी हो जाती है इससे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। धन्यवाद कॉल करने के लिए, जानकारी बताने के लिए कि आपके गांव में किस प्रकार से आप सावन महीने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। धन्यवाद आपका।
2: सभी दोस्तों को आपको आज के श्रावण मास के पहले सोमवार के
0: धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो ये थे कंचन भाई फ्रॉम मंडाली से, और जिन्होंने कहा कि उनके गाँव में किस प्रकार से बेलपत्र दो भाई लाते हैं फिर चढ़ाते हैं, सावन महीने के सोमवार को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। आइए यहाँ पर लेते हैं एक अल्फ़राम, मिलते हैं अल्फ़राम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

उन आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। सावन का तीसरा सोमवार और साथ ही साथ आज है नाग पंचमी, एक साथ पड़ रहा है। सावन सोमवार के दिन ही नाग पंचमी मनाई जा रही है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, वहीं नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की परंपरा है। ऐसे में शिव भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता ये है कि सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं पर नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से परिवार की सुख शांति और सुरक्षा की कामना की जाती है और नागों का भगवान शिव से खास संबंध भी माना जाता है, क्योंकि भोले बाबा को नीलकंठ भी कहा जाता है और सर्प भी गले में दिखाया जाता है शंकर जी के, तो इसलिए नाग पंचमी का पर्व शिव उपासना से भी जुड़ा हुआ है। और कहा जाता है प्राचीन काल में इस दिन घरों को गोबर में और गेरू मिलाकर लिपा जाता था, फिर नाग देवता की पूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती थी। पूजा करने के लिए रस्सी में सात गांठे लगाकर रस्सी का सांप बनाकर इसे लकड़ी से पट्टे के ऊपर सांप का रूप मानकर बिठाया जाता

रखता था। हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती थी। फिर कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर इसे लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करते थे। और अब नाग देवता की मूर्ति भी आने लगी है। तो पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती करते हैं और इसके बाद कच्चे दूध में शहद, चीनी या फिर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जहाँ कहीं भी वो सांप की बांबी या फिर बिल दिखे उसमें डाल देते थे पहले। लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं लेकिन जो सांप जीवित हैं उनको दूध आदि कई जगह पर नहीं दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस मान्यता को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है और इसके साथ साथ और भी दृष्टिकोण है जिसे चेंज किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि एक्चुअली सांप दूध नहीं पीते हैं लेकिन जो हमारे आसपास में जैसे चूहे हैं और भी जानवर हैं तो वो सब दूध पीने के लिए आते हैं, तो एक दूसरे को फिर अपने खाद्य को ग्रहण करते रहते हैं, तो चूहों की संख्या फिर बढ़ता नहीं है क्योंकि सांप उसका शिकार करते हैं। तो इस प्रकार से जो फूड चेन है कॉन्सेप्ट वो भी जुड़ी हुई है इन बातों के साथ, साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ। जब मैं नई दुनिया नया ज़माना कार्यक्रम के अंतर्गत इंटरव्यूज़ लेती हूँ जो सांपों के एक्सपर्ट हैं, प्रकृति के एक्सपर्ट हैं, जैव विविधता को लेकर के जो लोग एक्सपर्ट हैं, फूड चेन को लेकर के एक्सपर्ट हैं, तो उनका ये कहना है कि भारत में सभी तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे ना, महिलाएं खास करके, तो उन्हें इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये नागपंचमी में दूध देने का जो त्यौहार है उसको आगे लाया गया था ताकि हमारा जो खाद्य श्रृंखला है वो सही बने रहे और चूहे हैं, बिल्ली हैं, इनको संख्या इनका ना बढ़े, तो इस प्रकार से भी ये कॉन्सेप्ट था ताकि दूध रखा जाए तो फिर बिल्ली, फिर चूहा, ये सब आएंगे, फिर सांप उनका शिकार करेगा तो फिर हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा। तो ये हम प्राचीन काल के बारे में बात कर रहे हैं, तो नागपंचमी के बारे में कि कैसे पूजा अर्चना किया जाता था पहले और फिर अंत में नागपंचमी की कथा भी सुनते थे।

और एक कथा भी इसके साथ जुड़ी हुई है। किसी नगर में एक किसान अपने परिवार सहित रहता था और उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। एक दिन जब वो हल चला रहा था तो उसके हल में फल में बींध कर सांप के 3 बच्चे मर गए थे। तो बच्चों के मर जाने पर माँ नागिन विलाप करने लगी और फिर उसने अपने बच्चों को मारने वाले से बदला लेने का प्रण लिया। तो एक रात्रि को जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को डस लिया। दूसरे दिन जब नागिन किसान की पुत्री को डसने आई तो उस कन्या ने डर कर नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। उस दिन नाग पंचमी थी और नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या से वर मांगने को कहा। तो लड़की ने क्या वर मांगा, वो बोला कि मेरा माता पिता और भाई जीवित हो जाए और आज के दिन जो भी नागों की पूजा करे उसे नाग कभी ना डसे। इस प्रकार की कहानी जुड़ी हुई है। नागिन तथास्तु कहकर चली गई और किसान का परिवार जीवित हो गया। उस दिन से नागपंचमी को खेत में हल चलाना और साग काटना निषिद्ध हो गया। नागपंचमी के दिन साग भी काटते नहीं है। तो ये कहानी के साथ जुड़ी हुई है। 8:58 रेडियो मधुबन की घड़ी पर आइए एक फटाफट गाना सुनेंगे, उसके बाद हम ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात सुनेंगे।

0: लटकाए हम। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते
1: रहिए। बीता हुआ कल हो या फिर आज, हर बात नए अंदाज के साथ, जो मन को दे एक दर्पण, ये है नई किरण।

0: धरे। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटा जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु वर्तमान मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगे स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
3: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
4: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
5: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
6: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कई बार जब हमारे मित्र होते हैं हमसे शुरुआत में बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्हें हम बोर लगने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कई बार, क्योंकि रिश्ते शुरुआत में तो बहुत अच्छे लगते हैं और बाद में उन्हीं रिश्तों में हम कुछ नयापन ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और फिर हमें मिलता नहीं है। लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं होता है। अभी अभी कहीं पे मैं सुन रही थी कि कई बार जो रिश्तों की मिठास है वो समय के साथ साथ, एज के साथ साथ समझदार हो जाता है। तो पहले जो रंग, जिसको हम मजाक मजाक में कह देते हैं कि लाल रंग पसंद हुआ करता था, धीरे धीरे वो कलर चेंज भी हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे बहुत ज्ञान की बात हो गई है। जी बिल्कुल, आइए चलते हैं हम आबू रोड और सिरोही ज़िले के आसपास, जानते हैं क्या कुछ सूचनाएं और क्या कुछ बातें हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, जो सिरोही आबू रोड भास्कर के साथ जुड़ी हुई बातें जो हम आपको दैनिक भास्कर के जरिए पहुंचा रहे हैं। SBI ने जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भर्ती SC ST और OBC वर्ग के, और इसके साथ साथ बैकलॉग पदों को भी भरने के लिए निकाली है और 1538 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अभ्यर्थी 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। प्रधान आचार्य जी की अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। अधिकृत सरकारी अधिकारियों को छुट्टी रहेगी और जो भी मेहमान आएंगे विजिटर रजिस्टर में विवरण दर्ज करना रहेगा। दैनिक भास्कर में आज लीलाधारी महादेव जी का 84 फीट ऊंचा शिवलिंग के बारे में जानकारी दिया गया है, ये आप जान सकते हैं दैनिक भास्कर पर। लीलाधारी महादेव मंदिर क्षेत्र को धार्मिक आस्था के साथ प्राकृतिक संरचना के लिए भी जाना जाता है। पहाड़ी पर बड़े शिलाखंड इस तरह जुड़े दिखते हैं जैसे उन्हें तराश कर एक साथ रखा गया हो। और इलाके में कई प्राकृतिक गुफाएं और चट्टानों के बीच बनी संरचनाएं भक्तों को आकर्षित करती हैं। पहाड़ी के बीच एक संकरी प्राकृतिक दरारे को स्थानीय लोग पाप गली कहते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस दरार से होकर निकलने वाला व्यक्ति खुद को पवित्र महसूस करता है। इसी कारण दर्शन के लिए आने वाले कई भक्त इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हैं। दरार संकरी होने से हर व्यक्ति इसे पार नहीं कर पाता। कुछ लोग आसानी से निकल जाते हैं जबकि कुछ बीच में ही प्रयास छोड़ देते हैं। यहाँ पर कामना पूरी होने पर घंटी चढ़ाने की परंपरा है। सावन में बढ़ती है श्रद्धालुओं की आवाजाही। सावन सहित अन्य धार्मिक अवसरों पर भी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। भगवा ध्वज और बम बम भोले से गूंजा सिरोही 10वें वर्ष की कांवड़ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न। शिव भक्ति में रंगा सिरोही, 100 शिव भक्तों ने उठाई कांवड़। अर्बुदा गौशाला में लगाए 700 पौधे, 25,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। और वहीं पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जी ने कहा कि पेड़ हैं तो जीवन है। उन्होंने बताया कि गोसेवा के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। आने वाले समय में अंग्रेजी बबूल को हटाने के लिए सरकार मंथन कर रही है। उन्होंने अर्बुदा गौशाला में शेड निर्माण कर विधायक कोष से 21 लाख रुपये देने की घोषणा की है। और वहीं पर पिंडवाड़ा में स्वतंत्र दिवस के अवसर पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य को नगर के विकास, स्वच्छता, सौंदर्यकरण एवं नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया है। आइए इस मोड़ पर हमारे एक श्रोता मित्र जुड़ना चाहते हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हो?
0: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दीदी
0: जी।
1: देखो, शनिवार रविवार के 15 अगस्त के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरह से लाइव और प्रसारण हुआ। हमने सभी कार्यक्रम रेडियो मधुबन द्वारा ही सुने। और दीदी, दूसरी बात, स्टार्टर से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम, और श्रोते भाइयों की भी बातें बहुत अच्छी हुई, सुरेश जी, कंचन जी, सभी की। और आपने आज नाग पंचमी के दिन जो आप हमेशा नई दुनिया नया जमाना में ये पांच तत्व और उस पे जीने वाले हम सभी जीव जंतु वनस्पति इनके कैसे संरक्षण करना है, तो सर्प के बारे में कई बार आप नई दुनिया में जानकारी देते हैं विशेष गेस्ट द्वारा भी। और आज भी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी जो गैर समझ होते हैं स्नेक के बारे में उसका निवारण किया, बहुत अच्छा लगा आपकी जानकारी। तो सभी को नमस्कार, ओम शांति दीदी।
0: ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातें शेयर करने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो सुभाष भाई। ये थे हमारे सुभाष भाई। तो हम बात कर रहे थे आसपास के घटनाक्रमों के ऊपर, नज़र डाल रहे थे, सूचनाएं आप तक हम पहुंचा रहे थे दैनिक भास्कर के जरिए। तो आइए यहां पर ले लेते हैं एक अल्पविराम। अल्पविराम के बाद फिर से मिलेंगे और कुछ सूचनाओं के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू, नहीं गुड मॉर्निंग आप सभी को। यह है नई किरण, मैं हूँ आरजे शुभा। सभी सोच रहे होंगे कि आज मंडे है, आज आप आए हैं, रमेश जी नहीं आए। रमेश जी कुछ दिनों के लिए थोड़ा छुट्टी पे गए हैं, बहुत जल्द मिलेंगे आप सभी के साथ नई किरण इस कार्यक्रम के अंतर्गत। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कुछ सूचनाएं, कुछ घटनाक्रमों के बारे में जो जुड़ी हुई है हमारे आसपास के साथ, सिरोही जिले के साथ और आबू रोड के साथ। आइए फिर से लौटते हैं, जानते हैं दैनिक भास्कर के जरिए आसपास के घटनाक्रम सूचनाओं के बारे में। आबू रोड में जश्न ईद मिलाद उन नबी के मौके पर मुस्लिम कमेटी के और मुस्लिम यूथ कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को इस्लामिया स्कूल परिसर में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुस्लिम कमेटी के सदर हाजी सलीम खान जी ने खेल से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। और वहीं पर साइकिल से रणुजा धाम जाएंगे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं का जत्था मुंबई के फोर्ट ग्रुप के साथ रणुजा धाम के लिए रवाना हुआ है। ये 18वीं साइकिल यात्रा 1265 किलोमीटर का सफर तय कर 26 अगस्त तक रणुजा धाम पहुंचेगी। और वहीं पर शिवगंज में आर्य समाज शिवगंज के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में रविवार को यज्ञ हुआ और यजमानों ने हवन सामग्री की आहुतियां दी, बारिश और खुशहाली की कामना की। तीज पर्व के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल समाज के तत्वावधान में अग्रवाल महिला संरक्षण मंडल की ओर से जीर्ण माता मंदिर परिसर में तीज मेले का आयोजन किया गया। और वहीं पर जनजाति गौरव समारोह समिति सिरोही के तत्वावधान में माधव विश्वविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम हुआ। कालंद्री में गिरनारी आश्रम रामसिन रोड स्थित निर्माणधीन शिवधाम मंदिर परिसर में 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा और कथा का रविवार को समापन हुआ। कथावाचक भावना डागा जोधपुर ने नानी बाई के मायरे की कथा का वाचन किया, श्रद्धालुओं को भक्ति त्याग समर्पण पारिवारिक संस्कारों का संदेश दिया। और वहीं पर माउंट आबू में 9.6 मिलीमीटर बारिश, धुंध से ढकी पहाड़ियां, पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू यानी कि आबूराज में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने से मौसम सुहाना हुआ। रविवार को गहरी धुंध और हल्की बारिश के कारण वातावरण में ठंडक रही। बारिश के बाद चारों ओर छाई हरियाली ने माउंट आबू की प्राकृतिक सुंदरता को और निखार दिया। देश विदेश से आए पर्यटक सुहाने मौसम के बीच विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते नजर आए। तो रविवार सुबह 8 बजे से पिछले 24 घंटे में 9.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आइए कुछ जनता की आवाज़ जानते हैं दैनिक भास्कर के जरिए। सिरोही में मांडवा गांव में गोल मुख्य मार्ग पर बारिश के बाद कीचड़ जमा हो रहा है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी पैदल चलने वालों और बाइक चालकों को हो रही है। कीचड़ के कारण बाइक चालक कई बार असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच रहे हैं। इस और कोई ध्यान नहीं देने से यहाँ हादसों की आशंका बना हुआ है। वहीं पर सिरोही शहर में इन दिनों सड़कों पर बेसहारा पशुओं का झुंड दिखाई देता है। सड़कों के बीचों बीच खड़े इन पशुओं के कारण वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार ये पशु आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे हादसों का भी अंदेशा लगा हुआ है। ये सिर्फ सिरोही शहर की बात नहीं है, ये हमारे तलेटी में भी है और इसके साथ साथ ट्रॉमा सेंटर के आसपास भी आप गायों को देखेंगे, पशुओं को देखेंगे। और कई बार डर भी लगता है क्योंकि वो हॉस्पिटल भी है, रोगी भी जाते रहते हैं वहाँ पर पेशेंट्स, लेकिन अगर इस प्रकार से जमावड़ा हो तो भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिंडवाड़ा में सावन महीने में पिंडवाड़ा
एक बार फिर शिव भक्ति के रंग में रंगने जा रहा है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद पिंडवाड़ा के प्रखंड के तत्वधान में संतों और इसके साथ साथ कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। इस बार कांवड़ यात्रा में 108 कांवड़ लेकर जाने वाले हैं और नगर के पुलिस थाना पिंडवाड़ा के पास संन्यास आश्रम के पास से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होगा। श्री मैथिली ब्राह्मण समाज सेवा समिति आबू रोड की ओर से लोकगीतों और पारंपरिक खेलों के बीच मनाई गई थी तीज। रेवदत्त आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल में जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह से हुआ। प्रतियोगिता में सिरोही जिले के 4 स्कूलों रेवदर, आबू रोड, सिरोही, कालंद्री के विद्या मंदिरों की 21 टीमों के करीब 216 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ। आइए लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं इस भजन के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आइए जानते हैं कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे अर्थव्यवस्था के साथ। 17 अगस्त 2026 सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत एक सीमित दायरे में रहने के आसार हैं। शुरुआती वैश्विक संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं और जबकि JFT निफ्टी भी सुस्त से हल्की बढ़त के साथ खुलने का इशारा दे रहा है। और वहीं पर अगर बात करें हम डॉलर रुपए के बारे में, तो इसके बारे में भी आगे जानेंगे हम कि क्या रुपयों का हालचाल है। बाजार का मूड माहौल काफ़ी हद तक दिग्गज ग्लोबल टेक कंपनियों के नतीजों और कच्चे तेल की चाल पर निर्भर करेगा आज के दिन। और वहीं पर रियल टाइम फ्री ओपन अपडेट में देखा जा रहा है कि आज F&O बैन वाले शेयर बड़ी, बल्कि इसके साथ साथ ब्लैक डील्स और ऑर्डर्स नतीजों या फिर प्रोमोटर प्लेस के बारे में बात करें जो गिरवी शेयर है, उसकी खबरों के दम पर एक्शन दिखाने वाले स्टॉक्स की पूरी जानकारी भी मिलेगी। तो आगे हम जानते हैं कि क्या है सोने और चांदी के भाव। 24 कैरेट प्योर गोल्ड के बारे में बात करते हैं। 24 कैरेट प्योर गोल्ड 179,119 है और वहीं पर 22 कैरेट प्योर गोल्ड है 164,203 रुपये और वहीं पर 18 कैरेट है 134,383 रुपये। और चांदी के बारे में बात करें तो चांदी है पर किलोग्राम 2,50,000 रुपये। प्लैटिनम के बारे में बात करें, प्लैटिनम पर 10 ग्राम 53,670 रुपये है। पेट्रोल और डीजल के बारे में बात करते हैं। राजधानी दिल्ली में 102 रुपये 97 पैसे हैं। राजधानी जयपुर में 112 रुपये 21 प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है।

पर अगर हम गुजरात के बारे में बात करेंगे तो गांधीनगर में 101.99 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है। डीजल 98.11 रुपये हैं गांधीनगर में। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें राजधानी जयपुर के बारे में, ₹97.36 प्रति लीटर है राजधानी जयपुर में।

और राजधानी दिल्ली में 95.64 रुपये प्रति लीटर है डीजल। यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसी का क्या कुछ हालचाल है जानते हैं। एक यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसी है 95.58 रुपये, एक यूरो के मुकाबले 110.72 रुपये और एक जीबीपी के हिसाब से 129.53 रुपये, एक एजी के हिसाब से 26.02 रुपये हैं। और अगर म्यांमार के बारे में देखा जाए तो इंडियन करेंसी है 23.43 रुपये, एक रियाल के हिसाब से 25.26 रुपये हैं। और वर्तमान समय सेंसेक्स से 77,704.96 पर -0.39 गिरावट दर के साथ निफ्टी वहीं पर 24,304.05 पर है -0.25 गिरावट दर के साथ वर्तमान समय। तो ओपन जब हुआ था तो निफ्टी 24,343.45 पर ओपन हुआ था और अभी 24,280.85 पर कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे पेट्रोल डीजल और इसके साथ सोने चांदी और सेंसेक्स के बातों के ऊपर। अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा कहने का। आप सभी का दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। अगला कार्यक्रम है आशियाना और इसके साथ साथ आशियाना कार्यक्रम आप सुनेंगे रिकॉर्डेड। आज लाइव कार्यक्रम नहीं सुन पाएंगे, लाइव कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम को 5 बजे, 6 बजे और रात्रि 8

जी। मौसम बदले, रंग बदले, हर पल नई कहानी है। सोमवार की नई सुबह में उम्मीदों की रवानी है। धूप मिले या बादल आए, मुस्कुराते रहिए आप। मौसम का हाल भी बताते ही रहेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ रेडियो मधुबन 107.8 FM कार्यक्रम नई किरण। मैं हूँ आरजे शुभा। नमस्ते।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। बढ़ाए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर अपच की समस्या है तो क्या करेंगे, सोचिए जरा। हम तो उपाय देंगे ही, लेकिन आप भी जरा सोचिए। और जी हाँ, आज सिखाने वाली हूँ सलाद, परंतु कौन सा वाला वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और स्पोर्ट्स का जीवन में कितना महत्व है, और हमारी बहनों को बेटियों को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इस तरह के हम खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे। एक विशेष जो एक बिटिया आई है उसके साथ, और आप सभी भी जुड़ेंगे, ठीक है। और आज की पहेली तो बड़ी शानदार है, पहेली पूछने वाली हूँ, ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ। बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ कैसे, तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। इस सृष्टि रंगमंच पर सदियों से पुरुष अर्थात आत्मा प्रकृति का खेल चला आ रहा है। प्रकृति से हमारा तात्पर्य पांच तत्वों जल वायु आकाश अग्नि और धरती से है। अनंत काल से प्रकृति हमारी पालना करती आ रही है, परंतु हमने कभी रुककर मां प्रकृति को धन्यवाद भी नहीं किया है ना। यूं तो भक्ति में हम पांचों तत्वों का पूजन वंदन करके मतलब प्रकृति का मान रखते हैं। सदियों से हम इस तरह पूजा और वंदन करते हुए उनका मान रखते आए हैं, परंतु निश्चित प्राकृतिक आपदाओं से आहत होते मनुष्य का मन अब प्रकृति का उतना मान नहीं रख पा रहा है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुरते होठ, कितनी ठंड है कह करके प्रकृति के प्रति असंतुष्टता जताते हैं। कभी तपती धूप में पिघलते हौसले प्रकृति को बदनाम कर जाते। कभी बारिश में हुए कीचड़ से प्रकृति कुरूप नजर आती। मतलब कि चाहे मौसम कोई भी हो, खुले दिल से प्रकृति के प्रति अपनी असंतुष्टता का प्रदर्शन प्रत्येक जन करता ही है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का कोई दोष नहीं है। जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके आसपास की प्रकृति होती है। प्रत्येक के घर का वातावरण आबोहवा एक दूसरे से भिन्न होती है। मंदिर के पवित्र वातावरण और किसी कत्लखाने के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क होता है। है तो वही पांचों तत्व सभी जगह एक ही, फिर भी वहां रहने वाले मनुष्यों के मन का प्रभाव प्रकृति पर पड़ने से यह अंतर दिखाई देता है। जापान के वैज्ञानिक इमोटो ने पानी पर किए गए प्रयोग से यह बात सिद्ध की थी कि किस तरह मानव मन में उत्पन्न विचारों का प्रभाव पानी पर गहरा पड़ता है। ऐसे ही बहुत समय पहले लूथर बर्बेंक नामक वैज्ञानिक ने कैक्टस से बात कर करके एक बिना कांटों वाला कैक्टस उगाया था। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पौधों को यदि हल्का क्लासिकल संगीत सुनाया जाए तो पौधों पर सकारात्मक परिणाम देखने में आते हैं। इन सब बातों से हम ये तो समझ ही रहे हैं कि किस तरह ये प्रकृति मनुष्यों के संकल्पों और क्रियाकलापों से प्रभावित होती है। जिस तरह राजा के महल की वस्तुएं और एक गरीब की झोपड़ी में मौजूद वस्तुओं में फर्क दिखता है ना, ऐसे ही एक सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति और नकारात्मकता से भरे व्यक्ति के रहने के स्थान का वातावरण अलग अलग महसूस होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, व्यक्ति के निवास स्थान को देखकर उसकी मानसिकता का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। हम जितना जितना स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरते जाते उतना उतना हमारे आसपास का वायुमंडल भी शक्तिशाली बनता जाता है। आदि काल में जब मनुष्य आत्माएं सत्वप्रधान थी तब प्रकृति भी सत्वप्रधान अर्थात सुखदायी थी, तो आज तप प्रधान क्यों बनी है सोचिए। इसलिए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें प्रकृति के प्रति सकारात्मक रहना है और सकारात्मक वाइब्रेशन हमें फैलाना है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's Community Radio Station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे अपच पर. भाई देखिए, गर्मी के मौसम में अपच की समस्या बढ़ जाती है. अपच या खाना न पचने पर खाद्य प्रणाली के अंगों में दर्द होने लगता है, गैस बढ़ती है जिसमें भारीपन, बेचैनी, जी मिचलाना, बमन वगैरह वगैरह चलता रहता है. अग्निमांद, अपच, अजीर्ण, बदहजमी, सभी का अर्थ एक ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि खाने का नहीं पचना, जो भोजन हम कर रहे उसका नहीं पचना. तो बदहजमी में क्या होता है, दस्ते भी लग सकती है या फिर गैस, वमन ये होने की शक्यता रहती है. तो बदहजमी के दस्तों को संग्रहणी भी कहते हैं. तो अपच की समस्या है तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय दे रही हूँ, इसको आप आजमा करके अपने अपच की समस्या पर निजात पा सकते हैं. देखिए, हींग, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन सब आप समान मात्रा में लीजिए, ठीक है. और सब को समान मात्रा में लेकर के इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है. फिर एक चम्मच तीन बार पूरे दिन में गर्म पानी से फाकी लेना है, सुबह, दिन में और रात को. सुबह उठने के बाद एक बार ले लीजिए आप नन्हे कोटे, फिर दिन में ले लीजिए कि भोजन के डेढ़ दो घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, फिर आप रात को सोने से पहले ले लीजिए. तो ये जो अपच की समस्या है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी. क्या क्या लेनी है फिर से दोहरा रही हूँ. हींग लीजिएगा, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन समान मात्रा में लेनी है सभी, ठीक है. जैसे एक एक छोटा चम्मच ले रहे तो सभी एक एक छोटा चम्मच लीजिएगा. फिर इन सभी को पीसिएगा, पाउडर बना दीजिएगा और इसके तीन बार फाकी लेनी है दिन में, पूरे दिन में. तो फाकी लेकर के नौ सेका पानी आपको पीना है, इससे अपच की समस्या ठीक हो जाएगी. और भी सुनेंगे आप अगला उपाय. एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट पानी से फाकी लीजिएगा. खाली एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन ले लीजिए और उसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट आप वही सुबह सुबह नन्हे कोटे आप इसकी फाकी लेकर के नव सेका पानी आप पी लीजिएगा, इससे भी अपच की समस्या ठीक होगी. अगर ये नहीं कर सकते तो और भी सुनेंगे आप सुंदर सा उपाय, कि 25 नीम की पत्ती, 3 लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीस करके थोड़ा पानी और शक्कर मिला करके सुबह शाम रोज आप 3 दिन पीजिए. 3 दिन में ही आपको आराम महसूस होगा. 25 नीम की पत्ती, 3 ले लीजिए लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीसिए और इसमें थोड़ा सा शक्कर और पानी मिला करके गट गट गट गट गट पी जाइए, ठीक है. ऐसा आपको 3 दिन तक लगातार करना है, सुबह और शाम, तो अपच की समस्या में राहत मिलेगी. और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि खाना नहीं पचता है, बदहजमी हो जाए तो एक दिन केवल पानी पीकर ही रहे, अन्य कुछ भी नहीं खाना है. कब्ज रहे तो फिर आप भोजन के साथ घुट घुट पानी पीते रहिए, ठीक है. सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना जरूरी है. तो अगर संग्रहणी है, बदहजमी

है तो उस दिन आप कुछ मत लीजिए, खाना मत खाइए, पूरे दिन आप ऐसे ही उपवास करिएगा, बीच में घुट घुट पानी पी लीजिएगा, ठीक है? तो आपका वापस हाजमा सिस्टम, मतलब उसका लेवल आ जाएगा, बैलेंस बन जाएगा वापस, ये जो अपच की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और लास्ट उपाय यही है कि कब्ज रहता है तो भोजन के साथ घुट घुट पानी पीजिए, और सुबह उठते ही एक गिलास पानी तो हमेशा पीना ही है। तो ये हुए उपाय आज के सुंदर से नुस्खे। और आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली ध्यान से सुनिएगा और सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, बहुत ही सरल पहेली है, आराम से आप जवाब दीजिएगा। चार

जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारूं, हलचल में तो मिट जाए। क्या चीज है? पहली बहुत ही सुंदर और सरल है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम होबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम व्यंजन तो जरूर सिखाएंगे, परंतु क्या बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत ही सरल आपको पहेली पूछी है, फिर भी सोचिए सोचिए, कोई बात नहीं, सोचने का अवसर तो मिलना ही चाहिए, समय तो आपको मिलना ही चाहिए, और आप सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा। आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ, चार

जाए, चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू, हलचल में मिट जाए। बहुत ही सरल है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। ये चीज नहीं है तो जीवन नहीं है। अब आप सोचिए, मैंने बहुत ही अच्छा हिंट दे दिया आपको, ठीक है? अब तो आपके लिए सरल हो चुकी है पहेली, तो जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और अब पधारिए आशियाना के किचन में, आज बना देते हैं सलाद। परंतु कौन सा वाला? केरी और दाल का। वैसे तो सलाद हर मौसम में खाना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में तो ऐसी चीजें खाने की ज्यादा इच्छा होती है ना? रोटी के ऐसा लगता है रोटी बहुत कम खाए, कुछ फल फ्रूट, जैसे फल फ्रूट में भी पानी वाले फल फ्रूट, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, आम, तो भाई वैसे ही गर्मी का सीजन का राजा ही है ये तो, सब फलों का। तो इस तरह की चीजें खाने की ज्यादा इच्छा रहती है। तो सामग्री आप लेंगे, पेन और डायरी तैयार है ना? बिल्कुल लिख लीजिएगा। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी आप लीजिएगा 1/2 कप, मतलब कद्दूकस किया हुआ, ठीक है? और तेल ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, कड़ी पत्ता लीजिए 5-6, नमक और चीनी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा हल्दी पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्च का पेस्ट लेना है आपको 1 छोटा चम्मच, और राई, हींग, जीरा तड़का के लिए ले लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। हरा धनिया अपने स्वाद के अनुसार, मतलब आवश्यकता के अनुसार लीजिए, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। तो ये सलाद की सामग्री हो चुकी है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। देखिए, सलाद भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। वैसे आप कच्चा भी मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन दाल के साथ आप

केरी और दाल का सलाद कैसे बनाएंगे? विधि आपको बता रही हूँ। चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दीजिए, ठीक है? फिर पानी निकाल करके बिना पानी दरदरा पीस लीजिए। तेल में राई, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल करके तड़का लगाइए। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल में डाल दीजिए। अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और गैस तुरंत बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर सलाद सर्व करिए, पिरसिए। तो ये बन गए केरी दाल का सलाद। फिर से दोहरा रही हूँ विधि। देखिए, इसको भी आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक बार तो विधि यही दोहराऊंगी, फिर इसकी दूसरी विधि भी आपको बताऊंगी। आप क्या करेंगे, चने की दाल जो हमने ली है ना, इसको आप 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर पानी निकाल दीजिए 4 घंटे के बाद, और इसको दरदरा ऐसे ही पीसिए, पानी नहीं रखना है, ठीक है? फिर आप तेल रखिए कढ़ाई में, और तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरे का तड़का लगाइए। थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए और तड़का लगाना है। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल डाल दीजिए, ठीक है? अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर आप सलाद पिरस सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि आप चने की दाल को 4 घंटा के लिए पानी में तो आपको भिगोना ही है, ठीक है? तो फिर आप दाल की मात्रा थोड़ी सी कम कर लीजिए। और भिगो दिया 4-5 घंटे के बाद पानी निकाल दीजिए, और इसी दाल में आप कैरी कद्दूकस करके डालिएगा। फिर इसी में आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, जीरा पाउडर डालना है और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ठीक है? तो ये सब डाल करके आप कच्चा ही खाइएगा तो भी स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है? अब आपको जिस तरह खाना हो खाइए। मैंने आपको विधि बता दी है। भले आप इस तरह छोक लगा कर खाइए, भले आप कच्चा खाइए। तो ये बन गया केरी दाल का सलाद। अब मैं आपको एक और सलाद सिखाऊंगी, परंतु कौन सा वाला वो तो आप ब्रेक के बाद ही जान पाएंगे। तो आज की पहली फिर से दोहरा रही हूँ। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ये पहेली का जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। अब हम सुनेंगे यहीं पर एक प्यारा सा गीत, उसके बाद पुनः आपसे मिलेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। आप सभी आशियाना की किचन में हो और आशियाना की किचन में बना रहे थे केरी और दाल का सलाद, ठीक है? अब मैं दूसरा भी आपको सलाद ही सिखा रही हूँ, क्योंकि भाई सलाद का नंबर लिया है तो मैं आपको पूरा ही सिखा देती हूँ। इच्छा हो ऐसा सलाद बना करके खाइएगा, लेकिन गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा और इस तरह पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाइएगा। सलाद में जो हम चीज़ें डालते हैं उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा ककड़ी है, हरा धनिया है, पालक है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं आपको मिक्स सब्जी का सलाद अब सिखाने जा रही हूँ, परंतु आप जानते हो परंतु मैंने क्यों बोला है, पहेली फिर से सुना रही हूँ इसलिए बोला है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा कि पहेली क्या है। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहवे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हलचल होते ही फिर हम स्वयं के फोटो को नहीं देख सकते, स्वयं के चेहरे को स्वयं को नहीं निहार सकते, बाकी आराम से हम निहार सकते हैं। अब मैंने इतना हिंट दे दिया हो, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकती मैं। अब आप सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। और अब मिक्स सब्जी का आपको सलाद सिखा रही हूँ। इसके लिए आप सामग्री लीजिएगा, पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, ठीक है, 1 कप ले लीजिए, भले आप कद्दूकस करके 1 कप ले लीजिएगा। पालक ले लीजिए बारीक कटा हुआ 1/2 कप। ककड़ी एक छोटी लेनी है आपको, ठीक है। टमाटर 1 लेना है। अंकुरित मूंग 1/2 कप ले लीजिए। नींबू का रस 1/2 छोटा चम्मच लेना है।

चीनी अगर पसंद है तो लीजिएगा, स्वाद के अनुसार नहीं हो तो कोई बात नहीं, मत लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा नमक अपने स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर भी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, और नारियल कसा हुआ लीजिएगा 2 छोटा चम्मच। यही सामग्री है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पत्ता गोभी कद्दूकस की हुई लीजिएगा 1 कप। फिर पालक ले लीजिएगा, मतलब ये सब धुलाई करके ही आपको लेना है, ठीक है। पालक लीजिएगा बारीक कटा हुआ 1/2 कप। ककड़ी 1 लेनी है, उसके भी गोल स्लाइस कर लीजिएगा, छोटी वाली ककड़ी। फिर टमाटर भी 1 लेना है, इसको भी आप बारीक उतर लीजिएगा। और ककड़ी को भी आप स्लाइस मत करिए, इसको भी कुतरिएगा, क्योंकि हम स्लाइस वाला सलाद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा अंकुरित मूंग ले लीजिएगा, नमक काली मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, नींबू का रस 1/2 छोटा चम्मच लेना है, और नारियल कद्दूकस किया हुआ 2 छोटे चम्मच लीजिएगा। अब मैं आपको मिक्स सब्जियों का सलाद कैसे बनाया जाता है सिखा रही हूँ। सामग्री सारी इकट्ठी कर ली, अब इन सभी सामग्री और अंकुरित मूंग को सभी को मिक्स कर देना है, और एक जार में डाल करके अच्छी तरह इसको मिला लेना है। इसके बाद नींबू का रस, चीनी, काली मिर्च पाउडर और नमक मिला दीजिए, इसमें नारियल मिला करके सब मिक्स करके आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गया, इसको हम एनर्जी सलाद भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी की है, तो एनर्जी से भरी हुई। तो क्या करेंगे, जो भी हमने सलाद किया, जो सब्जियां सवार के रख रखी है, जैसे कि पत्ता गोभी, ककड़ी, पालक, टमाटर, ये सब आप मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें ही आप मूंग भी, जो अंकुरित मूंग लिए हैं, इनको भी मिक्स कर दीजिएगा, और स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च भी डाल दीजिएगा, और नींबू का रस भी निचोड़ करके सबको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप जब प्लेट में रखते हैं ना सलाद, तब ये कद्दूकस किया हुआ नारियल ऊपर से डालिएगा, तो एक डेकोरेट लगेगा, और सलाद को देखते ही इच्छा होगी कि अरे भाई ये स्पेशल सलाद है, ये तो मैं ज़रूर खाऊंगी, ऐसी इच्छा हो जाएगी। तो भोजन के पहले एक प्लेट सलाद खा करके फिर आप भोजन करें, ताकि क्या है कि रोटी कम खाएंगे और ये सब्जियां ज़्यादा खाएंगे तो एनर्जी बनी रहेगी। आप सुबह भी खा सकते हैं, जैसे नाश्ता नहीं करके सलाद खा सकते हो, अब आपकी इच्छा पर छोड़ा कि आप कब खाते हो, ठीक है। तो आइए, दोनों ही प्रकार के सलाद बन चुके हैं, लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप 2 प्लेट में दोनों ही सलाद रखिए। फिर जो भी सब्जी, चपाती जो भी बनाई है वो भी रखिएगा, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित, मेहमानों सहित आनंद लीजिएगा, कौन कौन से सलाद का, केरी और दाल का और मिक्स सब्जी वाला, दोनों ही सलाद का आनंद लीजिए। और फिर आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4

तो ऐसी क्या चीज है जो शांत रहने पर हम आराम से निहार सकते हैं स्वयं को उसमें, और जब हलचल होती है तो मिट जाता है सब कुछ। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आप सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः हम आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और विशेष करके स्पोर्ट्स पर बहनों पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, खुल करके बहनें सामने नहीं आ पाती है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे सामने बैठी है सेजल। सेजल गोस्वामी आबू रोड की रहने वाली है और 10th क्लास अभी एग्जाम दिया है 10th का, और 11th में आई है। तो सेजल को स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, तो सेजल से तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन आप भी जरूर जुड़िएगा। आपको तो आप जानते ही हो कि भाई खुशनुमा जीवन में आपका खुलकर स्वागत है, और आज की पहली भी बहुत ही सुंदर है जिसको दोहरा रही हूँ। बीच में भी आप फोन कॉल्स करके पहली का जवाब दे सकते हो। चार खुणारी बावड़ी भरी ही लोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो शांत रहने पर स्वयं को देख सकते और हलचल में ये मिट जाती है? जवाब देने के लिए और खुशनुमा जीवन में जुड़ने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और खुशनुमा जीवन में भी आप अपने बात रख सकते हो, प्रश्न का इस पहेली का जवाब भी दे सकते हो। आइए सेजल से मिलते हैं। सेजल आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। सेजल आपको स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलती है?
3: जैसे कि रनिंग है, कबड्डी है, मतलब और भी कई खेल है।
2: जी जी, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़ चुके हैं। हेलो
4: हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते कमलेश बहन।
4: हाँ नमस्कार जी, थोड़ा कसरत की है
2: जी
4: खेलने के लिए
2: जी।
4: तो उसमें मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा कि भाई समुंदर ही होता है।
2: अच्छा।
4: बहुत ज्यादा आवाज आती है, शांति से देखे तो मजा आता है।
2: अच्छा
4: हेलो।
2: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं।
4: हाँ जी।
2: अच्छा
4: आज का मेले का उत्तर है मैडम जी समुंदर।
2: अच्छा ठीक है,
4: क्योंकि देखने के लिए अपन शांति से देख सकते हैं।
2: जी,
4: हलचल
2: जी,
4: रहती है, आवाज होती है पानी की बहुत, तो शांति से देखे तो उसमें निहारने में मजा आता है।
2: अच्छा
4: ठीक है मैडम।
2: और कमलेश बहन आप जुड़ ही चुके हैं रेडियो मधुबन से, तो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक है?
4: इसका मैडम जी
2: आपने कभी स्कूल में आपने जैसे कि अपने कंपटीशन होता है ना 100 मीटर की दौड़,
4: हाँ जी
2: 500 मीटर की दौड़, दो टांग रेस, फिर कभी कबड्डी, खो खो, इस तरह के गेम आपने खेले?
4: हाँ जी मैडम जी खेले थे।
2: तो आपको कैसा लगता है इस तरह का गेम खेलना?
4: बहुत मजा आता है, आनंद आता है बहुत, इससे बहुत एक्सपीरियंस, शरीर भी अच्छा रहता है।
2: जी जी जी,
4: बहुत मजा आता है
2: जी। तो ये कम हमारी बहनें थोड़ा कम खेलती है, आप क्या कहना चाहेंगे?
4: ये तो मैडम सबको खेलना चाहिए, ये तो अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, ये भी एक योगा है।
2: बहुत सुंदर, परंतु है ना जो माता पिता ज्यादा परमिशन नहीं देते बच्चों को, वो माता पिता की नजर में क्या होता है, अरे उछल कूद नहीं करना है, शांति से रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप क्या कहेंगे?
4: नहीं मैडम जी, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़ाई जैसा ही है।
2: बहुत ही अच्छी बात है कि ये भी पढ़ाई अपनी जगह है और गेम्स अपनी जगह है।
4: हाँ सही बात है मैडम
2: जी, जी
4: ये भी जीवन में बहुत जरूरी है।
2: बहुत सुंदर, तो ठीक है कमलेश बहन, और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कभी आप किस में भाग लेते थे, कौन से गेम आप खेलते थे?
4: मैं तो मैडम जी बास्केटबॉल में खेलती थी, खो खो में खेलती थी।
2: क्या बात है।
4: हाँ कबड्डी कबड्डी सब में भाग लेती थी, जीतती थी मैं तो हर बार।
2: अरे वाह, तभी आप फिट एंड फाइन है।
4: घर वाले घर नहीं परमिशन नहीं देते, साथ ही तक ही पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी
2: जी,
4: पर जब तक पढ़ी तब तक मजे लिए हमने खूब।
2: बहुत अच्छी बात है, खुलकर जीवन जीना चाहिए। हाँ, और स्टूडेंट लाइफ तो बात ही क्या कहना है, गोल्डन लाइफ है।
4: तो किसी को मानती नहीं थी, खेलने के लिए भागती थी।
2: बस
4: और शौक नहीं था मैडम जी, और कोई शौक नहीं था मुझे, एक तो खाना बनाना, नई नई चीजें सीखना
2: जी,
4: और ये खेलना कूदना, गाने गाना।
2: बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तो ये भी किसी से कम नहीं है, आप वैरायटी खाना बनाकर परिवार वालों को खिलाओ, वैसे ही वो खुश रहेंगे कि अरे वाह क्या भोजन मिला है। इंसान काम करता है 24 घंटे, लेकिन खाना अच्छा मिल जाता है तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है,
4: सब खत्म हो जाता है, शांति हो जाती है, आत्मा को तृप्ति हो जाती है।
2: जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश मैन, बहुत सुंदर आपने बात की है। जी, तो सेजल आप क्या कहेंगे गेम्स के बारे में, जैसे आपको रुचि है, आप टूर्नामेंट में भी जाते हैं?
3: एक बार गए थे।
2: अच्छा, फिर क्या रिजल्ट रहा?
3: मतलब आगे जाने, मतलब फर्स्ट आए थे।
2: फर्स्ट आए, कौन सी क्लास में आप गए थे टूर्नामेंट में?
3: छोटे ही थे उस समय, तो मतलब होंगे 6th 7th में।
2: अच्छा, और कौन सा गेम खेला था आपने?
3: बैडमिंटन में।
2: अच्छा, अरे वाह। कौन से गांव आप गए थे टूर्नामेंट में?
3: अनादरा।
2: और वहां से जीत के आए, उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ?
3: उसके बाद स्कूल की तरफ से कभी लेके तो गए नहीं।
2: हेलो
5: हेलो, हाँ नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई दानेरा।
2: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
5: बस अच्छे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
2: जी जी जी, सेजल हम आपसे बात जरूर करेंगे, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं तो इनसे बात करेंगे। अच्छा सुरेश भाई, स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे?
5: बस जीवन जी। में दीदी, इंसान के लिए, खास करके यंग इंसान के लिए स्पोर्ट का बहुत महत्व है, चाहे कुछ भी स्पोर्ट खेले। और अभी जो आपने बात भी बताई कि लड़कियां जो बहुत, अब तो ऐसा हो रहा है कि लड़कियां भी आगे आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत कम, जैसे ही बड़ी होती है तो शादी कर दी जाती है, और गांव की ऐसी जो रीति रिवाज है। और मैं पहले की बात बताऊं तो लड़कियां लगभग 5 साल से ऐसी खेल खेलते, जो 5 पत्थर के लेते, वो नाम भी पता नहीं, वो खेलते किसी को भी।
2: सितोलिया?
5: अरे हाँ, वही नहीं जीतने देती, या रस्सी कूद में, ऐसे बहुत सी ऐसे खेल है, वो बचपन में बहुत हमने भी खेले हैं।
2: जी क्या बात है। जी
5: जी, तो सभी को, माँ बाप को बस ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी लड़की को अगर स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में रुचि है तो जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वहीं पर रोक दिया ना जाए, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा।
2: जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है।
5: और जो आपकी पहेली है, थोड़ी सी कठिन है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आईना होना चाहिए, आईना।
2: अच्छा,
5: तो कांच बोलते हैं हम। हाँ
2: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, आपके प्रश्न का जवाब जरूर हम देंगे, पहेली का जवाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। तो सेजल आपकी ओर बढ़ते हैं हम फिर से। आपने बताया कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, और किस किस में रुचि है, और क्या आप ही खेलते हो या आपके क्लास के लगभग सभी बच्चियां खेलती हैं?
3: सारी बच्चियां खेलती हैं।
2: अच्छा, तो जैसे आप एक बार टूर्नामेंट में गए, दूसरी बार नहीं गए फिर?
3: दूसरी बार स्कूल की तरफ से लेके नहीं गए कभी।
2: अच्छा, जीत करके आए फिर भी?
3: जीत करके आए, फिर स्कूल वालों ने नाम तो लिखवाए थे, पर कोरोना आ गया था बीच में, इसलिए वो मना हो गया।
2: अच्छा, तो अब कोरोना तो हट गया है, अब फिर से आप बच्चियां मिल करके सर से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं?
3: बीच में हुआ था तो मतलब बॉयज का था, आपके भाई गर्ल्स का नहीं था।
2: अच्छा जी जी जी, तो बहुत सारे देखते हैं हम गांवों में क्या है, माता पिता, जैसे सुरेश भाई भी बता रहे थे कि गांवों में माता पिता थोड़ा अलाउ नहीं करते बच्चियों का, बच्चों को तो परमिशन दे देते लेकिन बेटियों को परमिशन नहीं देते, क्या कारण है?
3: उनके तरफ से रीति रिवाज होगा शायद कोई, कि मना करना, पर मना नहीं करना चाहिए इस पे, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।
2: जी जी,
3: गांव की हो या शहर की हो, कोई ना कोई खेल खेलने देना चाहिए।
2: जी जी, तो सेजल आपको तो घर से मना नहीं करते?
3: नहीं, मुझे पूरी छूट है।
2: चलिए अच्छी बात है, तो यहीं पर अब हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं। आप जो भी जुड़ना चाहते हैं, खुशनुमा जीवन में अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसको भी स्पोर्ट्स का शौक है, जो खेलते हैं वो भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे श्रोता बंधु का जाते जाते फोन उठा देते हैं। हेलो
6: हेलो, ओम शांति।
2: हाँ जी नमस्ते, ओम शांति मंजू जी, कैसे हो आप?
6: बस बढ़िया है।
2: बहुत अच्छी बात है, हमेशा खुश
6: रहिए। बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है
2: जी जी। आप भी कुछ कहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में? आपको शौक रहा है, कभी आपने भी गेम्स खेले?
6: बिल्कुल, इतने मतलब खेलते थे, खेल बैठे घर पे, अंदर बाहर मैदान में, अब तो याद ही नहीं है। मतलब हर प्रकार के जो गेम होते थे सब खेले थे बच्चे थे तब।
2: जी जी जी।
6: और मेरे को कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता था। हम स्टूडेंट लाइफ में टीचर के साथ भी खेलते थे, फिर घर पे छुट्टियां होती थी तब भी खेलते थे, और भैया वगैरह ये क्रिकेट खेलते थे तो कभी कभी हमें भी बॉल फेंकने का मौका मिलता
2: था। अच्छा, बॉलिंग करते थे आप?
6: दोनों ही,
2: बैटिंग और बॉलिंग।
6: हाँ, बहुत अच्छा लगता था
2: जी,
6: उनको
2: जी,
6: भी
2: जी।
6: अच्छा लगता था हमको भी। लेकिन आजकल है ना, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई है खेल, मतलब खेल के मैदान में हर जगह अव्वल रहती है लड़कियां, और खेलना भी चाहिए। हमारा मानसिक और शारीरिक विकास ये मतलब खेल से बहुत ज्यादा बढ़ता है, और खुद में आत्मविश्वास बढ़ता है, और दिमाग के घोड़े तो ये खेल में ही दौड़ते हैं
2: जी।
6: बिल्कुल, इतना मतलब हर खेल में दिमाग का ही उपयोग होता है सबसे ज्यादा तो
2: जी,
6: और दिमाग के साथ साथ अपनी बॉडी भी मजबूत रहती है।
2: बहुत सुंदर। तो मंजू जी, गांवों में अभी भी माता पिता थोड़े बेटियों को परमिशन नहीं देते हैं, आप क्या कहेंगे?
6: देते भी है, कम लोग हैं जो नहीं देते हैं। आजकल तो मतलब ऐसा कोई परिवार भी नहीं है हमारे आसपास देखें तो, लड़की स्कूल पढ़ाई नहीं कर रही है या किसी खेल में भाग नहीं ले रही है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या खेल कूद का हो, हर प्रकार के प्रोग्राम में उच जाती भी है और अव्वल भी रहती है। कबड्डी तक ऐसे खेल, खो खो है
2: जी। चले बहुत अच्छी बात है, गेम्स में आगे बढ़ना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, परमिशन हाँ, सभी को मिलनी चाहिए।
6: दस साल में तो बहुत परिवर्तन हो गया
2: जी जी जी जी। और आज के पहेली का जवाब देंगे?
6: पहेली का जवाब पानी हो सकता है मैडम जी, और क्या।
2: अच्छा तो ठीक है, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपके जवाब जरूर सुनाएंगे।
6: बावड़ी तो आपने बोल दिया, पानी है।
2: ठीक है, तो देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, वो आप सुनिएगा कार्यक्रम। ठीक है,
6: कोई बात नहीं, ये भी एक दिमाग की प्रैक्टिस है। पूछते रहो हमेशा
2: जी। शुक्रिया,
6: धन्यवाद।
2: हाँ जी, तो आइए यहीं पर हम भी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

0: चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही। चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही, मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं, मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं। हेलो
1: हेलो शमन जी।
0: हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस नमस्कार नमस्कार बहन जी, दुकान पे एक काम कर रहे हैं
0: जी, जी
1: लड़का खेती का काम पूरा हो गया, कुछ लड़का काम करना पड़ेगा क्योंकि आसपास आदिवासी भाइयों का जो लग्न की चीजें कपड़े दे देने पड़ेंगे, तो सुबह शाम काम चलता है, दोपहर तो गर्मी बहुत पड़ती है
0: जी,
1: तो रेस्ट भी करना।
0: जी जी बिल्कुल, और सुबह सुबह हो जाता है वो, हो जाता है फिर गर्मी तो है ही है।
1: हाँ सुबह में उसके बैठ जाना पड़ता है ना, उसके पूजा पाठ करके आ जाते हैं दुकान पे।
0: जी जी जी, तो कंचन भाई स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी कभी खेल कूद किया करते थे?
1: हाँ जी बहन जी, स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो देखो हमारे यहाँ स्कूल थी तो व्यायाम का पीरियड रहता है। व्यायाम पहले तो क्या था, टीचर किए हुए व्यायाम टीचर्स होते थे
0: जी,
1: तो 4 से 5 बजे एक घंटे हमें मैदान में ले जाते थे और कबड्डी है, खो खो है, ऊंची कूद है, ये सब हमें करवाते थे
0: जी,
1: ठीक है, तो हम भी भाग लेते थे। और हमारे यहाँ आस पास आदिवासी एरिया है तो बहनों ज्यादा करके कई जिला पहुंचे थे, पढ़ते थे बाला बैग बच्ची बैग ये सब बहने भी, और धनुष सिर काम था
0: जी,
1: ऐसा ये भी मैंने भाग लेती थी। अब तो ये बंद हो गया है बहन जी, ये सब है ना व्यायाम का कोई ये ही बंद हो गया पीरियड, और कोई शिक्षक भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है,
0: तो समय के साथ विकास होना चाहिए, उसकी जगह बंद हो गया।
1: हाँ बंद हो गया, और जिसने देखो सीपीएड बीपीएड ये सब किया है ना जिसने
0: जी,
1: वो अभी घर पे बैठे हैं, वो भर्ती या होती ही नहीं।
0: अच्छा
1: क्या करे यार।
0: जी जी जी जी,
1: तो वहाँ से शुरू होता था हमारे हमारी बात करे तो, ये तो सब अब तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ये सब कंप्यूटर ये सब आ गया है तो छूट गया है।
0: जी जी जी, और कंचन भाई आज की पहेली का जवाब देंगे?
1: पहेली क्या है
0: जी? पहेली है, चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। कोई बात नहीं, सोचिएगा जी, आप सोच के फिर से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है?
1: हाँ जी
0: हाँ जी, शुक्रिया। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, सेजल हमारे साथ बैठे हुए हैं। सेजल आपके यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बाहर ले जाना बंद कर दिया कोरोना के बाद, है ना, टूर्नामेंट्स में अभी तक नहीं हुआ है लड़कियों के। अच्छा, तो आपके स्कूल में होते हैं? अच्छा,
2: हाँ।
0: और ग्रुप वाइज होते हैं या क्लासेस टूर्नामेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं?
2: ग्रुप वाइज होते हैं।
0: ग्रुप वाइज होते हैं, तो उसमें आप भाग लेते हैं?
2: हाँ।
0: अच्छा, कितने गेम्स आप खेल सकते हैं?
2: बैडमिंटन, बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हैं।
0: नहीं, जैसे एक स्टूडेंट को कितने गेम्स खेलने की छूट है टूर्नामेंट में, कंपटीशन में?
2: तीन
0: गेम्स। तो आप कौन कौन सा खेलती हो?
2: बैडमिंटन, दो पैर और रस्सी कूद।
0: अच्छा, तो सभी बच्चे तीन तीन गेम्स खेलते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार?
2: अपनी इच्छा के अनुसार।
0: अच्छा, बाहर लेके जाते हैं टूर्नामेंट में तो वहाँ पर कितने गेम्स खेले जाते हैं?
2: उधर तो किस तरीके से तुम्हें कौन से गेम से लेके जा रहे हो उस तरीके के गेम खेलाए जाते हैं।
0: अच्छा,
2: एक गेम के ऊपर
0: एक गेम ही होता है। तो गेम्स खेलने के फायदे क्या है, स्पोर्ट्स में जो हम भाग लेते हैं उससे क्या फायदा मिलता है?
2: गेम्स खेलने के बहुत फायदे हैं,
0: जैसे कि
2: उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारे अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। मोटे लोग भी गेम खेलते हैं
0: जी,
2: तो जिनकी वजह से उनके जो बॉडी है ना वो फिट रहती है
0: जी। बहुत सुंदर बात कही सेजल कि गेम्स के बहुत सारे फायदे हैं, एनर्जी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, जो मोटे लोग हैं ना वो भी गेम्स अगर खेलते हैं तो उनका भी मोटापा कंट्रोल में आ जाता है, फिट एंड फाइन हो जाते हैं और एनर्जी और एक्टिवनेस बढ़ती है, तो बहुत ही अच्छा है। और आप पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप पढ़ाई में कैसे हैं?
2: पढ़ाई में मीडियम है।
0: अच्छा, तो आगे कोई लक्ष्य बनाया आपने?
2: हाँ, ब्यूटिशियन का है।
0: अच्छा, क्यों गेम्स में आपको रुचि और ब्यूटिशियन बनना, दोनों ही अलग अलग हो गए फील्ड?
2: गेम्स में है, पर गेम्स में जाते हैं ना आगे, कभी कभार खेलते हैं, मतलब गेम्स के अंदर स्कूल से लेके जाते हैं।
0: जी जी जी,
2: आगे बड़े हो के।
0: और ब्यूटिशियन तो अपना सेल्फ रहता है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल से आगे नहीं ले जा सकेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ब्यूटिशियन पर अपना सेल्फ है, सेल्फ डिसीजन है, जब चाहे तब खोल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा?
2: सीखना पड़ेगा, मतलब एक साल का कोर्स होता है इसका।
0: अच्छा,
2: अहमदाबाद से, कोई भी बड़ी सिटी होती है उनसे।
0: अच्छा, फिर कहीं पर भी आप खोल सकते हो?
2: हाँ, आप कंपनी से भी जुड़ सकते हो, किसी कंपनी से जुड़ के भी आपको हो सकता है।
0: अच्छा, अपना अपना शौक है, अच्छी बात है, कोई ना कोई लक्ष्य बनाना बहुत अच्छी बात है। तो सेजल, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई है कि स्पोर्ट्स में आपको किस तरह रुचि है और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी के सामने रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा विचार भी दिया, तो नुस्खे भी अपच पर दिए, जरूर ध्यान दीजिएगा। रेसिपी में आपको जो सलाद बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और आज की पहेली बहुत ही सुंदर थी, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जवाब भी आप जो आपने सुनाया है वो मैं अभी बताऊंगी। चार

मिट जाए। ये आज की पहेली थी जिसका जवाब दिया है कमलेश बहन माउंट आबू ढूंढई से। उन्होंने कहा है कि समुद्र पहले आत्मा का फिर बाद में समुद्र कहा है, लेकिन ये गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से, उन्होंने पर्यावरण कहा है, ये गलत है। कुपराम जी कोजरा से, सबसे पहले इनका जवाब सही है, परंतु क्या है वो मैं बाद में सुनाऊंगी। सुरेश भाई थानेराव से, आपने कहा आईना, ये गलत है। मंजू जी बाड़मेर से, आपका भी जवाब सही है जो मैं बहुत ही शीघ्र सुनाने वाली हूँ। सुरेश भाई झोटाना से, आपका भी जवाब गलत है, उन्होंने भी आईना ही कहा है। कंचन भाई मंडाली से, आपने जवाब नहीं दिया है, तो जवाब दिया है कुपाराम जी और मंजू जी बाड़मेर से, पानी। तो ये जवाब सही है, ढेर सारी ताली आप दोनों के लिए। और देखिए आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है सभी ने, इसके लिए आप सभी के लिए भी ढेर सारी ताली। देखिए आपने कांच वगैरह कहा, आईना कहा, वो ठीक है, लेकिन पहली बहुत ही सुंदर थी कि चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाई। अब किससे हिलोरा खा रही है? पानी से खा रही है ना। और शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। शांत पानी में आप देखिएगा, आपका चेहरा साफ दिखाई देगा, आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। लेकिन एक कंकड़ भी अगर पानी में गिर गया तो फिर आप अपने आप को निहार नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना। हलचल हो जाती है ना, उसमें आपका फोटो फिर चारों तरफ फैल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए पानी जवाब सही है। आज का मीठा मोती है, सरलता में महान सौंदर्य होता है, जो सरल है वह सत्य के समीप है। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हंस हंस मारे छक्का। गेम्स के ऊपर ही है। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार। चुन्नू भैया रूठ गए तो दिल में पड़ी दरार, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, करी गुदगुदी मुन्नी ने तब हंस हंस मारे छक्का। इधर उधर का दोनों दौड़े, इधर उधर को दोनों दौड़े, हंस हंस देके कक्का, कोई किसी के हाथ न आए, हो रही धक्कम धक्का, हो रही धक्कम धक्का। खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए तो दिल में

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता भारतीय वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा है, जो हम सब ने अपने स्कूली दिनों में पढ़ी भी होंगी। बाल्यावस्था से ही उनके साहस के किस्से चारों ओर फैल चुके थे और 29 वर्ष की अल्प आयु में वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहास के पन्ने ऐसे अनगिनत देशभक्तों और क्रांतिकारियों के खून से सने हैं, जिन्होंने खुशी खुशी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर वो पुरुष हो या महिला, उनमें से ही एक थी प्रीति लता वाद्यदार, जो महज 21 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई। जब अंतिम सांस ली तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, वंदे मातरम। आज एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी प्रीति लता के देशभक्ति की कहानी।
1: निर्मल दा, हम सब ने सिस्टर निवेदिता, भिकाजी कामा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं साहस की कहानी सुनी है। आखिर प्रीति लता ने देश के लिए कैसा बलिदान दिया?
2: अच्छा सवाल। प्रीति लता को बंगाल की अग्निकन्या भी कहते थे। वह किसी से डरती नहीं थी।
1: इतना साहस कैसे आया उनमें?
2: तनिक ठहरो, सब्र करो। इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस चटगांव में, जो आज बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और जिसे अब चटगांव नहीं चटग्राम के नाम से जाना जाता है।
0: चटगांव को हम मास्टर सूर्यदा यानी बंगाल के वीर क्रांतिकारी सूर्य सेन की वजह से जानते हैं। उसी चटगांव में रहती थी प्रीति लता, जिनके अंदर देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने की धुन लगी थी। एक सुबह उनके घर घबराई सी युवती प्रतिभा पहुंचती है और उन्हें कुछ दिखाती है।
3: दीदी दीदी देखो, आज के अखबार में क्या छपा है? मास्टर दा की ढोलघाट वाली मुठभेड़ के बारे में क्या लिखा है? उन्हें पुलिस तलाश रही है। मुझे तो डर लग रहा है, आप क्या कहती हैं?
4: किस बात का डर प्रतिभा? डरना तो अंग्रेजों को चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा है।
3: दीदी आपको डर नहीं लगता? आप स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं, आपका सभी बहुत सम्मान करते हैं। माँ बाबा आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और आप क्रांतिकारियों के साथ आजादी के सपने देख रही हैं।
4: प्रतिभा, जब पूरा देश एक बड़ी जेल बन चुका हो तो चार दीवारों की गृहस्थी में सुख कैसे मिल सकता है? माँ बाबा को समझा देना, उनकी बेटी सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई है, मेरा विवाह तो इस देश की आजादी से हो चुका है।
0: ये वो समय था जब ब्रिटिश पुलिस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। और तभी जून 1932 में ढालघाट गांव में क्रांतिकारियों के एक गुप्त ठिकाने पर पहली बार प्रीति लता और सूर्यदा की भेंट होती है। उनके साथ निर्मल सेन और अपूर्व सेन भी थे।
5: मास्टर दा प्रणाम, मैं आ गई हमेशा के लिए।
6: आओ प्रीति, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। कल्पना दत्त ने मुझे तुम्हारे आने की सूचना दी थी, पर क्या तुम जानती हो कि इस गुप्त ठिकाने पर कदम रखने का वास्तविक अर्थ क्या है?
5: जानती हूँ मास्टर दा, यहाँ कदम रखने का अर्थ है मौत से सीधा सौदा।
6: तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कोलकाता विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में ग्रेजुएट हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है।

0: इस कांटों भरे रास्ते पर क्यों आना चाहती हो? यहां भूखे पेट रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और किसी भी क्षण अंग्रेजों की गोली का शिकार होना पड़ सकता है।
1: क्षमा करबेन मास्टरदा, अगर देश के पढ़े लिखे युवा केवल अपने भविष्य की चिंता करेंगे तो इस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से कौन आजाद कराएगा? यदि पुरुष इस लड़ाई में गोलियां खा सकते हैं तो महिलाएं पीछे क्यों रहें? मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए।
0: तुम्हारी आंखों की यह चमक बता रही है कि तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। आज से तुम हमारी सैन्य शाखा की सक्रिय सदस्य हो।
2: सूर्यदा के ठिकाने पर पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बन रही थी। वहां कल्पना, प्रीति, लता सभी पहुंचते हैं।
3: प्रीति, मास्टरदा चाहते हैं कि इस बार हमले की कमान तुम संभालो, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है।
1: हाँ कल्पना, मैंने देखा है, इस क्लब के बाहर एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, यह हमारे पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर रोज किए जाने वाला प्रहार है।
3: क्लब के चारों ओर कटीले तारों का घेरा है और हर वक्त ब्रिटिश सर्जेंट हथियारबंद सिपाहियों के साथ गश्त करते हैं। हमें रात के अंधेरे में पुरुष वेश धारण करके जाना होगा। क्या तुम तैयार हो?
1: बिल्कुल तैयार हो। हम धोती और शर्ट पहनकर पंजाबी नाविकों का भेष बदलेंगे। मास्टरदा, मुझे इस अभियान के लिए आपकी अनुमति और आशीर्वाद चाहिए।
0: तुम्हें पूरी अनुमति है प्रीति, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि अभियान के दौरान पकड़े जाने की स्थिति बने तो जीवित दुश्मनों के हाथ मत आना। अंग्रेज महिलाओं और पुरुषों पर ऐसी यातनाएं ढाते हैं जो मौत से भी बदतर होती हैं।
1: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मास्टरदा, ये पोटेशियम साइनाइड हमेशा मेरे पास रहेगा। अंग्रेजों की गोली या उनकी जेल की काल कोठरी से बेहतर है कि मैं भारत माता की गोद में सो जाऊं।
2: फिर वो तारीख आई, 24 सितंबर 1932, जिस रात को क्लब पर क्रांतिकारियों को धावा बोलना था। प्रीति लता ने कमर कस रखी थी, वो अपने साथियों के साथ आखिरी तैयारी में जुटी थी। उन्हें दिशा निर्देश दे रही थी ताकि कोई चूक ना रह जाए।
1: सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जैसे ही मैं सीटी बजाऊं क्लब के भीतर बम फेंक देना और खिड़कियों से गोलाबारी।

0: बताते हैं कि क्लब के एक मुस्लिम बावर्ची क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के बर्ताव से बहुत नाराज थे। उन्होंने ही क्रांतिकारियों को क्लब के रास्तों, बनावट आदि की पूरी जानकारी दी थी। सब बताया था कि क्लब में कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, कहां कहां पुलिस तैनात रहते हैं आदि। ये भी तय था कि वो रसोई की खिड़की से टॉर्च लाइट से इशारा देंगे। उनके इशारे के बाद ही तीखी सीटी की आवाज आती है और रात करीब 10 बजे एक बहुत तेज धमाका होता है। कांच टूटने और अंग्रेजों की चीख पुकार मच जाती है। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बाहर जाने के सभी रास्तों पर क्रांतिकारी थे।
1: Help! Help! Terrorists! Terrorists! Run for your lives!
2: इनकलाब जिंदाबाद! आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद! साथियों, कोई भी गोरा अफसर बच कर ना जाने पाए, हमला तेज करो।
0: राइफलों और पिस्तौलों की अंधाधुंध तड़तड़ाहट हो रही थी। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मची थी। अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया था।
3: Fire! Fire back! Shoot them down! Don't let these rebels escape!
0: तभी अचानक एक भारी गोली चलने की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद प्रीति लता के मुंह से एक तेज करहा निकलती है।
2: आ, आ, मुझे, मुझे, मुझे शायद गोली लग गई।
4: प्रीति दीदी, आप बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, बहुत खून बह रहा है। चलिए चलिए, हम आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल लेते हैं।
2: नहीं नहीं, रुकना मत, मेरा आदेश है, तुम सब यहाँ से पीछे हटो। हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया है। अगर तुम मुझे बचाने में समय गवाओगे तो सब पकड़े जाओगे।
0: कुछ देर के पश्चात गोलीबारी थम जाती है। केवल क्लब के अंदर लगी आग की लपटों की चटकने की आवाज आ रही थी और प्रीति लता की भारी सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पीड़ा के बीच भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो नारे लगा रही थी।
2: भारत माता, आज तुम्हारी ये 21 साल की बेटी तुम्हारे चरणों में अपने जीवन का अंतिम अर्घ दे रही है। मैंने जो मशाल जलाई है, उम्मीद है वह बुझेगी नहीं। घोरे सर्जेंट, मुझे

0: मातरम।
1: प्रीति लता ने कागज की पुड़िया खोली और गोली निगल ली। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद वहां ब्रिटिश साजन पहुंचे और टॉर्च जलाकर देखा।
2: ओह माय गॉड, चेक दिस आउट, ये तो एक युवा लड़की है। इसने पुरुषों के कपड़े पहन रखे हैं। बट शी इज डेड, इसने जहर खा लिया है। लेकिन चेहरे पर खौफ की जगह ये कैसा सुकून और मुस्कान है।
1: असल में ये क्रांतिकारी अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेना चाहते थे और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन क्लब पर हमले के बाद ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर चारों ओर अंग्रेज सिपाही पहुंच गए।
3: सर्च एवरी कॉर्नर, इस मरी हुई लड़की की जेब की तलाशी लो। मुझे इसके सारे मददगारों के नाम चाहिए। ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे मास्टर द सूर्य सेन का हाथ है।
4: यस सर, देखिए इसकी जेब से कुछ दस्तावेज और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र मिला है।
3: क्या लिखा है इसमें?
4: सर जी, इसमें लिखा है,
5: भारत की महिलाएं अब किसी भी मामले में अपने भाइयों से पीछे नहीं रहेंगी। यदि हम देश के लिए जान दे सकती हैं, तो हथियारों से दुश्मनों का भी खात्मा कर सकती हैं।
3: Damn it! ये औरतें तो पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुरंत रेड मारो, कल्पना दत्त और सूर्य सेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो।
1: क्लब पर हमले के बाद कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर सूर्यदा भागने में सफल रहे। मामले की सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट में भारी गहमा गहमी थी।
6: ऑर्डर, ऑर्डर! चटगांव आर्मरी रेड और पहाड़ तली क्लब हमले का स्पेशल ट्रिब्यूनल केस, किंग एम्परर वर्सेस कल्पना दत्त और अन्य।
7: माय लॉर्ड, 25 सितंबर 1932 की रात जो हुआ वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली बगावत थी। प्रीति लता वादेदार नाम की बागी लड़की ने खुदकुशी करके कानून से बचने का रास्ता चुना, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे यहाँ खड़ी मुलजिम कल्पना दत्त और फरार मास्टरदा सूर्य सेन का हाथ है। इन बागियों को सरेआम फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
8: मुलजिम कल्पना दत्त, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है?
9: मिलोर्ड, हमें किसी बचाव की जरूरत नहीं है। प्रीति लता वदेदार मरी नहीं है, उसने देश के आत्मसम्मान के लिए शहादत दी है। आप हमें बागी कहते हैं, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वाले सैनिक हैं। आप हमें जेल भेज सकते हैं, फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में जल रही आजादी की इस आग को कभी नहीं बुझा सकते।
1: अदालत में भारतीयों द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के धीमे लेकिन दृढ़ नारे गूंजने लगे। जज उन्हें शांत रहने को कह रहे थे।
8: साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। ये अदालत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जुर्म में कल्पना दत्त को आजीवन काला पानी की सजा सुनाती है।
9: मुझे ब्रिटिश हुकूमत से इसकी ही उम्मीद थी। उन्होंने सोचा था कि प्रीति लता के बलिदान और उनके साथियों को जेल भेजकर वे क्रांति को कुचल देंगे, लेकिन वे गलत थे। 21 साल की प्रीति लता वदेदार ने जो शहादत की मशाल जलाई थी, उसने पूरे देश की महिलाओं और युवाओं को उद्वेलित कर दिया है। चटगांव की उस बेटी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसने सिखा दिया कि आजादी की कीमत अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं।
10: दादा,
0: जब प्रीतिलता शिक्षण से जुड़ ही चुकी थी तो वे क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे शामिल हुई?
10: इसकी भी एक कहानी है। असल में ग्रेजुएशन के दौरान वे श्री संघ से जुड़ी हुई थी, जो लीलानाग के नेतृत्व में चल रहे दीपाली संघ का अंग था। आगे चलकर दीपाली संघ महिला क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन बना, जहां सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर राजनीतिक आंदोलनों और अन्य तत्कालिक घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर कार्य करने और आंदोलनों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित भी किया जाता था। कलकत्ता प्रवास के दौरान प्रीतिलता कल्याणी दास के नेतृत्व में संचालित छत्री संघ से भी प्रेरित रही। उन्हीं दिनों प्रीतिलता की मुलाकात पूर्णेंदु दस्तीदार से हुई, जो चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे।
1: प्रीतिलता के क्रांतिकारी बनने की कहानी जानने के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा। जब प्रीतिलता मिलती है क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य पूर्णेंदु दस्तीदार से।
5: पूर्णेंदु जी, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए।
11: मुझे समय दो प्रीति, मैं ऐसे फैसले नहीं लेता। मुझे सूर्यदास से विचार विमर्श करना होगा।
5: ठीक है, आप कर लीजिए, मैं जवाब का इंतजार करूंगी।
1: पूर्णेंदु ने सूर्य सेन को प्रीतिलता के बारे में बताया कि वो पार्टी में शामिल होने को लेकर कितनी उत्सुक है।
12: देखो पूर्णेंदु, मैं महिलाओं के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें कुछ विशेष कार्यों की जिम्मेदारी ही सौंपी जा सकती है, जैसे संदेशवाहक, क्रांतिकारियों को पनाह देना, किताबों को छिपाकर रखना आदि। जहां तक प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने, हथियार चलाने की बात है, जिससे काफी खून खराबा होने की आशंका रहती है, वैसी गतिविधियों में महिलाओं को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं।
11: आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रीतिलता के इरादे भी काफी मजबूत है। वह मानसिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। आप उसे एक मौका देकर देखें, क्या पता कि हमें एक वीर महिला योद्धा मिल जाए।
12: अब तुम इतना कह रहे हो तो ले लो प्रीतिलता को पार्टी में, लेकिन यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
1: इसके बाद ही प्रीतिलता को चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में चितगोंग आर्मरी रेड होता है। उसके बाद जलालाबाद की जंग हुई, जिसमें 14 से 19 वर्ष के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सिपाहियों को कड़ी टक्कर दी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में 11 क्रांतिकारी शहीद हो गए। इसके पश्चात कर्णफुली नदी के समीप यूरोपियन क्वार्टर्स पर हमला किया गया। कालरपोल की जंग हुई, काफी क्रांतिकारी शहीद हो गए। उधर प्रीतिलता के सब्र का बांध टूटा जा रहा था।
5: पूर्णेंदुदा, मुझे सशस्त्र संघर्ष के लिए कब भेजा जाएगा?
11: मैं सूर्यदास से बात करता हूं।
12: पूर्णेंदु, उसे धीरज रखने को कहो। पहले उसे अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद रामकृष्ण विश्वास से जाकर मिलने को बोलो।
11: प्रीति, सूर्यदा ने तुम्हें रामकृष्ण से जेल जाकर मिलने को कहा है। उन्हें फांसी की सजा हुई है।
5: क्या क्या किया था उन्होंने?
11: उन पर चांदपुर रेल पुलिस इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी की हत्या का आरोप है।
5: ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं उनसे जाकर मिलूंगी।
1: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने जेल गई। वो उनकी कजन के रूप में उनसे मिलने गई, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इस तरह प्रीतिलता करीब 40 बार से ज्यादा रामकृष्ण से मिली। असल में सूर्यदा ने उन्हें एक खास मकसद से वहां भेजा था। वो जानते थे कि रामकृष्ण से मिलकर प्रीतिलता के अंदर क्रांति का भाव और गहरा होगा, उनमें स्थिरता आएगी।
10: जानती हो बन्नो, सूर्यदा का ये प्रयोग सफल भी रहा।
0: कैसे दादा?
10: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने के बाद रोजाना डायरी लिखा करती थी। उसमें वे अपनी भावनाएं और तमाम विचार लिखती। इससे उनके दृष्टिकोण में स्पष्टता आती गई।
1: हालांकि रामकृष्ण की फांसी का प्रीतिलता के मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब अपना समय जरा भी जाया नहीं करेंगी। खुदीराम, कन्हैयालाल, बाघा जतिन, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो भी देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगी। इसीलिए वो सूर्यदास से मिलना चाहती थी। उन्होंने पार्टी में अपना संदेश भिजवाया।
12: प्रीतिलता, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। तुम्हें चटगांव में अंग्रेजों पर हमला करना है।
5: मैं कब से इंतजार कर रही हूँ दादा।
1: योजना के अनुसार अगले दिन ही यानी 13 जून को प्रीतिलता को निकलना था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन कैमरून के साथ अचानक मुठभेड़ हो गई, जिसमें निर्मल सेन की गोली से कैप्टन मारा गया, जबकि एक गोरखा सिपाही की गोली से निर्मल शहीद हो गए। गोलीबारी में अपूर्व की भी मौत हो गई। प्रीतिलता और सूर्य सेन किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन इस घटना के बाद प्रीतिलता को वापस ढाल घाट लौटना पड़ा। उधर पुलिस ने प्रीतिलता के घर की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक पत्र और कई फोटो मिली। उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था। फिर भी प्रीति को घर में नजरबंद कर दिया गया।
13: प्रीतिलता घर में कैद होकर रहेगी सूर्यदा, उन्हें बाहर निकालना होगा।
12: उसे संदेश भिजवाओ कि वह अब घर छोड़ने की तैयारी करे। उसे अब से अंडरग्राउंड रहकर काम करना है।
13: ठीक है, मैं संदेश भिजवाता हूँ।
1: प्रीतिलता को सूर्यदा का संदेश मिलता है और 5 जुलाई 1932 को वो अपने घर से भाग जाती हैं। ब्रिटिश प्रशासन उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम घोषित कर देता है, लेकिन प्रीतिलता को फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी तैयारियों को और धार देने में जुट जाती हैं। इस समय तक वो रिवॉल्वर, पिस्टल एवं बम चलाना सब सीख लेती हैं। आखिरकार उनके सपने के पूरा होने का दिन तय हो जाता है, 24 सितंबर 1932। सूर्यदा उन्हें पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसी हमले में

सती लता को गोली लगती है और वो शहीद हो जाती हैं। लेकिन उनका वही सर्वोच्च बलिदान आने वाली सदियों तक हर भारतीय के दिल में देशभक्ति के अंगारे सुलगाता रहेगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत, एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा की अगली कड़ी में मिलेंगे एक और वीर सेनानी से। वंदे मातरम।

0: मेरा देश, मेरा वतन, मेरा भारत। जब भी अपने देश का नाम सुनाई देता है, तब सुनाई देती है वो आवाज उन वीरों की, उन शहीदों की, जिनके कारण हमारा देश आजाद है, जिनके कारण हम आज आजाद हवा में सांस ले पाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। आपको लग रहा होगा आज कुछ बदला बदला सा है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम मना रहे हैं 15 अगस्त स्पेशल, यानी कि स्वतंत्रता दिवस स्पेशल। और आज के इस दिवस को और खास बनाने के लिए, संगीत से सजाने के लिए हमारे साथ है हमारे अगले गेस्ट। जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में है अरविंद पेंडम जी, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं, आर्मेनिया में जॉब करते हैं और म्यूजिक में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है उनकी हमेशा से ही। मुंबई में रहे तो कई प्रोग्राम्स भी उन्होंने किए। आज हम उनसे मुखातिब होंगे, पहले उनका स्वागत करते हैं। अरविंद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति। अभी आप सभी ने मेरा परिचय तो सुनाई है, तो आज का विषय है स्वतंत्र भारत। तो मैं सबसे पहले आने वाली 15 अगस्त हमारे स्वतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हम सबको स्वतंत्र देश दिया है।
0: बिल्कुल, और सच में स्वतंत्रता की जब बात होती है तो कई ऐसे नाम हैं जिनसे हम परिचित हैं, पर कई ऐसे नाम हैं जो भले गुमनाम है लेकिन उनके बिना देश आजाद न होता। आज हम उन सबको भी नमन कर रहे हैं, एक एक को नमन कर रहे हैं। और चलिए संगीत की संध्या को सजाते हैं कुछ भारतीय गीतों के साथ, कुछ ऐसे गीतों के साथ जिससे हम देश को और गर्वित महसूस कराते हैं। अरविंद जी, हम बातें तो करेंगे लेकिन क्योंकि संगीत का कार्यक्रम है तो क्या एक गीत के साथ शुरुआत करें?
1: जी जी बिल्कुल, नेकी नेकी पूछ पूछ। तो हम हमारे भारत देश को वंदन करने के लिए मैं आपको यही गीत गा के सुनाना चाहता हूँ, वंदे मातरम।
0: जरूर, क्या बात है।

0: वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये गीत, ये नारा, ये स्लोगन जब भी आता है तो देश के प्रति वो भाव जो दिल में छिपा है वो बाहर आ ही जाता है दोस्तों। और क्या गीत बना है, क्या गीत गाया है, बहुत सुंदर गीत चुना भी आपने शुरुआत करने के लिए। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी इस गीत से क्यों शुरुआत की आपने, क्या आपको पसंद है इस गीत के बारे में? ऐसा
1: गीत के बारे में देखिए, हम वंदे मातरम हमारे देश को वंदन तो करते ही है रेस्पेक्टली, क्योंकि भारत ही हमारा माता है। भारत हम सबको, हम भारतवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए बहुत सारा देने की एक अपेक्षा रखता है, क्योंकि भारत देश ना कि एक देश है कि बाहर की दुनिया वाले भी इसको भारत देश के नाम से नहीं जानते। भारत देश से जुटे हुए जो बहुत सारे है जुड़े हुए कला संस्कृत, उसके बारे में बहुत ही प्रख्यात है। तो आज हम जैसे ये स्वतंत्र दिवस मना ही रहे हैं, तो देशभक्ति मतलब केवल तिरंगा लहराना या देश की सीमाओं को सुरक्षित करना यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को जिम्मेवारी से निभाना, अपने परिवार को समाज के देश के प्रति जिम्मेदारी बनाना, इसे भी हम कह सकते हैं देश प्रेमी।
0: बिल्कुल, देश प्रेम को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छे नागरिक हों।
1: जी बिल्कुल,
0: देश को हम जो स्वतंत्रता दिलाई गई, जो विजन था उस समय सभी का, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी, उनके विजन को सार्थक करने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न खुद से पूछना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें गीतों की ओर, अरविंद जी थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को आपके शब्दों में कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताएं, आप आर्मेनिया कैसे गए, आप क्या करते हैं, या फिर आपके लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताएं।
1: ओके, देखिए अभी नाम तो सुना ही है, मेरा नाम अरविंद, मुंबई से बिलोंग करता हूँ और ब्रह्मा कुमारी संस्था से मैं जुड़ा हूँ 1999-2000 से। उस टाइम पर मेरे जस्ट स्कूल लाइफ खत्म होने के बाद कॉलेज लाइफ में मेरे इंटर हो रहा था, उस टाइम पर भगवान ने मुझे चुना मुझे संभालने के लिए और देश के हित कुछ काम के लिए। ठीक है, तो मेरा बचपन सब मुंबई में हुआ, मेरे परिवार, तो अभी यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी कार्य में करता हूँ तो मुझे फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये एक विश्वास है कि उनका बच्चा कोई गलत राह पर, मार्ग पर नहीं जाता है करके। तो यहाँ पर मुंबई में रहते रहते, जॉब करते करते हमारा फिर अदर कंट्री जैसे आर्मेनिया में जाना हुआ, वहाँ पर भी हम जॉब करते हैं। अब फिलहाल तो कैसे, अभी ब्रेक लेकर के इंडिया वापस आए तो मुझे यहाँ पर भगवान की जो वरदान भूमि मधुबन में आने का मौका मिला तो हम यहाँ पर पहुँच गए। बट ईश्वरीय कार्य के लिए हमारा समर्पण सदा ही रहेगा।
0: आपका संगीत के साथ जुड़ाव कैसे हुआ?
1: संगीत के साथ अभी बहन जी क्या बोले कि बचपन से ही म्यूजिक मुझे बहुत पसंद था, गाने, और बचपन में ही मेरी पसंद ये रहा कि एक लिमिटेड जो मर्यादा युक्त जो गाने होते हैं, ठीक है, उसमें भी अभी बॉलीवुड में सबसे मशहूर गायिका, हम सब लोग उनको जानते ही है, स्वर सम्रांगिनी लता मंगेशकर।
0: बिल्कुल,
1: उनके गाने हम बचपन में सुनते थे, तभी मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी रेडियो में ऐसे बजाते थे और वो लंबा ऐसा ग्रामाफोन जैसा उसमें, तो मैंने सिर्फ उनका आवाज सुना, कभी देखा नहीं ये कौन गा रहा है क्या है पता नहीं। तो उस टाइम पर मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा, मेरे भी बचपन में आवाज बहुत छोटा था तो मुझे लगता था कि ये आवाज मेरे जैसे कौन गा रहा करके मैं घर में परेशान करता था। तभी उसके बाद फिर मैंने लता दीदी को पहली मरतबा देखा टीवी में, मिले सुर मेरा तुम्हारा गाते हुए, तो उनको सुनते सुनते उनके गाने मुझे काफी पसंद आने लगे। फिर मैं गाने का जो शुरुआत ही किया, फिर गाते गाते गाते गाते फिर मेरे स्कूल और कॉलेज में ही मेरे जो सुपरवाइजर मैडम थी उस टाइम पर, मार्गरेट मैडम, शी वाज कैथलिक, उन्होंने फिर मुझे स्कूल में ही कॉलेज लाइफ पे एंटर करने के टाइम पर मुझे उन्होंने टाइटल दे दिया JLD के नाम से। JLD मतलब ये काफी सारे लोग शॉक होते कि जूनियर लता दीदी, क्योंकि आज भी ये अरविंद बीइंग अ मेल फीमेल वॉइस में भी मतलब लता दीदी के गाने और मंगेशकर परिवार से जुड़े हुए जितने भी जो गायिका है आशा भोसले, उषा मंगेशकर और भी जो फीमेल बॉलीवुड के जो सिंगर्स है उनके भी गाने हम गाते हैं। तो लोगों का यही ज़्यादा ऑफर आता है, बहनों से ज़्यादा हमको भाइयों का रिक्वेस्ट ज़्यादा आता है, फीमेल गाने इनका गाया हुआ आप हमारे साथ ये गाइए ये गाइए करके। तो हम भगवान की एक बहुत बड़ी असीम कृपा है मुझ पर कि मैं आज फीमेल के वॉइस में भी मैं गा सकता हूँ, और ये भगवान की आशीर्वाद के साथ साथ मैं समझता हूँ कि मेरे माता पिता बड़ों का गुरुओं का भी आशीर्वाद है जो मैं ये गाना गाता तो हूँ, लेकिन मेरा एक उद्देश्य ये ही रहता है कि मेरे गाने से लोगों को सुकून मिले, कुछ सीखने के लिए मिले, और उनको कैसे कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान आए। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा ये अचीवमेंट यही है कि मुझे उनका मुस्कान जो मिलता है वो मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। तो मैं ये समझता हूँ ब्रह्मा कुमार्स में आने के बाद मुझे यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ मैं जो राजयोग सीख रहा हूँ तो जिसके तहत मुझे पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास और हिम्मत का भी अनुभव होता है, जो संगीत और आध्यात्मिकता दोनों का उद्देश्य एक ही है। यदि मेरे गीतों से किसी को भी अगर प्रेरणा मिल जाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है।
0: हमने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि आप दोनों वॉइसेस में गाते हैं, तो कोई ऐसा गीत क्या हमारे श्रोताओं को आप सुना सकते हैं जो आज थोड़ा फीमेल वॉइस में भी हो?
1: जी जी बिल्कुल। देखिए अभी जैसे मैंने स्वर सम्रांगिनी लता दीदी का जो नाम लिया, वो भी जब भी स्टेज परफॉर्मेंस देते थे तो लोगों का पब्लिक का एक आवाज आती थी कि दीदी एक मर्तबा ए मेरे वतन के लोग हो जाए।
0: बिल्कुल।
1: और ये अरविंद भी जब भी कहीं पर जाता है तो लास्ट में ये गाना गाए बगैर हमको छोड़ते ही नहीं है। तो मैं कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि उनका गाना उनके जैसे गाना मतलब किसी की बस की बात नहीं है शायद, फिर भी हम कोशिश करेंगे
0: जरूर।

तुमको भी लगा लो नारा, ये शुभ दिन

जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए

जो खून हीरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए।

0: मुझे लगता है इस गाने के बाद मैं तो स्पीचलेस हूँ. मेरे पास शब्द नहीं है जो आपने गीत ये गाया. मतलब मैं सोच रही थी हमारे श्रोतागण अगर देख पाते, लेकिन आपको सुना तो है ही, आपकी आवाज को सुना है तो वो जानते हैं आपकी आवाज कैसी है. एक मेल वॉइस है, लेकिन जो आपने ये हाई पिच फीमेल वॉइस में आपने लता दीदी का गाना गाया, द लेजेंडरी लता दीदी, स्वर कोकिला, जिन्हें पूरा विश्व जानता है. जब संगीत के उच्च कोटि के सिंगर्स की बात होती है, जिनके बिना संगीत का नाम अधूरा है, उसमें लता मंगेशकर जी का नाम आता है. और ऐसी महारथी का गीत आपने गाया, आपने आवाज बदल कर गाया, ये मतलब देख के भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आप ही गा रहे हैं. ऐसा लग रहा था कि कहाँ से आ रही है ये आवाज, कैसे सुनाई दे रही है ये आवाज. और बहुत कॉपी ऐसा लग रहा था आप कर रहे हैं, मिमिक्री भी साथ में, जैसे उनकी आवाज से वैसी ही कुछ आवाज आप मिलती जुलती सी निकाल रहे हैं.
1: तो लोग यही कहते हैं इसके लिए कि आप लता दीदी का गाना गाते हैं तो उनके जैसे गाते. कोई कोई लोग कहते हैं कि आंखें बंद करके सुनते तो विश्वास नहीं पड़ता है कि ये कोई बंदा गा रहा है.
0: बिल्कुल समझना मुश्किल है ये जी. तो ये कैसे करते हैं?
1: ये तो भगवान की दी हुई है, जैसे मैंने कहा, उनके बिना तो कोई पॉसिबल नहीं है
0: जी.
1: तो आई एम सो लकी टू बींग इंडियन, और उसमें से भी सबसे ज्यादा मैं गर्व महसूस करता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है कुछ कार्य करते.
0: नहीं तो आपने ये क्या बचपन से इस तरह से गाना शुरू किया था, या कभी आपने बाद में सीखा, किसी ने आपको सिखाया, या कैसे ये मतलब फीमेल वॉइस का कैसे ये आप गाते हैं?
1: फीमेल वॉइस मतलब जैसे मैंने शुरू में कहा कि बचपन में मेरी आवाज छोटा ही हुआ.
0: हाँ, तो पतली हुआ होती है,
1: बहुत ही पतली, लेकिन मेरा काफी पतली थी. जैसे मैंने कहा कि लता दीदी का मैं रेडियो में जब सुनता था तो मुझे लगता था कि मेरे जैसे आवाज किसने गाया. तो उस टाइम पर मैं एक बार पिताजी को काफी मैंने परेशान किया. तो पिताजी जब भी एम्पलीफायर वगैरह बनाते थे, यू नो, ऐसे इलेक्ट्रिक का, तो उन्होंने मुझे शोल्डरिंग का चटका भी लगाया, इतना मैंने परेशान किया. चटका मतलब मेरा पूरा हाथ का स्किन जल गया था. तो भी एक होता है कि एक कनेक्टिविटी, तो पता नहीं मुझे स्कूल में भी, मैं जब भी स्कूल शुरू होने के पहले जो प्रार्थना गाते थे, तो टीचर्स स्टाफ रूम में माइक होता था और सारे क्लासरूम में स्पीकर. तो शुरुआत हम जब गाते थे तो लोगों को लगता था कि शायद कोई प्राइमरी स्टूडेंट की कोई बच्ची गा रही होगी. बट एनुअल फंक्शन में जब हमारे मैडम, उन्होंने कहा कि अरविंद कम एंड सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑन फ्रंट ऑफ अस, तो वो पहली बार था कि स्टेज के ऊपर गाना, और स्कूल के कंपाउंड में, और सामने सारे वर्ग के स्टूडेंट्स थे.
0: तो आप कौन सी क्लास में थे तब?
1: मैं तभी जस्ट एनुअल फंक्शन था ना, तो 10th में क्रॉस कर रहा था.
0: अच्छा.
1: वो फर्स्ट टाइम था कि तभी भी मेरी आवाज बहुत ही पतली है. फिर 12th के बाद जो आवाज मेरी थोड़ी सी चेंज हुई, जो 12th से लेकर के अभी तक वो स्टेबल है. मतलब मैं 12th में था 2002-2003, आज 2026. तो अगर मैं 15 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी अगर कोई मैं स्कूल फ्रेंड से, कॉलेज फ्रेंड से अगर बात करूं, और मैं उन लोगों को परेशान करना चाहता हूं कि इतने साल के बाद मैं कॉल करो ना, तो थोड़ा देखते हैं ये मुझे पहचानता कि नहीं. लेकिन मेरा ही बन जाता है उल्टा,
0: पहचान लेते हैं
1: कि अरे अरविंद तू ही बोल रहे, पता है. तो मैं शौक हो जाता कि ये कैसे मन से. तो पब्लिक प्लेस में भी ऐसे हुआ कि हम मुंबई से बिलोंग करते, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर हम सफर करते थे, हम किसी से बात करते, तो पीछे कोई मेरा ही स्कूल का, कॉलेज का फ्रेंड, फिर पीछे से आकर के ऐसे धक्का देना, एक बार नहीं दो बार, ऐसा हुआ प्रैक्टिकली. फिर बाद में भाई साहब प्लीज बिहेव, तो बोलते बस क्या अभी अरविंद, तो मेरे नाम से लेकर के डायरेक्टली, मुंबई की लैंग्वेज ऐसी होती है. तो एक्सक्यूज मी आप कौन, तो बोलते भूल गया क्या ऐसे. हाँ. तो मैं, मुझे फिर उन लोगों को रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये एक
0: इतने सालों बाद मिलते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता
1: है. और मैं लोगों को पहचानने में मेरी भूल हो जाती है, क्योंकि उनका एक तो वॉइस चेंजेस होता है, प्लस बॉडी से भी वो लोग चेंज हो जाते हैं. लेकिन हाँ. अभी देखिए हम उनके सामने वॉइस से भी स्टेबल है, फिजिकली भी स्टेबल ही है. बोलते कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, अभी तक तो इतना ही छोटा ही दिख रहा है, तो क्या इसका राज क्या है.
0: सीक्रेट जानना चाहते हैं इसका. तो एक्चुअली क्या सीक्रेट है?
1: सीक्रेट कुछ नहीं है. जैसे अभी मैं आध्यात्मिक से जुड़ा हूँ, राज्यों का मेडिटेशन में सीखता हूँ, तो ये बहुत हमको सपोर्ट करता है स्वास्थ्य जीवन के लिए.
0: स्पिरिचुअलिटी के बहुत एग्जांपल्स हम सुनते देखते आए हैं, और आपने तो कहा कि किस तरीके से बॉडी को भी स्टेबल रखता है, ध्यान रखता है, अगर हम आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं. आपने कहा संगीत से रुचि तो आपकी हमेशा से थी, जुड़ाव पहले से ही था, तो कभी आपको लगा कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है या इसी फील्ड में जाना है, कभी इस तरह

0: का मन में ख्याल है?
1: काफी मन में ख्याल, मतलब मेरा एक वो लाइफ का उद्देश्य है कि अभी भी मैं किसी को, लोगों को अगर मुझे पूछते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि म्यूजिक इज माई लाइफ, क्योंकि म्यूजिक संगीत ही है कि आप बुरे वक्त पर भी आप उसको यूज कर सकते हैं, अच्छे वक्त पर भी हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। और दिल टूटता है तो भी म्यूजिक आता है, दिल किसी से जुटता है तो भी म्यूजिक आता है, और ये म्यूजिक ही है जो हमको भगवान से भी जुटाता है।
0: बिल्कुल सही कनेक्शन।
1: तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मीन्स मैंने काफी कोशिश भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं हमको कोई प्लेटफॉर्म ठीक नहीं मिला होगा, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ एक यूनिक टैलेंट है ना, तो इस यूनिक टैलेंट के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म होना ही शायद उन्होंने कुछ बना के रखा होगा।
0: बिल्कुल। और आज आपकी आवाज, आप बिल्कुल देश से भी बाहर रहते हैं लेकिन वहां भी अपनापन महसूस कराने के लिए गीत संगीत एक बहुत सुंदर माध्यम है। और जानेंगे आपसे इंडियन कल्चर के बारे में, कैसे बाहर भी क्या प्रभाव है आज, प्रैक्टिकली आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि कोई और, क्योंकि हम देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, देशभक्ति के गीतों में आज बिल्कुल खोना ही चाहते हैं, क्योंकि 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है, इससे अच्छा दिन कौन सा होगा अपने देश को सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्या कोई और गीत है आपके खजाने में जो आप हमारे श्रोताओं के लिए सुनाएं?
1: तो वैसे बहुत सारे होते हैं गाने के लिए, अभी लोग भी मुझे कहते हैं कभी कभार कोई ऐसे ऐसे गाना ऑफर करते हैं, मैं जरूर कोशिश करता हूँ, अगर वो गाना मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं गाता हूँ, अगर नहीं पॉसिबल है, देखो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, चप्पू चलाए बिना नौका पार नहीं होती, तो कोशिश हम जरूर करते हैं। जब कोशिश करने के बावजूद भी अगर हमको वो गाना नहीं जमता तो उस गाने को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन में बहुत सारे गाने हैं, तो अभी आपने कहा कि और एक खजाने में से कोई एक गाना, तो मैं जरूर एक गाना अभी सुनाना चाहता हूँ, वो है ऐ मेरे प्यारे वतन।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर।
1: ये भी गाना जब मैं गाता था तो लोगों को लगता था कि ये आवाज, भले तुम अभी मेल में गए हो लेकिन पुराने जमाने का जिन्होंने वो गाना सिंगर गाए, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा है, उनसे बहुत मिलता है, क्योंकि मेरी मेल वॉइस का ज्यादा डिमांड नहीं है, तो बहुत आजकल के टाइम पर ये उसी जमाने का लगता है अगर वो सुनते हैं तो मैं जरूर ये गाना सुनाने के लिए कोशिश करूंगा।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, प्यारा सा नगमा, अपने भारत देश को डेडिकेट करते हैं, हर भारतीय को डेडिकेट करते हैं, अरविंद जी की आवाज में, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
1: है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन,

फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, हम जहां पैदा हुए हैं उस जहां

रे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान।

0: सच में भारत पर दिल कुर्बान है, जान कुर्बान है, और हमारे देश पर गर्व महसूस करते हैं हम अपने। जब भी देश के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं ना दोस्तों, तो गर्व थोड़ा और बढ़ जाता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने देश के बारे में कुछ और जरूर जानें। अरविंद जी, आपने ये गीत गाया, क्या महसूस कर रहे थे आप जब गा रहे थे तब?
1: मैं अभी नेक्स्ट लाइन मेरा यही था आपसे शेयर करने के लिए कि इसमें लास्ट जो गाने के अंतर था, हम जहाँ पैदा हुए हैं उस जहाँ निकले ये दम। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक ही संकल्प है, एक इच्छा है, मेरे आंखें खुले तो भी भारत धरती माँ पर, आंखें बंद हो तो भी भारत का ही ये धरती हो। मैं भले आर्मेनिया में रहता हूँ बहन जी, बट वहाँ पर मैं जब भी सवेरे उठता हूँ तो ये मानता हूँ कि ये मेरी ये भूमि है, कर्म भूमि है ना, तो कर्म भूमि को भी अपने अपना ही मानना पड़ता है, उसको सम्मान करना पड़ता है,
0: बहुत जरूरी।
1: तो हमारी परंपरा में है कि सुबह उठने के पहले प्रणाम करो, नमस्कार करो, फिर धरती माता को नमस्कार करने के बाद मेरा पहला कदम पड़ता है धरती पर। तो वहां पर भी मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि अपना एक संस्कार और संस्कृति उसको हम कभी भूलेंगे नहीं।
0: बिल्कुल।
1: और जैसा अभी मैंने पहले भी कहा था कि मेरे आंखें खुले होना, बंद होना, मतलब मेरा एक इच्छा है कि मेरा अभी जन्म तो हुआ ही है धरती अपने भारत देश पर, लेकिन अंतिम श्वास भी मेरा यही पर हो, और फिर उसके बाद का जन्म भी मुझे फिर से यही पर चाहिए, भारत देश पे।
0: भारत देश में।
1: तो इसके
0: आपको क्या अच्छा लगता है भारत के बारे में, अगर मैं पूछूं कि देश हमारा इतना बड़ा, इतना हिस्ट्री, इतना आर्ट, इतना कल्चर, और क्या नहीं है यहाँ पर, खूबसूरती भी इतनी है, प्रकृति भी इतनी है, क्या आपको अच्छा लगता है भारत के बारे में, क्या आपको याद आता है भारत के बारे में जब आप भारत में नहीं होते?
1: बिल्कुल, अभी आपने जैसा अच्छा प्रकृति का जब नाम आपने लिए सिस्टर, तो मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि प्रकृति हमारे भारत देश का काफी सुंदर है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट के चक्कर में हम फॉरेस्ट को कम करना ये एक होने जा रहा है, फिर एक तरफा कहते हैं कि वृक्षारोपण भी करो, ठीक है। तो हमको सबसे पहले नेचर लवर बनना बहुत ही जरूरी है। नेचर लवर मतलब हम जंगलों को काट करके शहर बना रहे, तो आज हम देख रहे हैं जंगल के जानवर भी हमारे आर्टिफिशियल बने हुए शहरों में वो घुस रहे हैं, ठीक है। तो हमें जंगलों को जब हम काट भी रहे हैं तो दूसरे तरफ हमको उसका वृक्षारोपण भी तो करना है, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग भी मिलते जा रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज हम देख रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण अभी एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। अभी एयर पोल्यूशन के कनेक्टेड में दूसरा आता है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन भी कैसे, अभी हवा में तो इतने टॉक्सिन और ये सब गंदे जहर वाले केमिकलाइज पूरे धूल, वो जो स्नो वगैरह क्या कंपनीज के जो होते हैं मिक्स होने जा रहे हैं, तो वैसे पानी के अंदर भी कितने सारे गंदगी हम लोग करने जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, पानी में हम कितना कुछ डाल भी देते हैं, नदियों में बहा भी देते हैं,
1: बिल्कुल, तो उसके ऊपर

0: साथ साथ हम लोग नेचुरली अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करें, खान पान के ऊपर ध्यान. तो ऐसे वो कैंप करते करते इन लोगों के बारे में भी मुझे पता चला कि ये लोग कैसे अलग अलग पब्लिक प्लेस पर जाते हैं और पब्लिक गार्डन्स होते हैं उसके यहाँ, वहां पर जाकर के क्लीनलीनेस का करना, समुन्द्र के किनारे. मुंबई में तो चारों तरफ हर जगह पर समुन्द्र है. समुन्द्र में कितने सारे पब्लिक जाते हैं तो वहां पर गंदगी मचा देते हैं. तो ये ग्रुप वहां पर जाकर के सारा जो भी है सफाया करने में लग जाते हैं, क्योंकि बीच के किनारे बहुत सारे पब्लिक मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए भी निकलते हैं. और ये समुन्द्र का किनारा ही मुंबई की एक ब्यूटी है, आपको तो पता ही. मुंबई को देखना हो तो समुन्द्र के किनारे शाम के समय पर जाओ तो मुंबई की खूबसूरती आप देख पाएंगे. तो मुंबई में ही नहीं बल्कि अभी देश का यहाँ पर अभी बात चल रही है तो देश में भी जैसे हमने कहा कि वृक्षारोपण का करना ये सब जरूरी है.
1: बिल्कुल.
0: अभी समुन्द्र के किनारे तो हो गए, अभी जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां हैं तीर्थ स्थानों पर, वहां पर भी अभी अवेयरनेस बढ़ गई है. जैसे निर्माल्य, पहले लोग पब्लिक क्या करते थे, नदी में बहा देते थे. निर्माल्य मतलब ये फूल हो गया.
1: हाँ,
0: खाना पीना जो हम लोग नैवेद्य जो दिखाते हैं तो वो भी उसमें डाल देना, वस्त्र का दान देना नदी को, गंगा माता को हम दान दे रहे करके. बट वो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, हम दूषित कर रहे हैं पानी को. तो यहाँ पर क्या है ना, हमको एक तो नेचर को भी बचाना है, नेचर लवर बनना है. जैसे हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में कहते हैं निसर्ग प्रेमी बना, मतलब नेचर लवर. अगर हम नेचर से खिलवाड़ करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो नेचर का एक लॉ है कि हमने नेचर को जितना देंगे ना उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न में अपने को देता है विद इंटरेस्ट.
1: बिल्कुल, ये सच बात है
0: ना. तो हम अगर नेचर से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो नेचर भी अपने को विद इंटरेस्ट ही रिटर्न में देगा ना. तो उसे अब ये क्लाइमेटी जो होती है तभी हम देख भी सकते हैं कि देखते भी है कि फिर उसको रोकने के लिए किसी के अंदर ताकत नहीं होती है. इसके लिए अब भी हमको सतर्क होना बहुत जरूरी है.
1: सतर्क होना जरूरी.
0: बिल्कुल. और अभी मैंने कहा कि सेव ट्रीज, सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो जैसे पानी का भी मैंने कहा, जैसे सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जीवन बचाओ.
1: बिल्कुल, जल है तो जीवन है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन ये सत्यता है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक स्टेटमेंट नहीं है. और जब बड़ी कोई कलामिटी आती है तब वो काम नहीं हो सकता, काम तो पहले से ही होना है. तो हम सबका उसमें सहयोग चाहिए. एक जना नहीं कर सकता अकेले, एक संस्था भी नहीं कर सकती. तो हम सबको एक कदम उठाना है. आपने बात की, क्योंकि मैंने प्रश्न किया था भारत के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, याद आता है आपने प्रकृति की बात की.
0: जी जी.
1: तो प्रकृति जब इतनी सुंदर लगती है तो उसको बचाने का भी रोल हम सबका है.
0: yes.
1: क्योंकि प्रकृति से बहुत कुछ मिलता है.
0: जी. अब आते हैं भारत के बारे में. तो जैसे देखिए, मैंने अभी आर्मेनिया में इतने सालों मैंने रहा, तो आर्मेनिया कंट्री और हमारे भारत देश के बीच एक रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है. क्योंकि हमारे भारत के संस्कृति के कारण आर्मेनिया कंट्री में हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी बापू का भी वहां पर एक स्टैच्यू है.
1: अच्छा, क्या बात है.
0: मैंने देखा, मैंने सुना भी है. और वहां के इंडियन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन येरेवान कंट्री, तो वहां पे एम्बेसी जब वहां पर जाते हैं गांधी जयंती मनाने के लिए, तो उनका एक सोशल पेजेस है, तो उसमें मैंने देखा. मुझे अगर मौका मिले तो मैं जरूर एक बार जाऊंगा वहां पर, सेल्फी खींच के मैं शेयर करूंगा. बट ऐसा है कि वहां पर कंट्री में हमारे भारत के संस्कृति के बारे में भी वहां के लोगों को बताया जा रहा है. मैंने ये देखा. अच्छा. कि वहां पर क्लासेस चलती है कि उस कंट्री में कैसे इंडियन लोग तो काफी सारे हुए, इंडियन तो हमारे पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं, तो वहां पर भी इंडियंस काफी सारे हैं, खासकर काम करने वाले, जॉब करने वाले भी हैं, तो साथ साथ ही अपने मेडिकल स्टूडेंट्स. तो वहां पर अपने भारत देश के बारे में वो लोग सिखाते हैं वहां के लोकल लैंग्वेज लोगों को. अच्छा? लोकल लोगों को. कि हमारे भारत देश इज नॉट अ देश, देश के रूप में नहीं देखते, क्योंकि हमारा जो भारत देश जो है ये कला संस्कृति योग और परिवार का जो वैल्यू जो है उसको लेकर के चलती है.
1: बिल्कुल.
0: तो
1: हमारा आधार रहा है हमेशा से.
0: यस. तो हमारा भारत जो है संस्कृति और ये त्योहार भी अभी उनको एक वंडर बहुत खाते हैं कि भारत देश में, इनके देश में इतने सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस है.
1: हाँ बिल्कुल.
0: फिर मल्टीपल लैंग्वेज के साथ साथ फिर उन लोगों का ये ड्रेसअप है, पहनाव जो है वो भी अलग अलग भाषा के साथ पहन

0: और फिर उनका खान पान अलग अलग अलग अलग होने के बावजूद भी
1: कैसे
0: ये लोग एक एकजुट कैसे रहते हैं ये एक ज्यादा वंडर खाते
1: हैं, ये सबको लगता होगा।
0: हाँ, एकजुट तो रहते ही है, रहते तो है ही, प्लस उसमें और एक सबसे बड़ा वंडर खाते है कि ये लोग त्योहार जो मनाते हैं उसके पीछे भी कुछ न कुछ बहुत सारा वैल्यूज छुपा हुआ है। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, तो मैंने जब इस बार मैंने आर्मेनिया में दीपावली का प्रोग्राम अरेंज किया था उसी क्लासेस में जहां पर इंडियन लोगों को वहां का लोकल लैंग्वेज सिखाते हैं और वहां के लोकल लैंग्वेज लोगों को वहां पर इंग्लिश ना के बराबर आता है, तो वहां के लोकल लैंग्वेज को लोकल लोगों को इंग्लिश सिखाने के साथ साथ अपना भारत देश के बारे में बताते। तो वहां पर मुझे भी एकदम उस टाइम पर मुझे मैं वंडर खाया कि वो टीचर थी रशिया की।
1: अच्छा।
0: वो जो क्लासेस चलाने वाली, वो कोचिंग करने वाली, और वो वहाँ के लोगों को इंडिया की संस्कृति के बारे में बता रही है। दिवाली क्यों मनाते ये लोग, मतलब दिवाली का इनका वैल्यू यही है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। फिर होली ये लोग क्यों मनाते हैं, उसके बारे में वो लोग बता रहे थे वहाँ पर। तो हालांकि वो प्रोग्राम मैंने अरेंज किया दिवाली के निमित्त, लेकिन वहाँ पर वो लोग होली के बारे में बता रहे। तो ये एक्चुअली फैक्ट है कि हमारे भारत देश में जितने भी जो त्योहार है ना उसके पीछे बहुत सारा गुह्य रहस्य जो है ना समाया हुआ है पीछे।
1: बिल्कुल।
0: अभी होली भी मनाते हैं,
1: बहुत सारे रहस्य हैं हमारे बिल्कुल भारत त्योहार के बारे में, आपने सच कहा। तो इन त्योहारों को मनाते हैं तब भी हम देखते हैं गीत संगीत का बड़ा महत्व होता है, रोल होता है, और हमारा कार्यक्रम भी उसी संगीत को सेलिब्रेट करता आया है। तो क्या कोई और गीत है आपके पास जो आज आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
0: तो अभी मैं क्या ही सुना
1: कोई भी गीत, कोई त्योहार से रिलेटेड भी हो, चाहे कोई बॉलीवुड का ही गाना हो या कोई और आपको गाना जो सुनते हुए आप बड़े हुए हो आपको याद आता हो, कोई भी आपकी पसंद का गीत।
0: ऐसे गाने तो बहुत सारे हैं, तो मैं एक गाना गाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ
1: जी।
0: ये भी एक वंडर होता है लोगों के बीच में, अभी त्योहारों का जो चल रहा है तो इसके ऊपर अभी एक और गाना है जो मैं बाद में मैं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो है एक डुअल वॉइस में मैं गाना चाहता हूँ, बॉलीवुड का सॉन्ग या तो फिर एक भक्ति सॉन्ग है।
1: ये डुअल वॉइस में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, हम भी सुनना चाहेंगे क्योंकि हमने सुना है आपने मेरे वतन के लोगों क्या खूब गाया, तो जरूर जरूर जरूर।
0: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लवम कौन कहते हैं।

कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं।

0: बिल्कुल, भक्ति में डूबने वाले कई गीत हमने सुने हैं दोस्तों, और भारत की संस्कृति का ये भी बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई गीत हम भक्ति रस का सुनते हैं तो न सिर्फ किसी त्योहार से जुड़ जाते हैं, संस्कृति से जुड़ जाते हैं, बल्कि ईश्वर से ही जुड़ जाते हैं, और प्रकृति को भी धन्यवाद करते हैं, भारत के हर कण को धन्यवाद करते हैं आज हम इस मंच द्वारा। दोस्तों, सेलिब्रेशन हो रहा है, 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हो रहा है, हमारे देश का आजादी का महोत्सव है ये, और हमारे श्रोतागणों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वैसे हम बढ़ रहे हैं आगे कार्यक्रम की अंतिम घड़ियों की ओर, और हम गीत संगीत के सेलिब्रेशन को भी आगे लेकर जा रहे हैं। तो अरविंद जी, आज आपने हमें बताया कैसे बाहर भी भारत की संस्कृति की बड़ी रिस्पेक्ट है, कद्र है, लोग सीख रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे देशवासियों को, हमारे जो श्रोतागण सुन रहे हैं आज खास इस स्पेशल प्रोग्राम को, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे?
1: संदेश यही मैं देना चाहता हूँ कि देखिये, हमारा भारत देश का जो त्योहार है, हर एक त्योहार का एक ही मूल संदेश रहा, प्रेम, खुशी और एकता। ओके, तो प्रेम, खुशी, एकता के साथ साथ अभी हम एक कहना चाहते हैं कि जो भी हम करते हैं देश के लिए, अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें अपने से, खुद से होकर के, अपने से होने के बाद फिर अपनों से, अपनों मतलब हमारे घर परिवार, फिर उसके बाद ही आता है हमारा समाज, फिर देश के प्रति। तो कभी भी हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो पहले घर से करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आज के दौर पर हम देख रहे हैं कि टेक्निकल ज्यादा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजीज, ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: तो कोई हर एक चीजें आज हम भारत में देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली इन इंडिया, अदर कंट्रीज में भी टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ रहे है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये केमिकलाइज्ड ज्यादा हो गया है, एक तरफा हम जो खा रहे हैं ऑर्गेनिक के बदले नॉन ऑर्गेनिक, जिससे रिलेटेड अपने को स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एक तो ध्यान देना, और दूसरा है कि तो घर से शुरुआत, मतलब मैंने अभी जैसे कहा कि मैं एक छोटी सी बात है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कि आज के यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी में एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग आयु तक मोबाइल के बीच में भी, मोबाइल के पीछे भी बहुत लगे हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी देख रहे हैं अपने आसपास ये सब।
1: तो छोटा बच्चा अगर वो 1.5 साल 2 साल का होता है तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल उनके हाथ में थमा देते हैं फ्री होने के लिए, अगर रोता है तो उनके हाथ में मोबाइल थमा देते और अपने काम में लग जाते हैं। तो छोटा बच्चा जब ये मोबाइल यूज करता है तो लोगों को ये पता भी है कि उसके रेडिएशंस हानिकारक होता है। कुछ लोगों को तो मैं ऐसे भी देखता हूँ बहन जी कि वो लोग बच्चे को देते तो है लेकिन आई प्रोटेक्शन ऑन नहीं करते, स्क्रीन का जो ब्राइटनेस होता है वो भी काफी तेजी से रखते हैं, जिससे उनको आई को भी इफेक्ट हो सकता है, उनके मस्तिष्क को भी, उनके ग्रोथ होने में भी। फिर बच्चे से अगर मोबाइल छीन ले तो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो फिर वो बच्चा फिर बड़ा होने के बाद चिड़चिड़ा बन जाता है। अभी आते हैं थोड़ा ऊपर के लेवल पर, आजकल के जो जो स्कूल के जो बच्चे, कॉलेज के बच्चे, घर में मम्मी पापा कुछ अगर उनको काम बताते हैं तो मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। तो अगर बुलाया तो हाँ मम्मी एक मिनट, आया मैं करते करते वो डिले हो जाते हैं। तो फिर बाद में बोलते हैं कि मैं आज नहीं मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल। तो ये होता है इस लेवल के। तो क्या है ना, मोबाइल यूज कीजिए जहां तक अपने को यूज करना है उतने, क्योंकि आजकल सारी चीजें अभी ऑनलाइन हो गए, ऑनलाइन से सब कुछ हम कर रहे हैं, ये सुविधा अच्छी है, लेकिन उसको यूज करते हुए कभी कहीं पर मिस यूज ना हो, इस पर भी हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: ओके। तो अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर के एज वालों को, जहाँ पर अभी वेल सेटल जो होते हैं आफ्टर स्कूल कॉलेज लाइफ के बाद जो जॉब के लिए निकलते हैं, तो वहां पर भी लोग, अभी जैसे मैं मुंबई से बिलोंग करते हैं, नॉट ओनली मुंबई, पूरे दुनिया में ही ये सब चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड।
0: बिल्कुल,
1: ट्रेवल करने के टाइम पर भी, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेवल करने के टाइम पर भी मोबाइल में ही रहते हैं, चाहे वहां पर पब्लिक भीड़ क्यों ना हो, मतलब खड़े खड़े भी मोबाइल,
0: मोबाइल का भी कल्चर जैसा बन गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्क्रीन पर ही ध्यान देते हैं, उससे आंखों को इफेक्ट, हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा।
1: तो मैं अंत में यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने ये समाज में किसी का कभी अगर हम अच्छा नहीं कर सकते है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप किसी का बुरा भी ना करें. ओके और जब बात आई तो खुद से फिर पूरे समाज तक, तो वहां पर हमेशा हम लोग को तीन ए में समझता हूँ. मेरे तीन ए काफी सारे लोगों को मैं बताता हूँ, मेरे स्टाफ हो गए या कोई भी हो गए फ्रेंड्स को भी, तीन ए का अप्लाई करना बहुत जरूरी है. जैसे अटेंशन, अलर्ट और एक्टिव. अटेंशन, अलर्ट और एक्टिव, ये अभी अगर हम खुद इन तीनों बातों पर, इन तीनों शब्दों पर अगर विचार करेंगे तो अपने को खुद को ही समझ में आएगा कि ये तीन वर्ड के पीछे क्या का है? क्या है. तो ये हमारे खुद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ पूरे परिवार को भी वो फायदा होता है और समाज को भी फायदा होता है
0: जी.
1: तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ये तीन शब्द कभी भूले नहीं, बस सबका भला करो, आगे बढ़ो और बढ़ाओ, ना किसी का लेग पुलिंग करो, ना किसी का बुरा करो.
0: बिल्कुल.
1: तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी यही संकल्प ले कि अपने विचारों, व्यवहारों और कर्मों से भारत को और भी श्रेष्ठ बनाने का अपना सहयोग दान दे.
0: और इसी के साथ दोस्तों, इस एपिसोड से हम मधुबन अनप्लग्ड से तो इजाजत ले रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ और इस विश्वास के साथ कि अपने देश के लिए, अपने देश को बनाए रखने के लिए, जो हमारे देश का आधार है उसको बनाए रखने के लिए हम भी अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे. कुछ ना कुछ एक कदम देश की ओर, समाज की ओर, कुछ कल्याण की ओर जरूर बढ़ाएंगे. जय हिंद, जय भारत. जाते जाते हम अरविंद जी, क्या कोई और दो लाइनें हैं जो आप हमारे श्रोताओं के लिए आज
1: दो लाइनें तो यही है कि
0: ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन ये माटी की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई

जन जनरी आस्था रा प्रतीक बाबा रामदेव जी दीन दुखियों री सेवा करता हुआ विक्रम संवत 1442 में जीवित समाधि ले रूणीचो गांव रामदेवरा रे नामो पूरे भारत में विख्यात हो गया।

0: चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे सुनाते रहे जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: ब्रेक के बाद में अपना समाज कार्यक्रम रामायण रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोता और स्वागत है ना अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य है और भी स्वागत है। हमें आपने पूछूंगे चलो आपने कोई बंदूरी मृत्यु हुई है तो तीसरो भी करो तो तीसरा दिन कई करो वन्य बारह में तो।
2: मैं आपने अर्ज करूं कि प्रथम तो मैं आचार्य हाँ
1: जी।
2: आचार्यों से मृत्यु कार्य कोई छुपा होता नहीं है
1: जी।
2: माना है वो कुट कुट न मार में भरी होगी वह जिन दिन जिन आदमी की मृत्यु भेजा है जिन घर में विन दिन बकायदा घर में चूलो नहीं जलतो है
1: ठीक है।
2: विन अड़ोस पड़ोस कुटुंब वाला भाई बीरो वे वे सूक्ष्म खाणो ले लेन आवे और हंगारा मुंडा हटाया जाए।
1: चलो मैं आपने पूछो कि भाई पर बीजा समाज श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली ब्राह्मण में मैं एक जगह इंटरव्यू लीधो तो वन में बताए तो अगर कन्या मृत्यु हो जाए तो वन शरीर ने बकायदा पवित्र करे और वणी ने जलावा जाए मतलब तो दाह संस्कार करवा जाए तो वे भी पीताम्बर कपड़ा पहन जाए और बीजो कोई हाथ नहीं लगावे समाज रो सिर्फ वरना परिवार लोग हाथ लगाए वो इस कंधो दिए बीजा आवे तो कंधो नहीं देखता तो आपरे समाज में आचार्य ब्राह्मण में भी रिवाज है कोई
2: नहीं सब ओ अमुक ब्राह्मण में रिवाज है तो अलग अलग जगह रिवाज भी करे। मैं अपने अर्ज करूँ
1: जी
2: कि मैं भी मारा यार दोस्त ने कहिया ने जाति समाज में ब्राह्मण में गियोड़ो हूँ
1: जी।
2: अमुक जात में तो है कि अगर कोई मर जाए है तो विनी लड़का रा ससुराल वाड़ा सापा लेना वे
1: तो रिवाज है ओडामनी लेना है वरना वास्ते
2: अर्थी उठवाऊं पहला सबने सापा बंधा वे
1: ठीक है।
2: विशेष करने आप प्रथम में जोधपुर में देखी थी
1: अच्छा पर अबरूड में तो मुंह नहीं देखी
2: अबरूड में एड़ी कोई प्रथा नहीं है सब वे लोग सापा पहनने जाए
1: अच्छा।
2: माने अटकाए वे है कि माने आचार्य समाज में ज्यादातर जिन्हें दिन घरे मौत हुई है विन पुतड़ा में नवामा धोवा पवित्र करा और विना पिंड बनाया जाए पांच
1: अच्छा।
2: और विन पिंड दान रहते विनो एक प्रथा ले रही है
3: अटके भाई विने
2: भूको विदानी करनो सही जे तो एक कांसी रो बाट कर में अमुक कुछ बनाने विनी छाती माते बांध दियो जाए अब वो समझाण होती विने हाथे जाए अटो नवा धोवा पवित्र बीन जावा ना धोन तो मां भी पवित्र वहां माने आचार्य समाज रो पुतड़ा रो बकायदा पहला मुंडन संस्कार वे
1: अच्छा।
2: पुतड़ा रो पहला वे लवीने बाद कुटुंब वाला रो पहला
1: पुतला रो मुंडन संस्कार तो मुझे करने नहीं पहली बार होनो रही आप रे मु
2: आचार्य समाज में मुंडन पहला वे
1: अच्छा।
2: के जीने पुटे में मुंडन करावा हां बिना केस वदियोड़ा है तो पछे मैं मुंडन किने लारे करावा
1: ओ तो पहली बार होनी हो कि भाई कोई जो जन बंधुरो मृत्यु व्यापरी तो वन्ने भी मतलब दाह संस्कार करवाते पहला वन्ना मुंडन करे और वन्ना बाद में वन्ना परिवार वाला मुंडन करे
2: पहला नाई ने बुलावा हाँ नाई विन पुतड़ा मुंडन करे लुगाई मुंडन नहीं हुए तो खाली मीन करो बिया करे इन्हें बाद वो नाई माना हैंगा रहे मुंडन वे विना कुटुंब राजिता वे वे विंदन बकायदा भद्र वेला
1: भद्रवेला पर पछे अन्य बाद में कोई एक परिवार में कोई मेंबर एरो वे जो धोती होती पहरे कपड़ा पड़ा पहरे और दाह संस्कार जो जन आते अग्नि संस्कार वे
2: आ तो अग्नि संस्कार कराणो वे या पिंड दान वो 11 दिन करेला वो आदमी काई करे एक लंगी धोती पहरिया करे और ज्यादातर माने सीतपुर आजू बाजू जो मारा आचार्य ब्राह्मण लागोड़ा है वे लोग आवे वे का ही करे कि पीताम्बरी पहरिया करे
1: पीताम्बरी
2: अच्छा। इनमें पीताम्बरी में दो कारण वे कि सीतपुर एरिया में तो जो घर उठावेला हमें तो वटे भी थोड़ा थोड़ा बदलाव आवा डूगा अमुक जाता में ही है कि वे जो चार जना कांदो दे वे उठान ले जावेला दूजा ने कांदो नहीं देता
1: वो तो मुश्किल वजह आजकल लंबर जगह है तो
2: लंबी लंबी समझाना हमें कहे है कि वही चीज ने शॉर्ट होगी कम होगी जगह जगह सब वाहन बुला लिया गया
1: अपने अबरूड में तो मोक्ष रथ लाए
2: मोक्ष रथ ज्यादा है सब अब इनमें कहे है कि बहुत सारा अनुभव है बहुत सारा है ही नहीं अब कुछ ऐसा भी वे है कि जिनारा कुछ नेता वे या जिनारा कुटुंब रहा वे वे लोग एड़ो चाहे कि भाई जिंदगी भर मानव बोझ भी नहीं उठायो न आज भी ना मोक्ष रो दिन आयो तो मैं रथ में क्यों बैठा हुआ
1: अच्छा।
2: मैं क्यों नहीं कांधे लेन आला
1: कांधे लेन जाना जरूरी भी
2: तो ताजो उदाहरण जब माना भाई रो एक्सीडेंट हम जो या बिना हाथे कोई घात हम जो मानो भाई ईश्वर लाल आचार्य एडवोकेट बिना लड़को मानो भतीजो मानो बाप बेटा एक हाथे का मृत्यु ने प्राप्त किया था आकस्मिक मृत्यु रे माए जब बटे मानो भाई आरएसएस हिंदू विश्व परिषद वनवासी परिषद सबरो दृढ़ कार्यकर्ता तो बिना कार्य ने देखने
1: जी।
2: आज विने वे लोग जो आया था बिना बंधु लोग जितना भी वे कहो कि नहीं मारा गुरु ने मारो भाई मैं मारा कंध जाएला जिन टाइम मोक्ष रथ नहीं तो लेकिन प्राइवेट साधन लाए तो बिना नहीं लियो खुद कंधा माथे लेन पूरा अवरोध री परिक्रमा करता भैया और विनय दाह संस्कार करवा नदी किनारे लेन गया अग्रवाल बगीचे रामी। इन्हें प्रकार हमें जो माने कोई मृत्यु विजय है तो माँ बकादा नहला धोला और जावा हाँ पर मारे कांदो सब दीवे सब।
1: चलो ठीक है अच्छी बात है कांदो सब देना जो जे सब ने देना जो जे।
2: मैं बताऊँ आपने कि समाज में वो बड़ो भी हो कोई रे घरे अच्छो करियो कोई रे बुरो करियो कोई रे चावा वाड़ा तो अगर विने एक छोटी सी भाषा में आपा का तू गेड़ो निगरो नीरजे के थाने मारो कांदो ही नहीं लगे।
1: सही बात है
2: माँ बाप भी कहे है औलाद ने नुगरी औलाद ने तो समाज वाला भी कहे ये दुष्ट थाने मारो कांदो भी नहीं लागू सही जे कांदा उन्हें लगे है जिन्हें दिल में जगह भी है करे लोग आगे दौड़ ने विने कांदो दिया करे
1: कारण सब जना कांदो दिए बनी ने। चलो अच्छी एक धारणा है आई बात रही तो मैं आप तीसरो करो जब फूल लेना हो तो वर्णन छोटा सा रिवाज बताओ थोड़ा सा।
2: तीजरे दिन मैं तीजरे दिन अटे सुबह जावा हाँ खाती हूँ एक तरटी की बनवाई जाए तीन टांगरी और कुमार रेवटों कोरी कुलड़िया ली जाए दिया लिया जाए और जटे भी वो अर्थी जलाई जाए बिना बकायदा ठंडी आरुत करी जाए बिना मारा ब्राह्मण मारा हाथ रहे और बिन विधि कर करा विधि अनुसार फोन कर रहा और वटे कहीं वे के कच्ची खिचड़ी रांधी जाए वटेस रांधे बिना मातेस रांध परी करने और बिने पुतड़ारी जो जगह ठंडी करने बिना एक डबूले होना बिना माते वो बेड़ियों मेला त्रटी मेल त्रटी माते बेड़ियों रहे इन्हें अलावा पंचग्रासी रहे साबू पांच मिठाइयां लाई जाए और वह कुत्ता ने और कागोड़ ने दे दी जाए और ना दो और पचे वटो इन फूल जो बिना है विन फूल ने दूध दही शहद इन प्रकारों बिना धो और कोरी कुलड़ी में घाल मिनक अगर मरियो है नर तो सफेद कपड़ों माता बंधेला और नारी है तो लाल कपड़ों बंधेला और बांध ने विने लावाना
1: घरे लेना जाओ
2: घर में नहीं लाता सर।
1: अच्छा तो कटे राखो
2: मारे घर भगवान की कृपा माना बड़े रहा मारे घर रहा हमें मिंदर बनायो है फिर मैं झाड़ बंदी उड़ा है
1: तो
2: मैं वे मिंदर रहे मैं बांधा हाँ। और मिंदर मिंदर में या तो आड़ा में छुपान मेल ना
1: हाँ।
2: या एक बक्सो वेली उड़ो विन में घालने ताड़ो लगा था तीजारे दिन सामरा हरिद्वार रवाना करा
1: हरिद्वार जाओ ठीक
2: माने पहला सीधा हरिद्वार जानो पड़े हरिद्वार हरिपेड़ी माते जा और आचार्य समाज रो बहुत बड़ो पंडो है
1: जी।
2: वो पंडो मानो बकायदा पंडितान करावे वटे बहुत बड़ा रजिस्टर मेली उड़ा है जिनमें आप रो नाम लिखियो जाए आप जो दान दे वो लिखियो जाए आप रा मरवा वाला प्राणी रो नाम लिखियो जाए और सबरा माना नाम लिख ने वो कुंड ने हाथ वियो वटो वो हरिद्वार पंडो आवन पे माने पुष्कर आना पड़े एक जारी में
1: पुष्कर क्यों आओ का कारण है
2: इनो कारण मैं आपने बताऊं कि जैसे कि मारा वेदा में मानता है
1: जी
2: आप भारत रा सब तीर्थ कर लो
1: जी
2: लेकिन अगर पुष्कर स्नान नहीं करियो
1: जी
2: तो सारा तीर्थ अधूरा रह जाया करे।
1: अच्छा।
2: तो जब इतनी बड़ी मोक्ष में आमा हरिद्वार जा रिया हाँ हरिद्वार में लौटना आवा माने सब ऐसी प्रथा है कि भाई घरों एक तो प्राणी मरियो है विनी कोई बहन बेटी है जमाई ने ले जावा एक दो कोई भाई संस्कार में वे भी ना ले जावा कमो कम चार पांच जना जान वटे स्नान करने आवा और पचान पुष्कर जावा पुष्कर में आन माँ पिंडदान करा पिंडदान करने वटो पुष्कर एक जारी लेनी पड़े माने
1: पुष्कर थी अलग जारी लो एक हरिद्वार थी लो एक पुष्कर थी लो
2: ठीक है हरिद्वार में गंगा जल आया करे।
1: अच्छा
2: वहाँ जारी लान माँ अलग मिल दे पुष्कर भी जारी हुआ है प्रसाद वाट मार जब हाथ तक काम आवे गंगा
1: अच्छा अच्छा
2: क्यों गंगा जल इतना तो वितो नहीं कहीं हुआ कि वहाँ जारी मिल ही जाए जिन दिन मारा 11 दिन का पिंडियर का कार्यक्रम पूरा हो जाता
1: जी
2: 11 दिन तक मानव प्राणी एक आदमी अटे रही
1: दूसरा सब
2: जाएगा दो जो जाए कोई कटे काम काज करे बाकी एक जो रहे वेला
1: वो
2: रोज सुबह पिंडदान करेला
1: पिंडदान मतलब का विधि करे
2: विधि का ही है इनमें ब्राह्मण आया करे।
1: अच्छा।
2: कटे ब्राह्मण नहीं आता तो माना खुद ही जाता रहे ब्राह्मण जो जाने वे का ही है कि जैसे आज एक दूजे तीजे दिन पिंड चालू हुए तो अलग अलग टाइप रहा अलग अलग पिंड भी करे नमियार हो वे कोई उड़द्रो पिंड वे कोई जोरो पिंड वे
1: अलग अलग अनाज रो वे वो
2: अलग अलग राजरा पिंड भी करे और इन माते सुपारी कच्चो वस्त्र जो सूत किया करे और दूध दही शहद और आपरा कंको तिलक अबीर गुलाल ये सब चंदन वंदन लगा और पिंड ने बड़ा यूं पंडित जिन हिसाबों माने काम करावे जिन हिसाबों काम कर और विन पिंडा ने पाचो कर ने कोवंश देनो पड़े और दे दुआ और देने करो 11 दिन तक काम हाल है
1: 11 दिन हुआ
2: नमिया दिन मारो एक काम वे है
1: नमिया दिन माथो धोवे
2: और नमियारे दिन ही मारे कहीं वे एक प्रकार रो खानो यूं तो मारे जिन घर में मौत वे अगर जवान मौत है तो छोटा बच्चा ने जो दूध वे कहीं चीज दे दे वहां पीवाने और बड़ा है
1: जी।
2: तो बिना खानो बचारो बिन घर चालू भी जाए जो 12वें दिन तक बिना खानो बटे हुए ला
1: छोटा बच्चा बटे खाए 12 दिन तक खाए
2: संपन्न है मानो घर कोई तो आपरो पूरो कुटुंब खिला के
1: कहनी कौन देखो कि नमियादन लोग कढ़ाई चढ़ावे मतलब मीठा मीठा ही बनावे कोई हलवा बनावे जोधपुर में मुँह भाली हो आपने तो रिवाज नहीं
2: माना एड़ो नंबर दिन एड़ो कहीं नहीं भी तो
1: जी।
2: एक चीज जरूर वे है के जड़ो में आपने पहले अर्ज करे के देश जोड़ो वेश
1: ठीक ठीक
2: जोधपुर में ज्यादातर पुष्कर ब्राह्मण और जमगढ़ ज्यादा है
1: अच्छा।
2: तो पुष्कर ब्राह्मण में कहीं वे है कि जेटे मौत वे बिंदु नुविनारी बहन बेटिया ने अलग अलग वेरायटी का व्यंजन बना खिलाया जाए ताकि विन प्रेत ने मिले
1: तो आप बन आत्मा ने प्रेत क्यों को वाते एक शुद्ध आत्मा हुई
2: आत्मा शुद्ध थी लेकिन 11 दिन तक जटा होदी विनो बार बार मोक्ष नहीं हुआ और प्रेत आत्मा में जुलिया करे
1: 12वें दिन वा एक पवित्र आत्मा बने
2: आत्मा विलीन विजय करे
1: अच्छा
2: आपरो कोई भी नयो घर ढूंढ ले
1: ठीक है
2: हमारी पगड़ी रसम नहीं हुए विनो उत्तराधिकारी नहीं बैठे जीते वे आत्मा दे के हमारी जगह खाली है
1: चल आप गंगा जल लेने आया हरिद्वार जाना आया तो अन्य बाद में आप का रस्म करो हरिद्वार मतलब कोई तो गंगा जल काटे जोरदार ठीक है तो आप समाज रे में गंगा जल निकालो
2: बोल मैं आपने अर्ज करूं
1: जी
2: के चौथे या पांचवें दिन में गंगा जी और पुष्कर जाना जावा
1: ठीक है
2: कुछ समाज में तो कहीं है कि बकायदा विनी दिन वदन मंदिर में मिले
1: पहला दिन लाओ जंदनीश
2: लेकिन माने ऐसी भ्रांति है कि माना वेद पुराण हुआ कहे कि भाई जटावधि प्रेत रो वास होवे वो शुभ कार्य ढोल बजाने जिन दिन तो ढोल बजा रहे आते विदा क्रिया करा जिन्हें हरिद्वार भेजा गीत वीत गाता भी जावे
1: ठीक है
2: अबे लान मिंदर में मेल दा तालार में सुबह 11वां रो क्रियाक्रम रो वे पिंडदान वगैरह वे सारे क्रियाक्रम रो काम पूरो हो गयो
1: 11वां दिन रो मतलब हवन वे वंदन हवन करें अन्न बाद में 11वां दिन रो फंक्शन पूरो वे जाए
2: आपने बताऊ 11वें दिन हवन नहीं वे तो सुबह
1: अच्छा नहीं करता
2: खाली पिंडदान विया करे और घट खोलिया करे जो तीजा रो घट बंद है
1: हाँ, हाँ, वो खोल।
2: विन खोलना पड़े विन में दूध दही शहद वहद रोज नित डालना पड़े विन में एक छेद करियो जाए जिन्हें डाब बांधी जाए
1: डाब
2: कुशा सबसे पवित्र होती है डाब रे हाथ है एक हूतरी डोरी बांधी जाए जिन्होंने ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप पीपल जल में पानी टपकड़ो पड़ते रहे ताकि विन पेतरी आत्मा ने पानी मिले पेतरी आत्मा ने पानी मिल जाए अबे वो बटे मंदिर में मेल दियो अबे जब क्रियाक्रम पूरी हो जावेला तो शाम रखा वही पगड़ी रसम भेजाला
1: जी गंगा जल रे पहला आप पगड़ी रसम करो
2: अगर शुद्धिकरण घर में नहीं है तो अपन गंगा जल के लावाला
1: तो चलो उठाना पहला भेजा एक तरह
2: बारमो पहला भेजाणो सीजे हमें कहा है कि लोग बारमो खानो नहीं खाता है
1: मरती भोज बंद है
3: हाँ तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य है जो अपने समाज रीति रिवाज बता रही है और भी आप उन्होंने समाज रीति रिवाज जोड़ोला परवंती पहला एक छोटो सो ब्रेक लो हो ब्रेक रे बाद में फिर आपो उन्होंने समाज रीति रिवाज जानोला आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो

0: से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: ब्रेक के बाद में अपना समाज कार्यक्रम रामायण रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोता और स्वागत है ना अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य है और भी स्वागत है।
4: आपरे समाज में मृत्यु भोज बंद है?
5: बंद है सब,
4: ठीक है।
6: बहुत जद कम कटे गए भूले चुके, एक दो घर करता वेला।
7: पहला 3 दिन खानो वेतो तो हाँ। हमें 3 दिन नो खानो नहीं वेतो।
4: पहला 3 दिन की कन करता, बार बार 3 दिन
7: वेतो तो
6: इन मैं खीर चूरमो साग पूरी और घेवर बिया करता था।
4: पहला करता
7: 11-12 दिन सुबह
4: हमें आपरे गंगा जल करो तो का रिवाज, मतलब बताओ गंगा जल वदावे लाओ धाम धूम थी
6: सामरा सज्जा दान हो जाए के तो दूजे दिन 13 दिन सुबह सुबह पंडित आ जावेला बकायदा एक कोरी माट के फोड़ ने कुंडो बनाया जाए जिनमें कंडा जली और कंडा जला और मिंदर आपरा और गंगा जारी ने लेवाला पूजा रहते है बकायदा भी ने चुनरी ओढ़ाई जावेला और कुछ लोग यहाँ गंगा जल उठाई जो लोग उठावे और बहुत सी जगह तो कहा गंगा जल बदा वैसा तो रेजा बिछाया जाए नाड़े री बोरिया रखी जाए तैयार।
4: अच्छा।
6: और गंगा जल लेन आलरा
4: जी।
6: और कई यार लोग बदन में गंगा जल प्रवेश हुए कई जगह में ऊबा माँ देखिया तो लोग क्या वो तो आडम्बर है। मैंने अच्छे तरह याद है खिवाड़ा गांव में एक बढ़ियों लिखियो लेक्चर रूबो तो या हेड मास्टर भाई वो भी ने मिच्छा कह रही हो तो वो हाँ। मैंने भाई
4: हाँ।
6: तू भी मेरी जात का मैं भी थारी जात रहा हूँ
4: हाँ।
6: मैं थोनो दोनों एक ही जात रहा हाँ। मैं तू थारा यूं देख लियो लेकिन तू इन्हें अगर थारे में हिम्मत वे
4: हाँ।
6: तो इन भाई ने पकड़ने बता दे थोड़ा पकड़ने थोड़ा 4 कदम आगे खींच ले तू बोले हाँ खींच लो मैं खींच बिना आप अपना थोड़ा ज्यादा दिमाग तो वो खेचवा गियो का वो भाई भी ने 10 कदम पाजी लेन की परी और वो छोरी री उम्र कितनी 9-10 वर्ष रही।
4: गंगा माई री कृपा है तो ठीक है चलो तो गंगा जल काढ़ो ठीक है गंगा जल री प्रसादी करो जो की कण एक टाइम करो। पहला जमाना में देखते हो मतलब मनक टूट जाता पियोती मतलब 3-3 दिन 4-4 दिन खाना वे तो अन मतलब खूब सारा जो आपरा पट्टारा मनक वेता वन गोमोरा मनक आन वन फंक्शन में 12 दिन गंगा जल रन फंक्शन में मतलब भोजन करता तो गंगा जल रहा आप रहा कतरो मोटो खर्चो है
6: हमेशा यूं है कि अगर हमारे खर्चवारी हिम्मत

0: थे जिन शख्स ने वो आप रो सुबह लगा 12-11 बजे खानो चालू हो जाए और शाम तक तो 3-4 बजे तक खानो हालतो ही रहे। लेकिन आदमी कहीं है कि यथाशक्ति खान मनावेला पहला कुछ भाई बंदारो प्रेस भैया करते तो कि मारा बड़ेरा साथ मिठाई बनाई तो साथ मिठाई तू भी बना,
1: मतलब एक रिवाज तो
0: मारा देसी घेरी लापसी बनी तो मैं कोरी लापसी बना पर देसी घेरी बना। अब वो बातें खत्म हो गई सब। आप मैं कहीं है कि जो जिन्हें घेरी हिम्मत वेला वेड़ो बनाने और वो खिलावेला और समाज रा सब बंधुआ ने खानो पड़ेला।
1: मतलब आप के बारे मतलब है जेरी श्रद्धा में वेरो करे समाज रो कोई बंदिश नहीं है और मतलब हर तरह का खर्चा ती कम करवा की कोशिश आप समाज करे रही है।
0: मैं वही सोच रही हूं कि व्यर्थ रो खर्च करिया हूं अच्छो है कि इन पया ने कोई अच्छा कार्य में लगावा
1: जी,
0: बच्चों ने पढ़ावा रेवार वासे ढंगसर कोई मकान बनाने बनान दा तो कम कम बनाने जेड़ो वातावरण में रही जेड़ी बुद्धि भी तो विकास करी के नहीं करी। एक गाय पैसा बंद रही है गोबर पड़ियो है आदमी बटे बैठने रोटी जिम रही है तो पेटरी भूख तो शांत हो ही रही है लेकिन विन में केड़ो वेला बैस भी पूछरो फेंक रही है। तो आज अगर शुद्ध जगह बैठने अगर कोई खानो खावेला तो विन आत्मा ने शुद्ध वेला
1: के आपरो के बारे मतलब सफाई रखनी जरूरी है। सरकार रो भी आज प्रयास है भाई स्वच्छता अभियान है तो साफ सफाई आपो चटे रहो उन एरिया तो साफ सफाई करनी रखनी जरूरी है।
0: मैं आपने बताऊं कि अभी ज्यादा खर्च तो नहीं करा पर 2-3 प्रकार की मिठाई पूरी साग और गर्मी री सीजन वे
1: जी
0: तो भोजन ने 2 प्रकारों में मान्यता दी गई है कि अगर रायतो वे तो भोजन खाए रहे बाद पचनो भी जरूरी हो जाए और रायता में कहीं हुए कि जायको बदल जाए तो वो बूंदी रो रायतो व्या करे जो भोजन रहते बाद में गर्मी हुए तो सर्दी रे मैं रायतो नहीं देता।
1: चलो ठीक है
0: 2-3 मिठाई और साग पूड़ी और दे और पचे आप शक्ति बहन बेटी ने दे और विनय गंगा जी ने गंगा जी दे और अगर कोई कोई में हिम्मत है तो कोई लोटो बांटे कोई बर्तन बांटे कोई कहीं भी दे
1: जी।
0: लेकिन कमो कम छोटो में छोटो कोई भी उपहार दे और विनय ने आज जोड़ने विदा कर।
2: हाँ तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य है जो अपने समाज रीति रिवाज बता रही है और भी आप समाज रीति रिवाज जोड़ोला पर रणती पहला एक छोटो सो ब्रेक लो हो ब्रेक रे बाद में फिर आपो अनोर समाज रीति रिवाज जानोला। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: ब्रेक के बाद में अपना समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोताओं का स्वागत है ना अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य है और भी स्वागत है
2: मारा आपरो कहनो है कि आप आज अतरा बर्तन बांटो भले 50 आओ 100 आओ 200 मन का सब ने एक एक लैंड बांटो तो लैंड में कतरो खर्चो वे अगर ओस खर्चो आप कोई गौशाला जान गाय ना घास डाली वे तो मरवा वाला ने आत्मा ने शांति मिले वो एक धर्म वे
3: मैं आपरी बात रो पूर्णतः समर्थन करूं लेकिन एक चीज है कि जट एक छोटी सी बात थी कि ज्यादा तो ज्यादा विया करे
2: जी।
3: समाज समाज विया करे
2: जी जी।
3: अब मैं हमारे वडेरा कोई दूजा बांटिया मैं नहीं बांटू तो मैंने कहीं गई अरे थाने चार पैया कमान मन करियो ना आज थाने वाटवा ला रहा कहीं मिलियो को नहीं कहीं
2: अच्छा मतलब समाज रहे कहना रहे प्रो अन वास्ते वन कहना ने टालवा वास्ते एक लैंड बांटो आप
3: एक विनो दूजो अर्थ वो है कि वो एक भेंट छोटी सी विनो जिन घर में जाए
2: तो वह यादगिरी है
3: वह एक यादगिरी बन जाए कि भाई फलाना रवटे गया था माने गंगा प्रसादी में वो थान मिली तो
2: श्रोता बंधुओं और समाज रीति रिवाज मतलब बिल्कुल सिंपल है सादा है मतलब मृत्यु व्योज नहीं करता है गंगा प्रसादी भी करे बीजा समाज में देखो आप खूब पिया खर्च हुए पर अनोर समाज में गंगा प्रसादी में भी कोई खर्च नहीं है बालिका शिक्षा ने अनोर समाज में खूब महत्व दे रहा है बच्चियों ने बढ़ावनी का अनोर कहना है कि अगर बच्ची नहीं वही तो संसार में उत्पत्ति की गण वही बच्ची है तो सब कुछ है दुनिया में तो एक नारी रो खूब महत्व है अनोर समाज में और आचार्य समाज में सबसे मोटा अनोर कौम है तो पहला पिंडदान कराना बीजी पूजा है कम करावता पिंडदान ज्यादा करावता और अन्य अलावा हमें अपने मेहमान ने पूछो हो कि आपने आज रेडियो ऊपर अतरा मनक होने रिया है तो आप रुक का संदेश है रेडियो रा लिस्नर वास्ते
3: मारो सब भाया ने हाथ जोड़ने वही संदेश है कि सबसे पहले संदेश तो मारी जाति समाज ने मैं कहना चाहूँ कि कम से कम अपना आपने सुधारो रूढ़िवादिता छोड़ो बच्चिया ने पढ़ाओ योग मनाओ अमुक अमुक क्षेत्र में बच्चिया ने पया खान देवो हो वो कलंक रो काम आप बंद करो आपने घर में वे तो लड़की ने कहीं दो नहीं वे तो कोई जरूरी नहीं है हाथ जोड़ने विदा करो नंबर दो जटे आप कोई भी कर्म कराओ हो भगवान ने हाजिर नाजिर मानने और आप नियमों कराओ और जुजमान ने मत कहो कि तुमने इतो दे नहीं अगला रे घरे प्राणी मौत भी है विनी आत्मा तो यूं बड़ी उड़ी है तो फालतू भी नहीं बर्बाद करना दूसरी समाज ने मारा वही अर्ज है आप लोगों ने और दूजा अर्ज वही करूँगा कि जितनी ज्यादा हो सके भ्रूण हत्याओं को प्रतिबंध दो और अगर कोई करता है तो उसे भी ने कोई करवा की कोशिश ही करे तो बाकायदा कानूनी मदद देने ने बंद करो नंबर दो बच्चिया ने खूब पढ़ाओ नंबर तीन बच्चिया ने स्वास्थ्य रो पूरा ध्यान रखो ताकि उन्हें स्वास्थ्य अच्छा वेला वे अगर बच्चिया शादी करने भी जाएगा संतान उत्पत्ति भी बना रही अच्छी वेला बाल विवाह ने बिल्कुल बंद करवा की कोशिश करनी सही है क्योंकि लोग बाल विवाह वाला जो है कोई खर्चा रहे भूखा है कोई किक नहीं करे कई समाज ऐडा है कई घर ऐडा जिन्हें लड़कियां नहीं मिलती तो वे अमुक रुपये दे दुआ लड़कियां खरीद लिया करे वे बाल विवाह करे भी बच्ची की भ्रूण हत्या प्रकार ही एक प्रकार रहे कम उम्र में भी ने जच्चा बहनो कम उम्र में भी ने घरे कार्य करवाणो एक प्रकार वो सजा देनी है तो इन ज्यादा सजा आप कहड़ी दे आप अपने पेट की बच्ची ने गलत तरीका ले जा रही हो
2: चलो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान किशोरी लाल जी आचार्य आज अपने समाज रीति रिवाज बताया और बहुत ही अच्छा लगा और संदेश भी एक बाल विवाह नहीं करना है कन्या भ्रूण हत्या अनिने भी नहीं करनी है अन्य अलावा बच्चियों ने खूब शिक्षा दो और मृत्यु भोज है ये जो समाज में कुरूतियाँ हैं उन्होंने कम करो वही अनोर संदेश है तो श्रोता बंधु हमें आप अपने मेहमान ने विदाई दो हूँ और मुकेशी जिनकर अपनी वाणी ने विराम दे हूँ आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनता रहो मुस्कराता रहो

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: सबके पास लुक्स है, ब्राइट स्किन टोन है।
1: ज्योति के डार्क स्किन टोन की वजह से उसके फ्रेंड्स हमेशा उसका मजाक बनाते और वो दुखी हो जाती थी।
0: मैं ऐसी क्यों नहीं हूं?
2: ज्योति चल यार, लोगों की बातों को इतना भी दिल पे नहीं लेना चाहिए।
1: ज्योति अपनी दोस्त की बात से खुश हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका फ्रेंड्स ग्रुप दोबारा देखता है और उसे देख जोर से हंसते हैं और ज्योति फिर से नाराज हो जाती है। ये समस्या सिर्फ ज्योति की नहीं है। जैसे ज्योति का स्किन टोन डार्क है, वैसे ही हम सब के शरीर में कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या होती है। किसी के कम उम्र में ही बाल सफेद हो गए हैं, या कोई गंजा है, कोई जरूरत से ज्यादा लंबा है, तो किसी की हाइट बहुत ही कम है, कोई अपने वेट से परेशान है, और इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी बीमारियों से लोग परेशान होते हैं। देखा जाए तो आज के समय में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है।
3: You are precious just the way you are. It is more important how you see yourself than what others think. Har insaan ki apni khasiyat hoti hai. You have a lot that makes you special. Learn to accept and love yourself.
1: क्योंकि ये हमारा कलयुग का शरीर है, जिसे हमने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर पाया है। इसीलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग आत्मा है। इसे आत्मिक स्मृति या सोल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। जब हम खुद को शरीर से अलग आत्मा महसूस करते हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी कुछ भी कहे, हमें बुरा नहीं लगता। यहाँ तक कि शरीर की बीमारियां भी हमें दर्द का एहसास नहीं कराती। ये एक बहुत ऊंची अवस्था है, जिससे हम शरीर के भान को भूल जाते हैं। आइए अब समझते हैं हाउ टू प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस। हमें खुद को चलते फिरते या दिन भर के काम करते समय बीच बीच में याद दिलाना होगा। क्या याद दिलाना होगा?
4: विजुअलाइज योर लिटिल पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड।
1: ये लाइट मैं हूँ। परमात्मा से मुझ आत्मा में शक्ति भर रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। इस तरह जब हम भगवान को याद करते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और समस्याएं छोटी लगने लगती है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें हमेशा स्टेबल और पावरफुल बनाए रखेगी। चेंज योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी टू सोल एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम सोल टू अनलॉक योर ट्रू स्ट्रेंथ एंड पावर।

0: नमस्ते दोस्तों, जब भी आस पड़ोस में हमें दावत पर बुलाया जाता है, चाहे मौका कुछ भी हो, मजा कुछ और ही हो जाता है ना। तरह तरह के ताजा पकवान, सोचते सोचते ही मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मीना की सहेली बेला के घर भी बहुत जल्द दावत होने वाली है। अरे वो देखो, मीना बेला के घर के पास से गुजर रही है, चलो हम भी चले।
1: अरे बेला दीदी, तुम्हारा घर तो बिल्कुल नया नया सा लग रहा
2: है ना मीना? हमने अभी अभी अपने घर की मरम्मत करवाई है।
1: अच्छा?
2: हाँ।
3: अरे मीना, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई।
1: नमस्ते चाचा जी।
3: खुश रहो बेटी, हम तुम्हें कल शाम अपने घर दावत पर बुलाने ही वाले थे।
1: दावत?
2: हाँ पिताजी, मीना को भी दावत के बारे में बताओ ना।
3: हाँ मीना बेटी, दावत देने के दो कारण हैं। एक तो हमारे घर की मरम्मत भी पूरी हो गई है, और 3 दिन खराब रहने के बाद अब मेरा पेट भी दुरुस्त है।
4: मेरा पेट भी दुरुस्त है, बुम्बाराम चाचा स्वस्थ है।
3: जरूर आना मीना।
1: जी मैं जरूर आऊंगी।
5: बेला के पिताजी सुनते हो, ये खिड़की बंद ही नहीं हो रही।
3: अरे क्यों परेशान हो रही हो बेला की माँ? पूरा घर इतना आलीशान लग रहा है, एक खिड़की से क्या फर्क पड़ता है।
1: अच्छा बेला दीदी, मैं चलती हूँ।
2: कल शाम को जरूर आना मीना।
1: जरूर आऊंगी,
4: जरूर आऊंगी, हलवा पूरी खाऊंगी।
0: अगली शाम जब दावत का वक्त आया, तो पोंगा राम के यहाँ गांव के कई लोग इकट्ठे हुए। भला हमारी मीना और मिट्टू कैसे पीछे रहते, वो भी दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँच गए।
1: वाह बेला दीदी, रसोई से क्या खुशबू आ रही है।
2: हाँ मीना, माँ सुबह से तरह तरह के पकवान बना रही है।
1: बेला दीदी, मैं रसोई में देख के आती हूँ कि चाची क्या क्या बना रही है।
2: हाँ, तब तक मैं बाकी मेहमानों को देखती हूँ।
0: मीना ताज़ा पकवान की खुशबू का पीछा करते करते रसोई तक पहुँच तो गई, और वहाँ पहुँच कर उसे तरह तरह के पकवान भी दिखे, लेकिन उन्हीं पकवानों पर दिखी ढेर सारी मक्खियाँ।
1: अरे चाची, खाने पर इतनी सारी मक्खियाँ।
2: क्या करूँ मीना, मैं कब से बेला के पिताजी को बोल रही हूँ कि इस खिड़की की मरम्मत करवा लें। देखो ना, ये खिड़की बंद ही नहीं हो रही, और पीछे खुला नाला भी है।
1: ओह, और खुले नाले के किनारे तो लोग शौच करते हैं, इसीलिए नाले में हमेशा गंदगी होती है, मल होता है, और इसी मल पर मक्खियाँ बैठती हैं। टीचर दीदी भी तो कहती है, जहाँ गंदगी वहाँ मक्खियाँ।
2: हाँ मीना, इस खिड़की को बंद करने की कोशिश करते करते मैं खाने को ढकना भी भूल गई। सारी मक्खियाँ इस पर आ बैठी हैं। मैं अभी ढक देती हूँ।
6: नमस्ते जी, नमस्ते।
7: नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते।
6: नमस्ते, नमस्ते।
2: ओहो, लगता है मेहमान भी आ गए हैं।
1: आप घबराइए मत, खान चाची भी आ गई हैं। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। खान चाची।
8: अरे मीना, तुम?
1: खान चाची, आपसे एक जरूरी बात करनी है।
8: क्या हुआ मीना?
1: चाची वो।
0: मीना ने खान चाची को खुले नाले और मक्खियों का किस्सा बता दिया, और वो सुनते ही खान चाची का दिमाग तुरंत चलने लगा।
8: चलो पहले मैं रसोई का हाल देख लेती हूँ।
3: अरे बेला की अम्मा, मेहमानों के लिए खाने पीने का सामान तो ले आओ।
8: अब मैं क्या करूँ खान जी? जी घबराओ नहीं बेला की माँ, पकवान बाहर ले जाओ।
2: क्या कह रही हो जीजी, इन पर तो मक्खियाँ बैठी हुई है।
8: तुम फिक्र मत करो, जब पोंगाराम भैया को ये मक्खियाँ दिखेंगी तो उन्हें सब पता चल जाएगा।
0: बेला की माँ पकवान लेकर मेहमानों के सामने पहुँची। जैसे ही मेहमानों ने पकवान पर बैठी मक्खियाँ देखी, वो सब चौंक गए।
3: बेला की माँ, अरे देख क्या रही हो, ये गर्मा गर्म समोसे दो सबको। लो भाई भोला राम।
9: नहीं पोंगाराम जी।
3: क्यों भाई, देखो कैसे गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं बेला की अम्मा ने। खाओ खाओ।
9: नहीं पोंगाराम भैया, इन समोसों पर मक्खियाँ बैठी हैं, न जाने कैसी कैसी गंदगी वाली जगह से आई होंगी। मक्खियाँ तो बैठती ही मल और गंदगी पर हैं। छी छी,
3: क्या बात करते हो भोला राम। दीपू बेटा, तुम तो खाओ।
10: नहीं चाचा, हमें स्कूल में भी बहन जी ने यही बताया है कि मक्खियाँ मल पर बैठ जाती हैं
4: और फिर हर जगह कीटाणु फैलाती है।
3: क्या बोल रहे हो दीपू, ये सब पकवान मेरी साफ सुथरी रसोई में बने हैं, शौचालय में नहीं।
10: पर इन पर तो कितनी सारी मक्खियाँ बैठी हैं।
3: छोटी सी मक्खियाँ ही तो हैं। तुम्हें इन पर कहीं कीटाणु दिखे?
8: कीटाणु नजर नहीं आते भाई साहब, लेकिन
0: लेकिन खान दीदी कुछ ही मक्खियों से।
8: बात तो सुनो भाई साहब, एक छोटी सी मक्खी भी न जाने कितने कीटाणु लेकर घूमती है। एक भी मक्खी अगर किसी खाने की चीज पर बैठ गई और हमने उस चीज को खा लिया तो तबीयत खराब हो जाती है, जैसा कि तुम कुछ ही दिनों पहले बीमार पड़ गए थे।
3: पर हमारे घर में मक्खियाँ आ कहाँ से रही हैं?
1: खुले नाले से।
10: ओह, मतलब हमारे घर की रसोई के पीछे वाले खुले नाले से, है ना मीना?
1: हाँ बेला दीदी, जहाँ भी गंदगी होती है वहाँ मक्खियाँ जरूर होती हैं।
2: बेला के पिताजी, मैं तभी तो आपसे कह रही थी खिड़की की भी मरम्मत करवा लो।
3: तुम ठीक कहती हो बेला की अम्मा, काश मैं ये सब पहले ही समझ गया होता। मैं अभी खिड़की ठीक करवाता हूँ और सरपंच जी से बात करके उस खुले नाले को भी बंद करवाता हूँ, ताकि ये कीटाणु फैलाने वाली मक्खियाँ घरों के अंदर ना आए।
8: पर अब हमारे मेहमान खाएंगे क्या?
4: मेहमान खाएंगे क्या? खाली पेट वापस जाएंगे क्या?
8: तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं तुम्हारे इस मरम्मत करे हुए घर में पहली बार आई हूँ ना, इसलिए अपने साथ खूब सारे समोसे और मिठाइयाँ लाई हूँ, सब बांटकर खा लेंगे।
3: बहुत बहुत शुक्रिया खान दीदी। और मीना, अब जब नाला बंद हो जाएगा और रसोई की खिड़की की भी मरम्मत हो जाएगी तो फिर से आना दावत पर।
1: और इस बार दावत पर मक्खियों को नहीं बुलाएंगे।
4: मक्खियों को नहीं बुलाएंगे, पोंगाराम चाचा दावत खिलाएंगे।
0: तो देखा आपने दोस्तों, एक मक्खी काफी है बहुत सारे कीटाणु फैलाने के लिए। और पकवानों की बात करते करते तो मेरे मुंह में पानी आ गया, आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, है ना? चलो अब देखें ये मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं।
1: जहाँ गंदगी वहाँ मक्खियाँ, इनकी आदत यही।
4: बैठे खाने पर जहाँ फैलाए कीटाणु वहीं।
0: भाई वाह, क्या मजेदार कविता बनाई है मीना और मिट्ठू ने। अब एक गाना भी हो जाए।

0: गाना तो मजेदार था। अब जल्दी चलो, मीना की बहन जी आज क्लास में एक और मजेदार खेल खिलाने वाली है। चलो हम भी दिखाएं।
1: चलो बच्चों, आज खेलते हैं अक्षरों की अंताक्षरी। मैं एक शब्द बोलूंगी और तुम उस शब्द के हर अक्षर से एक नया शब्द बनाना, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो आज का शब्द है सुराही।
3: बहन जी, सुराही का पहला अक्षर है स, और स से होता है सूरजमुखी।
1: सही जवाब सोमा, हाजिर जवाब, क्या बात है। स से सूरजमुखी। और पता है बच्चों, जैसे जैसे सूरज की दिशा आसमान में बदलती है, वैसे वैसे सूरजमुखी का फूल उसकी तरफ मुड़ता रहता है। अब दूसरे अक्षर से नया शब्द कौन बनाएगा?
4: बहन जी, सुराही का दूसरा अक्षर है र, और र से होता है रेगिस्तान।
1: बिल्कुल सही कहा सुमी, र से रेगिस्तान, जहाँ होती है रेत ही रेत।
5: और बहन जी, ऊंट भी है ना?
1: शाबाश दीपू, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अब तो बस एक ही अक्षर बचा है,
4: और वो अक्षर है ह। ह से होता है हस्ताक्षर।
1: बिल्कुल सही मीना, ह से हस्ताक्षर, यानी अपने हाथों से अपना नाम लिखना। हस्ताक्षर हमारी पहचान का हिस्सा होता है।
4: जैसे आप हमारी कॉपी में हस्ताक्षर करती हैं, है ना बहन जी?
1: हाँ मीना। तो बच्चों, आया ना मजा?
2: बहुत मजा।
0: और मजा तो हम सबको भी आया, है ना? फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कॉमिक चीकू।
1: कहीं कोई हलवा पका रहा है।
2: हाँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है। मेरा मन तो हलवा खाने का कर रहा है।
1: लालच मत कर।
0: चलते चलते मिल्कू को पत्थर से ठोकर लग गई।
2: मोच आ गई।
1: देखकर चला कर, बिट्टू के घर चल, उसके पास कोई दवाई जरूर होगी।
0: दोनों बिट्टू के घर आए।
1: आंटी, आपके पास कोई दवाई है क्या? मिक्कू के पैर में मोच आ गई है।
3: अभी देती हूँ, तुम दोनों थोड़ी देर इस छोटू को देखो, मैं दुकान से आती हूँ।
1: आप चिंता मत कीजिए आंटी, जाइए।
0: आंटी छोटू को छोड़कर दुकान चली गई।
1: अरे ले ले ले, रो मत रो।
2: अरे यार, ये तो रो रहा है।
0: उसी समय हाथ में केले लेकर बिट्टू आ गया।
4: अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
1: एक केला तो दे दो, तेरे भाई को चुप कराना है।
2: अरे देखो, केला मिलते ही चुप हो गया।
0: उसी समय आंटी आ गई।
3: तुम सभी बैठो, मैं अभी सबके लिए हलवा बनाती हूँ।
0: और सभी दोस्तों ने मिलकर खूब मजे से हलवा खाया।

0: तो बच्चों सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय। रोहित तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों मानसिक रूप से रोहित हम सबकी तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 3 ज्ञान प्राप्ति, पृष्ठ संख्या 40। ज्ञान प्राप्ति दर्शन परिचर्चा। शांति प्रिय अराड़ मणि के आश्रम में राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे उनकी शरीर की आभा से सारा आश्रम प्रकाशित हो गया हो। मुनि अराड़ ने दूर से ही राजकुमार को देख लिया और उच्च स्वर में कहा, स्वागत है, आइए। राजकुमार धीरे धीरे उनके पास आए। दोनों ने विधिपूर्वक एक दूसरे का अभिनंदन अभिवादन किया, कुशल क्षेम पूछा और फिर मृग चर्म बिछी दो चौकियों पर दोनों बैठ गए। मुनि ने राजकुमार को निहारते हुए स्नेहपूर्वक कहा, हे सौम्य, मुझे पता चला है कि आप सभी स्नेह बंधनों को तोड़कर घर से निकल आए हैं। आपका मन सब प्रकार से धैर्यवान है, आप ज्ञानी हैं, तभी तो राजलक्ष्मी को त्याग कर यहां आए हैं। वैसे राजा लोग भोगी हुई राजलक्ष्मी को अपनी संतान को सौंप कर ही वन में आते रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि आप विषयों के बीच रहते हुए युवावस्था में ही लक्ष्मी को बिना भोगे ही यहां आ गए हैं। इस धर्म को जानने के लिए आप श्रेष्ठ पात्र हैं। आप ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर दुख रूपी सागर को पार कीजिए। यद्यपि शिष्य को अच्छी तरह जानकर ही उचित समय पर शास्त्र ज्ञान दिया जाता है, परंतु आपकी गंभीरता और संकल्प को देखकर मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा। अराड़ मुनि के ये शब्द सुनकर कुमार परिव्राजक अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, आप जैसे विरक्त की यह अनुकूलता देखकर मैं कृतार्थ हो गया हूं। जैसे देखने की इच्छा वाला प्रकाश को, यात्रा की इच्छा वाला पथ प्रदर्शक को और नदी पार जाने की इच्छा वाला नौका को देखता है, वैसे ही मैं आपको देख रहा हूं। यदि आप उचित समझें तो मुझे जरा और मृत्यु के रोग से मुक्त होने का उपाय बताइए। अराड़ मुनि ने कुमार से कहा, हे श्रोताओं में श्रेष्ठ, पहले आप हमारा सिद्धांत सुनिए और समझिए कि यह संसार जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में चलता रहता है। पृष्ठ संख्या 41। हे मोह मुक्त, आलस्य अंधकार है, जन्म मृत्यु मोह है, काम महामोह है और क्रोध तथा विषाद भी अंधकार है। इन्हीं पांचों को अविद्या कहते हैं और इन्हीं में फंसकर व्यक्ति पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। इस प्रकार आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त कर आवागमन से मुक्त होती है और अक्षय पद अमरत्व को प्राप्त करता है। अराड़ मुनि से यह तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कुमार ने अक्षय पद प्राप्त करने के उपाय पूछे। तब उन्होंने अनेक उपाय बताए और अंत में कहा, यदि आप संतुष्ट हों और उचित समझें तो इनका अनुपालन कीजिए, क्योंकि इन्हीं सिद्धांत का अनुसरण करके प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। अराड मुनि के प्रवचन सुनकर कुमार ने कहा, हे मुनि, मैंने आपसे उत्तरोत्तर कल्याणकारी मार्ग सुना, किंतु मैं इसे मोक्ष नहीं मान सकता। आत्मा के अस्तित्व को मानने पर अहंकार के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है। मुझे आपकी ये बातें स्वीकार नहीं है। अराड मुनि के सिद्धांतों को सुनने के बाद भी कुमार को संतोष नहीं हुआ, अतः यह धर्म अधूरा है ऐसा मानकर वे उस आश्रम से निकल गए और अपने लक्ष्य की खोज में आगे बढ़ गए। अराड मुनि के आश्रम से निकलकर कुमार उद्रक ऋषि के आश्रम में आए। वहां भी आत्मा की सत्ता के विचार जानकर उन्हें संतोष नहीं हुआ, अतः परम पद पाने की इच्छा से उन्होंने उद्रक ऋषि का आश्रम भी छोड़ दिया और धीरे धीरे वे राजश्री गय के नगरी नामक आश्रम में गए। कुछ समय के बाद बोधिसत्व कुमार को एकांत विहार की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने नए रंजना नदी के तट पर निवास किया। वहां उन्होंने 5 भिक्षुओं को देखा जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और वहीं रहकर तपस्या कर रहे थे। उन भिक्षुओं ने जब इस नवागत साधु को देखा तो वे उनके निकट आए और उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद जन्म और मृत्यु का अंत करने के उपाय के रूप में बोधिसत्व ने निराहार रहकर कठोर तप प्रारंभ किया। वहां उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तप किया और अनेक उपवास व्रत किए। कठोर तपस्या के कारण वे कृशकाय हो गए। वे भोजन के रूप में कभी एक बेर, कभी एक तिल, कभी एक तंडुल यानी चावल का सेवन करते थे। इस कठोर तपस्या के कारण जैसे जैसे उनका शरीर कृश होता जाता था, उनके मुखमंडल का तेज बढ़ता जाता था। मैदा, मांस और रक्त से रहित और मात्र त्वचा और अस्थि वाला उनका शरीर फिर भी समुद्र के समान भरा भरा सा लगता था। पृष्ठ संख्या 42। कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस प्रकार की कठोर तपस्या से व्यर्थ ही शरीर को कष्ट होता है। यह तापस धर्म न वैराग्य दे पाता है, न बोध, न मुक्ति। उन्हें ऐसी अनुभूति भी हुई कि दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता, अतः वे शरीर बल वृद्धि के विषय में विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, भूख, प्यास और श्रम से अस्वस्थ मन के द्वारा मोक्ष भला कैसे प्राप्त हो सकता है। उन्हें लगा कि आहार तृप्ति से ही मानसिक शक्ति मिलती है, स्थिर और प्रसन्न मन ही समाधि पा सकता है तथा समाधि युक्त चित्त वाला व्यक्ति ही ध्यान योग कर सकता है। ध्यान योग के सिद्ध हो जाने के बाद साधक उस धर्म को प्राप्त करता है जिससे उसे दुर्लभ, शांत, अजर अमर पद प्राप्त होता है। उन्हें लगा कि मुक्ति का उपाय आहार पर ही आधारित है, अतः उन्होंने भोजन करने की इच्छा की। कठोर तपश्चर्या से बोधिसत्व अत्यंत कृशकाय और दुर्बल हो गए थे, फिर भी वे धीरे धीरे नए रंजना नदी की ओर गए, स्नान किया और तट के वृक्षों की शाखाओं का सहारा लेकर वे ऊपर आए। उसी समय निकट ही रहने वाले गोपराज की कन्या नंदबाला प्रसन्नता पूर्वक वहां आई। शंख जैसी गोरी बाहों वाली गोपबाला ने नीला वस्त्र धारण किया था और लग रही थी जैसे फेन मालाओं से युक्त यमुना प्रकट हो गई हो। नंदबाला ने पहले श्रद्धापूर्वक बोधिसत्व को प्रणाम किया और उन्हें पायस यानी खीर से परिपूर्ण पात्र प्रदान किया। इस प्रकार के सुभोज्य से तृप्त होकर उन्हें लगा कि वे अब बोधि प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। बोधिसत्व के साथ रह रहे 5 भिक्षुओं ने जब उनका यह आचरण देखा तो उन्हें लगा कि अब यह मुनि भी धर्मच्युत हो गया है, इसलिए वे उन्हें छोड़कर चले गए। उन सबके चले जाने के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और वे पास ही एक अवस्थ यानी पीपल वृक्ष के नीचे भूमि पर आसन लगाकर बैठ गए। तभी काल नामक एक सर्प प्रकट हुआ, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका था कि यह मुनि अवश्य ही बोधि प्राप्त करेगा। उसने पहले उनकी स्तुति की। काल सर्प ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों से आक्रांत होकर यह पृथ्वी बार बार डोल रही है। सूर्य के समान आपकी आभा सर्वत्र प्रकाशित है। आप अवश्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हे कमल लोचन, जिस प्रकार आकाश में नीलकंठ पक्षियों के झुंड आपकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं और मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही है, उससे लगता है कि आप अवश्य ही बुद्ध बनेंगे। पृष्ठ संख्या 43। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें नंदबाला नामक कन्या सिद्धार्थ को खीर से भरा पात्र प्रदान कर रही है। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 44। सर्प द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सिद्धार्थ ने तृण लेकर बोधि प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा की। वे महावृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मैं कृतार्थ नहीं हो जाता, इस आसन से नहीं उठूंगा। जब सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञा पूर्वक आसन लगाया तो देवता गण अत्यंत प्रसन्न हुए। सर्वत्र नीरवता छा गई। उस समय न मृग बोले न पक्षी। वे धीरे धीरे नितांत एकांत शांत वातावरण में समाधिस्थ हो गए। मार की पराजय। जब महामुनि सिद्धार्थ ने मोक्ष प्राप्ति की प्रतिज्ञा कर आसन लगाया तो सारा लोक अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सदधर्म का शत्रु मार यानी कामदेव भयभीत हो गया। उसे सामान्यतः कामदेव, चित्रायुद्ध और पुष्पशर कहा जाता है। यह काम के संचार का अधिपति है, यही मार है। उसके विभ्रम, हर्ष और दर्प नाम के तीन पुत्र हैं और अरति, प्रीति और तृष्णा नाम की तीन कन्याएं हैं। उन्होंने जब अपने पिता को भयभीत देखा तो इसका कारण जानना चाहा। मार यानी कामदेव ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बताया, देखो, इस मुनि ने प्रतिज्ञा का कवच पहनकर सत्व के धनुष पर अपनी बुद्धि के वाण चढ़ा लिए हैं। यह हमारे राज्य को जीतना चाहता है। यही मेरे दुख और भय का कारण है। यदि यह मुझे जीत लेता है और सारे संसार को मोक्ष का मार्ग बता देता है तो राज्य सूना हो जाएगा। इसलिए यह ज्ञान दृष्टि प्राप्त करे उससे पहले ही मुझे इसका व्रत भंग कर देना चाहिए। अतः मैं भी अभी अपना धनुष बाण लेकर तुम सबके साथ इस पर आक्रमण करने जा रहा हूं। इस प्रकार सारी स्थिति समझाकर मार अपने पुत्र पुत्रियों को साथ लेकर उसी अश्वत्थ वृक्ष के पास गया, जहां महामुनि समाधि लगाकर विराजमान थे। उसने पहले महामुनि को ललकारा और फिर धनुष बाण हाथ में लेकर कहा, हे मृत्यु से डरने वाले क्षत्रिय, उठो, अपने क्षत्रिय धर्म का आचरण करो, मोक्ष का संकल्प छोड़ो, शास्त्रों और यज्ञों से लोक जीतकर इंद्रपद प्राप्त करो, नहीं तो मैं अपना बाण छोड़ दूंगा। पृष्ठ संख्या 45। मार की इस चेतावनी का जब मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने अपने पुत्रों और कन्याओं को आगे भेजा और अपना बाण छोड़ दिया, परंतु इसका भी कोई प्रभाव मुनि पर नहीं हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने यही बाण शिव पर छोड़ा था तो एक बार विचलित हो गए थे, परंतु आज यह निष्फल कैसे हो गया है? क्या इस मुनि के हृदय नहीं है, अथवा यह बाण वह बाण नहीं रहा जिसने शिव को पराजित किया था। इस प्रकार सोचते हुए उसने अपनी सेना को याद किया और तत्काल उसकी विकराल सेना उपस्थित हो गई। महामुनि के चारों ओर विचित्र और भयंकर आकृति वाले जीवों की भीड़ सी लग गई। वे विविध प्रकार की रूप सज्जा धारण किए हुए थे। उनमें से कुछ त्रिशूल घुमा घुमा कर नाच रहे थे, कुछ गदा हाथ में लिए इधर उधर कूद रहे थे और सांड की तरह हुंकार रहे थे। रात्रि के प्रारंभ में ही शाक्य मुनि और मार के बीच होने वाले युद्ध के कारण सारा आकाश मलिन हो गया, पृथ्वी कांपने लगी और दिशाएं जलने लगीं। उस समय भयंकर झंझावात प्रवाहित होने लगा। आकाश में उस समय ना तारे थे और ना चंद्रमा था, चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया। इन सब के बीच शाक्य मुनि उसी प्रकार स्थिर चित्त बैठे रहे जिस प्रकार गायों के बीच में सिंह निश्चिंत भाव से बैठा रहता है। मार ने तब अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया और कहा कि महर्षि को भयभीत करो जिससे इसका ध्यान भंग हो जाए। आज्ञानुसार सभी महामुनि को डराने लगे, किंतु जैसे खेल में उत्तेजित बालकों को न व्यथा होती है न उद्वेग, वैसे ही महर्षि इन सबके भयंकर रूपों और क्रियाकलापों से न व्यथित हुए और न ही उत्तेजित। जब मार के किसी सैनिक ने अपनी आंखें तरेर कर महामुनि पर गदा से प्रहार किया तो उसका गदा सहित हाथ ही जकड़ कर रह गया। किसी ने शिला और किसी ने वृक्ष उठाकर उन पर प्रहार करना चाहा तो स्वयं ही गिर गए। किसी ने उन पर अंगारों की वर्षा की तो मुनि के मैत्री भाव के कारण वे लाल कमलों की पंखुड़ियां बनकर बरसने लगे। शाक्य मुनि अपने आसन से जरा भी विचलित नहीं हुए। इस भयंकर वातावरण से वन के पशु पक्षी आर्त नाद करने लगे। सभी भयभीत हो गए, किंतु सिद्धार्थ मार की सेना से भयभीत नहीं हुए। इस पर मार को बहुत दुख हुआ और उसे बहुत क्रोध भी आया। तभी किसी अदृश्य जीव ने आकाश से प्रकट होकर मार से कहा, तुम व्यर्थ ही क्यों परिश्रम कर रहे हो? जैसे सुमेरु पर्वत को हवा हिला नहीं सकती, वैसे ही तुम और तुम्हारे भूतगण इस महामुनि को विचलित नहीं कर सकते। चाहे अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे, चाहे जल अपना द्रवत्व त्याग दे, चाहे पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़ दे, लेकिन अपने पूर्व जनों के पुण्य प्रताप से यह मुनि अपना नहीं निश्चय छोड़ेगा। यह मुनि शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित सारे जगत का महावैद्य है। तुम इसके कार्य में विघ्न ना डालो। पृष्ठ संख्या 46। उस अदृश्य जीव ने आगे कहा, देखो क्षमा रूपी जटा, धैर्य रूपी दृढ़ मूल, चरित्र रूपी पुष्प, बुद्धि रूपी शाखा और धर्म रूपी फल देने वाला यह

वृक्ष उखाड़ने योग्य नहीं है। बोधि प्राप्ति के लिए जो कार्य पहले इन्होंने किए हैं उनकी सिद्धि का समय अब आ गया है। यह स्थान भी वही है जहां प्राचीन काल में अनेक मुनियों ने साधना की है। यह स्थान भूतल की नाभि है। ऐसी श्रेष्ठ भूमि पृथ्वी पर अन्यत्र नहीं है जो इस महामुनि की समाधि के वेग को सह सके। इसीलिए हे मार, तुम व्यर्थ परिश्रम मत करो, जाओ, शोक मत करो और शांति प्राप्त करो। अपने सभी प्रयत्नों को विफल होते देखकर और इस अदृश्य जीव की ये बातें सुनकर मार अत्यंत खिन्न हुआ और वहां से शीघ्र भाग गया। जैसे अपने सेनानायक के मारे जाने पर सैनिक भाग जाते हैं, वैसे ही मार के जाने के बाद उसके सारे भूतगण भाग गए और मार पर महर्षि की विजय हो गई। मार पर महर्षि की विजय होते ही सारा आकाश चंद्रमा से सुशोभित हो गया। सुगंधित जल सहित पुष्पों की वर्षा होने लगी, दिशाएं निर्मल हो गई। बुद्धत्व प्राप्ति। मार और मार की सेना को धैर्य से पराजित करके शाक्य मुनि ने परम तत्वों को जानने की इच्छा से ध्यान लगाया। ध्यान की समस्त विधियों पर पूरा अधिकार प्राप्त करने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की परंपरा का स्मरण किया। मैं कहां कहां, कब कब अवतीर्ण हुआ हूं, इस प्रकार उन्होंने सहस्त्रों जन्मों का प्रत्यक्ष स्मरण किया। अपने उन अवतारों में उन्होंने जो दया कर्म किए थे और जिस प्रकार मृत्यु प्राप्त की थी, उन सब का प्रत्यास्मरण किया। उन्हें अनुभूति हुई कि यह सारा संसार केले के गर्भ के समान नितांत निस्सार है। द्वितीय प्रहर में उस महामुनि ने दिव्य चक्षु प्राप्त किए। उन्होंने नीच ऊंच कर्म करने वाले प्राणियों के उत्थान पतन का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिससे उनकी दयालुता और भी बढ़ गई। उन्होंने पाप कर्म करने वालों की नारकीय वेदना और पीड़ा का अनुभव कर दुख का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कि कर्म बंधनों से बंधे हुए प्राणी किस प्रकार दुख भोगते हैं पर मर नहीं पाते, और जब मरते हैं तो कैसे ये प्राणी निम्न योनियों में पुनः जन्म ग्रहण कर दुख भोगते हैं। पृष्ठ संख्या 47। उन्होंने अनुभव किया कि संसार में छोटे बड़े सभी जीव भूख और प्यास जनित दुखों से पीड़ित हैं। कुछ जीव हैं जो नरक के समान गर्भ नामक सरोवर में गिरकर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। कुछ जीव हैं जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाते हैं और वहां काम की ज्वाला में जलते हैं और तृप्त होने से पूर्व ही स्वर्ग से गिर जाते हैं। उन्होंने जन्म जरा और मृत्यु के कारणों का साक्षात्कार किया। उन्हें लगा जैसे वायु के योग से अग्नि का एक कण भी सारे वन को जला देता है, वैसे ही तृष्णा युक्त काम कर्म रूपी जंगल को जलाता रहता है। उन्होंने ध्यान में समझा कि तृष्णा का मूल कारण वेदना या संवेदना है, जो इंद्रियों, वस्तुओं और मन के संयोग से उत्पन्न होती है। उन्हें बोध हुआ कि अविद्या के नष्ट होने पर ही संस्कार क्षीण होते हैं और परम पद का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्हें प्रतीति हुई कि उन्हें अब पूर्ण मार्ग का ज्ञान हो गया है। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में जब सारा चराचर जगत शांत था, महाध्यानी मुनि ने अविनाशी पद प्राप्त किया और वे सर्वज्ञ बुद्ध हो गए। जैसे ही शाक्य मुनि बुद्ध हुए, सारी दिशाएं सिद्धों से दीप्त हो गईं और आकाश में दुंदुभी बजने लगी। बिना बादल बरसात होने लगी, मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी, वृक्षों से फल फूल बरसने लगे और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों ओर धर्म छा गया। इक्ष्वाकु वंश के मुनि ने सिद्धि प्राप्त कर ली
और वे बुद्ध हो गए। यह जानकर देवता और ऋषिगण उनके सम्मान के लिए विमानों पर सवार होकर उनके पास आए और अदृश्य रूप में उनकी स्तुति करने लगे। ध्यानावस्थित होकर महात्मा बुद्ध ने जीवन मरण के कार्य कारण संबंधों को भली भांति जान लिया था और मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इस मुक्तावस्था में वे 7 दिनों तक बैठे रहे। तभी उन्हें जगत को बोध प्रदान करने की अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। तभी 2 देवता आए और उन्होंने निवेदन किया, हे भवसागर को प्राप्त करने वाले मुनि, आप इस दुखी जगत का उद्धार कीजिए। जैसे धनी धन बांटता है, वैसे ही आप अपने गुण और ज्ञान को बांटिए। महात्मा बुद्ध ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। तभी अन्य दिशाओं से देवता गण आए और उन्होंने महामुनि को भिक्षा पात्र दिया। निकट से जाने वाले एक सार्थवाह के 2 श्रेष्ठियों ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। पृष्ठ संख्या 48। तब उन्होंने आराड़ और उद्रक का स्मरण किया, परंतु तब तक वे दिवंगत हो चुके थे। अतः उन्होंने उपदेश देने के लिए उन 5 भिक्षुओं का स्मरण किया जो उन्हें तप से भ्रष्ट मानकर छोड़कर चले गए थे। इस तरह संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए महात्मा बुद्ध ने काशी जाने की इच्छा की। वे अपने आसन से उठे, उन्होंने अपने शरीर को इधर उधर घुमाया और बोधि वृक्ष की ओर प्रेम से देखा। प्रश्न 1, अराड़ मुनि ने अविद्या किसे कहा है? 2, कठोर तपस्या में लगे सिद्धार्थ ने किस कारण भोजन करने का निर्णय किया? 3, मार कौन था और वह बुद्ध को क्यों डरा रहा था? 4, सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्त करने पर प्रकृति में किस प्रकार की हलचल दिखाई पड़ी? यहां 3रा अध्याय समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अमीषा, तुझे पता है मुझे ना रात में बहुत डर लगता है अंधेरे से।
3: हाँ, मुझे भी लगता है, ऐसा लगता है कि हमारा कोई पैर ना खींच ले।
2: लेकिन असलियत में तो ऐसा होता ही नहीं है।
3: कुछ भी नहीं होता ऐसा।
2: फिर डर क्यों लगता है?
4: अरे क्या नहीं होता असलियत में?
2: अरे दीदी, हमें रात को बहुत डर लगता है अंधेरे से।
4: अंधेरे से डर लगता है?
2: हाँ।
4: ओके, तो आप लोग यानी रात को किस किस चीज से डर लगता है उस बारे में बात कर रहे हो?
2: हाँ।
4: चलिए तो एक काम करते हैं, इसी के बारे में आज सब बच्चों से बात कर लेते हैं। डर तो भाई सबको लगता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको डर नहीं लगता, चाहे छोटे हो या बड़े हो। और आज डर के बारे में बात करने के लिए बच्चों की दुनिया कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ कौन कौन है आज स्टूडियो में?
5: रूहानी,
3: अमीषा, अनुष्का।
4: तो अनुष्का, आपको किस चीज से डर लगता है?
6: मेरे को तो कॉकरोच से बहुत डर लगता है।
4: कॉकरोच से डर लगता है?
6: हाँ।
4: अच्छा नहीं लगता, छोटा सा ही इसलिए डर लगता है या फिर ऐसा दिखता है वो?
6: नहीं, जब हम हाथ धोने जाते तो ना डायरेक्ट निकल जाता है छेद में से।
4: हाँ ये तो है, उड़ने वाला भी होता है ना कॉकरोच।
6: हाँ, वो उड़ के दीवार पे चिपक जाता है।
4: डर लगता है ना अपने ऊपर ना आ जाए। और रूहानी को किस चीज से डर लगता है?
5: मुझे तो किसी से डर नहीं लगता, इंसेक्ट्स में से।
4: किस चीज से लगता है? किसी से?
5: अंधेरे से।
4: अंधेरे से लगता है?
5: और वो भी अब ज्यादा नहीं लगता, पहले तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरे पापा रात को ही मुझे किचन से पानी लेने भेजते थे, फिर मैं लाइट बंद करके तुरंत भाग जाती थी, पीछे भी नहीं देखती थी,
4: फटाफट जल्दी जल्दी पानी लेके आके।
5: मेरे को ऐसा लगता था अभी लाइट चालू करूंगी ना तो कोई मेरे को देख रहा होगा अंधेरे में से। एक तो उसी रात को मैं इतने डरावने डरावने वीडियो देख के ही जाती हूँ वहाँ पे, तो और डर लगता है।
4: डर लगता है, अब डर की वजह पे भी बात करेंगे। पहले बताओ अमीषा, आपको किस चीज से डर लगता है?
3: दीदी, मुझे अगर मैं हॉरर मूवी देख लूँ ना तो मुझे रात को बहुत डर लगता है, मुझे नींद ही नहीं आती।
4: हॉरर मूवीज देखने से डर तो लगता है, तो एक बात बताओ फिर हॉरर मूवीज क्यों देखते हो?
5: मजा भी तो आता है,
3: इसीलिए।
4: मजा आता है डरने में?
5: हाँ।
4: पर उसको देख के तो डर लगता है ना, तो उसमें मजा कैसे आता है?
3: देखने में मजा आता है।
5: डर तो रात में लगता है ना, मूवी के टाइम तो मजा आता है।
4: मूवी में लगता है अब आगे क्या होगा।
5: हाँ,
4: आगे
5: वही
4: कहाँ से निकलेगा।
3: भूत भूत दिख जाता है तो उसके ऊपर हंसते हैं, पर डर फिर हमें रात को लगता है।
4: अच्छा, उस वक्त हंसी आती है?
3: हाँ।
4: और रूहानी को?
5: मेरे को भी वही लगता है, वो मूवी ना इंटरेस्टिंग लगती है इसलिए देखने में मजा आता है।
4: इंटरेस्टिंग क्या लगता है उसमें?
5: अरे जैसे अभी क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, कोई सीरियस पॉइंट हो गया, कोई ट्विस्ट आ गया, तो इसके बाद क्या होगा, इसलिए
4: सस्पेंस।
5: हाँ।
4: और आपको अनुष्का?
3: मुझे भी ऐसी हॉरर मूवीज से डर लगता है।
4: तो हॉरर मूवीज देखते हो आप कि फिर नहीं देखते हो?
3: फिर देखते हैं, फिर रात को बहुत डर लगता है।
4: अच्छा, आप लोग साथ में बैठ के देखते हो सब लोग कि अकेले अकेले यूट्यूब पे ऐसे देख लेते हो?
5: यूट्यूब पे देखती हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई छोटा सा शॉर्ट आ जाता है ना, जैसे कि इस मूवी में ये हुआ, फिर वो ना एकदम ट्विस्ट पर ही छोड़ देते हैं शॉर्ट को, इसलिए फिर मुझे वो मूवी सर्च करके देखनी पड़ती है।
4: पता है ऐसे वीडियोज बनाते इसीलिए है ताकि आप में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, आप सोचो क्या होगा इसमें आगे, और आप जाके वो उसके मूवीज के व्यूज और बढ़ाओ और देखो। प्रमोशन के लिए तो बनते हैं ऐसे वीडियोस।
5: लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ, हमेशा नहीं देखती।
4: बिल्कुल, इंटरनेट की दुनिया है ही ऐसी, सच में। बड़े भी वीडियोस जब रील्स देखते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते जाते हैं ना। और अनुष्का, आप किसके साथ देखते हो?
3: मैं तो मेरे भाई के साथ देखती हूँ।
4: आपका भाई बड़ा है आपसे कि छोटा?
3: बड़ा।
4: तो डर नहीं लगता फिर आपको उस वक्त?
6: लगता है थोड़ा थोड़ा
4: थोड़ा थोड़ा लगता है
6: अचानक से कोई आ जाता है ना अचानक से नीचे से निकल जाता है तो बहुत डर लगता है
4: तो डर लगता है हाँ। अचानक से जब कोई निकल जाता है अब तो डर लगता है अमीक्षा को
3: मेरे को तो वही हॉरर मूवी से डर लगता है
4: देखते किसके साथ हो बैठ
3: मैं अकेले देखती हूँ
4: अकेले देख लेते हो और अकेले हंसी भी आती है उसको देख के अरे बापरे और उसके बाद रात को लगता है डर
5: मुझे डरना और डराना भी पसंद है
4: डरना डराना पसंद है किसको डराना पसंद है
5: जैसे रेडियो मधुबन में बहुत सारे लोगों को डराती हूँ मैं नकली सांप लेके आई हूँ मैं
4: डराने के लिए
5: और उससे लोग डरते भी है
4: घर पे भी डराते हो और दोस्तों को
5: हाँ मेरी दादी जी तो अभी तक डरती है पकड़ने को भी तैयार नहीं है वो बोलते है अब इसको सामने लाए ना तो फेंक दूंगी घर से बाहर
4: उनको अच्छा नहीं लगता होगा ना वो सांप देखने में ऐसे रबड़ वाला सांप होता है
5: हाँ।
4: और अनुष्का आप वो हॉरर मूवी से डर लगता है तो कभी ऐसा लगा आप लोगों को कि डर लगता है तो फिर नहीं देखे या छोड़ दे ऐसा लगा कभी
5: हाँ कभी कभी लगता है ऐसा फिर बाद में मन हो जाता है फिर से देखने का
4: मन हो जाता
3: फिर वापस चालू कर लेते हैं
4: बस थोड़ी देर के लिए लगता है मतलब ऐसा कि नहीं देखे फिर दोबारा देखने पर लग जाते हो तो यानी जब आप मूवीज नहीं देखते थे तब भूतों से डर लगता था
5: तब तो सिर्फ अंधेरे से डर लगता था तब तो हमारा मन ही भूत बना लेता था अपने आप ही
4: अनुष्का को जब आपने मूवी नहीं देखी थी तब ऐसी कोई हॉरर मूवी नहीं देखी थी
3: हाँ हमको भी अंधेरे से डर लगता है ऐसे
4: अंधेरे से
3: रात को बाहर भी नहीं निकलते मेरा भाई बोलता है भूत काट लेगा क्या आगे से आके ऐसे बोलता है
4: भाई बोलता है
3: हाँ उनको वो डर नहीं लगता है
4: भाई को नहीं लगता
3: हाँ अंधेरे से डर नहीं लगता
4: ओके तो वो आपको चिढ़ाने के लिए आपको डराने के लिए बोलते हैं ऐसा अमीक्षा को भी कोई ऐसे बोलता है
3: मेरी बहन मुझे डराती थी पहले जब मैं छोटी थी तब है ना मुझे बोलती थी भूत आ जाएगा भूत तेरा पैर खींच लेगा भूत ऐसे ऐसे करके मुझे डर पैदा करते थे
4: बहुत छोटे थे आप तब
3: हाँ
4: तो फिर आप डरने लगे धीरे धीरे ना
3: हाँ
4: कोई ऐसे बार बार बोले तो डर लगने लगता है ना
5: मेरी दादी जी भी किससे सुनाती थी वो पीपल के पेड़ के नीचे ना भूत नहीं लटकी होती है इसलिए मेरे को डर लगता था रात को पेड़ों के नीचे जाने से
4: इसलिए कोई किससे सुना दे कोई डरा दे तो फिर डर लगने लगता है
3: और गांव में तो पीपल के पेड़ के नीचे ही सोते हैं सब लोग खटिया डाल के
4: गांव में तो सोते हैं खटिया डाल के ये भी सही बात है यानी कि डरने वाली कोई बात नहीं है ना लगता है आप लोग को रियल में भूत होते हैं ऐसे डरावने डरावने जैसे मूवीज में दिखाते हैं
3: भूत नहीं होते वो आत्मा होती है भटकती हुई हाँ आत्मा मेरे अंकल ने देखी थी वो हमको बता रहे थे कि हमारे गेट है ना उसके सामने एक आत्मा भटकती हुई उनने छत पे से देखा था रियल में
4: अच्छा
3: हाँ हमको भी डर लगता है तब से हमको ज्यादा डर लगता है
4: जब से अंकल ने देखा
3: वो तो बोल भी रहे थे कि है ना भी आएगी तो हम तुमको भी दिखाएंगे हमने तो मना बोल दिया हमको नहीं देखना
4: भाई सही बात है क्यों देखेंगे है ना डर लगेगा
3: उनने तो पूरे 4 बार देख लिया है
4: अच्छा
3: हाँ एक तो उनके घर के बाहर देख लिया है आंखें काली काली और एक तो है ना हमारे गेट के बाहर देख लिया कभी कार के पीछे ऐसे आगे हाँ ऐसे देखा है
4: तो उनको डर नहीं लगता
3: नहीं वो तो देखते हैं तो चले जाते देखते
6: किसी किसी को दिखता है किसी किसी को नहीं दिखता
4: तो उनको ऐसा नहीं लगा हो सकता है कोई खड़ा होगा वहाँ पे
3: कोई नहीं खड़ा था रात के 12 बजे वो तो काम करके आए थे अपना
4: अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कोई खड़ा हो और फिर गलती से लगा हो कि ये तो कोई भूत है मगर कोई इंसान ही खड़ा हो ऐसा हो सकता है
3: नहीं कोई नहीं था पूरी गली सो रही थी
4: अच्छा कोई नहीं था बस वो दिखा और गायब हो गया ओके ठीक है रूहानी
5: दीदी मेरे तो पापा ने बोला है कि हमारे घर में ही है हमारे पितरों के जो होते हैं ना वही आत्मा है घर में ही है क्योंकि ना एक बार ना पापा ने बोला था कि हमारे घर में जो पेंटिंग्स है ना उनमें है तो उन्होंने जब पेंटिंग्स बाहर निकाली ना तब उस खिड़की में ही छेद हो गया अच्छा। और खिड़की के बाहर वाला पेड़ अपने आप गिर गया और पापा ने बोला कि इतनी सारी आत्माएं थी कि बाहर निकली ना इतने प्रेशर से तो पेड़ ही गिर गया नीचे और एक बार मेरी दो दोस्तें मेरे घर पे आई थी ना और नीचे पड़ा हुआ नींबू लेके गई थी तो वो जैसे ही अपने घर में गए उसको बुखार हो गया बहुत तेज
4: अच्छा तो गुड एनर्जी और बैड एनर्जी तो हम सब जानते हैं, फील भी करते हैं, है ना, कोई हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं या फिर बहुत पॉजिटिव होते हैं तो हमको अच्छा फील होता है उनके साथ, है ना. और कुछ लोग बहुत ऐसे गुस्सा कर रहे होते हैं, बिल्कुल उनका मूड भी ख़राब रहता है एकदम, वो कमरे में आते हैं तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी फील होती है ना. होती है आप लोगों को फील? होती है ना. तो मतलब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी तो होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो, मतलब वो फीलिंग मतलब बच्चों को भी होती है और बड़ों को भी होती है. लेकिन इतना डरावना जैसे मूवीज़ में दिखा देते हैं चीज़ें, वैसी लगता है रियल लाइफ में होती हैं?
5: नहीं, वैसी तो नहीं होती, उससे तो बहुत ही कम डरावनी होती है असलियत में.
4: मूवीज में कैसे दिखाते हैं, बहुत डरावना दिखाते हैं ना.
5: हाँ, जैसे चेहरे में इतना सारा खून लगा है, वो पूरा आसमान में उड़ रहा है वैसा.
6: हाँ, ड्रेस भी पूरी फटी हुई है और उसके सामने जैसे चाकू मार दिया, खून खून ऐसे
4: खून खून निकल रहा है.
6: हाँ,
4: वो मेकअप भी कैसे करते हैं ना, डरावना सा,
5: जैसे कोई मर के सड़ गया हो.
4: कैसा अजीब सा लगता है. वो बाल भी ऐसे कर देते हैं खड़े, और पता नहीं
6: बाल ऐसे नीचे कर देते हैं. वो जो हमारे अंकल ने देखा था ना, वो बाल भी ऐसे किए हुए थे.
4: अच्छा, चेहरे
6: छोड़ रहे थे क्योंकि हमारे एक अंकल है ना, वो तो अभी गांव गए, उनके घर में एक है ना दीदी थी जो है ना चूल्हे पर कुछ बना रही थी, तो आग उनके लग गई थी, तो वो वहीं पर तड़प के मर गई थी, इसलिए उनकी आत्मा हमारे गले में घूमती है.
4: कभी कभी बहुत ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, उससे भी
6: गलती से उनके साड़ी थी ना वो वहाँ पर लग गई थी. और दीदी, अगर है ना किसी आत्मा को शांति नहीं मिलती ना, तो जिसने अगर मारा हो ना, उसके पीछे प्रेत पड़ा रहता, पीछे पड़ा रहता है.
4: ओके.
6: मारा तो किसी ने नहीं था, वैसे भी उनका खुद से जल गया था.
4: कभी कभी ऐसी चीजें

0: हो जाती हैं, बहुत ऐसी घटनाएं, बहुत दुखद घटनाएं हो जाती हैं, उससे सबको डर भी लगता है फिर, और बहुत परेशानी भी होती है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे में बताओ क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ पता चलता है तो.
1: उसके लिए जैसे उसके साथ कुछ हुआ वो दूसरे के साथ ना हो, ऐसा कर सकते
0: हैं. हाँ, ध्यान रख सकते हैं, और हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं
1: कि उसकी आत्मा को शांति मिले.
0: हाँ, कि वो अच्छे से रहे, शांति मिले, सब ठीक रहे, है ना. ऐसे ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं, है ना. तो ऑलवेज ऑलवेज हम भगवान जी को अपने साथ रख सकते हैं, है ना, दोस्त बनाकर. और आप लोगों को बड़े भाई बहनों के साथ जैसे रहना पसंद है ना, वो लोग ध्यान भी रखते हैं ना, तो बड़ा भाई बनाकर भी रख सकते हैं अपना, तो वो फिर हमारा ध्यान रखेंगे डेंजर में, है ना. फिर डर भी कम लगेगा, ऐसा हो सकता है.
1: हाँ, हो सकता है.
0: हो तो सकता है, है ना. और थोड़ा मूवी देखना कम कर सकते हैं क्या.
1: अभी तो नहीं देखते, हम पहले देखते थे,
2: अभी तो हमने बंद कर दी.
0: ऐसी मूवी देखना बंद कर सकते हैं ना.
1: हाँ,
0: क्योंकि ऐसी मूवी देख के एंटरटेनमेंट तो होता है थोड़ा सा, और फिर डर लगता है ढेर सारा, और लगता ही रहता है. उसको ठीक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना.
1: मैंने एक मूवी देखी थी, उसका मुझे अभी तक याद है, इतनी डरावनी थी. वो जब पहले पहले देखते थे तब तो मैं किचन में ही नहीं जाती थी रात को. फिर 1-2-3-4 महीनों बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा डर कम हुआ था.
0: कितना समय लग गया ना. वही तो. और कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा माइंड कॉन्शियस अलग है और सबकॉन्शियस माइंड अलग होता है ना. सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जो हमारे ब्रेन की कई चीज़ें ब्रेन कैप्चर कर लेता है, हमें पता नहीं चलता, पर वो अंदर रहती हैं. तो वो हमारी डर बना देती हैं, बुरी आदतें बना देती हैं, और फिर ना आपको पता नहीं चलेगा, आप बड़े हो जाओगे, आप भूल जाओगे मूवीज़ के बारे में, मगर जो डर है वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है, तो वो फिर इतना ईजिली कभी कभी नहीं जाता है. अब मूवीज भी भूल जाओगे,
2: सालों तक अपने माइंड में रहता ही है.
0: तो हमारे जो सबकॉन्शियस है ना, बहुत पावरफुल है, इसलिए वो थोड़ी देर की बात नहीं होती, बहुत समय तक आपके माइंड में सबकॉन्शियस उसको पकड़ के रखता है, उसको छोड़ता नहीं है. इसलिए तो कहते हैं कि आप जो देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, है ना, और देखना आईज का तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. तो कुछ और वीडियोस हैं ऐसे जो देख सकते हो आप ऐसी मूवीज़ की बजाय, कुछ और एंटरटेनिंग जो आपको पसंद भी आए, जो आपको अच्छा भी लगे, जो इसमें आपको क्यूरियोसिटी भी हो, क्योंकि उस मूवीज़ में ऐसा लगता है ना, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, तो ऐसा कुछ और हो सकता है इसका रिप्लेसमेंट अगर हम सोचें तो.
1: हाँ, हम टीवी पर एक सीरियल देखते हैं, श्रीमद् रामायण.
0: हाँ,
2: ऐसा वो दीदी बहुत अच्छी है, उसमें ना श्री राम की कहानी आती है, उससे हम लोगों को पता भी चलता है कि क्या हुआ था उनके साथ.
1: और उसमें एपिसोड्स भी आते हैं जो एक ट्विस्ट पर छोड़ते हैं, तो हम अगले दिन वही देखते हैं.
0: हाँ, आगे क्या होगा उसमें भी ऐसा लगता है ना.
1: हाँ, और एक और सीरियल है, वो तेनाली रामा की है, जो अपनी बुद्धिमत्ता से काम करता है और महाराज कृष्ण देव राय को खुश करता है.
2: पर इन लोगों के बीच में एक दुश्मन भी होता है उनका.
0: अच्छा.
2: जो है ना, वो नहीं कर रहा, वो उनको राजा के पास मतलब पहुंचाते तो है सच, पर वो उनको झूठ कह देते हैं, वो उनके दुश्मन.
0: अच्छा, मतलब वो फंसाना चाहते हैं.
2: हाँ,
0: फिर वो ऐसे नए नए आइडियाज निकालते होंगे ना.
1: हाँ, हर बार दुश्मन ना राजा को ही मारना चाहता है ताकि वो सिंहासन ले सके.
0: सिंहासन लेने के लिए तो राजा भी अटैक करना पड़ेगा. तो फिर उनको बचाते कौन है.
1: तेनाली रामा.
0: नए नए आइडियाज निकाल के. आपने देखा है अनुष्का तेनाली रामा.
3: नहीं,
0: नहीं देखा. वैसे इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं उनकी बहुत, और वो इतने क्रिएटिव आइडियाज निकालते हैं जो हमें भी नहीं सोचने में आते कभी कभी.
1: हाँ,
0: तो मजा आता है वो देखने में. कभी भी कोई चीज अगर आपको ऐसा लगे ना कि पसंद भी आ रही है लेकिन नुकसान भी कर रही है, तो ऐसे में आपको क्या पसंद आ रहा है पहले वो पता करो. जैसे हॉरर मूवीज में पसंद आता है ट्विस्ट, हॉरर मूवीज में पसंद आता है सस्पेंस, है ना. तो ये चीजें कहीं और कहाँ मिल सकती हैं, उसको ढूंढो जो आपको फायदा भी करे और आपको मजा भी आए, तो आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा आसान. ठीक है. तो इसको कोशिश करके देखना, कभी कोई चीज जिसमें मजा भी आए लेकिन लगे ये अच्छी नहीं है, तो मजा किस चीज में आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, उस पॉइंट को पकड़ो और फिर वो पॉइंट और कहाँ मिल सकता है उसको ढूंढो, है ना. आपके पास तो इंटरनेट है आज, मम्मी पापा हैं, दोस्त, कितनी बड़ी दुनिया है, बहुत चीजें पता कर सकते हो, है ना. तो डर लगता है हमको ये वाली चीजों से, इसको हम कर सकते हैं ठीक. वैसे हर डर को हम जीत तो सकते ही हैं, है ना.
1: और अनुष्का का कॉकरोच वाला डर कैसे भगाए?
0: हाँ, अनुष्का को क्या लगता है बताओ, अगर डर भगाना है तो क्या कर सकते हैं आप लोग बताओ. अच्छा, क्या लगता है आपको, अनुष्का को अगर कॉकरोच का डर भगाना है तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है आप लोग को?
1: हम सोच रहे हैं कि अनुष्का को ये करना चाहिए कि कॉकरोच भी तो इतना छोटा सा है, अनुष्का से ज्यादा तो कॉकरोच को ही डर लग जाता होगा कि इतनी बड़ी इंसान ने मेरे पे पाव रख दिया तो मैं मर नहीं जाऊंगा,
2: इसलिए वो भाग के चला जाता होगा.
0: वो अनुष्का के पास ही आ जाए तो भाग के, फिर उसको तो इसलिए डर लगता है मेरे पास आ गया तो उड़ के
2: तो ये भाग जाएगी.
0: तो फिर उसका डर कैसे भागेगा? और क्या कर सकते हैं बताओ, और कैसे
1: भागे? उसे बॉटल में लेके बाहर छोड़ देना चाहिए कॉकरोच को.
0: हाँ, लेकिन अगर डर लगेगा तो बॉटल में कैसे उसको लेंगे, फिर तो देख के डर लग रहा है, उसके पास कैसे जाएंगे?
2: उसको रोज वही कॉकरोच दिखाएंगे, देखने से उसका थोड़ा थोड़ा डर ठीक होने लगेगा.
0: क्या लगता है आपको अनुष्का?
2: गिलास लेके उसके ऊपर डाल के एक ढक्कन लगा के छोड़ दो बाहर, वैसे गिलास का मुंह तो ज्यादा ही बड़ा है.
0: अच्छा, तो आपने किया है कभी ऐसा?
2: कभी कभी.
0: हाँ, कर लेते हो तब तो आप
2: डर तो लगता है थोड़ा बहुत,
0: पर डरते डरते भी कर लेते हो. वाह, वेरी गुड, ब्रेव हो आप, डरते डरते कर लेना, ब्रेवरी है भाई.
1: इसको ना ऐसी मूवी दिखानी चाहिए जिसमें दिखाया जाए कि कॉकरोच को भी इंसानों से कितना डर लगता है.
2: इससे उसका डर धीरे धीरे कम होता जाएगा और आगे जाके ये कॉकरोच से डरेगी नहीं, उसको देख के बोलेगी तू मेरे से डरता है, मैं तेरे से नहीं डरती.
0: ये भी बोला जा सकता है कॉकरोच को कि तुम मुझसे डरते हो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, है ना, तुम तो इतने से हो और मैं कितनी बड़ी हूँ, तुम क्या कर सकते हो, बस यहाँ उड़ सकते हो और चल सकते हो. उसे बातें करनी पड़ेंगी लग रहा है मुझे.
1: अगर कॉकरोच सुन पाता तो.
0: हाँ, तो कॉकरोच क्या कहता बताओ, सुन लेता तो?
2: सुनता कैसे, कान तो दिखते ही नहीं है. उसके पास कान होते भी है कि नहीं पता नहीं.
0: ये तो साइंस में पता चलता है आप लोगों को, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो इंसेक्ट्स के बारे में तो उसमें भी पढ़ाई होती है.
2: साइंस में तो है ना, मेरा भाई जब गया था लाइव वहाँ पर जहाँ पर साइंस के प्रोजेक्ट ऐसे कुछ रखे थे, तो वहाँ पर कोई केमिकल था, उसमें एक मरी हुई मछली डाल दी थी ताकि वो है खराब ना हो के, क्योंकि बदबू मारता है. ऐसे है ना, वो केकड़ा ऐसे कुछ डाले थे, छोटे छोटे सांप ऐसे डाले थे. और दीदी वो नहीं होता वो स्नेल, वो केमिकल में डाल के हमें हमारी क्लास को या फिर जिसके भी चैप्टर्स होते हैं ना, तो टीचर्स फिर हमें लैब ले जाके बताती है.
0: लैब में ये सब चीजें रखी होती है ना, केमिकल्स यूज होते हैं.
2: बायो लैब में, केमिस्ट्री लैब में.
0: राइट, बायोलॉजी में भी पढ़ते हो?
2: फिजिक्स में.
0: फिजिक्स में अलग तरह की पढ़ाई है, केमिस्ट्री में अलग है, बायोलॉजी में अलग है. चलो किसी दिन उसके बारे में बात करेंगे. मुझे लग रहा है आप लोग को साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट है.
1: जब हम छोटे थे ना तब लैब के बाहर से जाते थे तो खिड़की में से हमें स्केलेटन दिखता था, तो हम वहीं से भाग जाते थे, वो देखो स्केलेटन ऐसे करके
2: हड्डी का ढांचा. बोलते थे अरे उसके अंदर तो भूत है, भागो भागो, सब लोग भाग जाते थे.
0: कौन डराता था, आप लोग डराते थे?
1: नहीं, हम खुद ही बोल देते थे और खुद ही भाग जाते,
0: खुद ही बोल के खुद ही भाग जाते थे.
2: स्केलेटन को मेरा भाई बोलता है वो देख हड्डी का ढांचा.
0: हाँ, तो लग रहा है मुझे साइंस के बारे में भी हमको एक एपिसोड में बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बातें हैं. लेकिन फिलहाल तो वक्त हो गया है जाने का, बहुत मजा आया बात करने में. और मुझे लग रहा है हमें डर लगता है तो भाई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, भाई सबको डर लगता है ना किसी ना किसी चीज़ से. तो इसमें कभी भी कोई ऐसा फील करने की बात नहीं आ रही है मैं तो बहुत ऐसी हूँ या मुझे तो बहुत डर लगता है, कोई बात नहीं, सबको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता ही है. और आप डर भगाने की कोशिश भी कर रहे हो ना, भगा नहीं भी पा रहे हो, तब भी इसका मतलब है आप बहुत ब्रेव हो. और डर कभी होता है ना तो धीरे धीरे जाता है, कभी कभी एकदम से नहीं भी जा पाता है, कोशिश करते रह सकते हैं. ठीक है, तो फिलहाल अपने फ्रेंड्स को गुड बाय करने का टाइम आ गया है. मिलेंगे बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय.

बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के, बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के।

इसको सुला दे, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के बोल।

होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के।

0: होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 21वां पाठ किसकी झलक किसकी छाप पृष्ठ 100।

बयानवे छी छी आशिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी, धूल भी उड़ रही थी। अचानक आशिमा को जोर से छींक आई, आ छी छी। आशिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छांट रहे थे। माँ ने कहा, देखा, छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप यहाँ ना होते तो मैं समझती कि आप नहीं छींका है। तालिका में लिखो, आशिमा की छींक जैसी क्या तुम्हारी भी कुछ खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है? क्या और किससे? तालिका बनाओ जिसमें दो कॉलम हों। एक कॉलम में लिखो तुम्हारी खास पहचान और उसके आगे दूसरे कॉलम में लिखो किससे मिलती है। पृष्ठ 193। बताओ, तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है? क्या क्या इसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया या खुद ही पता चला? जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों? तुम्हारे घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है? उसकी हंसी की नकल करके दिखाओ। किसकी मौसी कौन? नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी। उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से कहा, अम्मा देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई हैं। माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी बहन है। यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। असल में तो तुम इनके प्यारे से छुटकू समीर की मौसी हो। नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की सूची बनाओ। नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है? लिखो। पता करो, क्या तुम्हारे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं? घर के बड़ों से पूछो। पृष्ठ 194। कैसे जुड़े हैं हम सब? यहाँ एक चित्र में दो तितलियाँ दिखाई दे रही हैं, एक बड़ी तितली एक छोटी तितली। दोनों आपस में बातें कर रही हैं। बड़ी तितली छोटी तितली से कह रही है, तुम्हारी दादी की चचेरी बहन की जो दूसरे नंबर की बिटिया है, तुम बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो। नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। इतने में माँ ने कहा, किरण देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं, घने काले और घुंघराले। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे भूरे और बेजान नहीं हैं। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ, हैरानी की बात है, जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब। पता करो और लिखो, नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। तुम अपनी किसी बहन भाई, चाहे ममेरा भाई चचेरी बहन की कोई पहचान देखो, जैसे आँखों का रंग, गालों में गड्ढा जिसे डिंपल कहते हैं, कद, पतली या मोटी नाक, आवाज। बताओ कि यह पहचान यानी गुण उसकी माँ के परिवार से आई होगी या उसके पिता की तरफ से। एक तालिका बनाओ अपनी कॉपी में और इस तरह से भरो जैसे यहाँ हम नीलिमा का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। आप तालिका में चार कॉलम बनाओ। पहला कॉलम, नीलिमा खास पहचान घुंघराले बाल। दूसरा कॉलम, किससे मिलती जुलती है, उसकी नानी से। तीसरा कॉलम, माँ की तरफ से, उसमें राइट का निशान, पिता की तरफ से, उसमें गलत का निशान। इसी तरह से
आप भी अपने भाई बहनों की तालिका बनाएं। क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चे को देखा है? बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल या उंगलियां परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती हैं? उनके नाम लिखो। पृष्ठ 195। नीलिमा के बाल अपनी नानी जैसे घने, काले और घुंघराले हैं। नीलिमा की माँ के बाल सीधे, भूरे और बेजान हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं? मोटे या पतले? चिकने या रूखे? तुम्हारे बालों का रंग क्या है? अपने बालों का नाप लो और लिखो। क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं? किससे? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं? क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? क्या तुम अपने कद का नाप लेना जानते हो? सिर से पांव तक का नाप लो और लिखो। सोचो, जब तुम बड़े होंगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी? अपने घर के लोगों की लंबाई नापो और तालिका बनाओ। यहाँ 2 चित्र दिए हैं। पहले चित्र में एक बच्चा दादाजी के बाल नापना चाहता है, लेकिन दादाजी के तो बाल ही नहीं, बस पीछे की तरफ थोड़े से बाल हैं। बच्चा कह रहा है, दादाजी के बाल नापना आसान नहीं है। दूसरे चित्र में एक दादी को दिखाया गया है जिनकी कमर झुक गई है और वो लकड़ी के सहारे झुक कर खड़ी हैं, और बच्ची उनके सिर से ऊपर आ रही है जो बाल नापने की कोशिश कर रही है। नानी कहती हैं, भाई मैं पहले ज्यादा लंबी थी। पृष्ठ 196। यह कैसा आईना। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 लड़कियां हैं। ऐसा लगता है कि एक लड़की आईने में अपना चेहरा देख रही है क्योंकि शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। क्या सरोजा आईने के सामने खड़ी है? जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं, उसकी जुड़वा हैं। चकरा गए ना? जब कभी वे दोनों मिलती हैं तो उनके मामा जी भी गड़बड़ा जाते हैं। कभी सरोजा को डांट पड़ जाती सुवासिनी की शैतानी की, कभी सुवासिनी खुद अपने मामा को कहती कि सुवासिनी बाहर गई है। आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं, मराठी में गाकर दिखाओ, ये क्या तरीका हुआ? उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे। दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थीं जब सरोजा की चाची ने उसको गोद ले लिया था और अपने साथ पुणे ले गई थीं। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल। उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज्यादातर बच्चे मराठी। सुभासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। उनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुभासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं, पर उनकी पहचान फिर भी काफी अलग है। अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा? चर्चा करो, सरोजा और सुवासिनी में क्या गुण, क्या बातें मिलती जुलती हैं और क्या अलग हैं? क्या तुम किसी जुड़वा को जानते हो? उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग? क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते? सरोजा और सुवासिनी दिखते तो एक जैसे हैं, पर इनमें कई बातें अलग अलग हैं।
जैसे सरोजा को दो भाषाएं आती हैं। अगर सुवासिनी के घर पर दो भाषा बोलते तो वह भी दोनों भाषा बोलना सीख सकती थी। बहुत सी चीजें जैसे बुनाई, भाषा, संगीत या पढ़ने का शौक हम आसानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है। पृष्ठ 197। परिवार से मिला। अपनी क्लास में यह मजेदार सर्वे करो, कितने बच्चे यह कर पाते हैं लिखो। एक, जीभ को तालू की तरफ मोड़ो बिना दांतों से छुए। दो, जीभ को किनारे से उठाकर एक लंबे रोल की तरह बनाओ। तीन, पैरों की सारी उंगलियों को खोलो, बाकी उंगलियों को हिलाए बिना छोटी उंगली हिलाओ। चार, हाथ के अंगूठे को अपनी कलाई से लगाओ। पांच, हाथ के बीच वाली उंगलियों का वी बनाओ, दोनों उंगलियां इधर उधर करके। छह, बिना छुए बाहरी कान हिलाओ। जो बच्चे ये कर पाए वे अपने परिवार वालों से भी ऐसा ही करने को कहें। क्यों, कितने बच्चों को ये बातें उनके परिवार से मिली हैं? क्या माँ बाप से नहीं मिला? सत्ती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। इतने वर्षों में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया है। दूर दूर तक पैदल जाना और कई मंजिल सीढ़ियां चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा है। अब जब उसकी शादी हुई तो लोग उसे बच्चा पैदा ना करने की सलाह दे रहे हैं। उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। फिर उसने डॉक्टर से सलाह ली। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें डॉक्टर सत्ती से कहते हैं, नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। माँ या बाप को पोलियो है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को भी होगा। पृष्ठ 198। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? मटर के प्रयोग, चिकने या खुरदुरे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी मुनि बनने का सोचा ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे। जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। मेंडल ने पौधों में क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह
रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। पृष्ठ 199। कुछ परिवार से, कुछ हालात से। विभा दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं, उनके ठहाके की आवाज सुनकर। नाना जोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। तुम्हारे घर में कोई जोर जोर से बात करने वाले हैं? क्या उनकी ऐसी आदत है या वे ऊंचा सुनते भी हैं? क्या तुम किसी समय या किसी के सामने बिल्कुल जोर से नहीं बोलते? कब और किसके सामने और क्यों? और कब जोर से बोलते हो? कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता हो। पता करो, क्या वह बचपन से ही ऊंचा सुनता है? कब से ऊंचा सुनने लगा है? उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं? हमने देखा कि हमारी कुछ ऐसी पहचान यानी गुण होते हैं जो हमें परिवार से मिलते हैं। कई हुनर और कई बातें हम अपने माहौल से लेते हैं, पर कभी कोई बीमारी या ज्यादा उम्र की वजह से भी हम में कुछ बदलाव आते हैं। यह सब मिलकर ही हमारी पहचान बनती है। हम क्या समझे? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें माँ की तरफ से मिली है? किसकी झलक, किसकी छाप? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 21वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, तो आइए आज के दिन को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलके। आज 17 अगस्त है, 17 अगस्त के कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। अमृता नागर, YV रेड्डी, बिमल जालन, VS नेपाल, अनामिका, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही मदनलाल डिंगरा, कमिल बुलके, बुदिन बिहारी दास, पंडित जसराज दशरथ मांझी, निशांत कामत, जॉन मार्शल, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस दिन को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलके। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए एक बहुत ही सुंदर विचार आपको सुनाते हैं, और विचारों का ये सुंदर जो, तो आइए एक खूबसूरत विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विचार आज का है, जितना जीतना और हारना ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, है ना। तो ये संकल्प के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए अब बात करते हैं अमृत लाल नागर के बारे में। हिंदी के बहुत ही पॉपुलर साहित्यकार, नाटककार, रेडियो नाटक लिखने वाले, रिपोर्टर, निबंध संस्करण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें साहित्य जगत में उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त है। इनका हास्य व्यंग लेखन कम महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप कभी सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। जीवन परिचय की बात करें तो अमृतलाल नागर का जन्म संस्करण गुजराती परिवार में 17 अगस्त 1916 को आज के दिन गोकुलपुरा आगरा उत्तर प्रदेश में उनकी नैनिहाल में हुआ था। उनके पितामह पंडित शिवराम नागर 1895 से लखनऊ आकर बस गए थे। उनके पिता पंडित राजाराम नागर की मृत्यु के समय नागर जी कुल 19 वर्ष के थे। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। और शिक्षा दीक्षा की बात करें तो ये व्यवस्था के कारण हाईस्कूल तक ही हुई इनकी पढ़ाई, किंतु निरंतर स्वाध्याय द्वारा इन्होंने साहित्य, इतिहास, पुराना पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और विषयों पर तथा हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर इनका अधिकार प्राप्त कर लिया इन्होंने। विधिवत इनको शिक्षा न मिलने के बावजूद भी इन्होंने इतना सारा शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगर विधिवत मिलता तो क्या होता है ना। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बड़े यूनिक व्यक्तियों के बारे में हम बताते हैं और जैसे जैसे चीज़ें संभव हो वैसे वैसे उन चीज़ों को आप कर पाते हैं। और कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अमृत लाल नागर ने एक छोटी सी नौकरी के बाद कुछ समय तक मुक्त लेखन और हास्य रस के प्रसिद्ध पत्र चकलस के संपादन का कार्य 1940 से 1947 तक कोल्हापुर में किया। इसके बाद बम्बई और मद्रास के फिल्म क्षेत्र में लेखन का कार्य किया। ये हिंदी फिल्मों में डबिंग कार्य में अग्रणी थे और दिसंबर 1953 से लेकर मई 1956 तक आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर, उसके कुछ समय बाद स्वतंत्र लेखन का कार्य किया। व्यक्तित्व की बात करें तो नागर जी अपने व्यक्तित्व और सामाजिक अनुभवों की कसौटी पर विचारों को कसते रहते हैं और जितना मात्रा में उन्हें खारा पाते हैं उतनी ही मात्रा में ग्रहण करते हैं, चाहे उन पर देसी छाप हो या विदेशी, पुरानी छाप हो या नई। उनकी कसौटी मूलभूत रूप से साधारण भारतीय जन की कसौटी है, जो सत्य को अस्थिर तर्कों के द्वारा नहीं बल्कि साधन उपलब्ध श्रद्धा के द्वारा पहचानती है। अंधश्रद्धा को काटने के लिए वे तर्कों का प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु तर्कों के कारण अनुभवों को नहीं जुटलाते। फलत कभी कभी पुराने और नए दोस्तों उन पर झंझला उठते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक स्वच्छंद विश्लेषण या मानस का हंस में युवा तुलसीदास के जीवन में मोहिनी प्रसंग का संयोजन आदि विशेष रूप से अनुचित उत्साह लगता है। तो बाबा राम जी दास और तुलसी के अत्यधिक आध्यात्मिक अनुभवों को श्रद्धा के साथ अंकित करना नए को नगावर और प्रगति विरोध प्रतीत होता था और नागर जी इन दोनों प्रकार के प्रतिवादों से विचलित नहीं होते थे। अपनी इस प्रवृत्ति के कारण वे किसी एक साहित्य खाने में नहीं रखे जा सकते हैं, इसलिए उन्हें मल्टीपल कह सकते हैं, विभिन्नता के साहित्यकार कह सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक गीत की तरफ, उसके बाद फिर नागर जी के बारे में और बातें आपसे शेयर करूंगा। आप नए हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अमृत लाल नागर हिंदी के गंभीर कहानीकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसका अर्थ ये है कि विशेष और रंजक कला दोनों तत्वों को अपनी कृतियों में समेटने में समर्थ हुए हैं। उन्होंने ना तो परंपरा को नकारा है, ना आधुनिकता से मुंह मोड़ा, इसलिए अपने समय की पुरानी और नई दोनों पीढ़ियों का विशेष स्नेह मिलता रहा और समर्थन मिलता रहा। और आइए, जगत के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, अगर ये मैं बताऊं आपको, तो नागर जी की जगत के प्रति जो दृष्टिकोण है वो अतिरेकवादी, नहटग्रही, एकांगवादी न होने के कारण वे उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को देखते हैं, किंतु बुराइयों से उठकर अच्छाइयों की ओर विफलता को भी वे मनुष्य तत्व मानते हैं। जीवन की क्रूरता विफलता को भी वे अंकित करते चले हैं, किंतु उसी को मानव नियति नहीं मानते। जिस प्रकार संकीर्ण आर्थिक स्वार्थों और मृत धार्मिकता के ठेकेदारों से वे अपने लेखन में जूझते रहे हैं, उसी प्रकार मूल्यों की दिशाहीनता, अर्थहीनता आदि का नारा लगाकर निष्क्रियता और आत्महत्या तक का समर्थन करने वाली बौद्धिकता को भी नकारते रहे हैं। और अपने लेखन कार्य में अरविंद शंकर के माध्यम से उन्होंने कहा है, जड़ चेतना, भय, विष, अमृतमय, अंधकार, प्रकाशमय जीवन में न्याय के लिए कर्म करना ही गति है। मुझे जीना ही होगा, कर्म करना ही होगा, ये बंधन ही मेरी मुक्ति भी है। इस अंधकार में ही प्रकाश पाने के लिए मुझे जीना है। नगर जी आरोपित बुद्धि से काम नहीं करते, किसी दृष्टि या वाद के जस का तस नहीं लेते। आप सुना है रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, और साहित्य जीवन की बात करें तो हमेशा ये संलग्न रहते थे साहित्य के साथ, और कभी कभी ये सामाजिक परिस्थितियों से जूझते हुए व्यक्ति के अंतर्मन में जो विपृति आती है या जो घात चित्रण मन के अंदर आता है, उसको भी इच्छा शक्ति गीत और सृजन के प्रेरक के रूप में ग्रहण करने के कारण वे उसे बहुत अधिक महत्व देते हैं। काम अपने आधारों, व्यक्तियों के साथ रज तम के अंशों के भी विशेष रूप से उन्होंने ज्ञान को समझा, और जिंदा दिली और विनोद वृत्ति के साथ जीने वाले व्यक्ति का एक जो छवि है वो उन्होंने प्रकट किया था, और सामाजिक परिदृश्यों को उभारने की चेष्टा की थी। तो कहने का भाव ये है कि हर चीज़ को वो स्वीकारते भी हैं, और जहाँ लग रहा है उन्हें कि ये चीज़ें काम की नहीं है, उसे हटाकर वहाँ पर काम की चीज़ें रखा जाए, तो ये उनका मूलतः काम था। और भाषा की शैली में तो उनकी अच्छी पकड़ दी है, और नागर जी को बूंद और समुद्र पर काशी नगरी प्रचारणी सभा का बटुक प्रसाद पुरस्कार और सुधाकर रजत पदक, सुहाग के नुपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार, और इस तरह से कई पुरस्कार उन्हें मिले हैं उनकी कृति के लिए। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1970 तथा साहित्य सेवाओं पर युगांतर का 1972 का जो विशेष पुरस्कार है इन्हें मिल चुका था। तो ऐसे महान साहित्यकार अमृतलाल नागर जी, सन 1990 में 23 फरवरी को इनका निधन हुआ। नागर जी की कृतियों ने हिंदी साहित्य की गरिमा बढ़ाई। नागर जी के 3 रंगमंचीय नाटक और 25 से अधिक रेडियो फीचर्स और बहुत से निबंध हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर लिखने की कितनी प्रगाढ़ इच्छा थी और साहित्य के प्रति इनका कितना प्यार था। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा, हम बदल कर रहेंगे वक्त की धारा। ओम शांति। डिवाइन मैशअप म्यूजिकल सीरीज के सुहाने सफर में मैं आपकी होस्ट आत्मिका अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने जीवन की उस कड़ी से जुड़ेंगे जिसमें परमात्मा शिव की संतान होने के नाते हम सभी का भाग्य और सभी के कर्तव्यों को उजागर किया जाएगा। हम सभी आत्माएं परमात्मा की अनादि संतान हैं। इसी सत्य को हमारे बीच प्रकाशित करने आ रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर रविंद्र उपाध्याय जी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, वीवी रेड्डी की अगर बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के 21वें गवर्नर हैं। इनका कार्यकाल 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक रहा और इनका जन्म आज ही के दिन 1941 में हुआ। तो आइए, वीवी रेड्डी की इतनी सी जानकारी मेरे पास आई थी और आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और आइए अब बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में थोड़ी देर में। और मैं चाहूँगा कि जीवन में कई बार जो है साहित्य जो है अपने आप में कमाल का काम करता है, आपके लिखे हुए साहित्य भी। कभी कभी मैंने एक बार कुछ चीज़ें लिखी थी और उसे कुछ दिनों के बाद जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपने आप से मैं प्रश्न कर रहा था, क्या ये लिखने वाले तुम ही हो? तो ये जो अनुभव है ये अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको देता है। कभी अगर आप लिखना चाहें लिखते रहे, थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी शुरुआत में लिखना होगा, लेकिन धीरे धीरे उसको लिखने के बाद फिर उसको सही भी कीजिए खुद से, और जितना सही आप कर सकते उतना करिए, और नहीं जम रहा है तो किसी साहित्यकार की सहायता लेकर या अपने किसी दोस्त की साहित्य को दोस्त का सहारा लेकर भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। जो लिखा है उसे पढ़ के उसे सुनाइए, मैंने यहाँ 10 लाइन लिखी हो तो उसको अगर अच्छा फील हो रहा है तो दूसरे को भी होगा। तो अगर उसको उसके चेहरे के भाव पढ़िएगा, वो कहीं लग रहा है कि नहीं ठीक से इनके चेहरे तक पहुंच रहा है, तो आप फिर उसको पूछिए कि इधर क्या होना चाहिए था, तो बंदा बता देगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अगर जब बता देता है तो आपको वहाँ पर चेंज करके फिर से सुनाना चाहिए। तो इस तरह का एक प्रयोग करके देखिए और 10-15 दिनों के बाद जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपने लिखा है ना। तो ये अनोखा एक्सपीरियंस है साहित्य जगत का, साहित्य का। तो अपने आप में जो लोग मास्टरी कर चुके हैं इस विधा में, इस कला में, उनके लिए नहीं, लेकिन हम भी जो लोग नॉन साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं यानी जो राइटर नहीं हैं, वो भी कभी कभी इस तरह का प्रयोग करके एक्सपीरियंस करके आप अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: लोगों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है, बान है, शान है। मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए अब बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में जिनके बारे में सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और ये है बिमल जालन। ये भी रिजर्व बैंक के विशेष 20वें गवर्नर थे। इनका कार्यकाल 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003 तक रहा। बिमल राय जालना का जन्म आज के दिन 1941 को राजस्थान के सुदुलपुर में हुआ था। उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और 1980 के दशक में भारत सरकार के मुख्य सलाहकार बने और 85 to 89 के बीच में अब 85 से 90 तक

उन्होंने बैंकिंग सचिव के रूप में काम किया और जनवरी 1991 से सितंबर 1992 के बीच में वित्त सचिव रहे और 22 नवंबर 2000 से 21 नवंबर 2004 तक दो बार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त हुए। इनके कार्यकाल में 1000 रुपये का नोट जारी किया गया था। तो समझ सकते हैं आप, 1000 का नोट अभी बंद हो गया है ना। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए मंगल कामनाएं करते हुए आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए विमल राय और हमारे दूसरे वाई वी रेड्डी जो गवर्नर थे, इनके बारे में सुनकर आपको अच्छा तो लगा होगा। तो आइए अब एक और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। मूलतः अंग्रेजी साहित्यकार है ये और नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहा जाता है इन्हें। तो आइए विश्वधर सूरज प्रसाद नॉयपॉल इनके बारे में जानते हैं। भारत के मूल के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। उन्हें नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहा जाता है और नॉयपॉल का जन्म आज के दिन 1932 को त्रिनाडा में चागनास में हुआ था और उसके बाद त्रिनाडा में ही इन्होंने आगे की पढ़ाई की और ख़ास करके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की। लेकिन लेखन की दुनिया में उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई बाद में, और एबी इन द रिवर और अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास उनकी चर्चित पुस्तकों में से ये दो पुस्तकें काफ़ी चर्चित हैं। 2008 में टाइम्स ने वीएस नॉयपॉल को अपनी 50 महान ब्रिटिश साहित्यकारों की सूची में सातवां स्थान दे दिया था और 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े राइटर होंगे। और वर्ष 1971 में इन्हें इन अ फ्री स्टेट के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1979 में बैंड इन द रिवर के लिए उन्हें पुनः बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें आपके लिए, खास हमारे विश्वधर सूरज प्रसाद नॉयपॉल के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए, वक्त हो गया आपसे इजाज़त चाहने का। जाते जाते मैं आपको अनामिका के बारे में बात करना चाहूँगा। ये भी एक लेखिका है, हिंदी भाषा की जानी मानी कवियत्री। समकालीन हिंदी कविता की छंद सर्वाधिक चर्चित कवियत्रियों में वे शामिल की जाती है और आधुनिक समय में हिंदी भाषा की मुख्य कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में भी जानी जाती हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरनगर बिहार में हुआ। अपनी शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में एमए और फिर पीएचडी किया और इसके बाद डीलिट की उपाधि प्राप्त कर ली। फिर कहानी आगे बढ़ी और लेखन कार्य में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और गलत पत्ते की चिट्ठी, ये उनका कविता संग्रह रहा। बीजाक्षर, अनुष्टप, समय के शहर में, खुरदुरी, हथेलिया, दुब, धान, ये सारी इनके जो है काव्य संग्रह रहा। इसके बाद आलोचना पोस्ट में अगर बात करें तो सतीत्व का मानचित्र, तीरिया चारित्रम, उत्तराखंड, मन जाने की जरूरत, पानी में जो पत्थर पीता है, तो इस तरह के कई आलोचनक पोस्टर रहा इनका। और सारगाता की एक ठो शहर एक गो लड़की। कहानियों की बात करें तो प्रतिनायक इनकी कहानी का पुस्तक संग्रहालय है। उपन्यास में उन्होंने वो पर कौन सुनेगा, दस द्वारे का पिंजरा, तिनका तिनके पास, ये इनका उपन्यास है। अनुवाद इन्होंने किया काफ़ी गिरीश कन्नाड की, नागमंडल, रिल्के की कविता, एफ्रो इंग्लिश पोएम्स और फिर इस तरह के कई पुस्तकें हैं जो इन्होंने अनुवाद के जरिए लोगों के बीच में अंग्रेजी को हिंदी में करके हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिया। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफ़र। और अनामिका को राष्ट्रभाषा पुरस्कार, भारत भूषण, गिरीश कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतिराज सम्मान, द्विजदेव सम्मान और केदार सम्मान भी प्राप्त है। ये थी कुछ खास बातें अनामिका के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हुए, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का और जाते जाते एक और खूबसूरत विचार के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। एक मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। देखिए, आप कुछ भी लिखते हो तो हजार बार फेल हो सकते हो, लेकिन एक बार अगर पास हो जाते हो ना तो फिर वह सारे फेल खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, लगे रहें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खम्मा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: He was neither against the Muslims, nor was he opposed to the Hindus. He was against fanaticism on the one hand, and timid escapism on the other. His strife was against injustice, religious, political, and economic. And it was to wage this Dharma Yudh that he formed the Khalsa Panth. Khalsa, the pure. The one who would be prepared to join those who stood firmly against the long-standing tradition of exploitation and injustice. This is what the guru aimed at. Love them all.
2: अभी बजे हैं शाम के 5।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओए रुक रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे कहे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

रेडियो 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच, और दोस्तों युवाओं के इस मंच पर वक्त हो गया है आपको कुछ और ऐसी टिप्स देने का जो आपको डिजिटल दुनिया में रहने में मदद करे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हर हफ्ते एक बार हम ज़रूर आपके लिए वो टिप्स लेकर आते हैं, और वो ऐसी टिप्स होती हैं जो कि आपको कई फ्रॉड से मदद करने की, एक तरीके से टिप्स तो नहीं, एक रक्षक भी कह सकते हैं, वो बन जाती है हमारी। क्योंकि जब हम साइबर सेफ होते हैं असल में, तभी हम एक्चुअली सेफ होते हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया जो है दोस्तों, वो भरी हुई है इंटरनेट के स्कैम से। अगर हम किसी से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई कोई ऐसी तरह का आपके पास फ़ोन आया या मैसेज, सबके पास एक स्टोरी ज़रूर होती है बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि किस तरीके से स्कैमर्स ने उनको अप्रोच किया। और अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में भी वो ना कर पाएं, इसके लिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखनी ज़रूर होती है दोस्तों। तो चलिए कुछ ऐसी जानकारी आज हम हासिल करेंगे कुछ ही देर में। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, यानी रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आज का सेशन साइबर क्राइम के एक ऐसे खतरे पर बेस्ड है जो टेक्नोलॉजी के साथ तेजी से बढ़ रहा है। आज साइबर क्रिमिनल से फेक मैसेजेस या फेक कॉल्स ही नहीं, बल्कि एआई की मदद से फेक वीडियोस, क्लोन वॉइसेस और रियलिस्टिक इमेजेस बनाकर लोगों का भरोसा जीत रहे हैं। कई बार लोग सिर्फ इसलिए स्कैम का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने दिखने या सुनाई देने वाला व्यक्ति असली है। इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस अपराजिता सिंह राणा, सब इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ पुलिस। मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
2: थैंक यू
1: मैम। टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, डीप फेक क्या होता है और आज साइबर क्रिमिनल्स इसका मिसयूज कैसे कर रहे हैं?
2: देखिए समृद्धि, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो डीप फेक बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एआई का यूज करते हैं किसी भी फोटो, वीडियो या कोई कंटेंट क्रिएट करने के लिए। एग्जैक्टली तो ये कंटेंट फेक होता है, बट वो इतना रियलिस्टिक बनाया जाता है कि लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। आज के डेट पे एआई इतनी एडवांस हो गई है कि किसी भी व्यक्ति की एक फोटो और कुछ सेकंड की वॉइस के वो उतना का ही मिसयूज करके एक ऐसा कंटेंट बना सकता है जो कि फेक होगा, जिसका उपयोग कल के दिन क्राइम के लिए किया जा सकता है। और आजकल इसी टेक्निक का यूज साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं।
1: हम जैसे कि आपने बताया, आजकल एआई से किसी की वॉइस या फेस दोनों को ही क्लोन किया जा सकता है। एक आम सिटीजन असली और फेक में फर्क कैसे कर सकते हैं?
2: मैम, अगर मैं रियल बोलूं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इजीली इन चीजों को डिटेक्ट कर पाएं, दोनों में फर्क कर पाएं, क्योंकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लोग खुद को एक्सपर्ट मानने की गलती कर देते हैं कि हाँ, हमने फोटोज देखा या वीडियोज देखे तो वो सच ही है। बट एआई एडवांस लेवल पे, अपने नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। आप सिर्फ फोटोज और वीडियोज को देखकर बिल्कुल ये भरोसा नहीं कर सकते कि कंटेंट रियल है। इसका एक प्रकरण भी सामने आया था, मैं वो बताना चाहूंगी, जिसमें एक 10th क्लास का बच्चा अपने ट्यूशन चला जाता है और शाम के समय बहुत लेट से आता है। उस बीच में उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि मल्टीपल जगहों पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, ये लोग अपने बच्चे का फोटो और मोबाइल नंबर डाल देते हैं कि हमारा बेटा मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है। अब थोड़ी देर बाद इनके पास एक वीडियो कॉल आता है जिसमें बिल्कुल एज इट इज इनके बच्चे का फोटो दिखाई दिया रहा था, उसकी वॉइस थी और बिल्कुल लग रहा था कि वो किसी प्रॉब्लम में है। इस तरीके से उन्हें डराकर, धमकाकर और पैसे की मांग की गई और उन्हें पैसे दे दिए। आफ्टर सम टाइम बच्चा घर आ गया, तब इन्हें पता चला कि एग्जैक्टली ये एक तरह का स्कैम था इनके साथ। इसलिए ऐसा मैं बिल्कुल क्लियर नहीं बोल सकती कि हाँ, आप इन चीजों को देख के वेरीफाई कर पाएंगे। इसलिए अगर कभी भी कोई ऐसा सस्पिशियस लगे, ऐसी कोई अर्जेंसी लग रही है, तो जरूरी है कि हम थोड़ी देर रुके, उसे वेरीफाई करें, देन एक्शन लें।
1: मैम, डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह के साइबर क्राइम्स में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है?
2: देखिए, डीपफेक का यूज आजकल जो मेनली हमारे पास केसेस आ रहे हैं उसमें हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए, किसी सीईओ के नाम से, फैमिली मेंबर की इमरजेंसी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि फैमिली मेंबर को कोई इमरजेंसी हो गई, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया है या वो किसी प्रॉब्लम में है, इस तरीके के इंसिडेंट आते हैं। लेकिन इन सबके बाद जो एक दो मेन टॉपिक आ रहे हैं वो है ब्लैकमेलिंग और सेक्सटॉर्शन के, जिसमें डीप फेक के ज्यादातर केसेस देखे गए हैं। देखिए मैम, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि क्रिमिनल्स केवल हमारे घबराने का उपयोग करें, जितनी उनकी टेक्नोलॉजी हेल्प नहीं कर रही उससे कहीं ज्यादा हमारा घबराना उनके लिए एक हथियार का काम कर रहा है।
1: मैम, जैसे कि आपने बताया कि एक स्टूडेंट था 10th क्लास का, वो थोड़ी देर से अपने घर आया, उसके पेरेंट्स ने एक हेल्प के तौर पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी और स्कैमर्स ने उसका भी मिसयूज कर लिया। तो ऐसे केसेस में अगर किसी व्यक्ति को अपने किसी फैमिली मेंबर या दोस्त की वॉइस या वीडियो कॉल आए और अर्जेंटली पैसे मांगे जाए या डराया जाए, धमकाया जाए, तो उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने का सबसे सेफ तरीका क्या है?
2: अगर आपके पास कभी ऐसा कोई कॉल आता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर प्रॉब्लम में है, तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जो इंसिडेंट होना होगा वो तो ऑलरेडी हो ही रहा होगा। आप तत्काल पैसे भेजने की गलती कभी ना करें। बेहतर होगा कि आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट करें और आपके कॉन्टेक्ट में जो भी मोबाइल नंबर सेव्ड है, आप उस पे कॉल करिए, कॉल बैक करिए, उनसे बात करने के संपर्क स्थापित करिए। अगर वो बच्चा स्कूल गया है तो उसे स्कूल में आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोचिंग गया आप कोचिंग के टीचर को फोन कर सकते हैं, ऐसे मतलब मल्टीपल वेज हो सकते हैं, ये एक तरीका है। एंड सेकेंडली बिफोर दिस एक्सीडेंट अगर हम बात करें तो हर फैमिली में एक इमरजेंसी कोड होना चाहिए कि अगर मैं कभी कोई प्रॉब्लम में फंसती हूँ तो मैं ये पर्टिकुलर इमरजेंसी कोड आपको शेयर करूंगी, तो समझ लेना कि हाँ मैं एक्चुअल में
1: मैम,
2: प्रॉब्लम में हूँ। तो ऐसा एक बेसिक सिक्योरिटी कोड होना चाहिए।
1: जैसा आपने एग्जांपल दिया, एक ऐसा ही केस सामने आया था जिसमें स्कैमर ने एक व्यक्ति को कॉल किया, उसकी मॉम की वॉइस क्लोन करी हुई थी। तो उस बच्चे को उस टाइम पे स्मार्टली रियलाइज हुआ कि हो सकता है ये स्कैम है। तो उस बच्चे ने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि मेरा फेवरेट खाने का डिश क्या है। एंड
2: एग्जैक्टली
1: इमीडिएटली, क्योंकि स्कैमर तो बता नहीं पाया, तो वो बच्चे को रियलाइज हो गया कि एक स्कैम है। और वो अर्जेंसी में, जैसे उसको भी डराया जा रहा था कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो पैसे भेजने से बच गया।
2: मैम, यूथ आज के डेट पे थोड़े अवेयर हैं तो ये चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। बट एट द सेम और एक केस आया था जिसमें एक 72 इयर्स की लेडी थी जिनके पास इंटरनेशनली कॉल आया, जिनके चूंकि रिलेटिव फॉरेन में रहते थे, कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट। तो मैं वॉइस बिल्कुल सिमिलर लग रही थी, उन्होंने उसी कॉल पे भरोसा किया और पैसे ट्रांसफर

0: फैमिली मेंबर्स भी अगर अवेयर हो तो स्कैम के कुछ केसेस तो एटलीस्ट हम सेव कर सकते कि ना हो ऐसे। हम डीप फेक वीडियोस और मॉर्फ्ड इमेजेस का मिसयूज करके ब्लैकमेल और सेक्सटॉर्शन के केसेस बढ़ रहे हैं जैसे कि आपने बताया, तो ऐसे केसेस में विक्टिम्स को तुरंत क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के जो केसेस आते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो देखने में आया है कि विक्टिम बहुत शर्मिंदगी फील कर रहा होता है, वो घबराता है, शर्मिंदगी फील करता है, और इस डर से कि ये फोटोज वीडियोस कहीं वायरल ना हो जाए, वो कंटिन्यू जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है सामने वाला क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसके बातों को मानता है, चाहे वो अपनी सेंसिटिव जानकारी देने के बारे में हो या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में हो। अब मेरा बोलना यह है कि आप अगर डिले करोगे, क्योंकि साइबर के केसेस में जो सबसे क्रूशियल चीज है वो है टाइम,
0: जी
1: सबसे क्रूशियल। और गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मेरा ये मानना है कि गलती हर किसी से होती है, लेकिन अगर आप उस गलती को हाइड कर रहे हैं और आप शिकायत नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, वो कल के दिन प्रॉब्लम का बड़ा रूप भी ले सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप तत्काल अपने जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या जो गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शिकायत दर्ज कराएं।
0: मैम, आई थिंक आपने बहुत सही तरीके से इन्फॉर्म करा है सारे व्यूअर्स को कि अगर आप किसी चीज में फंस भी गए हैं तो इमीडिएटली एक्शन लेने से वो चीज सॉल्व ही होगी। तो बिना डरे, बिना घबराए, सबसे पहला काम ही है कि रिपोर्ट करें।
1: मैम, अभी हमारे पास इतने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं साइबर के केसेस को रिपोर्ट करने के, लोगों को पता ही नहीं है कि
0: जी
1: उनके साथ अगर नॉर्मल मॉर्फिंग या सेक्सटॉर्शन के केसेस होते तो उन्हें कहाँ कंप्लेंट करनी है, उनके साथ अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक बार इस प्लेटफॉर्म पे भी बताना चाहूंगी कि cybercrime.gov.in एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके साथ हुए किसी भी साइबर अपराध के बारे में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और अगर गलती से आपने पैसे का लेन देन कर दिया है किसी के झांसे में आके, तत्काल 1930 पे कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जितना जल्दी आप शिकायत करेंगे उतना जल्दी आपको रिलीफ मिल सकता है।
0: हम साथ ही में लोग विमेन एंड चिल्ड्रन स्पेशली अनोनिमसली भी कंप्लेन कर सकते
1: हाँ
0: हैं अगर
1: बिल्कुल,
0: सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाए जहां पे उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती।
1: नहीं होगी।
0: हम हमारे व्यूअर का सवाल आया है, सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियोस और एआई जनरेटेड कंटेंट वायरल हो जाते हैं, तो सिटीजंस उन्हें शेयर करने से पहले कौन से वार्निंग साइंस चेक कर सकते हैं?
1: देखिए, सोशल मीडिया पर हमारे पास जो चीजें दिखाई देती हैं जरूरी नहीं हो कि वो सही हो, इसलिए जरूरी है कि हम कुछ चीजें वेरीफाई करें। जैसे पहला है कि वो मैसेज या वो कंटेंट हमारे पास कहाँ से आ रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। सेकंड, क्या सेम इंफॉर्मेशन हमारे किसी गवर्नमेंट के या किसी ऑथेंटिक पेज पे भी अवेलेबल है। थर्ड रहेगा कि अगर वो कंटेंट ऐसा है जो कोई भड़काऊ मुद्दा बन सकता है या कल के दिन कोई इश्यूज क्रिएट कर सकता है, तो ऐसी चीजों को हमको रेड फ्लैग में कंसीडर करें, क्योंकि कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपसे ये बात छिपाई जा रही है, आज से नया ये नियम लागू होगा, इस मैसेज को तत्काल फॉरवर्ड करें। तो अगर कहीं पर भी ऐसी इमरजेंसी दिखाई जाती है तो हमें 2 मिनट रुकने की और सोचने की जरूरत है कि क्या ये एग्जैक्टली सच है या नहीं, क्योंकि हमें एज अ सिंगल पर्सन नहीं सोचना है। सोशल मीडिया पे चीजें वायरल बहुत तेजी से होती हैं, अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो गलत है और मैं उसे स्प्रेड करती चली जा रही हूँ तो वो 1 से 10, 10 से 10 हजार होंगे, और आपके साथ साथ अन्य लोग भी साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं।
0: हम अगर किसी को लगे कि उनकी फोटो, वीडियो या वॉइस का मिसयूज करके डीप फेक कंटेंट बनाया गया है, तो एविडेंस प्रिजर्व करना और रिपोर्ट करना करने का सबसे सही प्रोसेस क्या है?
1: देखिए, जैसे ही हमें जानकारी मिलती है कि हमारा कोई वीडियो या फोटो वायरल हो चुका है, तो सबसे पहला चीज जो हम करेंगे कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक, इंस्टा, अगर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे वो वायरल हो रहा है, तो तत्काल उस पर्टिकुलर फेसबुक आईडी का हम यूआरएल कॉपी करेंगे, सेव करके रख लेंगे। प्रोफाइल आईडी, प्रोफाइल में क्या नाम है, उसके सारे स्क्रीनशॉट्स, अगर आपका कोई चैट हुआ है, व्हाट्सएप पे चैट हुआ है, वो सारे स्क्रीनशॉट्स को आप प्रिजर्व करेंगे। एट द सेम टाइम अगर गलती से आपने कोई लेन देन कर दिया है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से भी रिलेटेड चीजें हम सेव करके रहेंगे। देखिए, मैंने ये टेंडेंसी अभी तक जो लोगों में देखी है वो अपने आपके जो एविडेंसेस होते हैं, अपने जो एविडेंसेस होते हैं उसको डिलीट करते जाते हैं, ये सोच के कि कल के दिन हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे तो हमारी गलती साबित हो जाएगी। यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो सारे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दे रहे होते हैं। अगर

0: मुझे इन्वेस्टिगेट करना है अगर पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे सारे एविडेंसेस का रिक्वायरमेंट है। इसलिए जरूरी है कि आप सारे एविडेंसेस को प्रिजर्व करके रखिए, उसमें कोई भी छेड़छाड़, थोड़ा भी अल्टरेशन अपने तरफ से मत करिए।
1: जी
0: चैट भी है, अगर आप अपने चैट डिलीट कर देंगे कि मुझे वन साइडेड चैट दिख रहे हैं तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी। बेहतर है सारी चीजों को जैसी थी वैसे ही रखें, और तत्काल या तो आप cybercrime.gov.in पोर्टल पे कंप्लेंट करें, या आपका जो नियरेस्ट थाना होगा आप थाने में जाके भी कंप्लेंट करा सकते हैं।
1: मैम, आखिर में एआई और डीप फेक के इस दौर में हर सिटीजन के लिए आपके साइबर सेफ्टी रूल्स क्या होंगे?
0: मैम पहला तो वेरिफिकेशन, कभी भी जो चीजें आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं आप उससे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि
1: जी
0: आपने, मैंने एग्जांपल में बहुत सारे केसेस बताए जिसमें फेस भी क्लोन हो जा रहा है, वॉइस भी क्लोन हो जा रही है, तो ये सारी चीजें तो आप वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। सेकंड, अपनी कोई भी निजी जानकारी आप ओपन सोशल मीडिया अकाउंट में बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एक
1: जी
0: सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो क्रिमिनल टेंडेंसी के व्यक्ति हैं वो आएंगे आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल अगर ओपन है तो वो उसी से आपके फोटोज निकाल रहे होते हैं, वीडियोस निकाल रहे होते हैं, आप एचडी क्वालिटी में अगर कोई वीडियो डाले हुए हैं तो उनको उसे ग्रैप करना, उसे निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ऐसी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे ओपनली नहीं डालेंगे। सेकेंड है, अर्जेंसी का अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो उसको वेरीफाई जरूर करेंगे। थर्ड, अगर कोई वायरल कंटेंट है तो ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना है हमें, हमें उसे वेरीफाई करना है कि क्या वो कंटेंट रियल है या नहीं है। पांचवा, अगर सॉरी चौथा, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके लिए पुलिस विभाग और सारे डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं, आपके हेल्प करने के लिए बैठे हैं, तो आप तत्काल शिकायत करिए। और एक सिंपल रूल जरूर याद रखिए, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो स्टॉप, तत्काल रुक जाएं, थिंक, 2 मिनट सोचें, वेरीफाई करें, एट द एंड आप एक्शन लें, जो आपको कई बार साइबर का शिकार होने से, साइबर अपराध का शिकार होने से बचा सकता
1: हम आपने पूरे सेशन में काफी अच्छी डिटेल में ये चीज हमें बताई, केसेस के थ्रू भी बताई, डीपफेक टेक्नोलॉजी, एआई एनेबल साइबर फ्रॉड्स और उनसे बचने के प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस पर आपकी गाइडेंस हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस ड्रिवन रही। हमें उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद लोग सिर्फ किसी वीडियो, फोटो या वॉइस पर भरोसा करने के बजाय हर इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट को वेरीफाई जरूर करेंगे।
0: वेरिफिकेशन सबसे जरूरी चीज है। थैंक
1: थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड
0: यू।
1: टू ऑल द व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम एक और इम्पोर्टेंट साइबर सेफ्टी टॉपिक के साथ।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज़ कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज़ नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज़ पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, ज़ोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और ज़ोर से लगेगी, जितनी और ज़ोर से लगेगी दर्द और ज़ोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और ज़ोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज़ फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज़ इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज़ को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पर चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, हाँ नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, जिस प्रकार से आपने बातचीत सुनी, एक्सपर्ट्स जुड़े थे, और किस प्रकार से जो फ्रॉड होते हैं, क्लोनिंग को लेकर बात की गई, डीप फेक को लेकर बात की गई, लेकिन एक सोल्यूशन भी मुझे सुनाई दिया और ये भी बताया गया कि तुरंत आपको कंप्लेंट करनी है और तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, कंप्लेंट जल्दी करनी है, रिएक्शन लेट करना है। ये फॉर्मूला है जो मुझे समझ में आया। और जैसा कि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताई, अगर आपने उन्हें नहीं सुनाया तो मैं दोहरा देती हूँ उस इंसिडेंट को, जो मिस अपराजिता सिंह राणा जी जुड़े थे, सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम पेट्रोलिंग यूनिट के, छत्तीसगढ़ पुलिस के, और साइबर सेफ से आपने उनकी बातें सुनी, साइबर दोस्त के माध्यम से आपने उनकी बातें सुनी। आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया पर भी इसे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, आपको जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो उन्होंने ये बताया कि, और जो एंकर थी वो भी बता रही थी कि ये केस इस प्रकार से हुआ कि एक बच्चा था और वो थोड़ा बड़ा था, उनकी मम्मी शायद नहीं मिल रही थी और अचानक से वो वीडियो कॉल आता है जिसमें उनको चेहरा भी दिखाई देता है अपनी मदर का, आवाज़ भी वैसी ही सुनाई देती है और वो कुछ परेशानी में है या इस प्रकार से वो बोलती है। लेकिन वो बच्चे को डाउट हो गया था क्योंकि आजकल उसको पता था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आवाज़ को भी कॉपी किया जा सकता है, चेहरे को भी कॉपी किया जा सकता है। तो उसे डाउट हुआ तो उसने अपनी मम्मी से पूछ लिया कि मुझे खाने में कौन सी डिश पसंद है, मेरी फेवरेट क्या है। और क्योंकि वो साइबर क्रिमिनल्स थे जो उनकी कॉपी कर रहे थे, वो बता नहीं पाए, वो जवाब नहीं दे पाए और वो बच्चा समझ गया कि ये उसकी मम्मी नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा केस भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक पेरेंट्स जब घबरा गए, बच्चा टाइम पे नहीं आया, तो पुलिस वालों ने बताया कि किस प्रकार से लोगों ने उनके अभी बच्चे का भी डीप फेक बनाने के उनको परेशान करना चाहा, उनसे पैसे लेने चाहे। लेकिन ऐसे में दोस्तों, या तो कोई एक कोड वर्ड, कोई एक ऐसा शब्द हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों के पेरेंट्स के बीच में, जैसा कि बात होती थी कि घर से कोई, कई बार स्कूल से लेने कोई और आते हैं और बोलते हैं कि नहीं आपको हमारे साथ चलना है, आपके मम्मी पापा ने हमें भेजा है, तो वहाँ पे कई बार पेरेंट्स कोई एक कोड वर्ड बना लेते हैं कि आपको कोई भी लेने आएगा तो वो आपको ये कोड वर्ड बोलेगा, तभी आप साथ जाना, वरना नहीं। तो इस प्रकार से कोई इस तरह का शब्द या इस तरह की बात, जैसे वो बच्चे ने पूछ लिया कि मेरी फेवरेट डिश क्या है, कोई एक रैंडम सवाल भी पूछा जा सकता है क्योंकि अगर वो आपके क्लोज रिलेटिव हैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो क्विक थिंकिंग है, वो मदद करती है ऐसे केसेस में कि आप फंसे नहीं, आपका किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। और डेफिनेटली दोस्तों, आजकल हम जानते हैं कि बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन डर के जीना तो इसका समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इस दुनिया में रहना है, आगे बढ़ना है, सारे तरह के डीलिंग्स भी करनी है, बाहर भी ट्रैवल करना होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन साथ में सोल्यूशन ये ज़रूर हो सकता है कि हम घबराएं नहीं, डरे नहीं, तुरंत रिएक्ट नहीं करें, पहले रुकें, धैर्य से सोचें और उसके बाद निर्णय लें। तुरंत निर्णय नहीं लेना है। एक साइबर एक्सपर्ट जब रेडियो मधुबन पर आए थे तो उन्होंने यही सुझाव दिया था कि दो ही तरह से साइबर क्राइम के जाल में आप फंस सकते हो, एक है डर, एक दूसरा है लालच। अगर आपको लगेगा पैसा डबल हो जाएगा या जल्दी मिल जाएगा या कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, वो आपको फंसा सकते हैं। या फिर अगर आपको तुरंत डर लग जाता है, अपनों के केस में अपनों की हेल्थ की बात आती है तो व्यक्ति डरता ही है, लेकिन वहाँ पे समझ के साथ ही एक्ट करना है, तुरंत डरना नहीं है, डर बल्कि ये देखना है क्या है सिचुएशन, क्या है और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो दोस्तों मददगार होता है कोई और परिस्थिति आए उसमें भी। तो इसलिए हम जितना अपने आप को मेंटली मजबूत बनाते जाएंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, उतना ही हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपनों को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन भी दोस्तों आपकी सहायता करता है, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हम बात करते हैं, लव यू जिंदगी भी आप कार्यक्रम सुनते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर बात होती है। और अगर कोई और विषय है जिसमें आपको लगता है कि रेडियो मधुबन मदद कर सकता है, या आपको क्लैरिटी चाहिए, या आप और जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे नंबर पर, या आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। रेडियो मधुबन का नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। तो अपनी दुविधा ज़रूर बताइए, किस बारे में आप जानकारी चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फेक अकाउंट्स हो, या फिर कोई और बात हो जिसमें आपको लगता है कि आपको मदद चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट्स को जोड़ें और उनके माध्यम से आपकी भी प्रगति हो सके। फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे इजाज़त लेने का। अगला कार्यक्रम उड़ान लेकर आएंगी आरजे मोना कुछ ही क्षणों में रेडियो मधुबन पर।
बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पीछे पीछे पीछे चल। वह स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है अभी
1: राघव।
0: हम दोनों साथी लेकर आएंगे आपके लिए कहानी, सवाल, कविता, साथ ही साथ अमेजिंग जानकारी। आप सभी दोस्त हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। आप सुन रहे हैं क्योंकि उड़ान, सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए।

0: अमेजिंग जानकारी के साथ हम दोस्त आपको जोड़ चुके हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है
1: राघव।
0: चलिए दोस्तों, सवाल से पहले सुपर ब्रेन इसके विषय पर कुछ जानकारियाँ आप तक पहुँचाते। सुपर ब्रेन, हमारा ब्रेन यानी दिमाग हमारे शरीर का पावर हाउस माना जाता है। यहीं से पूरे शरीर की एक्टिविटी कंट्रोल होती है। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन हमारे शरीर का सबसे जटिल या कॉम्प्लेक्स अंग है। इसमें करीब 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। वहीं पर मस्तिष्क का लगभग 75% अर्थात 75% हिस्सा पानी से बना होता है। इसलिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए जिससे दिमाग सही काम कर सके और दिमाग के अंदर जरूरी चीजें पहुंच भी सके। वहीं पर तीसरा, मस्तिष्क पर हर सेकंड लाखों संदेश भेजे जा सकते हैं और उसे प्राप्त भी होते हैं, जिससे शरीर का हर हिस्सा तेजी से काम करता है। चलिए, जब दिमाग के बारे में बात हो रही है तो थोड़ा दिमाग लगाना आपको जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान, जी हाँ, ये महाभारत से जुड़ा हुआ सवाल है और महाभारत के बहुत सारे भिन्न भिन्न पात्र हैं और ये सभी पात्र हमारे से कहीं ना कहीं अभी भी रिलेट होते हैं, हमारे जीवन से भी रिलेट होता है। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगदत्त किस प्रकार के पशु पर सवार थे जब उन्हें अर्जुन ने मारा? आपके सामने ऑप्शन है सांड, बी घोड़ा, सी हाथी। रिपीट कर दीजिए राघव।
1: ऑप्शन बी,
0: ऑप्शन ए,
1: ऑप्शन ए सांड, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी।
0: झटपट जवाब दीजिए, 9414151415 पर जवाब दीजिए। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगदत्त किस प्रकार के पशु के ऊपर सवार थे जब उन्हें अर्जुन ने मारा था? देर मत करना, रेडियो मधुबन पर सवाल का जवाब से जरूर देना। 9414151415 पर सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं? एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज़ एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बंद है मोटर कार, चलिया धक्का मार। लेकिन उसके बाद सीधे चलते हैं आज के सवाल की ओर। लेकिन अमेजिंग जानकारी के बाद क्यों नहीं कविता भी सुन लीजिए। मस्तिष्क का कमाल, अद्भुत है ये रचना तेरी, मानव के भीतर जो समाई, हड्डियों के एक पिंजड़े में दुनिया भर की समझ समाई, नन्ही सी एक खोपड़ी अंदर ब्रह्मांड सा विस्तार है, हर सोच हर एक कल्पना का यही तो मूल आधार है, यादों के अनगिनत झरोखे, यादों के अनगिनत झरोखे, भावनाओं का संगम यहाँ है, खुशियों के पल गम के साए, रहता है हर मौसम यहाँ है, कब क्या करना कैसे चलना पल भर में तय कर लेता है, थक जाए सारा शरीर जब या फिर भी बल देता है, नसों का ये अद्भुत जाल है, संकेतों की बिजली दौड़ती है, इच्छाओं और सपनों की यह हर पल नए पौधे रोपती है, इसे पहचानो इसे सवारो, ज्ञान का दीप जलाए रखो, मस्तिष्क की इस शक्ति से जीवन को आप महकाए रखो। वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच एक कॉलर भी आ चुके हैं, जरूर बात करेंगे उनसे भी। नमस्कार, रेडियो मधुबन में आप सभी का स्वागत है।
1: हेलो हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: ओम शांति। ओम शांति राघव जी, मोना जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
1: और आज का सवाल का जवाब हाथी हो सकता है।
0: हाथी हो सकता है, अच्छा, चलिए शुक्रिया। थैंक यू
1: शुक्रिया दीदी,
0: शुक्रिया
1: राघव जी।
0: चलिए एक और कविता राघव लेकर आ रहा है। राघव, आपकी कविता।
2: सबसे बड़ा होता है हाथी, सारे छोटे संगी साथी, लंबे लंबे दो इसके दांत, सूंड हिलाए जो दिन रात,
0: कान सूप जैसे दो भारी, पीठ पे कर लो इसकी सवारी, झूम झूम के चलता जाए, सबका मन यह बहलाए। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल ये बहलाता तो अच्छी तरीके से है, और साथ ही साथ आज का सवाल एक बार आप दोस्तों के लिए पुनः है। सवाल है, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगदत्त किस प्रकार के पशु पर सवार थे जब उन्हें अर्जुन ने मारा था? ऑप्शन ए,
2: ऑप्शन ए सांड, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी।
0: झटपट जवाब दीजिए। नंबर है हमारा 9414151415 पर सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए।
3: मैं धुंध धुएं के पार कहीं मृदवंतहीन सी आशा हूं, जो सबसे सुंदर काव्य रचे, मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं, मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं।

0: शिवा शिवा ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे बीच एक श्रोतागण पहुंच चुके। नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: ओम शांति। पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
0: हूं। हां जी फिरोज जी, कैसे हैं आप?
1: बस एकदम अच्छे हैं
0: जी, शुक्रिया।
1: और 15 अगस्त का भी हमारा प्रोग्राम अच्छा रहा। क्या स्कूल के अंदर हमने प्रोग्राम दिया हुआ था।
0: ओके, बहुत अच्छी बात है।
1: लोग और गांव के लोग भी एक बोले, फिरोज भाई आप तो चार जान लगा दिए और आप तो हमारे वड़गाम के वो ये वो क्या हाजी रमकड़ा बोलते हैं ना, मिमिक्री वाले।
0: हाँ।
1: तो क्या आपका नाम हाजी रमकड़ा बोलते हैं, ऐसा बोला
0: अच्छा,
1: मेरे को।
0: अच्छा।
1: और दूसरा बेंजी के प्रश्न का जवाब मैं अभी एक गीत गाता हूँ, इसके अंदर है वो गीत
0: जी। ठीक है, बताइए।
1: चल चल चल मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, चल रे चल कतारा खींच के।
0: जी थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आप गीत के माध्यम से अपने जवाब को हम तक पहुंचाए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। रेडियो मधुबन में के साथ आप जुड़े रहिए।
1: और राघव जी को भी हमारा सलाम नमस्कार, सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं।
0: थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच थे फिरोज जी। आज के सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया खास। आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते अगला गीत, जिंदगी मौत न बने।

0: बिल्कुल, मेरा गांव मेरी पहचान है। इसके साथ साथ ये बात भी स्पष्ट है कि गांव के अपने इतिहास को, गांव की अपनी बातों को आप दूसरे तक जरूर रख सकते हैं। आपके गांव की जो खासियत है, आपके क्षेत्र की खासियत को, आपके क्षेत्र की संस्कृति को, आपके क्षेत्र की पहचान को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मेरा गांव मेरा पोर्टल जो है, आप उस पोर्टल को ज़रूर लॉगिन करिए और इस पोर्टल में जाकर अपने एरिया की जो संस्कृति है, कला है, या फिर वो उस जगह की कोई खासियत है, उसे अपलोड कीजिए वीडियो इत्यादि के माध्यम से और वहाँ पर सारी जानकारियाँ आप जरूर दीजिए। जी बोलिए सर।
1: हेलो,
0: बोलिए बोलिए।
1: एक बात रह गई, देखो आज का वंदे मातरम उसमें प्रीति वीरांगना और कल्पना दत्त, जिसमें आपने बहुत अच्छा पार्ट निभाया और झांसी की रानी ने भी 1930 तो 1932 की अपना भारत की स्वतंत्र वीरों की

0: क्या रे कालू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
1: अरे दादाजी, आपके बगीचे में बैठकर हवा खा रहा हूँ।
0: अच्छा बिल्लू बेटा, तू यहाँ कालू के साथ बैठा हुआ है क्या? वो तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, अगर तेरी माँ को पता चलेगा तो वो तुझे डांटेगी।
1: हाँ तो डांटने दीजिए, मुझे हर समय पढ़ना अच्छा नहीं लगता।
0: अरे बेटा ऐसी बातें नहीं करते, अगर तू पढ़ेगा तो बहुत कुछ नया नया जान पाएगा बेटा, सीख पाएगा। कालू ने पढ़ाई नहीं की है इसीलिए उसे कुछ भी नहीं पता।
1: कालू बहुत कुछ जानता है, जो मुझे भी नहीं पता है वो भी जानता है।
0: अच्छा तो कालू ऐसा क्या जानता है जो तुझे नहीं पता है?
1: कालू पेड़ पर चढ़ सकता है, गुलेल चलाना जानता है, पंछियों की आवाज निकालता है।
0: अरे क्या ये सब अच्छी बात है? अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते।
1: मुझे ये सब नहीं पता है, मुझे ये सब सीखना है, पंछियों की आवाज निकाल कर उनसे बात करनी है। चल कालू, हम घर चलते हैं, आज बहुत देर हो गई है।

0: कितने परसेंटेज आए हैं?
1: देखिए ना, सब तो ठीक ही है। अंग्रेजी की क्लास लगाने से अंग्रेजी में तो अच्छे नंबर मिले हैं इस बार इसे, लेकिन बस मैथ्स में नंबर कम आए हैं इसके।
0: तो फिर मैथ्स का भी एक टीचर रख दो।
1: वो तो रख दे, लेकिन टाइम कब मिलेगा इसे बताइए।
0: क्यों, शाम को?
1: बच्चे को उसी समय खेलने का तो समय मिलता है, अगर वो भी हम ट्यूशन में लगा देंगे तो वो खेलेगा कब?
0: ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, अभी खेलेगा तो बाद में ये कब पढ़ाई करेगा बताओ। अभी कंपटीशन का जमाना है, अभी पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो पीछे रह जाएगा।
1: अच्छा ठीक है, ऐसा ही होगा। बिल्टू, कल शाम को खेलने मत जाना, तुम्हारे नए सर आएंगे।
0: अरे क्या हुआ, खाना लगा दो। 10:30 बज गए हैं और देर हो गया तो ट्रेन नहीं मिलेगी मुझे।
1: आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। आज सुबह से ही तुम बाप बेटे की फरमाइश सुनते सुनते मेरी जान ही निकल गई।
0: अरे बस कुछ देर की ही बात है, उसके बाद तो मैं चला जाऊंगा, उसके बाद ऐश कर लेना, ठीक है?
1: ऐश? बताओ, अगर मैं भी ऐश करने लग गई तो काम कैसे होगा फिर?
0: अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, खाना लगाओ। बिल्टू ने खाना खाया?
1: लाड साहब गुस्से में है, कल से मुंह फुलाकर बैठा हुआ है, सही से खा भी नहीं रहा।
0: गुस्सा करने से नहीं चलेगा, उसे ठीक से समझाओ। अंदर आ सकता हूँ?
1: आइए आइए मदन बाबू।
0: मैडम, बिल्टू ने कुछ किया है क्या?
1: पिछले 6 महीने से आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या?
0: प्रॉब्लम? क्यों मैडम?
1: नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बिल्टू का रिजल्ट पहले से खराब ही हो रहा है, अब तो वो हर रोज स्कूल भी नहीं आता, इसलिए सोचा कि आपसे एक बार बात कर लूं।
0: डेली स्कूल नहीं आता मतलब? बिल्टू तो डेली स्कूल आता है।
1: क्या बोल रहे हैं आप, बिल्टू रोज स्कूल नहीं आता है, आज भी वो स्कूल नहीं आया।
0: आज भी नहीं आया? तो फिर डेली स्कूल जाने के बजाय वो कहाँ जाता है, पता नहीं।
1: अब ये तो मैं नहीं बता सकती, बिल्टू ना तो रोज स्कूल आता है और ना ही ठीक से पढ़ाई लिखाई करता है, इसलिए आपको बुलाया।
0: ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ कि बिल्टू स्कूल जाने के बजाय कहाँ जाता है।

0: गीता, गीता कहाँ हो? यहाँ पे आओ, देखो तुम्हारा लाडला क्या कर रहा है।
1: क्या हुआ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ बेटा, तुम इतना रो क्यों रहे हो?
0: ये क्या बताएगा, तुम्हारा लाडला स्कूल जाने के बजाय सारा दिन पता है कहाँ रहता है? हमेशा उस गवार कालू के साथ घूमता रहता है। तो फिर इसका रिजल्ट खराब नहीं होगा तो किसका होगा बताओ?
1: ये क्या, ये सब किसने बताया आपको?
0: स्कूल की मैडम ने बताया, कहा कि बिल्टू रोज स्कूल नहीं आता है, आज भी नहीं आया, इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाकर इसे यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा था।
1: अच्छा ठीक है ठीक है, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं देखती हूँ इसे।
0: बिल्टू कहाँ है, उसे तैयार कर दो, मैं ऑफिस जाते समय उसे स्कूल छोड़ दूंगा।
1: आज बिल्टू को स्कूल जाने की जरूरत नहीं, उसका शरीर आज थोड़ा गरम गरम है।
0: ये सब ड्रामा है, पढ़ाई के डर से बुखार आ गया है उसे, तुम उसे तैयार करो, मैं उसे लेकर चला जाऊंगा।

0: क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ?
1: आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत बुखार था इसे, चुपचाप बैठा हुआ था और अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने जो भी कहा कुछ भी समझ नहीं रहा था।
0: बेटा बिल्टू, क्या हुआ तुझे?
1: मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, इन दवाइयों को टाइम से दे दीजिए इसे, उसे अभी थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। और डॉक्टर ने कहा है कि हो सके तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक से दिखाइए।
2: बिल्टू बेटा, चिड़िया देखोगे? अच्छा ठीक है, जाओ छत पर जाकर चिड़िया देखो। सिक्योरिटी है, डरने की जरूरत नहीं है आपको, उसे कुछ भी नहीं होगा। इलाज शुरू करने से पहले मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए आप लोगों से।
3: कहिए क्या जानना है?
2: बिट्टू जो भी पढ़ता है उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाता, ऐसा कब से हो रहा है?
1: ये बुखार होने से कुछ समय पहले से हो रहा है। पढ़ने में तो वो अच्छा ही था, स्कूल में सेकंड आता था। एक गवार लड़के से उसकी दोस्ती हो गई और तब से उसकी पढ़ाई लिखाई चौपट है।
2: अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए, जब बिट्टू सेकंड आता था उसके लिए डेली रूटीन क्या था?
3: क्यों?
2: अरे बताइए ना, बाकी चीजें बाद में बोलता हूँ।
1: तब सुबह टीचर आते थे, बिल्टू सुबह ही पढ़ता था, फिर स्कूल जाता था और फिर शाम को खेलता था और उसके बाद थोड़ी पढ़ाई लिखाई करता था।
2: हाँ, और अब?
3: अभी भी वैसा ही है, लेकिन अंग्रेजी, मैथ्स और हिंदी में थोड़ा कमजोर है, इसीलिए दिन में 3 बार ट्यूशन पढ़ता है।
2: और छुट्टी के दिन, मतलब शनिवार और रविवार?
1: 2 दिन छुट्टी ही रहती है, बस शनिवार को गाना सीखता है और ड्राइंग में अच्छा है, इसी वजह से रविवार को ड्राइंग सीखता है।
2: वो पहले गाना और ड्राइंग सीखने जाता था क्या?
3: नहीं, घर में रहने से ही घूमता था, इसीलिए मैंने उसे भर्ती कर दिया।
2: ठीक है, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया है। अभी बिट्टू के इस हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप लोग हैं। भले आपको बुरा लगे, लेकिन उसकी हालत के जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं।
1: क्यों डॉक्टर साहब?
2: देखिए, इस उम्र में छोटे बच्चे थोड़े बहुत तो शरारती होंगे ना, ये तो सामान्य बात है, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने उस पर एक के बाद एक दबाव डालते थे। आपके फैसलों ने बिट्टू के बचपन को किशोरावस्था में पहुंचा दिए। आप लोगों के अत्यधिक दबाव से बिट्टू के बचपने को बहुत ही गहरी चोट पहुंची है। इतने सारे दबाव और डर की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई है।
3: अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब?
2: आपको कुछ नहीं करना है, बस उसे जवाब से मुक्त कीजिए। और हाँ, उसके मन में आपके प्रति जो डर पैदा हुआ है उसे दूर करने का प्रयास करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।

0: एक और चुटकुल्ला हम लेकर आए हैं आज की उड़ान में।
1: डॉक्टर ने कहा, बेटा युग सुबह दौड़ लगाया करो। युग, ठीक है डॉक्टर साहब, एक हफ्ते बाद। अब कैसा लग रहा है बेटा युग? युग ने कहा, बहुत मजा आ रहा है डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर ने युग से पूछा कि तुम कहाँ से कब दौड़ते हो और कितने बजे दौड़ते हो? युग ने कहा, जब मम्मी आवाज़ लगाती है कि दूध पी लो, तब मैं दौड़ना शुरू कर देता हूँ पूरे घर के अंदर।
0: चलिए दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगदत्त किस प्रकार के पशु पर सवार थी जब उन्हें अर्जुन ने मारा था? हमने आपके सामने ऑप्शन रखा, ए सांड, बी घोड़ा, सी हाथी। झटपट जवाब दीजिए इसका 9414151415 पर। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं भारत हूँ और आज का सवाल महाभारत से है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगदत्त किस प्रकार के पशु पर सवार थे जब उन्हें अर्जुन ने संहार किया था? ऑप्शन ए सांड, बी घोड़ा, सी हाथी। तो क्या सांड पर सवार थे?
1: नहीं नहीं।
0: या फिर घोड़े पर?
1: नहीं।
0: लोग बाग घोड़े पर सवार होकर तो जाते हैं, मुहावरा भी सुना होगा ना, घोड़े पर सवार।
1: हाँ, लेकिन इसका सही आंसर है हाथी।
0: अच्छा, हाथी पर सवार। हाँ। ये तो मुहावरा भी नहीं है, कहावत भी नहीं है, तुम हाथी पर सवार कर रहे हो।
1: नहीं, लेकिन हाथी ही सही आंसर है।
0: चलिए दोस्तों, आप सभी को आज के सवाल का जवाब जरूर मिला है। सो मंगलवार को मिलने का वादा करते हैं, ठीक शाम 6 बजे
1: से 7 बजे तक।
0: तब तक के लिए
1: गुड बाय।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।
0: रीति मधुबन 107.8 FM।

अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस एक मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कार्यक्रम का नाम ही अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गाँव और जिस अंचल में रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल कभी नहीं भूल पाते। तो सरकार का जो मंशा है जो रेडियो स्टेशन दिया है आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया में बच्चों को मिलेगा, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का सहयोग से विद्यार्थी का विकास और सर्वांगीण उन्नति के लिए चाहे बौद्धिक विकास हो चाहे नैतिकता हो चाहे शारीरिक सभी विकास के लिए एक मंच मिल रहा है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हम पहुंचे और संस्था के संस्था प्रधान श्रीमान प्रिंसिपल साहब और उनका सहपाठी सभी साथी सभी स्टाफ को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को बारी बारी अपना आवाज को देंगे, उनका आवाज ही उनका पहचान होगा। तो इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं श्रीमान देवेंद्र सर जी को, तो उनको स्वागत करते सर। एक वार्म अप बच्चों को करा दीजिए। आप ईश्वर विश्वविद्यालय को बढ़िया से जानते हैं और रेडियो मधुबन को भी बढ़िया से जानते हैं किस तरह गतिविधि कितना साल से हम आप जब भी आते हैं आपसे परमिशन होता है संस्था का जो भी प्रिंसिपल रहते हैं उनसे परमिशन से कार्यक्रम होता है। 10-15 साल से हम इस स्कूल में हर साल आते हैं तो आप हमें भले भांति जानते हैं और बच्चों को भी रेडियो मधुबन के बारे में हो चाहे ब्रह्मा कुमारी जो गतिविधि कर रहे हैं उसका बारे में थोड़ा बताइए। बच्चों को एक वार्म अप हो जाए आपका आवाज को सुनकर वो उनका आवाज भी बुलंद होगा। आपको स्वागत, अपना इंट्रोडक्शन प्लीज।
1: ओम शांति, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र सिंह राठौड़ है, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यारिया। आज रेडियो मधुबन की तरफ से पवित्र भाई और उनकी टीम क्यारिया स्कूल में कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए आई है। एक अच्छा मंच है, इस मंच के माध्यम से हमारे आदिवासी अंचल के बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जहां तक हो सके अपने विचारों को गीतों के माध्यम से भावों के माध्यम से कविता भाषण के माध्यम से रेडियो मधुबन के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका जो हर वर्ष एक नई थीम लेके आते हैं, कभी स्वच्छता कभी कम्युनिटी हेल्थ कभी नशा मुक्ति कभी इन बच्चों के अंदर जो एडिक्शन है उन एडिक्शंस को दूर करने के लिए मोबाइल से अवेयरनेस, ऐसे बहुत सारे थीम के साथ ये आते हैं। इस बार आपकी थीम है ये अपने स्वच्छता और सफाई, जिसके तहत रेडियो मधुबन की तरफ से विद्यालय को हर क्लास के अंदर एक डस्टबिन दिया जा रहा है। विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही साथ इन ग्रामीण अंचल के बच्चों को रेडियो मधुबन जैसा एक वैश्विक स्तर का मंच देने के लिए पुनः मैं आभार ज्ञापित करूंगा। अब कार्यक्रम को बच्चों की ओर लेके जा रहे हैं, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और हमें बहुत खुशी है इस तरह हमारा कार्य को सराहनीय माना और जब भी आते हैं जो भी जितना भी ना ज्यादा ना कम सहयोग देते हैं और एक जनहित में बच्चों का हित में जो भी जो समय जो मिलता है वो बच्चों के पास हम पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं और बच्चों को झिझक जो रहता है उसको दूर करने के लिए हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि ग्रामांचल बच्चे हैं पूरा आदिवासी TSP एरिया के बच्चे हैं, फिर भी उनको एक मंच जो रेडियो में कैसे बोलते हैं आकाशवाणी में जब उनका आवाज आएगा तब तो बच्चे जब सुनेंगे उनका माता पिता जब सुनेंगे उनका दोस्त लोग सुनेंगे उनका परिवार वाले जब सुनेंगे ये तो हमारा राधे का आवाज है ये तो मेरा बेटी का आवाज जब सुनेंगे आकाशवाणी में तो बहुत खुशी होगा, नामांकन में भी वृद्धि होगा, स्कूल का नाम भी रोशन होगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं तो हमें बहुत खुशी लगा। और बच्चों का आवाज सुनेंगे क्योंकि बच्चों को तो वार्म अप करा दिए, बच्चों को सुनेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और खासकर आज आप सब सुन पा रहे हैं अपना वॉल्यूम को तेज करके चाहे इंटरनेट का माध्यम से चाहे FM का माध्यम से चाहे लिंक का माध्यम से चाहे आपका माध्यम से आप सुन पा रहे आपका पास पहुंच रहा है। और बच्चों का आवाज को बुलंद करने के लिए आप श्रोता का भी बहुत आवश्यक होता है, तो हमारा जो रेडियो जहां तक पहुंचता है वो सुन रहे हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चों का प्रार्थना का रूप में एक गीत आपको मिलेगा सुनने को, क्योंकि हर कार्यक्रम में हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, हर स्कूल में विद्यालय में जो प्रार्थना सत्र में जो करते हैं वो चीज आपके पास रखेंगे, इनका आवाज भी सुनेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहले हम आपसे पुनः मिल रहे हैं और ब्रेक का पहले आप एक अच्छा गीत भी सुना, बच्चों का गीत को भी सुनेंगे। लेकिन हमारा जो देवेंद्र सर भी ब्रेक का पहले बहुत कुछ बताए संस्था के बारे में और विद्यालय के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे बीच बीच में सभी से। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं बच्चों से, कुछ छात्र हैं जो आदिवासी फील्ड में आते हैं और जो ग्रामांचल बच्चे कम नहीं शहरांचल बच्चों को उठा कर देखें, उनका जो शुद्धता भोलापन और मासूम जो शब्द में भाव और भावना आज सुनेंगे माँ सरस्वती वंदना का साथ। तो लीजिए पहला प्रस्तुति, खासकर बच्चों का आवाज और अपना नाम बताएंगे, कौन सा क्लास और कहाँ से बिलोंग करते, क्या रिया ना कोई जोड़ फली की कहाँ पर आते, वो फली का नाम भी बताएंगे तो हमें पता चले कौन बच्चे कहाँ से आते और कितना मेहनत करके आते हैं, अपना परिचय देंगे।
2: मेरा नाम लसी कुमारी।
1: कौन सा क्लास?
2: मैं कक्षा 11 से।
1: वेरी गुड। और लसी कौन सा गाँव से आती है तुम?
2: डेढ़वा क्लास।
1: और स्कूल का पूरा नाम बताइए, विद्यालय?
2: माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
1: ठीक है।
3: मेरा नाम सुनकी कुमारी है, मैं कक्षा 11 से, मेरा गांव का नाम क्यारिया है।
1: वेरी गुड।
3: मेरा स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा।
4: मेरा नाम रायली कुमारी है, मैं कक्षा 11 से, मेरे गांव का नाम डूनाकाकर है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
1: डूनाकाकर बहुत दूर से।
5: मेरा नाम पूजा है, मैं रेड़वा कला से आती हूँ, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
6: मेरा नाम दुर्गा कुमारी है, मैं क्यारिया जोड़ से आती हूँ, मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
7: मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं क्यारिया की हूँ, मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया। हम सब एक प्रार्थना सुनाएंगे,
1: शुरू करो।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा और क्या क्या नाम बोले दुर्गा, तुम्हारा नाम कौन रखा है दुर्गा बता, मम्मी ना पापा ना, कौन रखा है दुर्गा? अच्छा नाम है, मुझे बहुत खुशी लगा, क्योंकि दुर्गा एक देवी का नाम है ना, पापा हो चाहे मम्मी नाम रखते ना, जिसको जो उनका भी नाम आएगा, पिताजी का भी नाम आएगा, हमें खुशी लगे जब सुनेगा अरे वाले दुर्गा को नहीं, उससे दुर्गा का आई को पापा को लोग जानते होंगे, उसी से पता चला ये उनका बेटी है, तो प्रचार प्रसार भी होगा और उनको एक सम्मान मिलेगा। दुर्गा बताओ, दादा दादी है घर में
1: जी?
0: घर में कौन कौन है बताओ दुर्गा, दादा दादी से लेकर कौन कौन है?
1: मेरे घर में दादी दादा भाई बहन
0: और ओ वेरी गुड,
1: मम्मी पापा,
0: मम्मी पापा दादा दादी, सबसे आपको अच्छा कौन प्यार लगते हैं, कौन प्यार करते हैं ज्यादा?
1: मम्मी पापा,
0: मम्मी पापा ज्यादा करते हैं, लेकिन मम्मी पापा तो भगवान तुल्य होता है, माँ बाप तो घर के सब बच्चों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं बच्चों के लिए, इसलिए माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। भूलेंगे बच्चे माँ बाप को? भूलना है भले सबको भूलो, लेकिन माँ बाप को कभी
2: नहीं भूलेंगे,
0: क्योंकि माँ बाप हमारे लिए सब कुछ, माँ बाप हमारे लिए
2: सब कुछ है।
0: आवाज तो आया नहीं मेरा पास,
2: सब कुछ है।
0: हमें सब कुछ देते हैं माँ बाप, हमें सब कुछ देते हैं, इसलिए हमें उनको याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे और एक प्रस्तुति, हमारा और परिया भी बैठे हैं, वो भी अपना प्रस्तुति देंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, पूजा दुर्गा और उनका साथी सभी को, सबको धन्यवाद, इस कार्यक्रम को सजाए सुंदर रूप में, अपना ताल का साथ माँ सरस्वती का वंदना सुनाए, हर स्कूल में ये गीत होता है और कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा दिए, तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर बच्चों का आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए वंस वंस करते हुए और दूसरे बच्चे भी भाग लेंगे क्योंकि सबको आज मंच मिलेगा। ओपन राउंड है अपना टूटी फूटी आवाज में पहला प्रस्तुति जब देते हैं रेडियो में तो कोई साज नहीं कोई बाजा नहीं कोई प्रिपरेशन नहीं अचानक जाते हैं अचानक और एवर रेडी बच्चे रहते हैं और बहुत काल का अभ्यास तब जाकर रेडियो में आते हैं। अचानक पहुंचते हैं कोई सूचना नहीं है ना सर कोई सूचना दिया था कोई स्कूल में कभी भी जाते कोई सूचना नहीं और हमारा कार्यक्रम इतना सुंदर हो जाता है क्योंकि हमारा जो भाव है भावना सब बच्चों को मिले इस भावना को लेकर जब पहुंचते कहीं ना कोई ऊपर जो दैवी शक्ति जो हम जिसको हम आह्वान किए ना शुरू में हमारा कुलदेवी कुल देवता को आह्वान करो भगवान को आह्वान करो वो हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए हमारा गुड़िया सब बैठे हैं तो उनको भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए और हमारा देवेंद्र साहब को कौन भूल पाएंगे। देवेंद्र सर इस बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए आप बताइए कौन कौन उपस्थित है इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। नेक्स्ट ग्रुप
1: अगला ग्रुप कक्षा 9th की नन्नी मुन्नी बालिकाएं हैं जो एक बहुत ही प्यारा सा लोक संगीत आपके बीच में पेश करेंगे।
0: क्या बात
1: ये लोक संगीत इनके आदिवासी ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है।
0: सही बात।
1: और इसी क्रम में मैं इन नन्नी मुन्नी बालिकाओं से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वो अपना परिचय दें, अपना नाम, विद्यालय का नाम, गांव का नाम के साथ।
0: तो चुप्पी तोड़ेंगे ही बच्चे, चुप नहीं रहेंगे।
2: मेरा नाम हीना है, मैं कक्षा 9th से हूँ और मैं कैरिया से आती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैरिया है।
0: क्या बात, कितना बुलंद आवाज।
3: मेरा नाम राधा है, कक्षा 9th से, मेरे गांव का नाम क्यारिया है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
0: वेरी गुड।
4: मेरा नाम पानरी है, मैं कक्षा 9th से, मैं क्यारिया जोड़ से आती हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक।

0: एक विद्यालय कैरियर। मेरा नाम सीमा है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम रेडवा कलर, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैरियर।
1: गुड, बच्चे तो बड़ा होशियार है सभी।
2: मेरा नाम कमला कुमारी है, मैं कक्षा 9 से। मेरे गांव का नाम कोटब्यापल्ली, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैरिया।
1: तो श्रोता मित्र, कितना फॉली का नाम सुन लिया, कोटोबिया फॉली। और
2: हम सब मिलकर एक देसी गीत गाएंगे।
1: हाँ, आदिवासी गीत गाएंगे जिसमें मिठास। ओके, शुरू करो।

0: कोई मत काटो।
1: सही में पर्यावरण एनवायरमेंट जो गीत एनवायरमेंट बचाने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह हम गीत का माध्यम से सीख लेना चाहिए। और बच्चे पेड़ का बारे में, पेड़ को मित्र बनाओ और सब कुछ तो पेड़ ऐसे देते, निस्वार्थ सेवा करते हैं पेड़। प्रकृति हमारा दोस्त है, प्रकृति को जितना हम सुरक्षा रखेंगे, पर्यावरण को जितना सुरक्षित रखेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। और सर इस कार्यक्रम को सुंदर में सुन रहे थे सर, और पर्यावरण का ऊपर में क्या कहना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चे एक पेड़ का माध्यम से प्रस्तुति, और आप पर्यावरण सुरक्षा जैसे हर रविवार को पर्यावरणविद श्रीमान भोपाल राम पुरोहित जी अपना कार्यक्रम देते हैं, पर्यावरण से मिट्टी जो भी हमारा आसपास पर्यावरण, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण में पेड़ का जो उसका बारे में थोड़ा बताइए, हमारा श्रोता और बच्चे भी थोड़ा लाभान्वित होंगे।
2: वर्तमान में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और नन्हे मुन्ने बालकों का ये पर्यावरण के प्रति, पेड़ों के प्रति जो संदेश है बड़ा उत्साहपूर्ण है। उम्मीद करते हैं ये संदेश समस्त ग्रामीण अंचल तक पहुंचेगा और ग्रामीण अंचल के ये सारे लोग इस ओर जागरूक होंगे। हमारे सिरोही जिले के अंदर ये नया प्रयास चल रहा है कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं प्रति विद्यार्थी 2 पौधे लगाने का संकल्प सरकार की तरफ से मिला है। तो ऐसे में जितनी भी सरकारी नर्सरी है उनकी तरफ से सारे विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 2-2 पौधे आवंटित किए जाते हैं और वर्ष भर उन पौधों का पालन पोषण करके वृक्ष बनने तक की जिम्मेदारी वो नन्हे मुन्ने बालक उठाते हैं। उसी जिम्मेदारी की एक झलक इस गीत के माध्यम से हम तक पहुंची है और इस वर्ष भी हमारा प्रयास है कि हम नर्सरी से नन्हे मुन्ने बालकों को पौधे उपलब्ध कराएंगे जिनको पेड़ बनाने की जिम्मेदारी सहर्ष ये सारे बच्चे स्वीकार करते हैं। और इस तरह आबू राज के इस पवित्र अंचल में ये नन्हे मुन्ने बालक हरियाली बढ़ाने में, विद्यालय पर्यावरण और साथ ही साथ क्यारिया ग्राम के वातावरण माहौल को स्वच्छ, सरल और सुरम्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, हरियाली भी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आगे चलते हुए पढ़ाई के साथ साथ ये पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार का भी एक अच्छा प्रयास है, प्रतिवर्ष 17 अंक के रूप में 10वीं 12वीं के बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं हम पहले उनके वर्ष भर के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 17 अंक भेजते थे तो सरकार ने उसकी जगह पर वृक्षारोपण को मान्यता दी है और प्रतिवर्ष प्रति विषय 1 अंक 2 अंक गणित विज्ञान जैसे भी विषय से वो अंक उनको वृक्षारोपण और उनको पेड़ों पर दी गई जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर विद्यालय परिवार के द्वारा दिए जाते हैं। इससे जागरूकता बढ़ती है, पर्यावरण भी सुधरता है और हमारे विद्यार्थियों का एक अभूतपूर्व महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए सरकार, विद्यालय परिवार, सिरोही डिस्ट्रिक्ट सभी तन मन धन से अपना सर्वस्व योगदान दे रहे हैं।
1: सर जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार का जो मुहिम चला था उसको तो हम सहयोग देते ही, और बच्चे भी कम से कम अपना जन्मदिन माता पिता का याद में तो लगाने उसका नामकरण भी करे और भावना से करे तो जरूर वो पेड़ जो पौधा हम लगाएंगे उसको प्यार से उसके दोस्ती जैसे दोस्त को क्या क्या चाहिए पूछते हैं ना, तो पानी समय पर देना, उनको देखभाल करने के लिए ट्री गार्ड हो जो भी उसको सेफ्टी पहले पहले देना होता है, तो आप सब करते होंगे और जो नहीं करते उसको थोड़ा ध्यान दे। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं, पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन उसको बचाने के लिए जैसे जब तक वो अपना अस्तित्व तक नाम नहीं पहुंचे तब तक उनको संभाल देखभाल करना चाहिए, ये एक किम्बे से सर ने बताया और बच्चे तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन ये बच्चे अभी अपना जो देसी गीत सुनाने के लिए कोशिश कर, पेड़ का माध्यम से अपना गीत जनरल गीत बताया, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम की ओर हम जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है सभी बच्चों को स्वागत करते पुनः और जो पहले गीत गाए थे उनको सेम टीम को बुला रहे हैं, हमारा दुर्गा उरण टीम को, पूजा और उनका दोस्त लोग को। तो पुनः एक प्रस्तुति के लिए जो कि यहाँ का जो शुद्धता भोलापन और स्कूल में जो गतिविधि हो रही है उसका तहत गाते हैं, तो चलिए सुनते हैं उन सभी से।

0: स्वागत करते हैं जिन मन का कर्म पूजते शिव संगम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बच्चे थोड़ा शर्माते हैं, पहला बार आते हैं, नहीं तो बाहर में गाते हैं, लेकिन स्कूल में थोड़ा सा सर रहते और हम रहते तो उनको थोड़ा झिझक होता है। कोई बात नहीं, इसे शुरुआत किए, धन्यवाद देते हैं। और जाते जाते सभी को नाम बताएंगे और कहाँ से और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए क्या मेहनत करते हैं। सबके लिए एक ही प्रश्न, स्कूल में जो पढ़ाई के साथ साथ और कितना घंटा मेहनत करते हैं और बड़े होकर क्या बनना चाहते, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, सरपंच। ओके,
2: मेरा नाम पूजा है, मैं रेडवा कला से आती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
1: रेडवा कला बहुत दूर जगह से आते हैं। रेडवा कला के पास और कौन सा गांव है?
2: दूना काकर, कोटिबिया।
1: कोई मंदिर है आसपास?
2: हाँ,
1: मंदिर का नाम बताओ। कोटेश्वर महादेव है यहाँ। हाँ। शिव मंदिर है। चलिए, बड़े क्या बनेगी?
2: टीचर।
1: टीचर, मैम बनेगी। वाह, कितना मैम है यहाँ पर? मैडम है स्कूल में?
2: हाँ।
1: नाम बताओ, एक ही मैम का नाम बताओ। कोई
2: मीनाक्षी मैडम।
1: क्या पढ़ाते हैं?
2: इंग्लिश।
1: वेरी गुड। नेक्स्ट।
3: मेरा नाम रायली कुमारी है, मैं कक्षा 11 से, मेरे गांव का नाम दूना काकर है।
1: और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
3: टीचर।
1: टीचर है, वाह, आदर्श टीचर। किसको कहते हैं टीचर? कैसे होना चाहिए? जो अच्छा
3: पढ़ाते
1: हैं और अच्छा प्यार करते हैं, प्यार भी जरूरी है। नेक्स्ट।
4: मेरा नाम दुर्गा कुमारी है, कक्षा 11 से, मेरे गांव का नाम है क्यारिया जोड़।
1: और आज रेडियो में पहला बार मौका मिला, आपको खुशी लगा ना दुखी लगा? खुशी लगा
4: जी।
1: दुख लगा?
4: नहीं
1: नहीं, दुख क्यों लगेगा, ये तो अपना आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए का मंच मिल रही। नेक्स्ट।
5: मेरा नाम गुड़िया है, मैं क्यारिया से हूँ।
1: वेरी गुड। गुड़िया नाम तो पहले बोले, सब हमारा गुड़िया है ना, गुड्डा और गुड़िया छोकरा और छोकरा जैसे कहते हैं, हमारा परी, परी मतलब पूरा फरिश्ता। तो बड़े होकर क्या बनेगी? गुड़िया।
5: मैडम।
1: गुड़िया तो अच्छा से बात बता पा रही। और गुड़िया आपका अच्छा दोस्त बताओ तो जो हंसता है आपको देखकर।
5: पूजा।
1: पूजा। नेक्स्ट।
6: लसी कुमारी।
1: लसी, बड़े होकर क्या बनेगी?
6: टीचर।
1: अच्छा, खेल खेलते हैं? खेल खेलते हैं
6: जी।
1: कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है?
6: क्रिकेट।
1: क्रिकेट, वाह वाह, ऐसे क्रिकेटर हमारा। अच्छा, क्रिकेटर में कौन सा क्रिकेट का नाम बताओ देखिए, सचिन तेंदुलकर से लेकर कोई भी?
7: रोहित शर्मा।
1: अरे वाह, पीछे से बोला रोहित शर्मा, सर का फेवरेट है विराट कोहली और हमारा फेवरेट है महेंद्र सिंह धोनी। सब हमारा अच्छे खिलाड़ी है तो हमारा देश के लिए नाम रोशन किया और ये हमारा क्रिकेटर बनेगी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट।
8: सीमा।
1: सीमा, सीमा बड़े होकर क्या बनेगी?
8: टीचर।
1: टीचर, अच्छा, आपका फेवरेट टीचर का नाम बताओ?
8: मीनाक्षी
1: मैम। बहुत अच्छा, कोई बोल भाई, सभी बताओ, सभी का नाम ले लो, सभी टीचर हमारे अच्छे होते। नेक्स्ट।
8: कमला।
1: कमला कौन सा क्लास? नाइन्थ क्लास। और अच्छा, फूल का नाम बता देखी, कोई फूल अच्छा आपका फेवरेट फूल?
8: गुलाब।
1: मैं पीछे कॉपी दे दिया तो बोला गुलाब, बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चे जानते हैं लेकिन अचानक माइक में जब आता है पसंद निकल जाता है और उनको बोलना में जो आता है वो भी भूल जाते ना। चले नेक्स्ट।
8: राधा।
1: राधा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हैं और राधा हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे, हमें खुशी। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
2: रेडियो मधुबन।
3: नमस्कार, मधुबन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में व राजस्थान में विवाह, जन्मदिन, लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह, जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमाकर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो मारे देश। राग मांड साजन आहे हे सखी, मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं। साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें केसरिया बालम पधारो मारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो मारे देश।

और कहीं बृदवंत हीन सी आशा हूं जो सबसे सुंदर काव्य रचे। मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं, मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुका। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ऐसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो आप

0: में पिएं या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए

0: लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में अवेलेबल है, और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है, और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है, और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना होगी।

नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम ले आने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति हमारी सही समझ को बेहतर करना है। हम पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य से जुड़े हुए अनेक चीजों को जानते आए हैं, मगर जितना जितना ज्यादा हम प्रगतिशील होते जा रहे हैं, जितना ज्यादा हम वैज्ञानिक और एक विज्ञान से ओतप्रोत सोच से गुजर रहे हैं, जितने आसानी से हमारे हाथों में टेक्नोलॉजी और जानकारी आती जा रही है, उसके कारण हम प्रायः इंटरनेट पे जिन चीजों को देख लेते हैं उन्हें ही सत्य मान लेते हैं। जो सोची समझी चीजें थी, जो सदियों से हम करते आ रहे थे, या परंपरागत चिकित्सा की जो हमारी विधियां थी उसकी जो समझ थी, वो भी हम खोते चले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, व्यक्ति मुझे कितने बजे खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए,

0: अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए क्या नित्य कर्म करने चाहिए, इस पर भी लोगों की समझ दिनों दिन घटती चली गई है। और हर चीज के लिए हम या तो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, या फिर किसी भी जानकारी को जब हम डॉक्टर्स या किसी चिकित्सा कर्मी से सुनते भी हैं, तो भी उसे हम इंटरनेट पर सर्च करके उसे रीवेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसे सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जो भी जानकारी हम इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं वो संपूर्ण नहीं हो सकती है। जब आप एक चिकित्सकीय सलाह ले रहे हैं तो उस सलाह को सही अर्थों में समझने का प्रयास करने की भी जरूरत है। शरीर में जब भी कोई व्याधियां आती हैं या कोई ऐसी बीमारी आती है तो उसका कारण यही होता है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण वो व्याधि के रूप में शरीर में प्रस्तुत होती है। आइए स्वास्थ्य जगत के ही कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि रोग क्यों हो रहे हैं और उनसे निदान पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य जगत से एक ऐसे ही एक्सपर्ट जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं। साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है और आज भी स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो इसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, हम हमेशा स्वास्थ्य के प्रति क्या इतने इग्नोरेंट रहे हैं या बेसमझ रहे हैं, या पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ कुछ चीजें स्वास्थ्य संबंधी मिलती आई हैं, एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो जानकारियां पहुंचाते गए हैं, पहुंचाते आए हैं लोग, मगर आज यकायक क्या हम इन चीजों से दूर हो गए, या कोई कारण रहा है जिसके कारण हम आज ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। प्राय लोग ये उदाहरण देते हैं कि हमारे दादाजी के जमाने में इतनी बीमारियां नहीं थी, वो लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे जितने हम पड़ रहे हैं। ये चीज अक्सर सुनने को मिलती है। आप एक चिकित्सकीय दृष्टि से इस चीज को कैसे देखते हैं?
1: अब हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इसके लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गई है, दूसरा हमारी जनसंख्या बहुत हो गई है, और तीसरा हमारा भोजन पूरा गड़बड़ हो गया है, और शारीरिक श्रम जो है हमारा वो कम होता चला जा रहा है। श्री भैया के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने अपना बचपन एक ऐसी जगह बिताया जहां मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थी, वो एक फैक्ट्री या एक ऐसे परिसर में रहे, और बातचीत में भैया ने बताया कि 2 मंजिले और 3 मंजिले तक वहां पे घर था। और मैं भी ये बात अच्छे से जानता हूं कि मेरे शहर में भी जब विश्वविद्यालय बना था तो वहां पर 2 मंजिला इमारतें बनी थी लोगों को रखने के लिए, जो मेडिकल कॉलेज बना था वो 2 मंजिला बना था। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मेरे पूरे शहर में लिफ्ट जो थी वो सिर्फ फर्टिलाइजर फैक्ट्री में लगी थी, वो भी चिमनी में ऊपर जाने के लिए। और वो लिफ्ट लिफ्ट नहीं था, एक लोहे का जाल था से घिरा हुआ एक ट्रे थी जिसमें खड़े होकर आप ऊपर जा सकते हैं। और हम लोग बड़े खुश होते थे जब छोटे थे तो फैक्ट्री विजिट में वो आपको ऊपर ले आते थे और वहां से पूरा शहर दिखता था। आज अमूमन बहुत सारे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में लोग रहने लगे हैं, वहां लिफ्ट लग गई है, लोग जो है वो सीढ़ी चढ़ना को अवॉइड करने लगे हैं, फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करने लगे हैं। पहले ऋतु अनुसार ही फल मिलता था, जब ठंडक थी तब सेब मिलता था, गर्मी थी तो आम मिलता था, और फल देख के हम लोग समझने लगते थे कि हाँ हाँ ऋतु में परिवर्तन आ गया है। पहले बहुत सारे लोगों के घर में सिर्फ पंखा था, और जो निम्न वर्गीय परिवार थे उनके यहाँ पंखा भी नहीं था। जो श्रोतागण जिनकी उम्र आज 40 से ऊपर होगी, उन्होंने बचपन में हाथ से झलने वाला पंखा देखा होगा, आज वो कहीं नहीं दिखता है। अमूमन सबके घर में जो एक लालटेन और एक हाथ से झरने वाला पंखा, ये दोनों चीजें गायब हो गई हैं, क्योंकि अब लालटेन की जगह टॉर्च आ गया है, इन्वर्टर आ गया है, हमारी बिजली की सप्लाई अच्छी हो गई है, और जो पंखा है वो मैकेनिकल पंखे की जगह अब मोटराइज्ड पंखे सबके घर में लग चुके हैं, और पंखा छोड़िए अब तो बहुत सारे लोगों के घर में एसी लग गया है। पहले गर्म पानी नहाने के लिए करना पड़ता था, गैस के ऊपर गर्म पानी होता था। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में एक पीतल का बहुत बड़ा सा ड्रम था, उसके बीच में एक लोहे का पाइप डला हुआ था, उस लोहे के पाइप में कोयला जलता था और उससे लोग गर्म पानी जो था वो इस्तेमाल करते थे। अमूमन चिकित्सालय के कमरों में भी गीजर नहीं लगा था। तो हम पहले उस वातावरण में थे जहां हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ठंडा हो या गर्म, वो झेल ले रहे थे। हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे थे और हम ऋतु के अनुसार भोजन कर रहे थे और हम बीमार कम पड़ रहे थे। और उसका एक और बड़ा रीजन कि पर्यावरण बहुत शुद्ध था। हम लोग ने कभी ये बात नहीं करी कि पॉल्यूशन है या नदी पॉल्यूटेड है या वातावरण में पॉल्यूशन है। जो अक्सर हम लोग जब बातचीत करते हैं सुनते हैं कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि स्मॉग बन गया है, ये चीजें हम लोग ने सुनी ही नहीं थी बचपन में। हम लोग सिर्फ कोहरा जानते थे कि कोहरा बहुत हो गया, कैसे निकलेंगे। हम लोग पॉल्यूशन के बारे में कभी ये नहीं सुने थे कि पॉल्यूशन इतना आ जाएगा कि हम लोग देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, हमारा जो पूरा का पूरा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाएगा। हम लोग ने भैया बचपन में पानी हैंडपंप से पिया है, नलों से पिया है। आज आप देखिए कि व्यक्ति बोतलों में पानी पी रहा है। आज बच्चे जो है वो उनको ये बात मालूम ही नहीं है कि ट्रेन में जब चला करते थे तो पानी का बड़ा वाला कैंपर लेके चला जाता था, उसमें भर, क्योंकि पानी कभी बोतलों में बिकता ही नहीं था। तो समय के साथ पर्यावरण में कमी आई, हमारे रहन सहन जो है गड़बड़ हुआ, हमारा एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, वो चीजें कम हुई। अच्छा, हम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग कहेंगे अरे हम पहले तो व्यायाम करते नहीं थे, देखिए अब तो मैं आधी घंटा कर रहा हूं। पर पहले हम जाने अनजाने में बहुत व्यायाम कर रहे थे। हम साइकिल चला रहे थे, हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, हम बाजार से सब्जी लेने जा रहे थे। इतनी हमारे पास संसाधन ही नहीं थे कि हम रोज रोज बाहर का खा पाए। तो अब चीजें सुलभ हो गई हैं, चीजें जल्दी मिल पा रही हैं, बहुत ज्यादा मिल पा रही हैं। तो इसका जो असर है वो हमारे शरीर पे दिखने लगा है।
0: ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं कि कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव के कारण हम अपने रहन-सहन को, अपने खान-पान को बदलते आ रहे हैं, हमारे आहार विहार में जो परिवर्तन आता जा रहा है, शारीरिक श्रम की कमी, ये सारी चीज़ों की वजह से आज स्वास्थ्य में और बढ़ती हुई आबादी के कारण भी हम ये चीज़ें ज़्यादा देखते हैं कि भाई व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और इस बीमारी के लिए वजह हम स्वयं हैं और हमारी जीवन शैली है ज्यादातर। अब जब हम पिछले दिनों बातचीत कर रहे थे तो एक ऐसी चीज जिसके बारे में व्यक्ति अक्सर बातचीत करने से शर्माता है वो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या, यानी कब्ज की समस्याएं। और कब्ज के बारे में आप ये बात बता रहे थे कि अगर हम अपने भोजन पर ही ध्यान दें तो फिर कब्ज की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। प्रायः ये चीज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मीटिंग में बैठा हुआ है या फिर ऑफिस के काम में लगा हुआ है या कोई ऐसे जगह पर है जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पा रहा है या समय पर भोजन नहीं कर पा रहा है। कई लोग शौचालय साफ सुथरे नहीं मिलेंगे या घर के बाहर शौच पर जाना मुश्किल है, इसलिए वो अपने जो नेचुरल कॉल है जब उन्हें शौच में जाने जैसा लगता भी है तो उसे रोक लेते हैं। तो ये सारी चीजें कारण बन रही हैं कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की, ये बात समझ में आती है। अब प्रश्न उठता है कि कब्ज आखिर कब तक, मतलब कब तक अगर मैं इस चीज को बिना ट्रीट किए हुए, इग्नोर करते हुए अगर ऐसे ही चलता रहूं तो फिर क्या होगा? क्योंकि प्रायः लोग कह देते हैं अरे कोई बात नहीं, चल तो रहा है ना गाड़ी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 2-3 दिन में एक बार पेट साफ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो रहा है, उसे भी एक नया नॉर्मल, एक न्यू नॉर्मल समझ के लोग चलते हैं। तो क्या ऐसे चलना सही है? अगर हम कब्ज जैसी चीज को इग्नोर करते जाते हैं तो आगे क्या समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं?
1: हमारी बड़ी आंत में बहुत बड़ी ताकत है पानी को सोखने की, और एक चीज समझिए कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा मल है, वो पेट से, जब पेट से निकल के छोटी आंत में जाता है, तो उससे सारे न्यूट्रिएंट या जो ताकत की चीजें हैं वो सोख ली जाती हैं। और जब वो बड़ी आंत में जाता है तब उससे पानी सोखा जाता है। और आप सोचिए कि जो क्रिया 12-14 घंटे में सोखने की होती है, वो जब आप उसी क्रिया को 24 घंटे 48 घंटे करवाइएगा तो वो ज्यादा पानी सोख लेगा। और इससे जो हमारी जो मल है वो इतना कड़ा हो जाएगा कि उससे निकालने में हमें ताकत लगानी पड़ेगी। और कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की खराबी ये है कि वो आपके पाचन तंत्र में जो गंदगी है उसे लंबे समय तक रहने देगा, वो निकल नहीं पा रही है। और कब्ज में जब वो लंबे समय तक रहेगी तो पानी के बाद जो टॉक्सिन्स है उनको भी खींच लेगा, और हमारे शरीर में जो चीज हमें नहीं चाहिए वो मिलती चली जाएगी। ये तो हुआ शरीर के ऊपर नुकसान। जो फिजिकल नुकसान है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से या कब्ज से, वो है बवासीर, आप जिसको अंग्रेजी में हिमरॉइड्स या पाइल्स भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग न अपने कब्ज के बारे में बात करते हैं और न अपने बवासीर या पाइल्स या हिमरॉइड्स के बारे में बात करते हैं। आप खुद देखिए कि सब की मतलब इस बवासीर के नाम पे और पाइल्स के नाम पे सबसे बड़ी ठगी चल रही है। आप हजारों नीम हकीम, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, आपको ऐसे ऐसे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, और जो मतलब डॉक्टर हैं भी नहीं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं किए हैं, डॉक्टरी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और अपने आप को डॉक्टर क्लेम करते हैं, वो लोग इसका इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने दीवार पर इसके बारे में इश्तेहार देखे होंगे कि मिलिए इनसे और ये आपका बवासीर ठीक कर देंगे। तो ये क्रॉनिक कब्ज के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या जिसको हो सकती है व्यक्ति को, वो है बवासीर या हेमोराइड्स। आदमी अपना पेट साफ होने की तो बात ही नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद नीचे से कोई और मस्सा निकल गया तो उसके बारे में कहां बात करेगा। तो पता चलता है कि समस्या जो एक बड़ी हो गई थी कब से, वो महा बड़ी समस्या के रूप में आदमी उसको उससे परेशान हो चुका है और वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है।
0: बात न करने की जब ये चीज सुनते हैं तो समझ में आता है कि लोग इन चीजों से थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, या कभी कभार वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि ये चीज हम किसके सामने बोलें और बोलेंगे तो क्या समझा जाएगा हमारे बारे में। और जैसे आपने कहा कि भाई कॉन्स्टिपेशन ही जब क्रोनिक फॉर्म में बढ़ जाता है, वो उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप हो जाता है, तो आगे बवासीर और पाइल्स जो आप बात कह रहे थे वहां तक बात पहुंच जाती है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये क्या कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते करते यहां तक पहुंचे हैं, तो ये बीमार हो रहे हैं, ये कैसे अपने आप को समझा जाए, कैसे देखा जाए कि हाँ मेरे को ये तकलीफ हो रही है, और कब हमें एक चिकित्सीय सलाह लेने की जरूरत है।
1: सबसे पहली बात, बवासीर कोई रोग नहीं है, ये एक रोग का लक्षण है। पहले हम ये समझें कि बवासीर हो क्यों सकता है। एक जैसा हम और आपने बात की कि क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक अगर आपको पेट नहीं साफ हो रहा है तो आपको बवासीर हो सकता है। आप लंबे समय तक आपको अगर डायरिया भी चल रहा है, आपका पेट बह रहा है, तो भी आपको ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो आपका नीचे जो गुदा द्वार बंद होता है वो ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है। आप बहुत लंबा समय बैठते हैं, अगर अपने काम में आप बैठे ही रहते हैं, आप बहुत मोटे व्यक्ति हैं, क्योंकि मोटापा जो है, जो हमने सबसे बड़ी बीमारी, देखिए हमने पहली जो जो इस बीमारी को हमने डिस्कस किया वो मोटापा ही थी, क्योंकि मांसपेशियों के बीच में जो फैट सेल्स है हमारे मोटापे की कोशिकाएं हैं वो जमा होने लगती हैं और वो उस मांसपेशी की ताकत को कमजोर करती चली जाती हैं। तो अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको उससे भी परेशानी होगी। महिलाओं में जब उनको प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारी महिलाओं को बवासीर की समस्या प्रेगनेंसी के समय होती है और उम्र के साथ जब हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं तब भी उनको पाइल्स या बवासीर हो सकता है। ये बवासीर क्या है? सबसे एक समझ लीजिए कि हमारा जो गुदा द्वार है वहां रक्त की कुछ कोशिकाएं हैं और ये मेरे अंदर भी है और जितने लोग सुन रहे हैं सबके अंदर ये कोशिकाएं हैं, किसी कोई नई चीज नहीं है। और ये मांसपेशी के बीच में है, ये जब ताकत इनमें रहती है ये मजबूत रहती हैं, ये इन कोशिकाओं को ये जो गुदा द्वार है इसके त्वचा के अंदर रखी रहती हैं। और जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है या आप मोटापा होता है या आप प्रेगनेंसी होती है तो ये मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। तो ये रक्त कोशिकाएं जो है वो एक मस्से के रूप में जो है वो गुदा द्वार के पास आ जाती हैं। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। मेरे पास एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो कि बहुत बड़ी एक कंपनी में काम करते थे, वो आरोग्य मंदिर में आए और उन्होंने जो कंप्लेन की वो ये थी कि उनको थकान हो रही है। उम्र उनकी करीब 48 साल थी और वो सिर्फ ये बोलते थे कि मैं बहुत अच्छा खाता हूं, मैं बहुत अच्छा भोजन करता हूं, मुझे कभी कभार कॉन्स्टिपेशन होता है और मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लगाता हूं, मैं बहुत उच्च पद पे आसीन हूं तो मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है तो मुझे थकान लगती है। और तब भी वो हमारे चिकित्सालय में अपनी समस्याएं बता नहीं रहे थे और मुझे बहुत थकान हो रही थी, बहुत थकान हो रही थी। तो ऐसे डॉक्टर, उनके पास कोई ब्लड रिपोर्ट भी नहीं थी, कोई खून की जांचें भी नहीं थी, तो हम लोग ने कहा कि एक जांच करा लिया जाए, कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है। हाँ, और हम लोग सोच रहे थे कि उनको कोई बड़ी समस्या निकलेगी, तो मालूम चला कि उनका हीमोग्लोबिन जो है, जो लाल रक्त कोशिकाओं वाला हीमोग्लोबिन है, वो करीब जो नॉर्मली 11 से 14 के बीच में होना चाहिए वो सिर्फ 7 था। और जैसे ही रिपोर्ट आई और जब उनसे मिला गया तो उनसे पूछा गया, क्या आपके जो मल है उसमें खून तो नहीं आता है? तो उन्होंने संकुचाते बोला, हाँ आता तो है पर हम किसी को बताए नहीं। तो सोचिए, ये व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, उच्च पद पे आसीन है, वो अपनी समस्या नहीं बता पा रहा है तो हम और लोगों से क्या सोचें? तो आप यदि अपनी समस्या की बात नहीं करेंगे तो उसका निवारण नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको बवासीर की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो किसी भी डॉक्टर से या कोई भी जो हेल्थ प्रोफेशनल है जिसको आप मानते हैं उससे सलाह जरूर लीजिए। लोग इसके बारे में, भैया जो बहुत भारी काम करते हैं, बहुत भारी सामान उठाते हैं, उनको भी इसकी समस्या होती है और वो ये सोच लेते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमको हो रहा है। या आपको अपनी जो चीजें नॉर्मल नहीं हैं और आपको अगर हो रही हैं तो उसके बारे में आपको जरूर बात करनी चाहिए। यदि आपको थकान लग रही है, आपके मल रास्ते से खून आ रहा है, आपको भयंकर कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज है, आपको रेगुलर डायरिया हो रहा है, या आपको ऐसा काम करते हैं जो आप बहुत मोटे हैं, आप भारी वजन उठाने का काम करते हैं, तो आपको अपनी समस्या के बारे में जरूर बताना चाहिए कि आपको थकान लग रही है। अच्छा, लोग भैया जैसे श्री भैया बुखार होता है तो आदमी तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है, बड़ा छोटी समस्या है, तब भी वो तुरंत दौड़ के जाता है कि अरे डॉक्टर साहब एक बार देख तो लेंगे, और डॉक्टर साहब उसको अब छू के थर्मामीटर डाल के या तुरंत उसकी नब्ज चेक करके देख लेते हैं, तेज तो नहीं चल रही है, छूते ही मालूम चल जाता है। इस समस्या जब पूरी विकराल रूप ले लेती है तब वो जाता है। और तब भी मानव हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा क्यों मैंने कहा कि हम लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि अरे हमें कोई पहचान तो नहीं लेगा हम कौन हैं, लोग छुपते हैं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तो हम लोग सर्जरी के ओपीडी या जनरल मेडिसिन के ओपीडी में जब पेशेंट आता था तो वो कान के पास आके बोलना चाहता था, हम लोग से बोलते दूर होके बोलो, हम और तुम ही है कमरे में, बाकी कोई नहीं है मत, पर वो वहां भी खुल के नहीं बोलना चाह रहा था कि क्या समस्या है। तो यदि आपको भयंकर कब्ज है, आपको मसा कोई नीचे महसूस हो रहा है आपको, या खून आ रहा है, तो कृपा करके तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाइए।
0: जैसे आप ये बात बता रहे थे तो मैं समझ सकता हूँ कि एक व्यक्ति का असहज होना या शर्मिंदगी महसूस करना या उसके अंदर हिचकिचाहट होना इस बीमारी को और ही बढ़ा सकता है, इसकी समस्या को और बढ़ा सकता है, और समय पर इलाज न लेने से वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से इस समस्या से लंबे समय तक जूझता रहेगा, और जो चीज़ आसानी से ठीक की जा सकती थी वो चीज़ ठीक करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है। हालांकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर समय इशारा करता है कि यहाँ रुकना होगा। मगर आज आपने जो जानकारी दी है कि व्यक्ति सही जानकारी को न जानने के कारण और कभी कभार पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपने शरीर के बेसिक स्वास्थ्य संबंधी चीजों के बारे में सजग न होने के कारण अपने आप को बीमारियों की तरफ आगे ले जाता है, कब्ज को अगर आप सही समय पर ठीक नहीं करते तो फिर बवासीर जैसी समस्याएं भी आपके लिए शारीरिक व्याधि के रूप में आ सकती हैं। इन चीजों के बारे में जानकारी आज हासिल हुई है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर हमें सही जानकारी मुहैया कराई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में ये चीज समझ में आई है कि हमारे शरीर का ख्याल रखना भी हमारा ही काम है। अगर हम इस जिम्मेदारी को न निभाएं, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों या छोटी मोटी समस्याओं को अगर हम दरकिनार कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूं या मैं काम बहुत ज्यादा कर रहा हूं या मेरे पास समय नहीं है या मैं डॉक्टर से मिल नहीं सकता, तब तक मैं इन चीजों को टालते रहूं जब तक वो हमें पीड़ा देने वाले या बहुत ज्यादा समस्या का विकराल रूप धारण करने तक रुकते रहें, तो फिर उसके इलाज में भी लंबा समय और ज्यादा व्याधि हमें महसूस करनी पड़ सकती है। इसलिए जब भी समस्याएं आपके शरीर में दिखें तो तुरंत ही चिकित्सीय सलाह देखने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स के पास जाकर मिलकर सही राय करना बहुत आवश्यक है, और साथ साथ अपने खान पान, भोजन इत्यादि आहार विहारों पर भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक चीज है। आज के सेहत स्वास्थ्य में यही रुकते हैं। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो बच्चों, आ जाओ रेडियो के पास। 9:30 बज गए और परी और मनी दीदी भी आ गए हैं आपका फेवरेट शो लेकर के,
1: सपनों की सैर। और सपनों की सैर में हम बातें करने वाले हैं आज 15 अगस्त के दिन आपने क्या क्या किया बच्चों।
0: तो बच्चों, इस साल हमने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और आपने स्कूल में भी बहुत एंजॉय किया होगा। क्या क्या किया हमें भी जरा बताना।
1: हाँ बच्चों, स्कूल में तो हमारे स्कूल में तो परी हम पूरे यूनिफॉर्म में जाते थे, फुल ड्रेस में, और परेड होती थी बच्चों की और कुछ झंडा ध्वजारोहण होता था और अच्छी सी स्पीच होती थी, कुछ कार्यक्रम, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। तो बच्चों, आपके यहाँ भी ये सब हुआ होगा।
0: बिल्कुल बच्चों, स्वतंत्रता दिवस ऐसे ही नहीं मना लेना, उसकी सारी जानकारी भी तो होनी चाहिए जो हम इस कड़ी में आपको देने वाले हैं। तो जल्दी से हमें बताओ, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे।
1: हाँ बच्चों, और सही जवाब आप हमें 9414151415 में वॉइस नोट या मैसेज करके भेज सकते हो।
0: हाँ बच्चों, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा।
1: हाँ परी, पता है 15 अगस्त 1947 को भारत लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था।
0: और बच्चों, हमारे तो 500 एपिसोड्स पूरे हो गए। आपने इतना हमें साथ दिया, आपके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।
1: हाँ, 500 एपिसोड्स हमारे पूरे हो गए, तो सही कहा परी। तो बच्चों का बहुत बहुत थैंक्स, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे ही हम नई नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे, अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे, किताबें पढ़कर सुनाते रहेंगे।
0: हाँ बच्चों, तो 9:30 बजे आना मत भूलना। तो चलो मनी दीदी, अब आगे भी तो कार्यक्रम को बढ़ाना है।
1: सही कहा, तो परी की कहानी अभी सुननी है बच्चों। तो मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद।
0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी

0: किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है, और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी. सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर. ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी. मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.
2: बच्चों आ जाओ रेडियो के पास, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, गाना भी सुना, अब शुरू हो रही है कहानी. आज आपको एक खजाने की कहानी सुनाएंगे. एक बूढ़ा किसान था, उसके तीन बेटे थे, तीनों ही जवान और हट्टे कट्टे थे, पर वे बहुत ही आलसी थे. पिता की कमाई उड़ाने में बहुत मजा आता था उनको, मेहनत करके पैसे कमाने में उनको अच्छा नहीं लगता. और एक दिन क्या हुआ, किसान ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, देखो तुम लोगों के लिए मैंने अपने खेत में एक छोटा मोटा खजाना गाड़ के रखा है, तुम लोग खेत को खोद डालो और उस खजाने को निकाल कर आपस में बांट लो. बच्चों दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उन किसानों के बेटों ने खेत को खोदना शुरू कर दिया, पर उन्होंने खेत की एक एक इंच जमीन खोद डाली, पर बच्चों खजाना तो मिला ही नहीं. अंत में निराश होकर वो पिता के पास पहुँचे और कहा, पिताजी हमने पूरा खेत खोद डाला पर हमें तो कहीं खजाना नहीं मिला. तो बच्चों किसान ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने खेत की बहुत अच्छी खुदाई कर दी है, अब मेरे साथ आओ हम इसकी बुआई करते हैं. बच्चों फिर तो बाप और बेटों ने मिलकर खूब लगन से खेत की बुआई की. संयोग से उस वर्ष बरसात भी बहुत अच्छे से हुई, खेत में खूब पैदावार फसल भी हुई और खेत की शोभा तो देखते ही बनती थी. तो तीनों बेटों ने बड़े गर्व से अपने पिता को लहलाती फसल दिखाई. तो बच्चों पता है किसान ने क्या कहा, वाह क्या खूब फसल हुई है, यही वो खजाना है जिसे मैं तुम लोगों को सौंपना चाहता था. अगर तुम लोग इस तरह कड़ी मेहनत करने लगो तो ऐसा ही खजाना तुम्हें हर वर्ष मिलता रहेगा. तो देखा बच्चों, कहानी सिखाती है ना कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है. तो इसीलिए बच्चों आप भी पढ़ाई में मेहनत करेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को.

0: है।
1: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
2: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
1: चलो चलते हैं।
2: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
3: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
2: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
4: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
2: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
5: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
6: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
7: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब लेकर, और हम शुरू करने वाले हैं नई कहानी, और उसका शीर्षक है फलियों की शिक्षा। एक बार विजयनगर के सम्राट महाराज कृष्णदेव राय की इच्छा हुई कि वे अपने राज्य का भ्रमण करें और अपनी प्रजा के दुख सुख को स्वयं अपनी आँखों से देखें, ताकि उन्हें अपने राज्य के विकास की योजना बनाते समय उन जरूरी बातों का ध्यान रह सके जिनका अभाव अभी उनकी प्रजा अनुभव कर रही है। उन्होंने अपनी इच्छा तेनाली राम को बताई। तेनाली राम ने महाराज की बातें ध्यान पूर्वक सुनी। उसे महाराज की बातें अच्छी लगी। उसने महाराज से कहा, महाराज बहुत उत्तम विचार है, जितनी जल्दी हो सके राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बना ले। ठीक है, कार्यक्रम बन जाएगा, मगर मेरी इच्छा है कि राज्य भ्रमण के दौरान तुम मेरे साथ रहो, महाराज ने कहा। तेनाली राम ने तत्काल उत्तर दिया, आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है महाराज, आप आदेश करें, मैं आपको हर क्षण उपलब्ध मिलूंगा। जल्दी ही महाराज के राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बन गया। महाराज ने अपने साथ कुछ चुने हुए एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित सिपाहियों का दस्ता रखा और तेनाली राम के साथ घोड़े पर सवार होकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। तो बच्चों, अब महाराज और तेनाली राम तो राज्य भ्रमण के लिए निकल गए हैं, अब आगे क्या होगा, क्या नया एडवेंचर होने वाला है उनके साथ में, और कहानी का शीर्षक है फलियों की शिक्षा, तो इससे क्या शिक्षा मिलने वाली है महाराज को, तो ये तो हमें पता चलेगा अगली कड़ी में। तब कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा। और अभी कहीं जाना तो है ही नहीं बच्चों आपको, क्योंकि मैं और परी आने वाले हैं फिर से। पिछले कड़ी में जो भी आपसे सवाल पूछा था या जो भी आपको होमवर्क दिया था उसे फिर से सुनाने के लिए, तो बने रहिएगा और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सब

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: बच्चों चलो, कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हम आ गए हैं और पिछली कड़ी में जो हमने पहेली पूछी थी अब परी उसका जवाब देने वाली है। तो चेक कर लो अपनी डायरी खोल करके, हमने पूछा था तीन रंगों से सजा हूँ मैं, हर दिल में बसता हूँ मैं, लहराता हूँ आसमान में, बताओ मैं कौन हूँ।
4: तो बच्चों अब इसका तो जवाब हमारे बच्चे इतने स्मार्ट है कि उसे दिन ही आना शुरू हो गया था। लेकिन बच्चों आज सही जवाब मैं आपको बताती हूँ और सही जवाब है तिरंगा, क्योंकि अभी अभी ही हमने इंडिपेंडेंस डे भी मनाया था, है ना? तो तिरंगा झंडा है इसका सही जवाब। तीन रंगों से सजा है, हर दिल में बसा है और आसमान में लहराता हुआ भी कितना प्यारा लगता है।
3: बिल्कुल बच्चों, तो चलो जिनका भी जवाब सही है वो अपने आप को 10/10 दे दे। और अब कोई पहेली नहीं है लेकिन आपको इंडिपेंडेंस डे के लिए मैसेज देना है।
4: हाँ परी, और बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस के बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस भी भेजे हैं, सुने मैसेज उनके?
3: बिल्कुल मनी दीदी, क्या मैसेजेस आए हैं?
4: लहराता तिरंगा आसमान में, गूंजता है नाम हिंदुस्तान में,
3: शहीदों की कुर्बानी याद करो, आजादी की खुशियां सबके दिल में भरो।
4: हाँ तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। अच्छा परी, अभी आज के लिए बच्चों को क्या होमवर्क देना है?
3: बच्चों चलो नोट करो आज की पहेली। पंख नहीं पर उड़ता हूँ, धरती पर जीवन भरता हूँ, बिना दिखे सबको छूता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ।
4: तो बच्चों अब ये कौन सी चीज है? जल्दी से हमें 94-14-14-15 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो, हमें आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। और अब क्या करना है परी?
3: अब करना है भगवान जी को गुड नाइट और थैंक यू।
4: तो चलो करते हैं गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट, गुड बाय, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। बढ़ाए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर अपच की समस्या है तो क्या करेंगे, सोचिए जरा। हम तो उपाय देंगे ही, लेकिन आप भी जरा सोचिए। और जी हाँ, आज सिखाने वाली हूँ सलाद, परंतु कौन सा वाला वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और स्पोर्ट्स का जीवन में कितना महत्व है, और हमारी बहनों को बेटियों को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इस तरह के हम खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे। एक विशेष जो एक बिटिया आई है उसके साथ, और आप सभी भी जुड़ेंगे, ठीक है। और आज की पहेली तो बड़ी शानदार है, पहेली पूछने वाली हूँ, ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ। बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। इस सृष्टि रंगमंच पर सदियों से पुरुष अर्थात आत्मा प्रकृति का खेल चला आ रहा है। प्रकृति से हमारा तात्पर्य पांच तत्वों जल, वायु, आकाश, अग्नि और धरती से है। अनंत काल से प्रकृति हमारी पालना करती आ रही है, परंतु हमने कभी रुककर मां प्रकृति को धन्यवाद भी नहीं किया है ना। यूं तो भक्ति में हम पांचों तत्व का पूजन वंदन करके मतलब प्रकृति का मान रखते हैं। सदियों से हम इस तरह पूजा और वंदन करते हुए उनका मान रखते आए हैं, परंतु निश्चिन प्राकृतिक आपदाओं से आहत होते मनुष्य का मन अब प्रकृति का उतना मान नहीं रख पा रहा है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुरते होठ, कितनी ठंड है कह करके प्रकृति के प्रति असंतुष्टता जताते हैं। कभी तपती धूप में पिघलते हौसले प्रकृति को बदनाम कर जाते। कभी बारिश में हुए कीचड़ से प्रकृति कुरूप नजर आती। मतलब कि चाहे मौसम कोई भी हो, खुले दिल से प्रकृति के प्रति अपनी असंतुष्टता का प्रदर्शन प्रत्येक जन करता ही है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का कोई दोष नहीं है। जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके आसपास की प्रकृति होती है। प्रत्येक के घर का वातावरण आबोहवा एक दूसरे से भिन्न होती है। मंदिर के पवित्र वातावरण और किसी कत्लखाने के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क होता है। है तो वही पांचों तत्व सभी जगह एक ही, फिर भी वहां रहने वाले मनुष्यों के मन का प्रभाव प्रकृति पर पड़ने से यह अंतर दिखाई देता है। जापान के वैज्ञानिक इमोटो ने पानी पर किए गए प्रयोग से ये बात सिद्ध की थी कि किस तरह मानव मन में उत्पन्न विचारों का प्रभाव पानी पर गहरा पड़ता है। ऐसे ही बहुत समय पहले लूथर बर्बेंक नामक वैज्ञानिक ने कैक्टस से बात कर करके एक बिना कांटों वाला कैक्टस उगाया था। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पौधों को यदि हल्का क्लासिकल संगीत सुनाया जाए तो पौधों पर सकारात्मक परिणाम देखने में आते हैं। इन सब बातों से हम ये तो समझ ही रहे हैं कि किस तरह ये प्रकृति मनुष्यों के संकल्पों और क्रियाकलापों से प्रभावित होती है। जिस तरह राजा के महल की वस्तुएं और एक गरीब की झोपड़ी में मौजूद वस्तुओं में फर्क दिखता है ना, ऐसे ही एक सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति और नकारात्मकता से भरे व्यक्ति के रहने के स्थान का वातावरण अलग अलग महसूस होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, व्यक्ति के निवास स्थान को देखकर उसकी मानसिकता का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। हम जितना जितना स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरते जाते उतना उतना हमारे आसपास का वायुमंडल भी शक्तिशाली बनता जाता है। आदिकाल में जब मनुष्य आत्माएं सत्वप्रधान थी तब प्रकृति भी सत्वप्रधान अर्थात सुखदायी थी, तो आज तप प्रधान क्यों बनी है सोचिए। इसलिए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें प्रकृति के प्रति सकारात्मक रहना है और सकारात्मक वाइब्रेशन हमें फैलाना है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's Community Radio Station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे अपच पर. भाई देखिए, गर्मी के मौसम में अपच की समस्या बढ़ जाती है. अपच या खाना न पचने पर खाद्य प्रणाली के अंगों में दर्द होने लगता है, गैस भरती है जिसमें भारीपन, बेचैनी, जी मिचलाना, बमन वगैरह वगैरह चलता रहता है. अग्निमांद, अपच, अजीर्ण, बदहजमी, सभी का अर्थ एक ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि खाने का नहीं पचना, जो भोजन हम कर रहे उसका नहीं पचना. तो बदहजमी में क्या होता है, दस्ते भी लग सकती है या फिर गैस, वमन ये होने की शक्यता रहती है. तो बदहजमी के दस्तों को संग्रहणी भी कहते हैं. तो अपच की समस्या है तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय दे रही हूँ, इसको आप आजमा करके अपने अपच की समस्या पर निजात पा सकते हैं. देखिए, हींग, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन सब आप समान मात्रा में लीजिए, ठीक है. और सब को समान मात्रा में लेकर के इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है. फिर एक चम्मच तीन बार पूरे दिन में गर्म पानी से फाकी लेना है, सुबह, दिन में और रात को. सुबह उठने के बाद एक बार ले लीजिए आप नन्हे कोटे, फिर दिन में ले लीजिए कि भोजन के डेढ़ दो घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, फिर आप रात को सोने से पहले ले लीजिए. तो ये जो अपच की समस्या है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी. क्या क्या लेनी है फिर से दोहरा रही हूँ. हींग लीजिएगा, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन समान मात्रा में लेनी है सभी, ठीक है. जैसे एक एक छोटा चम्मच ले रहे तो सभी एक एक छोटा चम्मच लीजिएगा. फिर इन सभी को पीसिएगा, पाउडर बना दीजिएगा और इसके तीन बार फाकी लेनी है दिन में, पूरे दिन में. तो फाकी लेकर के नव सेका पानी आपको पीना है, इससे अपच की समस्या ठीक हो जाएगी. और भी सुनेंगे आप अगला उपाय. एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट पानी से फाकी लीजिएगा. खाली एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन ले लीजिए और उसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट आप वही सुबह सुबह नन्हे कोटे आप इसकी फाकी लेकर के नव सेका पानी आप पी लीजिएगा. इससे भी अपच की समस्या ठीक होगी. अगर ये नहीं कर सकते तो और भी सुनेंगे आप सुंदर सा उपाय, कि 25 नीम की पत्ती, 3 लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीस करके थोड़ा पानी और शक्कर मिला करके सुबह शाम रोज आप 3 दिन पीजिए. 3 दिन में ही आपको आराम महसूस होगा. 25 नीम की पत्ती, 3 ले लीजिए लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीसिए और इसमें थोड़ा सा शक्कर और पानी मिला करके गट गट गट गट गट पी जाइए, ठीक है. ऐसा आपको 3 दिन तक लगातार करना है, सुबह और शाम. तो अपच की समस्या में राहत मिलेगी. और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि खाना नहीं पचता है, बदहजमी हो जाए तो एक दिन केवल पानी पीकर ही रहे, अन्य कुछ भी नहीं खाना है. कब्ज रहे तो फिर आप भोजन के साथ घुट घुट पानी पीते रहिए, ठीक है. सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना जरूरी है. तो अगर संग्रहणी है, बदहजमी है, तो उस दिन आप कुछ मत लीजिए, खाना मत खाइए, पूरे दिन आप ऐसे ही उपवास करिएगा, बीच में घुट घुट पानी पी लीजिएगा, ठीक है. तो आपका वापिस हाजमा सिस्टम, मतलब उसका लेवल आ जाएगा, बैलेंस बन जाएगा वापिस, ये जो अपच की समस्या है वो ठीक हो जाएगी. और लास्ट उपाय यही है कि कब्ज रहता है तो भोजन के साथ घुट घुट पानी पीजिए और सुबह उठते ही एक गिलास पानी तो हमेशा पीना ही है. तो ये हुए उपाय आज के सुंदर से नुस्खे. और आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं. आज की पहेली ध्यान से सुनिएगा और सोच समझ करके जवाब दीजिएगा. बहुत ही सरल पहेली है, आराम से आप जवाब दीजिएगा. चार

जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू, हलचल में तो मिट जाए। क्या चीज है? पहली बहुत ही सुंदर और सरल है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम व्यंजन तो जरूर सिखाएंगे परंतु क्या बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत ही सरल आपको पहेली पूछी है, फिर भी सोचिए सोचिए

जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू, हलचल में मिट जाए। बहुत ही सरल है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। ये चीज नहीं है तो जीवन नहीं है। अब आप सोचिए, मैंने बहुत ही अच्छा हिंट दे दिया आपको, ठीक है? अब तो आपके लिए सरल हो चुकी है पहेली, तो जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और अब पधारिए आशियाना के किचन में, आज बना देते हैं सलाद। परंतु कौन सा वाला? केरी और दाल का। वैसे तो सलाद हर मौसम में खाना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में तो ऐसी चीजें खाने की ज्यादा इच्छा होती है ना? रोटी के ऐसा लगता है रोटी बहुत कम खाए, कुछ फल फ्रूट, जैसे फल फ्रूट में भी पानी वाले फल फ्रूट, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, आम, तो भाई वैसे ही गर्मी के सीजन का राजा ही है ये तो, सब फलों का। तो इस तरह की चीजें खाने की ज्यादा इच्छा रहती है। तो सामग्री आप लेंगे, पेन और डायरी तैयार है ना? बिल्कुल लिख लीजिएगा। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी आप लीजिएगा 1/2 कप, मतलब कद्दूकस किया हुआ, ठीक है? और तेल ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, कड़ी पत्ता लीजिए 5-6, नमक और चीनी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा हल्दी पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्च का पेस्ट लेना है आपको 1 छोटा चम्मच, और राई, हींग, जीरा तड़का के लिए ले लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। हरा धनिया अपने स्वाद के अनुसार, मतलब आवश्यकता के अनुसार लीजिए, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। तो ये सलाद की सामग्री हो चुकी है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। देखिए, सलाद भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। वैसे आप कच्चा भी मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन दाल के साथ आप कैसे खाएंगे? तो आपको एक अलग ही प्रकार का सलाद सिखा रही हूँ। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी कद्दूकस की हुई 1/2 कप ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच क्या लेना है? तेल 5-6 लीजिएगा, कड़ी पत्ते, नमक, हल्दी पाउडर, चीनी, ये सब अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर हरी मिर्च की पेस्ट लेनी है 1 छोटा चम्मच, राई, हींग, जीरा तड़का लगाने के लिए लेना है थोड़ा थोड़ा सा आवश्यकता के अनुसार, हरा धनिया भी अपने आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। आइए अब केरी और दाल का सलाद कैसे बनाएंगे, विधि आपको बता रही हूँ। चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दीजिए, ठीक है? फिर पानी निकाल करके बिना पानी दरदरा पीस लीजिए। तेल में राई, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल करके तड़का लगाइए। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल में डाल दीजिए। अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और गैस तुरंत बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर सलाद सर्व करिए, पिरसिए। तो ये बन गए केरी दाल का सलाद। फिर से दोहरा रही हूँ विधि। देखिए, इसको भी आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक बार तो विधि यही दोहराऊंगी, फिर इसकी दूसरी विधि भी आपको बताऊंगी। आप क्या करेंगे, चने की दाल जो हमने ली है ना, इसका 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर पानी निकाल दीजिए 4 घंटे के बाद, और इसको दरदरा ऐसे ही पीसिए, पानी नहीं रखना है, ठीक है? फिर आप तेल रखिए कढ़ाई में, और तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरे का तड़का लगाइए, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए, और तड़का लगाना है। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल डाल दीजिए, ठीक है? अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर आप सलाद पिरस सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि आप चने की दाल को 4 घंटा के लिए पानी में तो आपको भिगोना ही है, ठीक है? तो फिर आप दाल की मात्रा थोड़ी सी कम कर लीजिए, और भिगो दिया 4-5 घंटे के बाद पानी निकाल दीजिए, और इसी दाल में आप कैरी कद्दूकस करके डालिएगा। फिर इसी में आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, जीरा पाउडर डालना है, और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ठीक है? तो ये सब डाल करके आप कच्चा ही खाइएगा तो भी स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है? अब आपको जिस तरह खाना हो खाइए, मैंने आपको विधि बता दी है। भले आप इस तरह छोक लगा कर खाइए, भले आप कच्चा खाइए। तो ये बन गया केरी दाल का सलाद। अब मैं आपको एक और सलाद सिखाऊंगी, परंतु कौन सा वाला, वो तो आप ब्रेक के बाद ही जान पाएंगे।
तो आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ये पहेली का जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। अब हम सुनेंगे यहीं पर एक प्यारा सा गीत, उसके बाद पुनः आपसे मिलेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। आप सभी आशियाना की किचन में हो और आशियाना की किचन में बना रहे थे केरी और दाल का सलाद। ठीक है, अब मैं दूसरा भी आपको सलाद ही सिखा रही हूँ, क्योंकि भाई सलाद का नंबर लिया है तो मैं आपको पूरा ही सिखा देती हूँ। इच्छा हो ऐसा सलाद बना करके खाइएगा, लेकिन गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा और इस तरह पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाइएगा। सलाद में जो हम चीज़ें डालते हैं उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा ककड़ी है, हरा धनिया है, पालक है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं आपको मिक्स सब्जी का सलाद अब सिखाने जा रही हूँ, परंतु आप जानते हो परंतु मैंने क्यों बोला है, पहली फिर से सुना रही हूँ इसलिए बोला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि पहली क्या है। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हलचल होते ही फिर हम स्वयं के फोटो को नहीं देख सकते, स्वयं के चेहरे को, स्वयं को नहीं निहार सकते, बाकी आराम से हम निहार सकते हैं। अब मैंने इतना हिंट दे दिया हो, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकती मैं। अब आप सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। और अब मिक्स सब्जी का आपको सलाद सिखा रही हूँ, इसके लिए आप सामग्री लीजिएगा। पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, ठीक है, एक कप ले लीजिए, भले आप कद्दूकस करके एक कप ले लीजिएगा। पालक ले लीजिए बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक छोटी लेनी है आपको, ठीक है, टमाटर एक लेना है, अंकुरित मूंग आधा कप ले लीजिए, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है, चीनी अगर पसंद है तो लीजिएगा, स्वाद के अनुसार नहीं हो तो कोई बात नहीं मत लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा नमक अपने स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर भी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और नारियल कसा हुआ लीजिएगा दो छोटा चम्मच। यही सामग्री है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पत्ता गोभी कद्दूकस की हुई लीजिएगा एक कप, फिर पालक ले लीजिएगा, मतलब ये सब धुलाई करके ही आपको लेना है, ठीक है, पालक लीजिएगा बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक लेनी है उसके भी गोल स्लाइस कर लीजिएगा छोटी वाली ककड़ी, फिर टमाटर भी एक लेना है इसको भी आप बारीक उतर लीजिएगा, और ककड़ी का भी आप स्लाइस मत करिए, इसको भी कुतरिएगा क्योंकि हम स्लाइस वाला सलाद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा अंकुरित मूंग ले लीजिएगा, नमक काली मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है और नारियल कद्दूकस किया हुआ दो छोटे चम्मच लीजिएगा। अब मैं आपको मिक्स सब्जियों का सलाद कैसे बनाया जाता है सिखा रही हूँ। सामग्री सारी इकट्ठी कर ली, अब इन सभी सामग्री और अंकुरित मूंग को सभी को मिक्स कर देना है और एक जार में डाल करके अच्छी तरह इसको मिला लेना है। इसके बाद नींबू का रस, चीनी, काली मिर्च पाउडर और नमक मिला दीजिए, इसमें नारियल मिला करके सब मिक्स करके आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गया, इसको हम एनर्जी सलाद भी कह सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी की है, तो एनर्जी से भरी हुई। तो क्या करेंगे, जो भी हमने सलाद किया, जो सब्जियां सवार के रख रखी है, जैसे कि पत्ता गोभी, ककड़ी, पालक, टमाटर, ये सब आप मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें ही आप मूंग भी, जो अंकुरित मूंग लिए है, इनको भी मिक्स कर दीजिएगा और स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च भी डाल दीजिएगा और नींबू का रस भी निचोड़ करके सबको मिक्स कर दीजिएगा।

दोनों ही सलाद रखिए। फिर जो भी सब्जी चपाती जो भी बनाई है वो भी रखिएगा। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित, मेहमानों सहित आनंद लीजिएगा। कौन कौन से सलाद का? केरी और दाल का और मिक्स सब्जी वाला, दोनों ही सलाद का आनंद लीजिए। और फिर आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चार

तो ऐसी क्या चीज है जो शांत रहने पर हम आराम से निहार सकते हैं स्वयं को उसमें, और जब हलचल होती है तो मिट जाता है सब कुछ। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आप सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः हम आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मरिस्का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और विशेष करके स्पोर्ट्स पर बहनों पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, खुल करके बहनें सामने नहीं आ पाती है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे सामने बैठी है सेजल। सेजल गोस्वामी आबू रोड की रहने वाली है और 10th क्लास अभी एग्जाम दिया है 10th का, और 11th में आई है। तो सेजल को स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, तो सेजल से तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन आप भी जरूर जुड़िएगा। आपको तो आप जानते ही हो कि भाई खुशनुमा जीवन में आपका खुलकर स्वागत है, और आज की पहली भी बहुत ही सुंदर है जिसको दोहरा रही हूँ। बीच में भी आप फोन कॉल्स करके पहली का जवाब दे सकते हो। चार खुणारी बावड़ी भरी ही लोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो शांत रहने पर स्वयं को देख सकते और हलचल में ये मिट जाती है? जवाब देने के लिए और खुशनुमा जीवन में जुड़ने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और खुशनुमा जीवन में भी आप अपने बात रख सकते हो, प्रश्न का इस पहेली का जवाब भी दे सकते हो। आइए सेजल से मिलते हैं। सेजल आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। सेजल आपको स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलती है?
3: जैसे कि रनिंग है, कबड्डी है, मतलब और भी कई खेल है।
2: जी जी, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़ चुके हैं। हेलो
4: हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते कमलेश बहन।
4: हाँ नमस्कार जी, थोड़ा कसरत की है
2: जी
4: खेलने के लिए,
2: जी।
4: तो उसमें मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा कि भाई समुंदर ही होता है।
2: अच्छा।
4: तो बहुत ज्यादा आवाज आती है, शांति से देखे तो मजा आता है।
2: अच्छा
4: हेलो।
2: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं।
4: हाँ जी।
2: अच्छा
4: आज का मेले का उत्तर है मैडम जी समुंदर।
2: अच्छा ठीक है,
4: क्योंकि और... उनको देखने के लिए अपन शांति से देख सकते
2: हैं।
4: हलचल रहती है, आवाज होती है पानी की बहुत, तो शांति से देखे तो उसमें निहारने में मजा आता है।
2: अच्छा
4: ठीक है मैडम।
2: और कमलेश बहन आप जुड़ ही चुके हैं रेडियो मधुबन से, तो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक है?
4: इसका मैडम
2: आपने कभी स्कूल में आपने जैसे कि अपने कंपटीशन होता है ना, 100 मीटर की दौड़, 500 मीटर की दौड़, दो टांग रेस, फिर कभी कबड्डी, खो खो, इस तरह के गेम आपने खेले?
4: हाँ जी मैडम जी खेले थे।
2: तो आपको कैसा लगता है इस तरह का गेम खेलना?
4: बहुत मजा आता है, आनंद आता है बहुत, इससे बहुत एक्सपीरियंस, शरीर भी अच्छा रहता है।
2: जी जी जी,
4: बहुत मजा आता है
2: जी। तो ये कम हमारी बहनें थोड़ा कम खेलती है, आप क्या कहना चाहेंगे?
4: ये तो मैडम सबको खेलना चाहिए, ये तो अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, ये भी एक योगा है।
2: बहुत सुंदर, परंतु है ना जो माता पिता ज्यादा परमिशन नहीं देते बच्चों को, वो माता पिता की नजर में क्या होता है, अरे उछल कूद नहीं करना है, शांति से रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप क्या कहेंगे?
4: नहीं मैडम जी, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़ाई जैसा ही है।
2: बहुत ही अच्छी बात है कि ये भी पढ़ाई अपनी जगह है और गेम्स अपनी जगह है।
4: हाँ सही बात है मैडम जी,
2: जी
4: ये
2: जी,
4: भी
2: जी।
4: जीवन में बहुत जरूरी है।
2: बहुत सुंदर, तो ठीक है कमलेश बहन, और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कभी आप किस में भाग लेते थे, कौन से गेम आप खेलते थे?
4: मैं तो मैडम जी बास्केटबॉल में खेलती थी, खो खो में खेलती थी।
2: क्या बात है।
4: कबड्डी कबड्डी सब में भाग लेती थी, जीतती थी मैं तो हर बार।
2: अरे वाह, तभी आप फिट एंड फाइन है।
4: घर वाले घर नहीं परमिशन नहीं देते, साथ ही तक ही पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी
2: जी,
4: पर जब तक पढ़ी तब तक मजे लिए हमने खूब।
2: बहुत अच्छी बात है, खुलकर जीवन जीना चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ तो बात ही क्या कहना है, गोल्डन लाइफ है।
4: तो वो तो मिस में तो किसी को मानती नहीं थी, खेलने के लिए भागती थी।
2: बस
4: और शौक नहीं था मैडम जी, और कोई शौक नहीं था मुझे, एक तो खाना बनाना, नई नई चीजें सीखना
2: जी,
4: और ये खेलना कूदना, गाने गाना।
2: बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तो ये भी किसी से कम नहीं है, आप वैरायटी खाना बनाकर परिवार वालों को खिलाओ, वैसे ही वो खुश रहेंगे कि अरे वाह क्या भोजन मिला है। इंसान काम करता है 24 घंटे, लेकिन खाना अच्छा मिल जाता है तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है,
4: सब खत्म हो जाता है, शांति हो जाती है, आत्मा को तृप्ति हो जाती है।
2: जी जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश मैन, बहुत सुंदर आपने बात की है।
4: थैंक यू
2: जी। तो सेजल आप क्या कहेंगे गेम्स के बारे में, जैसे आपको रुचि है, आप टूर्नामेंट में भी जाते हैं?
3: एक बार गए थे।
2: अच्छा, फिर क्या रिजल्ट रहा?
3: मतलब आगे जाने, मतलब फर्स्ट आए थे।
2: फर्स्ट आए, कौन सी क्लास में आप गए थे टूर्नामेंट में?
3: छोटे ही थे उस समय तो, मतलब होंगे 6th 7th में।
2: अच्छा, और कौन सा गेम खेला था आपने?
3: बैडमिंटन में।
2: अच्छा, अरे वाह। कौन से गांव आप गए थे टूर्नामेंट में?
3: अनादरा।
2: अनादरा, और वहां से जीत के आए। उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ?
3: उसके बाद स्कूल की तरफ से कभी लेके तो गए नहीं।
2: हेलो
5: हेलो, हाँ नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा।
2: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
5: बस अच्छे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
2: जी जी जी। सेजल हम आपसे बात जरूर करेंगे, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं तो इनसे बात करेंगे। अच्छा सुरेश भाई, स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे?
5: बस जीवन जी। में दीदी इंसान के लिए, खास करके यंगस्ट इंसान के लिए स्पोर्ट का बहुत महत्व है, चाहे कुछ भी स्पोर्ट खेले। और अभी जो आपने बात भी बताई कि लड़कियां जो बहुत, अब तो ऐसा हो रहा है कि लड़कियां भी आगे आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत कम, जैसे ही बड़ी होती है तो शादी कर दी जाती है, और गांव की ये चीजें रीति रिवाज है। और मैं पहले की बात बताऊं तो लड़कियां लगभग 5 साल से ऐसी खेल खेलते, जो 5 पत्थर के लेते वो नाम भी पता नहीं, वो खेलते किसी को भी।
2: सितोलिया?
5: अरे हाँ वही, नहीं जीतने देती, या रस्सी कूद में, ऐसे बहुत सी ऐसे खेल है वो बचपन में बहुत हमने भी खेले हैं।
2: जी क्या बात है। जी
5: जी, तो सभी को माँ बाप को बस ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी लड़की को अगर स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में रुचि है तो जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वहीं पर रोक दिया ना जाए, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा।
2: जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है।
5: और जी, और जो आपकी पहेली है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आईना होना चाहिए, आईना।
2: अच्छा,
5: तो कांच बोलते हैं हम। हाँ
2: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, आपके प्रश्न का जवाब जरूर हम देंगे, पहेली का जवाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। तो सेजल आपकी ओर बढ़ते हैं हम फिर से, आपने बताया कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, और किस किस में रुचि है, और क्या आप ही खेलते हो या आपके क्लास के लगभग सभी बच्चियां खेलती हैं?
3: सारी बच्चियां खेलती
2: हैं। अच्छा, तो जैसे आप एक बार टूर्नामेंट में गए, दूसरी बार नहीं गए फिर?
3: दूसरी बार स्कूल की तरफ से लेके नहीं गए कभी।
2: अच्छा, जीत करके आए फिर भी?
3: जीत करके आए, फिर स्कूल वालों ने नाम तो लिखवाए थे, पर कोरोना आ गया था बीच में, इसलिए वो मना हो गया।
2: अच्छा, तो अब कोरोना तो हट गया है, अब फिर से आप बच्चियां मिल करके सर से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं?
3: बीच में हुआ था तो मतलब बॉयज का था, कि भाई गर्ल्स का नहीं था।
2: अच्छा जी जी जी, तो बहुत सारे देखते हैं हम गांवों में क्या है, माता पिता, जैसे सुरेश भाई भी बता रहे थे कि गांवों में माता पिता थोड़ा अलाउ नहीं करते बच्चियों का, बच्चों को तो परमिशन दे देते लेकिन बेटियों को परमिशन नहीं देते, क्या कारण है?
3: उनके तरफ से रीति रिवाज होगा शायद कोई, कि मना करना, पर मना नहीं करना चाहिए इस पे, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।
2: जी जी,
3: गांव की हो या शहर की हो, कोई ना कोई खेल खेलने देना चाहिए।
2: जी जी, तो सेजल आपको तो घर से मना नहीं करते है?
3: नहीं, मुझे पूरी छूट है।
2: चलिए अच्छी बात है, तो यहीं पर अब हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं। आप जो भी जुड़ना चाहते हैं खुशनुमा जीवन में अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसको भी स्पोर्ट्स का शौक है, जो खेलते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे श्रोता बंधु का जाते जाते फोन उठा देते हैं। हेलो
6: हेलो, ओम शांति।
2: हाँ जी नमस्ते, ओम शांति मंजू जी, कैसे हो आप?
6: बस बढ़िया है।
2: बहुत अच्छी बात है, हमेशा खुश
6: रहिए। बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
2: जी जी आप भी कुछ कहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में? आपको शौक रहा है, कभी आपने भी गेम्स खेले?
6: बिल्कुल, इतने मतलब खेलते थे, खेल बैठे घर पे, अंदर बाहर मैदान में, अब तो याद ही नहीं है। मतलब हर प्रकार के जो गेम होते थे सब खेले थे बच्चे थे तब।
2: जी जी जी।
6: और मेरे को कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता था। हम स्टूडेंट लाइफ में टीचर के साथ भी खेलते थे, फिर घर पे छुट्टियां होती थी तब भी खेलते थे, और भैया वगैरह ये क्रिकेट खेलते थे तो कभी कभी हमें भी बॉल फेंकने का मौका मिलता
2: था। अच्छा, बॉलिंग करते थे आप?
6: दोनों ही,
2: बैटिंग और बॉलिंग।
6: हाँ, बहुत अच्छा लगता था।
2: जी,
6: उनको
2: जी,
6: भी
2: जी।
6: अच्छा लगता था, हमको भी। लेकिन आजकल है ना, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई है खेल, मतलब खेल के मैदान में हर जगह अव्वल रहती है लड़कियां, और खेलना भी चाहिए। हमारा मानसिक और शारीरिक विकास ये मतलब खेल से बहुत ज्यादा बढ़ता है, और खुद में आत्मविश्वास बढ़ता है, और दिमाग के घोड़े तो ये खेल में ही दौड़ते हैं।
2: जी
6: बिल्कुल, इतना मतलब हर खेल में दिमाग का ही उपयोग होता है सबसे ज्यादा तो।
2: जी,
6: और दिमाग के साथ साथ अपनी बॉडी भी मजबूत रहती है।
2: बहुत सुंदर। तो मंजू जी, गांवों में अभी भी माता पिता थोड़े बेटियों को परमिशन नहीं देते हैं, आप क्या कहेंगे?
6: देते भी है, कम लोग है जो नहीं देते हैं। आजकल तो मतलब ऐसा कोई परिवार भी नहीं है हमारे आसपास देखें तो, लड़की स्कूल पढ़ाई नहीं कर रही है या किसी खेल में भाग नहीं ले रही है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या खेल कूद का हो, हर प्रकार के प्रोग्राम में उठ जाती भी है और अव्वल भी रहती है। कबड्डी तक ऐसे खेल, खो खो है।
2: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, गेम्स में आगे बढ़ना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, परमिशन हाँ, सभी को मिलनी चाहिए।
6: दस साल में तो बहुत परिवर्तन हो गया।
2: जी जी जी जी। और आज के पहेली का जवाब देंगे?
6: पहेली का जवाब पानी हो सकता है मैडम जी, और क्या।
2: अच्छा तो ठीक है, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपके जवाब जरूर सुनाएंगे।
6: बावड़ी तो आपने बोल दिया, पानी है।
2: ठीक है, तो देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, वो आप सुनिएगा कार्यक्रम। ठीक है,
6: कोई बात नहीं, ये भी एक दिमाग की प्रैक्टिस है। पूछते रहो हमेशा।
2: जी शुक्रिया,
6: धन्यवाद।
2: हाँ जी, तो आइए यहीं पर हम भी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

ओम शांति, नमस्कार। मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही। चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही, मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं, मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं। हेलो
1: हेलो शमन जी।
0: हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस नमस्कार नमस्कार बहन जी, दुकान पे एक काम करते हैं
0: जी, जी
1: लड़का खेती का काम पूरा हो गया, उस लड़का काम करना पड़ेगा क्योंकि आसपास आदिवासी भाइयों का जो लग्न की चीजें कपड़े दे देने पड़ेंगे, तो सुबह शाम काम चलता है, दोपहर तो गर्मी बहुत पड़ती है
0: जी,
1: तो रेस्ट भी करना
0: जी जी बिल्कुल, और सुबह सुबह हो जाता है वो हो जाता है, फिर गर्मी तो है ही है।
1: हाँ सुबह में उसके बैठ जाना पड़ता है ना, उसके पूजा पाठ करके आ जाते हैं दुकान पे।
0: जी जी जी तो कंचन भाई स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी कभी खेलकूद किया करते थे?
1: हाँ जी बहन जी, स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो देखो हमारे यहाँ स्कूल थी तो व्यायाम का पीरियड रहता, व्यायाम पहले तो क्या था टीचर किए हुए व्यायाम टीचर होते थे
0: जी,
1: तो 4 से 5 बजे घंटे हमें मैदान में ले जाते थे और कबड्डी है, खो खो है, ऊंची कूद है, ये सब हमें करवाते थे
0: जी,
1: ठीक है, तो हम भी भाग लेते थे। और हमारे यहाँ आस पास आदिवासी एरिया है तो बहनों ज्यादा करके कई जिला पहुंचे थे, पढ़ते थे बाला बैग बस्ती बैग ये सब बहने भी और धनुष सिर काम था
0: जी,
1: ऐसा ये भी मैंने भाग लेती थी। अब तो ये बंद हो गया है बहन जी, ये सब है ना व्यायाम का कोई ये ही बंद हो गया पीरियड, और कोई शिक्षक भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है,
0: तो समय के साथ विकास होना चाहिए उसकी जगह बंद हो गया।
1: हाँ बंद हो गया, और जिसने देखो सीपीएड बीपीएड ये सब किया है ना जिसने
0: जी,
1: वो अभी घर पे बैठे हैं, वो भर्ती या होती ही नहीं।
0: अच्छा
1: क्या करे यार।
0: जी जी जी जी,
1: तो वहाँ से शुरू होता था हमारे हमारी बात करे तो, ये तो सब अब तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ये सब कंप्यूटर ये सब आ गया है तो छूट गया है इस।
0: जी जी जी
1: है।
0: और कंचन भाई आज की पहेली का जवाब देंगे?
1: पहेली क्या है
0: जी? पहेली है, चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। कोई बात नहीं
1: तो
0: सोचिएगा जी, आप सोच के फिर से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है?
1: हाँ जी
0: हाँ जी, शुक्रिया। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, सेजल हमारे साथ बैठे हुए हैं। सेजल आपके यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बाहर ले जाना बंद कर दिया कोरोना के बाद, है ना, टूर्नामेंट्स में अभी तक नहीं हुआ है लड़कियों के। अच्छा, तो आपके स्कूल में होते हैं? अच्छा, और ग्रुप वाइज होते हैं या क्लासेस टूर्नामेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं?
2: ग्रुप वाइज होते हैं।
0: ग्रुप वाइज होते हैं तो उसमें आप भाग लेते?
2: हाँ।
0: अच्छा, कितने गेम्स आप खेल सकते हैं?
2: बैडमिंटन, बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हैं।
0: नहीं, जैसे एक स्टूडेंट को कितने गेम्स खेलने की छूट है टूर्नामेंट में, कंपटीशन में?
2: तीन
0: गेम्स। तो आप कौन कौन सा खेलती हो?
2: बैडमिंटन, दो पैर और रस्सी कूद।
0: अच्छा, तो सभी बच्चे तीन तीन गेम्स खेलते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार?
2: अपनी इच्छा के अनुसार।
0: अच्छा, बाहर लेके जाते हैं टूर्नामेंट में तो वहाँ पर कितने गेम्स खेले जाते हैं?
2: उधर तो किस तरीके से तुम्हें कौन से गेम से लेके जा रहे हो उस तरीके के गेम खेलाए जाते हैं।
0: अच्छा,
2: एक गेम के ऊपर
0: एक गेम ही होता है। तो गेम्स खेलने के फायदे क्या है, स्पोर्ट्स में जो हम भाग लेते हैं उससे क्या फायदा मिलता है?
2: गेम्स खेलने के बहुत फायदे हैं।
0: जैसे कि
2: उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारे अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। मोटे लोग भी गेम खेलते हैं
0: जी,
2: तो जिनकी वजह से उनके जो बॉडी है ना वो फिट रहती है
0: जी। बहुत सुंदर बात कही सेजल कि गेम्स के बहुत सारे फायदे हैं, एनर्जी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, जो मोटे लोग हैं ना वो भी गेम्स अगर खेलते हैं तो उनका भी मोटापा कंट्रोल में आ जाता है, फिट एंड फाइन हो जाते हैं और एनर्जी और एक्टिवनेस बढ़ती है, तो बहुत ही अच्छा है। और आप पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप पढ़ाई में कैसे हैं?
2: पढ़ाई में मीडियम है।
0: अच्छा, तो आगे कोई लक्ष्य बनाया आपने?
2: हाँ, ब्यूटिशियन का है।
0: अच्छा, क्यों गेम्स में आपको रुचि और ब्यूटिशियन बनना, दोनों ही अलग अलग हो गए फील्ड?
2: गेम्स में है, पर गेम्स में जाते हैं ना आगे, कभी कभार खेलते हैं, मतलब गेम्स के अंदर स्कूल से लेके जाते हैं।
0: जी जी जी,
2: आगे बड़े हो के।
0: और ब्यूटिशियन तो अपना सेल्फ रहता है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल से आगे नहीं ले जा सकेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ब्यूटिशियन पर अपना सेल्फ है, सेल्फ डिसीजन है, जब चाहे तब खोल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सीखना पड़ेगा?
2: सीखना पड़ेगा, मतलब एक साल का कोर्स होता है इसका।
0: अच्छा,
2: अहमदाबाद से, कोई भी बड़ी सिटी होती है उनसे।
0: अच्छा, फिर कहीं पर भी आप खोल सकते हो?
2: हाँ, आप कंपनी से भी जुड़ सकते हो, किसी कंपनी से जुड़ के भी आपको हो सकता है।
0: अच्छा, अपना अपना शौक है, अच्छी बात है, कोई ना कोई लक्ष्य बनाना बहुत अच्छी बात है। तो सेजल, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई है कि स्पोर्ट्स में आपको किस तरह रुचि है और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी के सामने रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफ़ी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा विचार भी दिया तो नुस्खे भी अपच पर दिए। ज़रूर ध्यान दीजिएगा, रेसिपी में आपको जो सलाद बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज की पहेली बहुत ही सुंदर थी, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जवाब भी आप जो आपने सुनाया है वो मैं अभी बताऊँगी। चार

मिट जाए। यह आज की पहेली थी जिसका जवाब दिया है कमलेश बहन माउंट आबू ढूंढई से। उन्होंने कहा है कि समुद्र पहले आत्मा का फिर बाद में समुद्र कहा है, लेकिन यह गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से, उन्होंने पर्यावरण कहा है, यह गलत है। कुपराम जी कोजरा से, सबसे पहले इनका जवाब सही है, परंतु क्या है वो मैं बाद में सुनाऊंगी। सुरेश भाई थानेराव से, आपने कहा आईना, ये गलत है। मंजू जी बाड़मेर से, आपका भी जवाब सही है जो मैं बहुत ही शीघ्र सुनाने वाली हूँ। सुरेश भाई झोटाना से, आपका भी जवाब गलत है, उन्होंने भी आईना ही कहा है। कंचन भाई मंडाली से, आपने जवाब नहीं दिया है, तो जवाब दिया है कुपाराम जी और मंजू जी बाड़मेर से, पानी। तो ये जवाब सही है, ढेर सारी ताली आप दोनों के। और देखिए आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है सभी ने, इसके लिए आप सभी के लिए भी ढेर सारी ताली। देखिए आपने कांच वगैरह कहा, आईना कहा, वो ठीक है, लेकिन पहली बहुत ही सुंदर थी कि चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाई। अब किससे हिलोरा खा रही है? पानी से खा रही है ना। और शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। शांत पानी में आप देखिएगा, आपका चेहरा साफ दिखाई देगा, आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। लेकिन एक कंकड़ भी अगर पानी में गिर गया तो फिर आप अपने आप को निहार नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना। हलचल हो जाती है ना उसमें, आपका फोटो फिर चारों तरफ फैल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए पानी जवाब सही है। आज का मीठा मोती है, सरलता में महान सौंदर्य होता है, जो सरल है वह सत्य के समीप है। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हंस हंस मारे छक्का। गेम्स के ऊपर ही है। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार। चुन्नू भैया रूठ गए तो दिल में पड़ी दरार, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, करी गुदगुदी मुन्नी ने तब हंस हंस मारे छक्का। इधर उधर का दोनों दौड़े, इधर उधर को दोनों दौड़े हंस हंस देके कक्का, कोई किसी के हाथ न आए, हो रही धक्कम धक्का, हो रही धक्कम धक्का। खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए तो दिल में

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।

0: कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता भारतीय वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा है, जो हम सब ने अपने स्कूली दिनों में पढ़ी भी होंगी। बाल्यावस्था से ही उनके साहस के किस्से चारों ओर फैल चुके थे और 29 वर्ष की अल्प आयु में वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहास के पन्ने ऐसे अनगिनत देशभक्तों और क्रांतिकारियों के खून से सने हैं, जिन्होंने खुशी खुशी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर वो पुरुष हो या महिला, उनमें से ही एक थी प्रीति लता वाद्यदार, जो महज 21 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई। जब अंतिम सांस ली तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, वंदे मातरम। आज एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी प्रीति लता के देशभक्ति की कहानी।
1: निर्मल दा, हम सब ने सिस्टर निवेदिता, भिकाजी कामा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं साहस की कहानी सुनी है। आखिर प्रीति लता ने देश के लिए कैसा बलिदान दिया?
2: अच्छा सवाल। प्रीति लता को बंगाल की अग्निकन्या भी कहते थे। वह किसी से डरती नहीं थी।
1: इतना साहस कैसे आया उनमें?
2: तनिक ठहरो, सब्र करो। इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस चटगांव में, जो आज बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और जिसे अब चटगांव नहीं चटग्राम के नाम से जाना जाता है।
0: चटगांव को हम मास्टर सूर्यदा यानी बंगाल के वीर क्रांतिकारी सूर्य सेन की वजह से जानते हैं। उसी चटगांव में रहती थी प्रीति लता, जिनके अंदर देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने की धुन लगी थी। एक सुबह उनके घर घबराई सी युवती प्रतिभा पहुंचती है और उन्हें कुछ दिखाती है।
3: दीदी दीदी देखो, आज के अखबार में क्या छपा है? मास्टर दा की ढोलघाट वाली मुठभेड़ के बारे में क्या लिखा है? उन्हें पुलिस तलाश रही है। मुझे तो डर लग रहा है, आप क्या कहती हैं?
4: किस बात का डर प्रतिभा? डरना तो अंग्रेजों को चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा है।
3: दीदी आपको डर नहीं लगता? आप स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं, आपका सभी बहुत सम्मान करते हैं। माँ बाबा आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और आप क्रांतिकारियों के साथ आजादी के सपने देख रही हैं।
4: प्रतिभा, जब पूरा देश एक बड़ी जेल बन चुका हो तो चार दीवारों की गृहस्थी में सुख कैसे मिल सकता है? माँ बाबा को समझा देना, उनकी बेटी सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई है, मेरा विवाह तो इस देश की आजादी से हो चुका है।
0: ये वो समय था जब ब्रिटिश पुलिस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। और तभी जून 1932 में ढालघाट गांव में क्रांतिकारियों के एक गुप्त ठिकाने पर पहली बार प्रीति लता और सूर्यदा की भेंट होती है। उनके साथ निर्मल सेन और अपूर्व सेन भी थे।
5: मास्टर दा प्रणाम, मैं आ गई हमेशा के लिए।
6: आओ प्रीति, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। कल्पना दत्त ने मुझे तुम्हारे आने की सूचना दी थी, पर क्या तुम जानती हो कि इस गुप्त ठिकाने पर कदम रखने का वास्तविक अर्थ क्या है?
5: जानती हूँ मास्टर दा, यहाँ कदम रखने का अर्थ है मौत से सीधा सौदा।
6: तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कोलकाता विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में ग्रेजुएट हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, फिर इस कांटों भरे रास्ते पर क्यों आना चाहती हो? यहां भूखे पेट रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और किसी भी क्षण अंग्रेजों की गोली का शिकार होना पड़ सकता है।
5: खौमा कोरबिन मास्टर दा, अगर देश के पढ़े लिखे युवा केवल अपने भविष्य की चिंता करेंगे तो इस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से कौन आजाद कराएगा? यदि पुरुष इस लड़ाई में गोलियां खा सकते हैं तो महिलाएं पीछे क्यों रहें? मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए।
6: तुम्हारी आंखों की यह चमक बता रही है कि तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। आज से तुम हमारी सैन्य शाखा की सक्रिय सदस्य हो।
0: सूर्यदा के ठिकाने पर पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बन रही थी। वहां कल्पना, प्रीति, लता सभी पहुंचते हैं।
7: प्रीति, मास्टर दा चाहते हैं कि इस बार हमले की कमान तुम संभालो, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है।
5: हाँ कल्पना, मैंने देखा है, इस क्लब के बाहर एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, यह हमारे पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर रोज किए जाने वाला प्रहार है।
7: क्लब के चारों ओर कटीले तारों का घेरा है और हर वक्त ब्रिटिश सर्जेंट हथियारबंद सिपाहियों के साथ गश्त करते हैं। हमें रात के अंधेरे में पुरुष वेश धारण करके जाना होगा। क्या तुम तैयार हो?
5: बिल्कुल तैयार हो। हम धोती और शर्ट पहनकर पंजाबी नाविकों का भेष बदलेंगे। मास्टर दा, मुझे इस अभियान के लिए आपकी अनुमति और आशीर्वाद चाहिए।
6: तुम्हें पूरी अनुमति है प्रीति, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि अभियान के दौरान पकड़े जाने की स्थिति बने तो जीवित

0: क्रांतिकारियों को धावा बोलना था। प्रीति लता ने कमर कस रखी थी। वो अपने साथियों के साथ आखिरी तैयारी में जुटी थी। उन्हें दिशा निर्देश दे रही थी ताकि कोई चूक न रह जाए।
1: सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। जैसे ही मैं सीटी बजाऊं, क्लब के भीतर बम फेंक देना और खिड़कियों से गोलाबारी शुरू कर देना।

0: बताते हैं कि क्लब के एक मुस्लिम बावर्ची क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के बर्ताव से बहुत नाराज थे। उन्होंने ही क्रांतिकारियों को क्लब के रास्तों, बनावट आदि की पूरी जानकारी दी थी। सब बताया था कि क्लब में कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, कहां कहां पुलिस तैनात रहते हैं आदि। ये भी तय था कि वो रसोई की खिड़की से टॉर्च लाइट से इशारा देंगे। उनके इशारे के बाद ही तीखी सीटी की आवाज आती है और रात करीब 10 बजे एक बहुत तेज धमाका होता है। कांच टूटने और अंग्रेजों की चीख पुकार मच जाती है। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बाहर जाने के सभी रास्तों पर क्रांतिकारी थे।
1: Help! Help! Terrorists! Terrorists! Run for your lives!
2: इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथियों, कोई भी गोरा अफसर बच कर ना जाने पाए, हमला तेज करो।
0: राइफलों और पिस्तौलों की अंधाधुंध तड़तड़ाहट हो रही थी। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मची थी। अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया था। तभी अचानक एक भारी गोली चलने की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद प्रीति लता के मुंह से एक तेज करहा निकलती है।
3: मुझे शायद गोली लग गई।
4: प्रीति दीदी, आप बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, बहुत खून बह रहा है। चलिए चलिए, हम आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल लेते हैं।
3: नहीं नहीं, रुकना मत, मेरा आदेश है, तुम सब यहाँ से पीछे हटो। हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया है। अगर तुम मुझे बचाने में समय गवाओगे तो सब पकड़े जाओगे।
0: कुछ देर के पश्चात गोलीबारी थम जाती है। केवल क्लब के अंदर लगी आग की लपटों की चटकने की आवाज आ रही थी और प्रीति लता की भारी सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पीड़ा के बीच भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो नारे लगा रही थी।
3: भारत माता, आज तुम्हारी ये 21 साल की बेटी तुम्हारे चरणों में अपने जीवन का अंतिम अर्घ दे रही है। मैंने जो मशाल जलाई है, उम्मीद है वह बुझेगी नहीं। घोरे सर्जेंट, मुझे

0: மாதரம்.
1: प्रीति लता ने कागज की पुड़िया खोली और गोली निगल ली। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद वहां ब्रिटिश सर्जन पहुंचे और टॉर्च जलाकर देखा

0: ओह माय गॉड, चेक दिस आउट, ये तो एक युवा लड़की है। इसने पुरुषों के कपड़े पहन रखे हैं। बट शी इज डेड, इसने जहर खा लिया है। लेकिन चेहरे पर खौफ की जगह ये कैसा सुकून और मुस्कान है।
1: असल में ये क्रांतिकारी अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेना चाहते थे और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन क्लब पर हमले के बाद ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर चारों ओर अंग्रेज सिपाही पहुंच गए।
2: सर्च एवरी कॉर्नर, इस मरी हुई लड़की की जेब की तलाशी लो। मुझे इसके सारे मददगारों के नाम चाहिए। ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे मास्टर द सूर्य सेन का हाथ है।
3: यस सर, देखिए इसकी जेब से कुछ दस्तावेज और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र मिला है।
2: क्या लिखा है इसमें?
3: सर जी, इसमें लिखा है,
4: भारत की महिलाएं अब किसी भी मामले में अपने भाइयों से पीछे नहीं रहेंगी। यदि हम देश के लिए जान दे सकती हैं, तो हथियारों से दुश्मनों का भी खात्मा कर सकती हैं।
2: Damn it! ये औरतें तो पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुरंत रेड मारो, कल्पना दत्त और सूर्य सेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो।
1: क्लब पर हमले के बाद कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर सूर्यदा भागने में सफल रहे। मामले की सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट में भारी गहमा गहमी थी।
5: ऑर्डर, ऑर्डर! चटगांव आर्मरी रेड और पहाड़ तली क्लब हमले का स्पेशल ट्रिब्यूनल केस, किंग एम्परर वर्सेस कल्पना दत्त और अन्य।
6: माय लॉर्ड, 25 सितंबर 1932 की रात जो हुआ वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली बगावत थी। प्रीतिलता वादेदार नाम की बागी लड़की ने खुदकुशी करके कानून से बचने का रास्ता चुना, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे यहाँ खड़ी मुलजिम कल्पना दत्त और फरार मास्टरदा सूर्य सेन का हाथ है। इन बागियों को सरेआम फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
7: मुलजिम कल्पना दत्त, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है?
8: मिलोर्ड, हमें किसी बचाव की जरूरत नहीं है। प्रीति लता वदेदार मरी नहीं है, उसने देश के आत्मसम्मान के लिए शहादत दी है। आप हमें बागी कहते हैं, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वाले सैनिक हैं। आप हमें जेल भेज सकते हैं, फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में जल रही आजादी की इस आग को कभी नहीं बुझा सकते।
1: अदालत में भारतीयों द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के धीमे लेकिन दृढ़ नारे गूंजने लगे। जज उन्हें शांत रहने को कह रहे थे।
7: साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। ये अदालत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जुर्म में कल्पना दत्त को आजीवन काला पानी की सजा सुनाती है।
8: मुझे ब्रिटिश हुकूमत से इसकी ही उम्मीद थी। उन्होंने सोचा था कि प्रीतिलता के बलिदान और उनके साथियों को जेल भेजकर वे क्रांति को कुचल देंगे, लेकिन वे गलत थे। 21 साल की प्रीतिलता वदेदार ने जो शहादत की मशाल जलाई थी, उसने पूरे देश की महिलाओं और युवाओं को उद्वेलित कर दिया है। चटगांव की उस बेटी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसने सिखा दिया कि आजादी की कीमत अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं।
9: दादा, जब प्रीतिलता शिक्षण से जुड़ ही चुकी थी तो वे क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे शामिल हुई?
10: इसकी भी एक कहानी है। असल में ग्रेजुएशन के दौरान वे श्री संघ से जुड़ी हुई थी, जो लीलानाग के नेतृत्व में चल रहे दीपाली संघ का अंग था। आगे चलकर दीपाली संघ महिला क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन बना, जहां सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर राजनीतिक आंदोलनों और अन्य तत्कालिक घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर कार्य करने और आंदोलनों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित भी किया जाता था। कलकत्ता प्रवास के दौरान प्रीतिलता कल्याणी दास के नेतृत्व में संचालित छत्री संघ से भी प्रेरित रही। उन्हीं दिनों प्रीतिलता की मुलाकात पूर्णेंदु दस्तीदार से हुई, जो चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे।
1: प्रीतिलता के क्रांतिकारी बनने की कहानी जानने के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा। जब प्रीतिलता मिलती है क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य पूर्णेंदु दस्तीदार से।
4: पूर्णेंदु जी, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए।
11: मुझे समय दो प्रीति, मैं ऐसे फैसले नहीं लेता। मुझे सूर्यदास से विचार विमर्श करना होगा।
4: ठीक है, आप कर लीजिए, मैं जवाब का इंतजार करूंगी।
1: पूर्णेंदु ने सूर्य सेन को प्रीतिलता के बारे में बताया कि वो पार्टी में शामिल होने को लेकर कितनी उत्सुक है।
12: देखो पूर्णेंदु, मैं महिलाओं के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें कुछ विशेष कार्यों की जिम्मेदारी ही सौंपी जा सकती है, जैसे संदेशवाहक, क्रांतिकारियों को पनाह देना, किताबों को छिपाकर रखना आदि। जहां तक प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने, हथियार चलाने की बात है, जिससे काफी खून खराबा होने की आशंका रहती है, वैसी गतिविधियों में महिलाओं को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं।
11: आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रीतिलता के इरादे भी काफी मजबूत है। वह मानसिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। आप उसे एक मौका देकर देखें, क्या पता कि हमें एक वीर महिला योद्धा मिल जाए।
12: अब तुम इतना कह रहे हो तो ले लो प्रीतिलता को पार्टी में, लेकिन यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
1: इसके बाद ही प्रीतिलता को चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में चितगोंग आर्मरी रेड होता है। उसके बाद जलालाबाद की जंग हुई, जिसमें 14 से 19 वर्ष के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सिपाहियों को कड़ी टक्कर दी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में 11 क्रांतिकारी शहीद हो गए। इसके पश्चात कर्णफुली नदी के समीप यूरोपियन क्वार्टर्स पर हमला किया गया। कालरपोल की जंग हुई, काफी क्रांतिकारी शहीद हो गए। उधर प्रीतिलता के सब्र का बांध टूटा जा रहा था।
4: पूर्णेंदु दा, मुझे सशस्त्र संघर्ष के लिए कब भेजा जाएगा?
11: मैं सूर्यदास से बात करता हूँ।
12: पूर्णेंदु, उसे धीरज रखने को कहो। पहले उसे अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद रामकृष्ण विश्वास से जाकर मिलने को बोलो।
11: प्रीति, सूर्यदा ने तुम्हें रामकृष्ण से जेल जाकर मिलने को कहा है। उन्हें फांसी की सजा हुई है।
4: क्या क्या किया था उन्होंने?
11: उन पर चांदपुर रेल पुलिस इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी की हत्या का आरोप है।
4: ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं उनसे जाकर मिलूंगी।
1: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने जेल गई। वो उनके कजन के रूप में उनसे मिलने गई ताकि किसी को कोई शक ना हो। इस तरह प्रीतिलता करीब 40 बार से ज्यादा रामकृष्ण से मिली। असल में सूर्यदा ने उन्हें एक खास मकसद से वहां भेजा था। वो जानते थे कि रामकृष्ण से मिलकर प्रीतिलता के अंदर क्रांति का भाव और गहरा होगा, उनमें स्थिरता आएगी।
10: जानती हो बन्नो, सूर्यदा का ये प्रयोग सफल भी रहा।
9: कैसे दादा?
10: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने के बाद रोजाना डायरी लिखा करती थी। उसमें वे अपनी भावनाएं और तमाम विचार लिखती, इससे उनके दृष्टिकोण में स्पष्टता आती गई।
1: हालांकि रामकृष्ण की फांसी का प्रीतिलता के मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब अपना समय जरा भी जाया नहीं करेंगी। खुदीराम, कन्हैयालाल, बाघा जतिन, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो भी देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगी। इसीलिए वो सूर्यदास से मिलना चाहती थी। उन्होंने पार्टी में अपना संदेश भिजवाया।
12: प्रीति लता, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूं। तुम्हें चटगांव में अंग्रेजों पर हमला करना है।
4: मैं कब से इंतजार कर रही हूं दादा।
1: योजना के अनुसार अगले दिन ही यानी 13 जून को प्रीति लता को निकलना था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन कैमरून के साथ अचानक मुठभेड़ हो गई, जिसमें निर्मल सेन की गोली से कैप्टन मारा गया, जबकि एक गोरखा सिपाही की गोली से निर्मल शहीद हो गए। गोलीबारी में अपूर्व की भी मौत हो गई। प्रीति लता और सूर्य सेन किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन इस घटना के बाद प्रीति लता को वापस ढाल घाट लौटना पड़ा। उधर पुलिस ने प्रीति लता के घर की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक पत्र और कई फोटो मिली। उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रीति को घर में नजर बंद कर दिया गया।
13: प्रीति लता घर में कैद होकर रहेगी सूर्यदा, उन्हें बाहर निकालना होगा।
12: उसे संदेश भिजवाओ कि वह अब घर छोड़ने की तैयारी करे। उसे अब से अंडरग्राउंड रहकर काम करना है।
13: ठीक है, मैं संदेश भिजवाता हूँ।
1: प्रीति लता को सूर्यदा का संदेश मिलता है और 5 जुलाई 1932 को वो अपने घर से भाग जाती हैं। ब्रिटिश प्रशासन उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम घोषित कर देता है, लेकिन प्रीति लता को फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी तैयारियों को और धार देने में जुट जाती हैं। इस समय तक वो रिवॉल्वर, पिस्टल एवं बम चलाना सब सीख लेती हैं। आखिरकार उनके सपने के पूरा होने का दिन तय हो जाता है, 24 सितंबर 1932। सूर्यदा उन्हें पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसी हमले में प्रीति लता को गोली लगती है और वो शहीद हो जाती हैं। लेकिन उनका वही सर्वोच्च बलिदान आने वाली सदियों तक हर भारतीय के दिल में देशभक्ति के अंगारे सुलगाता रहेगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा की अगली कड़ी में मिलेंगे एक और वीर सेनानी से। वंदे मातरम।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कार्यक्रम का नाम ही अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गाँव और जिस अंचल में रहते हैं पहले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल कभी नहीं भूल पाते। तो सरकार का जो मंशा है जो रेडियो स्टेशन दिया आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया में बच्चों को मिलेगा, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का सहयोग से विद्यार्थी का विकास और सर्वांगीण उन्नति के लिए चाहे बौद्धिक विकास हो चाहे नैतिकता हो चाहे शारीरिक सभी विकास के लिए एक मंच मिल रहा है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हम पहुंचे और संस्था के संस्था प्रधान श्रीमान प्रिंसिपल साहब और उनका सहपाठी सभी साथी सभी स्टाफ को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को बारी बारी अपना आवाज को देंगे, उनका आवाज ही उनका पहचान होगा। तो इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं श्रीमान देवेंद्र सर जी को, तो उनको स्वागत करते सर एक वार्म अप बच्चों को करा दीजिए। आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बढ़िया से जानते और रेडियो मधुबन को भी बढ़िया से जानते किस तरह गतिविधि कितना साल से हम आप जब भी आते हैं आपसे परमिशन होता है, संस्था का जो भी प्रिंसिपल रहते हैं उनसे परमिशन से कार्यक्रम होता है। 10-15 साल से हम इस स्कूल में हर साल आते हैं तो आप हमें भले भांति जानते हैं और बच्चों को भी रेडियो मधुबन के बारे में हो चाहे ब्रह्मा कुमारी जो गतिविधि कर रहे हैं उसका बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को, एक वार्म अप हो जाए आपका आवाज को सुनकर उनका आवाज भी बुलंद होगा। आपको स्वागत, अपना इंट्रोडक्शन प्लीज।
1: ओम शांति, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र सिंह राठौड़ है, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यारिया। आज रेडियो मधुबन की तरफ से पवित्र भाई और उनकी टीम क्यारिया स्कूल में कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए आई है। एक अच्छा मंच है, इस मंच के माध्यम से हमारे आदिवासी अंचल के बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जहां तक हो सके अपने विचारों को गीतों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, कविता भाषण के माध्यम से, रेडियो मधुबन के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका जो हर वर्ष एक नई थीम लेके आते हैं, कभी स्वच्छता, कभी कम्युनिटी हेल्थ, कभी नशा मुक्ति, कभी इन बच्चों के अंदर जो एडिक्शन है उन एडिक्शंस को दूर करने के लिए मोबाइल से अवेयरनेस, ऐसे बहुत सारे थीम के साथ ये आते हैं। इस बार आपकी थीम है ये अपने स्वच्छता और सफाई, जिसके तहत रेडियो मधुबन की तरफ से विद्यालय को हर क्लास के अंदर एक डस्टबिन दिया जा रहा है। विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही साथ इन ग्रामीण अंचल के बच्चों को रेडियो मधुबन जैसा एक वैश्विक स्तर का मंच देने के लिए पुनः मैं आभार ज्ञापित करूंगा। अब कार्यक्रम को बच्चों की ओर लेके जा रहे हैं, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और हमें बहुत खुशी है इस तरह हमारा कार्य को सराहनीय माना और जब भी आते हैं जो भी जितना भी ना ज्यादा ना कम सहयोग देते हैं और एक जनहित में बच्चों का हित में जो भी जो समय जो मिलता है वो बच्चों के पास हम पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं और बच्चों को झिझक जो रहता है उसको दूर करने के लिए हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि ग्रामांचल बच्चे हैं पर आदिवासी टीएसपी एरिया के बच्चे हैं, फिर भी उनको एक मंच जो रेडियो में कैसे बोलते हैं आकाशवाणी में जब उनका आवाज आएगा तो बच्चे जब सुनेंगे, उनका माता पिता जब सुनेंगे, उनका दोस्त लोग सुनेंगे, उनका परिवार वाले जब सुनेंगे ये तो हमारा राधे का आवाज है, ये तो मेरा बेटी का आवाज जब सुनेंगे आकाशवाणी में तो बहुत खुशी होगा, नामांकन में भी वृद्धि होगा, स्कूल का नाम भी रोशन होगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं तो हमें बहुत खुशी लगा। और बच्चों का आवाज सुनेंगे क्योंकि बच्चों को तो वार्म अप करा दिए, बच्चों को सुनेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, और खासकर आज आप सब सुन पा रहे हैं अपना वॉल्यूम को तेज करके चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे एफएम का माध्यम से, चाहे लिंक का माध्यम से, चाहे आपका माध्यम से आप सुन पा रहे हैं आपका पास पहुंच रहा है। और बच्चों का आवाज को बुलंद करने के लिए आप श्रोता का भी बहुत आवश्यक होता है, तो हमारा जो रेडियो जहां तक पहुंचता है वो सुन रहे हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चों का प्रार्थना का रूप में एक गीत आपको मिलेगा सुनने को, क्योंकि हर कार्यक्रम में हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, हर स्कूल में विद्यालय में जो प्रार्थना सत्र में जो करते हैं वो चीज आपके पास रखेंगे, इनका आवाज भी सुनेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहले हम आपसे पुनः मिल रहे हैं और ब्रेक का पहले आप एक अच्छा गीत भी सुना, बच्चों का गीत को भी सुनेंगे। लेकिन हमारा जो देवेंद्र सर भी ब्रेक का पहले बहुत कुछ बताए संस्था के बारे में और विद्यालय के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे बीच बीच में सभी से। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं बच्चों से, कुछ छात्र हैं जो आदिवासी फील्ड में आते हैं और जो ग्रामांचल बच्चे कम नहीं शहरांचल बच्चों को भी टक्कर देंगे, उनका जो शुद्धता भोलापन और मासूम जो शब्द में भाव और भावना आज सुनेंगे माँ सरस्वती वंदना का साथ। तो लीजिए पहला प्रस्तुति, खासकर बच्चों का आवाज है और अपना नाम बताएंगे, कौन सा क्लास और कहाँ से बिलोंग करते, क्या रिया ना कोई जोड़फली की कहाँ पर आते, वो फली का नाम भी बताएंगे तो हमें पता चले कौन बच्चे कहाँ से आते और कितना मेहनत करके आते हैं, अपना परिचय देंगे।
2: मेरा नाम लसी कुमारी।
1: कौन सा क्लास?
2: मैं कक्षा 11 से।
1: और लसी कौन सा गाँव से आती है तुम?
2: अच्छा, कला से।
1: और स्कूल का पूरा नाम बताइए,
2: उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
1: ठीक है।
3: मेरा नाम सुनकी कुमारी है, मैं कक्षा 11 से, मेरा गांव का नाम क्यारिया है।
1: वेरी गुड।
3: मेरा स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा।
4: मेरा नाम रायली कुमारी है, मैं कक्षा 11 से, मेरे गांव का नाम डूनाकाकर है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
1: डूनाकाकर बहुत दूर से।
5: मेरा नाम पूजा है, मैं रेड़वा कला से आती हूँ, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
6: मेरा नाम दुर्गा कुमारी है, मैं क्यारिया जोड़ से आती हूँ, मेरी स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
7: मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं क्यारिया की हूँ, मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया। हम सब एक प्रार्थना सुनाएंगे।
1: शुरू करो।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा और क्या क्या नाम बोले दुर्गा, तुम्हारा नाम कौन रखा है दुर्गा बता, मम्मी ना पापा ना, कौन रखा है दुर्गा? अच्छा नाम है, मुझे बहुत खुशी लगा, क्योंकि दुर्गा एक देवी का नाम है ना, पापा हो चाहे मम्मी नाम रखते ना, जिसको जो उनका भी नाम आएगा, पिताजी का भी नाम आएगा, हमें खुशी लगे उस जब सुनेगा, अरे वाले दुर्गा को नहीं, उससे दुर्गा का आई को पापा को लोग जानते होंगे, उसी से पता चला ये उनका बेटी है, तो प्रचार प्रसार भी होगा और उनको एक सम्मान मिलेगा। दुर्गा बताओ, दादा दादी है घर में?
1: जी।
0: घर में कौन कौन है बताओ दुर्गा, दादा दादी से लेकर कौन कौन है?
1: मेरे घर में दादी दादा भाई बहन और
0: ओ वेरी गुड,
1: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा दादा दादी, सबसे आपको अच्छा कौन प्यार लगते हैं, कौन प्यार करते हैं ज्यादा?
1: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा ज्यादा करते हैं, मम्मी पापा तो भगवान तुल्य होता है, माँ बाप तो घर के सब बच्चों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं बच्चों के लिए, इसलिए माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। भूलेंगे बच्चे माँ बाप को? भूलना है भले सबको भूलो, लेकिन माँ बाप को कभी
2: नहीं भूलेंगे,
0: क्योंकि माँ बाप हमारे लिए सब कुछ, माँ बाप हमारे लिए
2: सब कुछ है।
0: आवाज तो आया नहीं मेरा पास,
2: सब कुछ है।
0: हमें सब कुछ देते हैं माँ बाप, हमें सब कुछ देते हैं, इसलिए हमें उनको याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे और एक प्रस्तुति, हमारा और परियां भी बैठे हैं, वो भी अपना प्रस्तुति देंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, पूजा दुर्गा और उनका साथी सभी को, सबको धन्यवाद, इस कार्यक्रम को सजाए सुंदर रूप में, अपना ताल का साथ माँ सरस्वती का वंदना सुनाए, हर स्कूल में ये गीत होता है और कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा दिए, तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, खासकर बच्चों का आवाज।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और इस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए वंस वंस करते हुए और दूसरे बच्चे भी भाग लेंगे, क्योंकि सबको आज मंच मिलेगा। ओपन राउंड है अपना, टूटी फूटी आवाज में पहला प्रस्तुति जब देते हैं रेडियो में, तो कोई साज नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, अचानक जाते हैं अचानक और एवर रेडी बच्चे रहते हैं, और बहुत काल का अभ्यास तब जाकर रेडियो में आते हैं। अचानक पहुंचते हैं, कोई सूचना नहीं है ना सर, कोई सूचना दिया था, कोई स्कूल में कभी भी जाते कोई सूचना नहीं, और हमारा कार्यक्रम इतना सुंदर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो भाव है, भावना सब बच्चों को मिले, इस भावना को लेकर जब पहुंचते कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपर जो दैवी शक्ति जो हम जिसको हम आह्वान किए ना शुरू में, हमारा कुल देवी कुल देवता को आह्वान करो, भगवान को आह्वान करो, वो हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए हमारा गुड़िया सब बैठे हैं, तो उनको भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए। और हमारा देवेंद्र साहब को कौन भूल पाएंगे, देवेंद्र सर इस बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए आप बताइए कौन कौन उपस्थित है इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। नेक्स्ट ग्रुप,
1: अगला ग्रुप कक्षा 9th की नन्नी मुन्नी बालिकाएं हैं, जो एक बहुत ही प्यारा सा लोक संगीत आपके बीच में पेश करेंगे।
0: क्या बात क्या बात,
1: ये लोक संगीत इनके आदिवासी ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है।
0: सही बात।
1: और इसी क्रम में मैं इन नन्नी मुन्नी बालिकाओं से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वो अपना परिचय दें, अपना नाम, विद्यालय का नाम, गांव का नाम के साथ।
0: तो चुप्पी तोड़ेंगे ही बच्चे, चुप नहीं रहेंगे।
2: मेरा नाम हीना है, मैं कक्षा 9th से हूँ और मैं क्यारिया से आती हूँ, और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
0: क्या बात, कितना बुलंद आवाज।
3: मेरा नाम राधा है, कक्षा 9th से, मेरे गांव का नाम क्यारिया है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
0: वेरी गुड।
4: मेरा नाम पांडरी है, मैं कक्षा 9th से, मैं क्यारिया जोड़ से आती हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
5: मेरा नाम सीमा है, मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ, मेरा गांव का नाम रेडवा कलर, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
0: गुड, बच्चे तो बड़ा होशियार है सभी।
6: मेरा नाम कमला कुमारी है, मैं कक्षा 9th से, मेरे गाँव का नाम कोटब्यापल्ली, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया।
0: तो श्रोता मित्र कितना फल्ली का नाम सुन लिया, कोटब्यापल्ली, और हम सब मिलकर
6: एक देसी गीत गाएंगे।
0: हाँ, आदिवासी गीत गाएंगे जिसमें मिठास। ओके, शुरू करो।

0: कोई मत काटो।
1: सही में पर्यावरण एनवायरमेंट जो गीत एनवायरमेंट बचाने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह हम गीत का माध्यम से सीख लेना चाहिए। और बच्चे पेड़ का बारे में, पेड़ को मित्र बनाओ और सब कुछ तो पेड़ ऐसे देते, निस्वार्थ सेवा करते हैं पेड़। प्रकृति हमारा दोस्त है, प्रकृति को जितना हम सुरक्षा रखेंगे, पर्यावरण को जितना सुरक्षित रखेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। और सर इस कार्यक्रम को सुंदर में सुन रहे थे सर, पर्यावरण का ऊपर में क्या कहना चाहिए? पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चे एक पेड़ का माध्यम से प्रस्तुति, और आप पर्यावरण सुरक्षा जैसे हर रविवार को पर्यावरणविद श्रीमान भोपाल राम पुरोहित जी अपना कार्यक्रम देते हैं, पर्यावरण से मिट्टी जो भी हमारा आसपास पर्यावरण, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण में पेड़ का जो उसका बारे में थोड़ा बताइए, हमारा श्रोता और बच्चे भी थोड़ा लाभान्वित होंगे।
2: वर्तमान में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और नन्हे मुन्ने बालकों का ये पर्यावरण के प्रति, पेड़ों के प्रति जो संदेश है बड़ा उत्साहपूर्ण है। उम्मीद करते हैं ये संदेश समस्त ग्रामीण अंचल तक पहुंचेगा और ग्रामीण अंचल के ये सारे लोग इस ओर जागरूक होंगे। हमारे सिरोही जिले के अंदर ये नया प्रयास चल रहा है कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं प्रति विद्यार्थी 2 पौधे लगाने का संकल्प सरकार की तरफ से मिला है। तो ऐसे में जितनी भी सरकारी नर्सरी है उनकी तरफ से सारे विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 2-2 पौधे आवंटित किए जाते हैं और वर्ष भर उन पौधों का पालन पोषण करके वृक्ष बनने तक की जिम्मेदारी वो नन्हे मुन्ने बालक उठाते हैं। उसी जिम्मेदारी की एक झलक इस गीत के माध्यम से हम तक पहुंची है और इस वर्ष भी हमारा प्रयास है कि हम नर्सरी से नन्हे मुन्ने बालकों को पौधे उपलब्ध कराएंगे जिनको पेड़ बनाने की जिम्मेदारी सहर्ष ये सारे बच्चे स्वीकार करते हैं। और इस तरह आबू राज के इस पवित्र अंचल में ये नन्हे मुन्ने बालक हरियाली बढ़ाने में, विद्यालय पर्यावरण और साथ ही साथ क्यारिया ग्राम के वातावरण माहौल को स्वच्छ, सरल और सुरम्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, हरियाली भी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आगे चलते हुए पढ़ाई के साथ साथ ये पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार का भी एक अच्छा प्रयास है, प्रतिवर्ष 17 अंक के रूप में 10वीं-12वीं के बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं हम पहले उनके वर्ष भर के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 17 अंक भेजते थे तो सरकार ने उसकी जगह पर वृक्षारोपण को मान्यता दी है और प्रतिवर्ष प्रति विषय 1 अंक 2 अंक गणित विज्ञान जैसे भी विषय से वो अंक उनको वृक्षारोपण और उनको पेड़ों पर दी गई जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर विद्यालय परिवार के द्वारा दिए जाते हैं। इससे जागरूकता बढ़ती है, पर्यावरण भी सुधरता है और हमारे विद्यार्थियों का एक अभूतपूर्व महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए सरकार, विद्यालय परिवार, सिरोही डिस्ट्रिक्ट सभी तन मन धन से अपना सर्वस्व योगदान दे रहे हैं।
1: सर जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार का जो मुहिम चला था उसको तो हम सहयोग देते ही, और बच्चे भी कम से कम अपना जन्मदिन माता पिता का याद में तो लगाने उसका नामकरण भी करें और भावना से करें तो जरूर वो पेड़ जो पौधा हम लगाएंगे उसको प्यार से उसके दोस्ती जैसे दोस्त को क्या क्या चाहिए पूछते ना, तो पानी समय पर देना, उनको देखभाल करने के लिए ट्री गार्ड हो जो भी उसको सेफ्टी पहले पहले देना होता है, तो आप सब करते होंगे और जो नहीं करते उसको थोड़ा ध्यान दे। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं, पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन उसको बचाने के लिए जैसे जब तक वो अपना अस्तित्व तक नाम नहीं पहुंचे तब तक उनको संभाल देखभाल करना चाहिए। ये एक किम्बे से सर ने बताया और बच्चे तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन ये बच्चे अभी अपना जो देसी गीत सुनाने के लिए कोशिश कर, पेड़ का माध्यम से अपना गीत जनरल गीत बताया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम की ओर हम जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है, सभी बच्चों को स्वागत करते पुनः और जो पहले गीत गाए थे उनको सेम टीम को बुला रहे हैं, हमारा दुर्गा उरण टीम को, पूजा और उनका दोस्त लोग को। तो पुनः एक प्रस्तुति के लिए जो कि यहाँ का जो शुद्धता भोलापन और स्कूल में जो गतिविधि हो रही है उसका तहत गाते हैं, तो चलिए सुनते हैं उन सभी से

Ne kadar kalabuk adı sen lahure.

0: बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बच्चे थोड़ा शर्माते हैं, पहला बार आते हैं, नहीं तो बाहर में गाते हैं, लेकिन स्कूल में थोड़ा सा सर रहते और हम रहते तो उनको थोड़ा झिझक होता है। कोई बात नहीं, इसे शुरुआत किए, धन्यवाद देते हैं। और जाते जाते सभी को नाम बताएंगे और कहाँ से और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए क्या मेहनत करते हैं। सबके लिए एक प्रश्न, स्कूल में जो पढ़ाई के साथ साथ और कितना घंटा मेहनत करते हैं और बड़े होकर क्या बनना चाहते, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, सरपंच? ओके,
1: मेरा नाम पूजा है, मैं रेडवा कला से आती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारिया है।
0: रेडवा कला, बहुत दूर जगह से आते हैं। रेडवा कला के पास और कौन सा गांव है?
1: दूना काकर, कोटिबिया।
0: कोई मंदिर है आसपास?
1: हाँ,
0: मंदिर का नाम बताओ। कोटेश्वर महादेव है यहाँ? हाँ। शिव मंदिर है। चलिए, बड़े होकर क्या बनेगी?
1: टीचर।
0: टीचर, मैम बनेगी। वाह, कितने मैम है यहाँ पर? मैडम है स्कूल में?
1: हाँ।
0: नाम बताओ, एक ही मैम का नाम बताओ। कोई
1: मीनाक्षी मैडम।
0: क्या पढ़ाते हैं?
1: इंग्लिश।
0: वेरी गुड, नेक्स्ट।
2: मेरा नाम रायली कुमारी है, मैं कक्षा 11 से, मेरे गांव का नाम दूना काकर है।
0: और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
2: टीचर।
0: टीचर है, वाह, आदर्श टीचर। किसको कहते हैं टीचर? कैसे होना चाहिए? जो अच्छा
2: पढ़ाते
0: हैं और अच्छा प्यार करते हैं, प्यार भी जरूरी है। नेक्स्ट।
3: मेरा नाम दुर्गा कुमारी है, कक्षा 11 से, मेरे गांव का नाम है क्यारिया जोड़।
0: और आज रेडियो में पहला बार मौका मिला, आपको खुशी लगा ना दुखी लगा? खुशी लगा
3: जी।
0: दुख लगा?
3: नहीं
0: नहीं, दुख क्यों लगेगा, ये तो अपना आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए का मंच मिल रही। नेक्स्ट।
4: मेरा नाम गुड़िया है, मैं क्यारिया से हूँ।
0: वेरी गुड, गुड़िया नाम तो पहले बोले, सब हमारा गुड़िया है ना, गुड्डा और गुड़िया छोकरा और छोकरा जैसे कहते हैं, हमारा परी, परी मतलब पूरा फरिश्ता। तो बड़े होकर क्या बनेगी? गुड़िया।
4: मैडम,
0: गुड़िया तो अच्छे से बात बता पा रही। और गुड़िया आपका अच्छा दोस्त बताओ तो जो हंसता है आपको देखकर।
4: पूजा।
0: पूजा। नेक्स्ट।
5: लसी कुमारी।
0: लसी, बड़े होकर क्या बनेगी?
5: टीचर।
0: अच्छा, खेल खेलते हैं? खेल खेलते हैं
5: जी।
0: कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है?
5: क्रिकेट।
0: क्रिकेट, वाह वाह, ऐसे क्रिकेटर हमारा। अच्छा, क्रिकेटर में कौन सा क्रिकेटर का नाम बताओ? देखिए, सचिन तेंदुलकर से लेकर कोई भी,
6: रोहित शर्मा।

0: अरे वाह, पीछे से बोला रोहित शर्मा, सर का फेवरेट है विराट कोहली और हमारा फेवरेट है महेंद्र सिंह धोनी, सब हमारा अच्छे खिलाड़ी है, तो हमारा देश के लिए नाम रोशन किया और ये हमारा क्रिकेटर बनेगी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट
1: सीमा,
0: सीमा बड़े होकर क्या बनेगी?
1: टीचर।
0: टीचर अच्छा, आपका फेवरेट टीचर का नाम बताओ? मीना की मैम, बहुत अच्छा। कोई बोल भाई सभी बताओ, सभी का नाम ले लो, सभी टीचर हमारे अच्छे होते। नेक्स्ट
1: कमला,
0: कमला कौन सा क्लास? नाइन्थ क्लास। और अच्छा फूल का नाम बता देखी, कोई फूल अच्छा आपका फेवरेट फूल?
1: गुलाब।
0: मैं पीछे कॉपी दे दिया तो बोला गुलाब, बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चे जानते हैं लेकिन अचानक माइक में जो आता है प्रश्न निकल जाता है और उनको बोलना में जो आता है वो भी भूल जाते हैं ना। चले नेक्स्ट
1: राधा,
0: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हैं और राधा हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे, हमें खुशी, सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
2: रेडियो मधुबन।
3: नमस्कार, मधुबन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में व राजस्थान में विवाह, जन्मदिन, लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह, जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का व गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमाकर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो मारे देश। राग मांड साजन आहे हे सखी, मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं। साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें केसरिया बालम पधारो मारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो मारे देश।

0: मेरा देश, मेरा वतन, मेरा भारत। जब भी अपने देश का नाम सुनाई देता है, तब सुनाई देती है वो आवाज उन वीरों की, उन शहीदों की, जिनके कारण हमारा देश आजाद है, जिनके कारण हम आज आजाद हवा में सांस ले पाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। आपको लग रहा होगा आज कुछ बदला सा है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम मना रहे हैं 15 अगस्त स्पेशल, यानी कि स्वतंत्रता दिवस स्पेशल। और आज के इस दिवस को और खास बनाने के लिए, संगीत से सजाने के लिए हमारे साथ है हमारे अगले गेस्ट। जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में है अरविंद पेंडम जी, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं, आर्मेनिया में जॉब करते हैं और म्यूजिक में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है उनकी हमेशा से ही। मुंबई में रहे तो कई प्रोग्राम्स भी उन्होंने किए। आज हम उनसे मुखातिब होंगे, पहले उनका स्वागत करते हैं। अरविंद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति। अभी आप सभी ने मेरा परिचय तो सुना ही है, तो आज का विषय है स्वतंत्र भारत। तो मैं सबसे पहले आने वाली 15 अगस्त हमारे स्वतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हम सबको स्वतंत्र देश दिया है।
0: बिल्कुल, और सच में स्वतंत्रता की जब बात होती है तो कई ऐसे नाम हैं जिनसे हम परिचित हैं, पर कई ऐसे नाम हैं जो भले गुमनाम है लेकिन उनके बिना देश आजाद न होता। आज हम उन सबको भी नमन कर रहे हैं, एक एक को नमन कर रहे हैं। और चलिए संगीत की संध्या को सजाते हैं कुछ भारतीय गीतों के साथ, कुछ ऐसे गीतों के साथ जिससे हम देश को और गर्वित महसूस कराते हैं। अरविंद जी, हम बातें तो करेंगे लेकिन क्योंकि संगीत का कार्यक्रम है तो क्या एक गीत के साथ शुरुआत करें?
1: जी जी बिल्कुल, नेकी नेकी पूछ। तो हम हमारे भारत देश को वंदन करने के लिए मैं आपको यही गीत गा के सुनाना चाहता हूँ, वंदे मातरम।
0: जरूर, क्या बात है।

0: वंदे मातरम। वंदे मातरम ये गीत, ये नारा, ये स्लोगन जब भी आता है तो देश के प्रति वो भाव जो दिल में छिपा है वो बाहर आ ही जाता है दोस्तों। और क्या गीत बना है, क्या गीत गाया है, बहुत सुंदर गीत चुना भी आपने शुरुआत करने के लिए। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी इस गीत से क्यों शुरुआत की आपने, क्या आपको पसंद है इस गीत के बारे में? ऐसा
1: गीत के बारे में देखिए, हम वंदे मातरम हमारे देश को वंदन तो करते ही है रेस्पेक्टली, क्योंकि भारत ही हमारा माता है। भारत हम सबको, हम भारतवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए बहुत सारा देने की एक अपेक्षा रखता है, क्योंकि भारत देश ना कि एक देश है कि बाहर की दुनिया वाले भी इसको भारत देश के नाम से नहीं जानते। भारत देश से जुटे हुए जो बहुत सारे है, जुड़े हुए कला संस्कृत, उसके बारे में बहुत ही प्रख्यात है। तो आज हम जैसे ये स्वतंत्र दिवस मना ही रहे हैं, तो देशभक्ति मतलब केवल तिरंगा लहराना या देश की सीमाओं को सुरक्षित करना यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को जिम्मेवारी से निभाना, अपने परिवार को, समाज के, देश के प्रति जिम्मेदारी बनाना, इसे भी हम कह सकते हैं देश प्रेमी।
0: बिल्कुल, देश प्रेम को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छे नागरिक हों।
1: जी बिल्कुल।
0: देश को हम जो स्वतंत्रता दिलाई गई, जो विजन था उस समय सभी का, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी, उनके विजन को सार्थक करने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न खुद से पूछना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें गीतों की ओर, अरविंद जी थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को आपके शब्दों में कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताएं। आप आर्मेनिया कैसे गए, आप क्या करते हैं, या फिर आपके लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताएं।
1: ओके, देखिए अभी नाम तो सुना ही है, मेरा नाम अरविंद, मुंबई से बिलोंग करता हूँ और ब्रह्मा कुमारी संस्था से मैं जुड़ा हूँ 1999-2000 से। उस टाइम पर मेरे जस्ट स्कूल लाइफ खत्म होने के बाद कॉलेज लाइफ में मेरे इंटर हो रहा था, उस टाइम पर भगवान ने मुझे चुना मुझे संभालने के लिए और देश के हित कुछ काम के लिए। ठीक है, तो मेरा बचपन सब मुंबई में हुआ, मेरे परिवार, तो अभी यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी कार्य में करता हूँ तो मुझे फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये एक विश्वास है कि उनका बच्चा कोई गलत राह पर, मार्ग पर नहीं जाता है करके। तो यहाँ पर मुंबई में रहते रहते, जॉब करते करते हमारा फिर अदर कंट्री जैसे आर्मेनिया में जाना हुआ, वहाँ पर भी हम जॉब करते हैं। अब फिलहाल तो कैसे, अभी ब्रेक लेकर के इंडिया वापस आए तो मुझे यहाँ पर भगवान की जो वरदान भूमि मधुबन में आने का मौका मिला तो हम यहाँ पर पहुँच गए। बट ईश्वरीय कार्य के लिए हमारा समर्पण सदा ही रहेगा।
0: आपका संगीत के साथ जुड़ाव कैसे हुआ?
1: संगीत के साथ अभी बहन जी क्या बोले कि बचपन से ही म्यूजिक मुझे बहुत पसंद था, गाने, और बचपन में ही मेरी पसंद ये रहा कि एक लिमिटेड जो मर्यादा युक्त जो गाने होते हैं, ठीक है, उसमें भी अभी बॉलीवुड में सबसे मशहूर गायिका, हम सब लोग उनको जानते ही है, स्वर सम्रांगिनी लता मंगेशकर।
0: बिल्कुल।
1: उनके गाने हम बचपन में सुनते थे, तभी मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी रेडियो में ऐसे बजाते थे और वो लंबा ऐसा ग्रामोफोन जैसा उसमें, तो मैंने सिर्फ उनका आवाज सुना, कभी देखा नहीं ये कौन गा रहा है, क्या है, पता नहीं। तो उस टाइम पर मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा, मेरी भी बचपन में आवाज बहुत छोटा था तो मुझे लगता था कि ये आवाज मेरे जैसे कौन गा रहा है करके मैं घर में परेशान करता था। तभी उसके बाद फिर मैंने लता दीदी को पहली मरतबा देखा टीवी में, मिले सुर मेरा तुम्हारा गाते हुए, तो उनको सुनते सुनते उनके गाने मुझे काफी पसंद आने लगे। फिर मैं गाने का जो शुरुआत ही किया, फिर गाते गाते गाते गाते फिर मेरे स्कूल और कॉलेज में ही मेरे जो सुपरवाइजर मैडम थी उस टाइम पर, मार्गरेट मैडम, शी वाज कैथलिक, उन्होंने फिर मुझे स्कूल में ही कॉलेज लाइफ पे एंटर करने के टाइम पर मुझे उन्होंने टाइटल दे दिया JLD के नाम से। JLD मतलब ये काफी सारे लोग शॉक होते हैं कि जूनियर लता दीदी, क्योंकि आज भी ये अरविंद बीइंग अ मेल, फीमेल वॉइस में भी मतलब लता दीदी के गाने और मंगेशकर परिवार से जुड़े हुए जितने भी जो गायिका है आशा भोसले, उषा मंगेशकर और भी जो फीमेल बॉलीवुड के जो सिंगर्स है उनके भी गाने हम गाते हैं। तो लोगों का यही ज़्यादा ऑफर आता है, बहनों से ज़्यादा हमको भाइयों का रिक्वेस्ट ज़्यादा आता है, फीमेल गाने इनका गाया हुआ आप हमारे साथ ये गाइए ये गाइए करके। तो हम भगवान की एक बहुत बड़ी असीम कृपा है मुझ पर कि मैं आज फीमेल के वॉइस में भी मैं गा सकता हूँ, और ये भगवान की आशीर्वाद के साथ साथ मैं समझता हूँ कि मेरे

0: और आत्मविश्वास और हिम्मत का भी अनुभव होता है, जो संगीत और आध्यात्मिकता दोनों का उद्देश्य एक ही है। यदि मेरे गीतों से किसी को भी अगर प्रेरणा मिल जाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है।
1: हमने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि आप दोनों वॉइसेस में गाते हैं, तो कोई ऐसा गीत क्या हमारे श्रोताओं को आप सुना सकते हैं जो आज थोड़ा फीमेल वॉइस में भी हो?
0: जी बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे मैंने स्वर सम्रांगिनी लता दीदी का जो नाम लिया, वो भी जब भी स्टेज परफॉर्मेंस देते थे तो लोगों का, पब्लिक का एक आवाज आती थी कि दीदी एक मर्तबा ए मेरे वतन के लोगों हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: और ये अरविंद भी जब भी कहीं पर जाता है तो लास्ट में ये गाना गाए बगैर हमको छोड़ते ही नहीं है। तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि उनका गाना, उनके जैसे गाना मतलब किसी की बस की बात नहीं है शायद, फिर भी हम कोशिश करेंगे
1: जरूर।

लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।

पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए।

0: मुझे लगता है इस गाने के बाद मैं तो स्पीचलेस हूँ. मेरे पास शब्द नहीं है जो आपने गीत ये गाया. मतलब मैं सोच रही थी हमारे श्रोतागण अगर देख पाते, लेकिन आपको सुना तो है ही, आपकी आवाज को सुना है तो वो जानते हैं आपकी आवाज कैसी है. एक मेल वॉइस है, लेकिन जो आपने ये हाई पिच फीमेल वॉइस में आपने लता दीदी का गाना गाया, द लेजेंडरी लता दीदी, स्वर कोकिला, जिन्हें पूरा विश्व जानता है. जब संगीत के उच्च कोटि के सिंगर्स की बात होती है, जिनके बिना संगीत का नाम अधूरा है, उसमें लता मंगेशकर जी का नाम आता है. और ऐसी महारथी का गीत आपने गाया, आपने आवाज बदल कर गाया, ये मतलब देख के भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आप ही गा रहे हैं. ऐसा लग रहा था कि कहाँ से आ रही है ये आवाज, कैसे सुनाई दे रही है ये आवाज. और बहुत कॉपी ऐसा लग रहा था आप कर रहे हैं, मिमिक्री भी साथ में, जैसे उनकी आवाज से वैसी ही कुछ आवाज आप मिलती जुलती सी निकाल रहे हैं.
1: तो लोग यही कहते हैं इसके लिए कि आप लता दीदी का गाना गाते हैं तो उनके जैसे गाते. कोई कोई लोग कहते हैं कि आंखें बंद करके सुनते तो विश्वास नहीं पड़ता है कि ये कोई बंदा गा रहा है.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, समझना मुश्किल है ये जी. तो ये कैसे करते हैं?
1: ये तो भगवान की दी हुई है, जैसे मैंने कहा, उनके बिना तो कोई पॉसिबल नहीं है
0: जी.
1: तो आई एम सो लकी टू बींग इंडियन, और उसमें से भी सबसे ज्यादा मैं गर्व महसूस करता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है कुछ कार्यार्थ.
0: नहीं तो आपने ये क्या बचपन से इस तरह से गाना शुरू किया था, या कभी आपने बाद में सीखा, किसी ने आपको सिखाया, या कैसे ये मतलब फीमेल वॉइस का कैसे ये आप गाते हैं?
1: फीमेल वॉइस मतलब जैसे मैंने शुरू में कहा कि बचपन में मेरी आवाज छोटा ही हुआ.
0: हाँ, तो पतली होती है,
1: बहुत ही पतली, लेकिन मेरा काफी पतली थी. जैसे मैंने कहा कि लता दीदी का मैं रेडियो में जब सुनता था तो मुझे लगता था कि मेरे जैसे आवाज किसने गाया. तो उस टाइम पर मैं एक बार पिताजी को काफी मैंने परेशान किया. तो पिताजी जब भी एम्पलीफायर वगैरह बनाते थे, यू नो, ऐसे इलेक्ट्रिक का, तो उन्होंने मुझे शोल्डरिंग का चटका भी लगाया, इतना मैंने परेशान किया. चटका मतलब मेरे पूरा हाथ का स्किन जल गया था. तो भी एक होता है कि एक कनेक्टिविटी, तो पता नहीं मुझे स्कूल में भी, मैं जब भी स्कूल शुरू होने के पहले जो प्रार्थना गाते थे, तो टीचर्स स्टाफ रूम में माइक होता था और सारे क्लासरूम में स्पीकर. तो शुरुआत हम जब गाते थे तो लोगों को लगता था कि शायद कोई प्राइमरी स्टूडेंट की कोई बच्ची गा रही होगी. बट एनुअल फंक्शन में जब हमारे मैडम, उन्होंने कहा कि अरविंद कम एंड सिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑन फ्रंट ऑफ अस, तो वो पहली बार था कि स्टेज के ऊपर गाना और स्कूल के कंपाउंड में और सामने सारे वर्ग के स्टूडेंट्स थे.
0: तो आप कौन सी क्लास में थे तब?
1: मैं तभी जस्ट एनुअल फंक्शन था ना, तो 10th में क्रॉस कर रहा था.
0: अच्छा.
1: वो फर्स्ट टाइम था कि तभी भी मेरी आवाज बहुत ही पतली है. फिर 12th के बाद जो आवाज मेरी थोड़ी सी चेंज हुई, जो 12th से लेकर के अभी तक वो स्टेबल है. मतलब मैं 12th में था 2002-2003, आज 2026. तो अगर मैं 15 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी अगर कोई मैं स्कूल फ्रेंड से, कॉलेज फ्रेंड से अगर बात करूं और मैं उन लोगों को परेशान करना चाहता हूं कि इतने साल के बाद मैं कॉल करूं ना, तो थोड़ा देखते हैं ये मुझे पहचानता कि नहीं. लेकिन मेरा ही बन जाता है उल्टा,
0: पहचान लेते हैं
1: कि अरे अरविंद तू ही बोल रहे, पता है. तो मैं शौक हो जाता हूँ कि ये कैसे मन से. तो पब्लिक प्लेस में भी ऐसे हुआ कि हम मुंबई से बिलोंग करते, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर हम सफर करते थे, हम किसी से बात करते, तो पीछे कोई मेरा ही स्कूल का कॉलेज का फ्रेंड, फिर पीछे से आकर के ऐसे धक्का देना, एक बार नहीं दो बार ऐसा हुआ प्रैक्टिकली. फिर बाद में भाई साहब प्लीज बिहेव, तो बोलते बस क्या अभी अरविंद, तो मेरे नाम से लेकर के डायरेक्टली, मुंबई की लैंग्वेज ऐसी होती है. तो एक्सक्यूज मी आप कौन, तो बोलते भूल गया क्या ऐसे. हाँ. तो मैं, मुझे फिर उन लोगों को रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन ये एक
0: इतने सालों बाद मिलते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता
1: और मैं लोगों को पहचानने में मेरी भूल हो जाती है, क्योंकि उनका एक तो वॉइस चेंजेस होता है प्लस बॉडी से भी वो लोग चेंज हो जाते हैं. लेकिन हाँ. अभी देखिए हम उनके सामने वॉइस से भी स्टेबल है, फिजिकली भी स्टेबल ही है. बोलते कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, अभी तक तो इतना ही छोटा ही दिख रहा है, तो क्या इसका राज क्या है.
0: सीक्रेट जानना चाहते हैं इसका. तो एक्चुअली क्या सीक्रेट है?
1: सीक्रेट कुछ नहीं है. जैसे अभी मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ, राज्यों का मेडिटेशन में सीखता हूँ, तो ये बहुत हमको सपोर्ट करता है स्वास्थ्य जीवन के लिए.
0: स्पिरिचुअलिटी के बहुत एग्जांपल्स हम सुनते देखते आए हैं, और आपने तो कहा कि किस तरीके से बॉडी को भी स्टेबल रखता है, ध्यान रखता है, अगर हम आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं. आपने कहा संगीत से रुचि तो आपकी हमेशा से थी, जुड़ाव पहले से ही था, तो कभी आपको लगा कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है या इसी फील्ड में जाना है, कभी इस तरह का मन में ख्याल आया?
1: काफी मन में ख्याल, मतलब मेरा एक वो लाइफ का उद्देश्य है कि अभी भी मैं किसी को, लोगों को अगर मुझे पूछते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि म्यूजिक इज माई लाइफ, क्योंकि म्यूजिक संगीत ही है कि आप बुरे वक्त पर भी आप उसको यूज कर सकते हैं, अच्छे वक्त पर भी हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, और दिल टूटता है तो भी म्यूजिक आता है, दिल किसी से जुटता है तो भी म्यूजिक आता है, और ये म्यूजिक ही है जो हमको भगवान से भी जुटाता है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल कनेक्शन।
1: तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मीन्स मैंने काफी कोशिश भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं हमको कोई प्लेटफॉर्म ठीक नहीं मिला होगा, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ एक यूनिक टैलेंट है ना, तो इस यूनिक टैलेंट के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म होना ही शायद उन्होंने कुछ बना के रखा होगा।
0: बिल्कुल, और आज आपकी आवाज, आपने, आप बिल्कुल देश से भी बाहर रहते हैं लेकिन वहां भी अपनापन महसूस कराने के लिए गीत संगीत एक बहुत सुंदर माध्यम है। और जानेंगे आपसे इंडियन कल्चर के बारे में, कैसे बाहर भी क्या प्रभाव है आज, प्रैक्टिकली आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि कोई और, क्योंकि हम देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, देशभक्ति के गीतों में आज बिल्कुल खोना ही चाहते हैं, क्योंकि 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है, इससे अच्छा दिन कौन सा होगा अपने देश को सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्या कोई और गीत है आपके खजाने में जो आप हमें हमारे श्रोताओं के लिए सुनाएं?
1: तो वैसे बहुत सारे होते हैं गाने के लिए, अभी लोग भी मुझे कहते हैं कभी कभार कोई ऐसे ऐसे गाना ऑफर करते हैं, मैं जरूर कोशिश करता हूँ, अगर वो गाना मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं गाता हूँ, अगर नहीं पॉसिबल है, देखो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, चप्पू चलाए बिना नौका पार नहीं होती, तो कोशिश हम जरूर करते हैं, जब कोशिश करने के बावजूद भी अगर हमको वो गाना नहीं जमता तो उस गाने को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन में बहुत सारे गाने हैं, तो अभी आपने कहा कि और एक खजाने में से कोई एक गाना, तो मैं जरूर एक गाना अभी सुनाना चाहता हूँ, वो है ए मेरे प्यारे वतन।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर।
1: ये भी गाना जब मैं गाता था तो लोगों को लगता था कि ये आवाज, भले तुम अभी मेल में गए हो, लेकिन पुराने जमाने का जिन्होंने वो गाना सिंगर गाए, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा है, उनसे बहुत मिलता है, क्योंकि मेरी मेल वॉइस का ज्यादा डिमांड नहीं है, तो बहुत आजकल के टाइम पर ये उसी जमाने का लगता है अगर वो सुनते हैं, तो मैं जरूर ये गाना सुनाने के लिए कोशिश करूंगा।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, प्यारा सा नगमा, अपने भारत देश को डेडिकेट करते हैं, हर भारतीय को डेडिकेट करते हैं, अरविंद जी की आवाज में, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
1: है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन।

फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, हम जहां

बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान।

0: सच में भारत पर दिल कुर्बान है, जान कुर्बान है, और हमारे देश पर गर्व महसूस करते हैं हम अपने. जब भी देश के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं ना दोस्तों, तो गर्व थोड़ा और बढ़ जाता है. तो इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने देश के बारे में कुछ और जरूर जाने. अरविंद जी, आपने ये गीत गाया, क्या महसूस कर रहे थे आप जब गा रहे थे तब?
1: मैं अभी नेक्स्ट लाइन मेरा यही था आपसे शेयर करने के लिए कि इसमें लास्ट जो गाने के अंतर था, हम जहाँ पैदा हुए हैं उस जहाँ निकले ये दम. तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक ही संकल्प है, एक इच्छा है, मेरे आंखें खुले तो भी भारत धरती माँ पर, आंखें बंद हो तो भी भारत का ही ये धरती हो. मैं भले आर्मेनिया में रहता हूँ बहन जी, बट वहाँ पर मैं जब भी सवेरे उठता हूँ तो ये मानता हूँ कि ये मेरी ये भूमि है, कर्म भूमि है ना, तो कर्म भूमि को भी अपने अपना ही मानना पड़ता है, उसको सम्मान करना पड़ता है.
0: बहुत जरूरी.
1: तो हमारी परंपरा में है कि सुबह उठने के पहले प्रणाम करो, नमस्कार करो, फिर धरती माता को नमस्कार करने के बाद मेरा पहला कदम पड़ता है धरती पर. तो वहां पर भी मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि अपना एक संस्कार और संस्कृति उसको हम कभी भूलेंगे नहीं.
0: बिल्कुल.
1: और जैसा अभी मैंने पहले भी कहा था कि मेरे आंखें खुले होना, बंद होना, मतलब मेरा एक इच्छा है कि मेरा अभी जन्म तो हुआ ही है धरती अपने भारत देश पर, लेकिन अंतिम श्वास भी मेरा यही पर हो, और फिर उसके बाद का जन्म भी मुझे फिर से यही पर चाहिए, भारत देश पे.
0: भारत देश में.
1: तो इसके
0: आपको क्या अच्छा लगता है भारत के बारे में, अगर मैं पूछूं कि देश हमारा इतना बड़ा, इतना हिस्ट्री, इतना आर्ट, इतना कल्चर, और क्या नहीं है यहाँ पर, खूबसूरती भी इतनी है, प्रकृति भी इतनी है, क्या आपको अच्छा लगता है भारत के बारे में, क्या आपको याद आता है भारत के बारे में जब आप भारत में नहीं होते?
1: बिल्कुल. अभी आपने जैसा अच्छा प्रकृति का जब नाम आपने लिए सिस्टर, तो मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि प्रकृति हमारे भारत देश का काफी सुंदर है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट के चक्कर में हम फॉरेस्ट को कम करना ये एक होने जा रहा है, फिर एक तरफा कहते हैं कि वृक्षारोपण भी करो, ठीक है. तो हमको सबसे पहले नेचर लवर बनना बहुत ही जरूरी है. नेचर लवर मतलब हम जंगलों को काट करके शहर बना रहे हैं, तो आज हम देख रहे हैं जंगल के जानवर भी हमारे आर्टिफिशियल बने हुए शहरों में वो घुस रहे हैं, ठीक है. तो हमें जंगलों को जब हम काट भी रहे हैं तो दूसरी तरफ हमको उसका वृक्षारोपण भी तो करना है, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग भी मिलते जा रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज हम देख रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: जिसके कारण अभी एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है. अभी एयर पोल्यूशन के कनेक्टेड में दूसरा आता है वाटर पोल्यूशन, ठीक है. तो वाटर पोल्यूशन भी कैसे, अभी हवा में तो इतने टॉक्सिन और ये सब गंदे जहर वाले केमिकलाइज पूरे धूल, वो जो स्नो वगैरह क्या कंपनीज के जो होते हैं मिक्स होने जा रहे हैं, तो वैसे पानी के अंदर भी कितने सारे गंदगी हम लोग करने जा रहे हैं.
0: बिल्कुल. पानी तो में हम कितना कुछ डाल भी देते हैं, नदियों में बहा भी देते हैं.
1: बिल्कुल. तो उसके ऊपर भी कैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें जो निकाला, तो उसको लेकर के अभी लोगों के बीच काफी सारा अवेयरनेस आया है. जैसे अभी मैं मुंबई से बिलोंग करते हूँ, तो मैं मुंबई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर काफी सारे लोग एक ग्रुप बनाया है.
0: ओके.
1: वो ग्रुप कैसे एक मिशन लेके चलते है, कैंप करते हैं अलग अलग जगहों पर. एक तो स्वास्थ्य के रिलेटेड हो गया. स्वास्थ्य में भी मैंने देखा कि मैं खुद मुंबई में जब रहा था तो तभी मैं एक नेचर के उपचार एक्यूप्रेशर कैंप हम लोग करते थे, फ्री ऑफ कैंप.
0: क्या बात है.
1: एक्यूप्रेशर कैंप के साथ साथ हम लोग नेचुरली अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करें, खान पान के ऊपर ध्यान. तो ऐसे वो कैंप करते करते इन लोगों के बारे में भी मुझे पता चला कि ये लोग कैसे अलग अलग पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, और पब्लिक गार्डन्स होते हैं उसके यहाँ, वहां पर जाकर के क्लीनलीनेस का करना, समुन्द्र के किनारे, मुंबई में तो चारों तरफ हर जगह पर समुन्द्र है, समुन्द्र में कितने सारे पब्लिक जाते हैं तो वहां पर गंदगी मचा देते हैं, तो ये ग्रुप वहां पर जाकर के सारा जो भी है सफाया करने में लग जाते हैं, क्योंकि बीच के किनारे बहुत सारे पब्लिक मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए भी निकलते हैं, और ये समुन्द्र का किनारा ही मुंबई की एक ब्यूटी है, आपको तो पता ही, मुंबई मुंबई को देखना हो तो समुन्द्र के किनारे शाम के समय पर जाओ तो मुंबई की खूबसूरती आप देख पाएंगे। तो मुंबई में ही नहीं बल्कि अभी देश का यहाँ पर अभी बात चल रही है, तो देश में भी जैसे हमने कहा कि वृक्षारोपण का करना ये सब जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अभी समुन्द्र के किनारे तो हो गए, अभी जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां हैं तीर्थ स्थानों पर, वहां पर भी अभी अवेयरनेस बढ़ गई है। जैसे निर्माल्य, पहले लोग पब्लिक क्या करते थे, नदी में बहा देते थे, निर्माल्य मतलब ये फूल हो गया,
0: हाँ,
1: खाना पीना जो हम लोग नैवेद्य जो दिखाते हैं तो वो भी उसमें डाल देना, वस्त्र का दान देना नदी को, गंगा माता को हम दान दे रहे करके, बट तो वो इनडायरेक्टली क्या हो रहे हम दूषित कर रहे हैं पानी को। तो यहाँ पर क्या है ना, हमको एक तो नेचर को भी बचाना है, नेचर लवर बनना है, जैसे हमारे मुंबई में महाराष्ट्र में कहते हैं निसर्ग प्रेमी बना, मतलब नेचर लवर। अगर हम नेचर से खिलवाड़ करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो नेचर का एक लॉ है कि हमने नेचर को जितना देंगे ना उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न में अपने को देता है विद इंटरेस्ट।
0: बिल्कुल, ये सच
1: है ना। तो हम अगर नेचर से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो नेचर भी अपने को विद इंटरेस्ट ही रिटर्न में देगा ना। तो जब ये क्लाइमेटी जो होती है तभी हम देख भी सकते हैं कि देखते भी है कि फिर उसको रोकने के लिए किसी के अंदर ताकत नहीं होती है। इसके लिए अब भी हमको सतर्क होना बहुत जरूरी है।
0: सतर्क होना जरूरी,
1: बिल्कुल। और अभी अभी मैंने कहा कि सेव ट्रीज, सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो जैसे पानी का भी मैंने कहा, जैसे सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जीवन बचाओ।
0: बिल्कुल, जल है तो जीवन है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये सत्यता है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक स्टेटमेंट नहीं है। और जब बड़ी कोई कलामिटी आती है तब वो काम नहीं हो सकता, काम तो पहले से ही होना है, तो हम सबका उसमें सहयोग चाहिए। एक जना नहीं कर सकता अकेले, एक संस्था भी नहीं कर सकती, तो हम सबको एक कदम उठाना है। आपने बात की, क्योंकि मैंने प्रश्न किया था भारत के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, याद आता है आपने प्रकृति की बात की, तो प्रकृति जब इतनी सुंदर लगती है तो उसको बचाने का भी रोल हम सबका है, क्योंकि प्रकृति से बहुत कुछ मिलता है
1: जी। अब आते हैं भारत के बारे में, तो जैसे देखिए मैंने अभी आर्मेनिया में इतने सालों मैंने रहा, तो आर्मेनिया कंट्री और हमारे भारत देश के बीच एक रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है।
0: ओके,
1: क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति के कारण आर्मेनिया कंट्री में हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी बापू का भी वहां पर एक स्टैच्यू है।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: मैंने देखा, मैंने सुना भी है, और वहां के इंडियन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन येरेवान कंट्री, तो वहां पे एम्बेसी जब वहां पर जाते हैं गांधी जयंती मनाने के लिए, तो उनका एक सोशल पेजेस है, तो उसमें मैंने देखा। मुझे अगर मौका मिले तो मैं जरूर एक बार जाऊंगा वहां पर, सेल्फी खींच के मैं शेयर करूंगा। बट ऐसा है कि वहां पर कंट्री में हमारे भारत की संस्कृति के बारे में भी वहां पर वहां के लोगों को बताया जा रहा है। मैंने ये देखा कि वहां पर क्लासेस चलती है कि उस कंट्री में कैसे, इंडियन लोग तो काफी सारे, इंडियन तो हमारे

0: पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं, तो वहाँ पर भी इंडियंस काफी सारे हैं, खासकर काम करने वाले, जॉब करने वाले भी हैं, तो साथ साथ ही अपने मेडिकल स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर अपने भारत देश के बारे में वो लोग सिखाते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज लोगों को, अच्छा? लोकल लोगों को कि हमारे भारत देश इज नॉट अ देश, देश के रूप में नहीं देखते, क्योंकि हमारा जो भारत देश जो है ये कला संस्कृति योग और परिवार का जो वैल्यू जो है उसको लेकर के चलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: हमारा आधार रहा है हमेशा से।
0: यस, तो हमारा भारत जो है संस्कृति और ये त्योहार भी अभी उनको एक वंडर बहुत खाते हैं कि भारत देश में, इनके देश में इतने सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: फिर मल्टीपल लैंग्वेज के साथ साथ फिर उन लोगों का ये ड्रेसअप है, पहनाव जो है वो भी अलग अलग भाषा के साथ पहनाव, फिर उनका खान पान अलग अलग, अलग अलग होने के बावजूद भी
1: कैसे
0: ये लोग एक एकजुट कैसे रहते हैं ये एक ज्यादा वंडर खाते हैं।
1: ये सबको लगता होगा।
0: हाँ, एकजुट तो रहते ही है, रहते तो है ही, प्लस उसमें और एक सबसे बड़ा वंडर खाते हैं कि ये लोग त्योहार जो मनाते हैं उसके पीछे भी कुछ न कुछ बहुत सारा वैल्यूज छुपा हुआ है। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, तो मैंने जब इस बार मैंने आर्मेनिया में दीपावली का प्रोग्राम अरेंज किया था उसी क्लासेस में जहां पर इंडियन लोगों को वहां का लोकल लैंग्वेज सिखाते हैं और वहां के लोकल लैंग्वेज लोगों को वहां पर इंग्लिश ना के बराबर आता है, तो वहां के लोकल लैंग्वेज को लोकल लोगों को इंग्लिश सिखाने के साथ साथ अपना भारत देश के बारे में बताते, तो वहां पर मुझे भी एकदम उस टाइम पर मुझे मैं वंडर खाया कि वो टीचर थी रशिया की।
1: अच्छा,
0: वो जो क्लासेस चलाने वाली, वो कोचिंग करने वाली, और वो वहाँ के लोगों को इंडिया की संस्कृति के बारे में बता रही है, दिवाली क्यों मनाते ये लोग, मतलब दिवाली का इनका वैल्यू यही है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, फिर होली ये लोग क्यों मनाते हैं उसके बारे में वो लोग बता रहे थे वहाँ पर। तो हालांकि वो प्रोग्राम मैंने अरेंज किया दिवाली के निमित्त, लेकिन वहाँ पर वो लोग होली के बारे में बता रहे। तो ये एक्चुअली फैक्ट है कि हमारे भारत देश में जितने भी जो त्योहार है ना उसके पीछे बहुत सारा गुह्य रहस्य जो है ना समाया हुआ है पीछे।
1: बिल्कुल,
0: अभी होली भी मनाते हैं,
1: बहुत सारे रहस्य हैं हमारे बिल्कुल भारत त्योहार के बारे में, आपने सच कहा। तो इन त्योहारों को मनाते हैं तब भी हम देखते हैं गीत संगीत का बड़ा महत्व होता है, रोल होता है, और हमारा कार्यक्रम भी उसी संगीत को सेलिब्रेट करता आया है। तो क्या कोई और गीत है आपके पास जो आज आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
0: ओके, तो अभी मैं क्या ही सुना
1: कोई भी गीत, कोई त्योहार से रिलेटेड भी हो, चाहे कोई बॉलीवुड का ही गाना हो या कोई और आपको गाना जो सुनते हुए आप बड़े हुए हो आपको याद आता हो, कोई भी आपकी पसंद का गीत।
0: ऐसे गाने तो बहुत सारे हैं, तो मैं एक गाना गाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ
1: जी।
0: ये भी एक वंडर होता है लोगों के बीच में, अभी ये त्योहारों का जो चल रहा है तो इसके ऊपर अभी एक और गाना है जो मैं बाद में मैं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो है एक डुअल वॉइस में मैं गाना चाहता हूँ, बॉलीवुड का सॉन्ग या तो फिर एक भक्ति सॉन्ग है।
1: ये डुअल वॉइस में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, हम भी सुनना चाहेंगे क्योंकि हमने सुना है आपने मेरे वतन के लोगों क्या खूब गाया, तो जरूर जरूर जरूर।
0: अच्युतम केशवम।

0: बिल्कुल भक्ति में डूबने वाले कई गीत हमने सुने हैं दोस्तों, और भारत की संस्कृति का ये भी बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई गीत हम भक्ति रस का सुनते हैं तो न सिर्फ किसी त्योहार से जुड़ जाते हैं, संस्कृति से जुड़ जाते हैं, बल्कि ईश्वर से ही जुड़ जाते हैं, और प्रकृति को भी धन्यवाद करते हैं, भारत के हर कण को धन्यवाद करते हैं आज हम इस मंच द्वारा। दोस्तों सेलिब्रेशन हो रहा है, 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हो रहा है, हमारे देश का आजादी का महोत्सव है ये, और हमारे श्रोतागणों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वैसे हम बढ़ रहे हैं आगे कार्यक्रम की अंतिम घड़ियों की ओर, और हम गीत संगीत के सेलिब्रेशन को भी आगे लेकर जा रहे हैं। तो अरविंद जी, आज आपने हमें बताया कैसे बाहर भी भारत की संस्कृति की बड़ी रिस्पेक्ट है, कद्र है, लोग सीख रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे देशवासियों को, हमारे जो श्रोतागण सुन रहे हैं आज खास इस स्पेशल प्रोग्राम को, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे?
1: संदेश यही मैं देना चाहता हूँ कि देखिये हमारा भारत देश का जो त्योहार है, हर एक त्योहार का एक ही मूल संदेश रहा, प्रेम, खुशी और एकता। ओके, तो प्रेम, खुशी, एकता के साथ साथ अभी हम एक कहना चाहते हैं कि जो भी हम करते हैं देश के लिए अगर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करें अपने से, खुद से होकर के, अपने से होने के बाद फिर अपनों से, अपनों मतलब हमारे घर परिवार, फिर उसके बाद ही आता है हमारा समाज, फिर देश के प्रति। तो कभी भी हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो पहले घर से करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आज हम आज के दौर पर हम देख रहे हैं कि टेक्निकल ज्यादा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजीज, ठीक है,
0: बिल्कुल,
1: तो कोई हर एक चीजें आज हम भारत में देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इन इंडिया, अदर कंट्रीज में भी टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ रहे है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये केमिकलाइज्ड ज्यादा हो गया है, एक तरफा हम जो खा रहे हैं ऑर्गेनिक के बदले नॉन ऑर्गेनिक, जिससे रिलेटेड अपने को स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक तो ध्यान देना, और दूसरा है कि तो घर से शुरुआत, मतलब मैंने अभी जैसे कहा कि मैं एक छोटी सी बात है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कि आज के यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी में एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग आयु तक मोबाइल के बीच में भी, मोबाइल के पीछे भी बहुत लगे हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी देख रहे हैं अपने आसपास ये सब।
1: तो छोटा बच्चा अगर वो 1.5 साल 2 साल का होता है तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल उनके हाथ में थमा देते हैं फ्री होने के लिए, अगर रोता है तो उनके हाथ में मोबाइल थमा देते और अपने काम में लग जाते हैं। तो छोटा बच्चा जब ये मोबाइल यूज करता है तो लोगों को ये पता भी है कि उसके रेडिएशंस हानिकारक होता है। कुछ लोगों को तो मैं ऐसा भी देखता हूँ बहन जी कि वो लोग बच्चे को देते तो है लेकिन आई प्रोटेक्शन ऑन नहीं करते, स्क्रीन का जो ब्राइटनेस होता है वो भी काफी तेजी से रखते हैं, जिससे उनको आई को भी इफेक्ट हो सकता है, उनके मस्तिष्क को भी, उनके ग्रोथ होने में भी। फिर बच्चे से अगर मोबाइल छीन ले तो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो फिर वो बच्चा फिर बड़ा होने के बाद चिड़चिड़ा बन जाता है। अभी आते हैं थोड़ा ऊपर के लेवल पर, आजकल के जो जो स्कूल के जो बच्चे, कॉलेज के बच्चे, घर में मम्मी पापा कुछ अगर उनको काम बताते हैं तो मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, तो अगर बुलाया तो हाँ मम्मी एक मिनट, आया मैं करते करते वो डिले हो जाते हैं, तो फिर बाद में बोलते हैं कि मैं आज नहीं मम्मा, मैं बहुत थक गया, मैं कल, तो ये होता है इस लेवल के। तो क्या है ना, मोबाइल यूज कीजिए जहां तक अपने को यूज करना है उतने, क्योंकि आजकल सारी चीजें अभी ऑनलाइन हो गए, ऑनलाइन से सब कुछ हम कर रहे हैं, ये सुविधा अच्छी है, लेकिन उसको यूज करते हुए कभी कहीं पर मिस यूज ना हो, इस पर भी हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: ओके, तो अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर के एज वालों को, जहाँ पर अभी वेल सेटल जो होते हैं आफ्टर स्कूल कॉलेज लाइफ के बाद जो जॉब के लिए निकलते हैं, तो वहां पर भी लोग अभी, जैसे मैं मुंबई से बिलोंग करते हैं, नॉट ओनली मुंबई, पूरे दुनिया में ही ये सब चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड।
0: बिल्कुल,
1: ट्रेवल करने के टाइम पर भी, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेवल करने के टाइम पर भी मोबाइल में ही रहते हैं, चाहे वहाँ पर पब्लिक भीड़ क्यों ना हो, खड़े खड़े भी मोबाइल,
0: मोबाइल का भी कल्चर जैसा बन गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्क्रीन पर ही ध्यान देते हैं, उससे आंखों को इफेक्ट, हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा।
1: तो मैं अंत में यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने ये समाज में किसी का कभी अगर हम अच्छा नहीं कर सकते है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप किसी का बुरा भी ना करें। ओके और जब बात आई तो खुद से फिर पूरे समाज तक, तो वहां पर हमेशा हम लोग को तीन ए में समझता हूँ, मेरे तीन ए काफी सारे लोगों को मैं बताता हूँ, मेरे स्टाफ हो गए या कोई भी हो गए, फ्रेंड्स को भी, तीन ए का अप्लाई करना बहुत जरूरी है, जैसे अटेंशन, अलर्ट और एक्टिव। अटेंशन, अलर्ट और एक्टिव, ये अभी अगर हम खुद इन तीनों बातों पर, इन तीनों शब्दों पर अगर विचार करेंगे तो अपने को खुद को ही समझ में आएगा कि ये तीन वर्ड के पीछे क्या का है? क्या है। तो ये हमारे खुद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ पूरे परिवार को भी वो फायदा होता है और समाज को भी फायदा होता है
0: जी।
1: तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ये तीन शब्द कभी भूले नहीं, बस सबका भला करो, आगे बढ़ो और बढ़ाओ, ना किसी का लेग पुलिंग करो, ना किसी का बुरा करो।
0: बिल्कुल।
1: तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी यही संकल्प ले कि अपने विचारों, व्यवहारों और कर्मों से भारत को और भी श्रेष्ठ बनाने का अपना सहयोग दान दे।
0: और इसी के साथ दोस्तों, इस एपिसोड से हम मधुबन अनप्लग्ड से तो इजाजत ले रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ और इस विश्वास के साथ कि अपने देश के लिए, अपने देश को बनाए रखने के लिए, जो हमारे देश का आधार है उसको बनाए रखने के लिए हम भी अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे, कुछ ना कुछ एक कदम देश की ओर, समाज की ओर, कुछ कल्याण की ओर जरूर बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते हम अरविंद जी, क्या कोई और दो लाइनें हैं जो आप हमारे श्रोताओं के लिए आज
1: दो लाइनें तो यही है कि ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन ये माटी की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

0: रुक, ओए रुक का रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। कड़क, पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

शांति। आज है 18 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के बाबा के मधुर महावाक्य में बाबा ने बहुत सुंदर एक कर्म की गुह्य गति बताई है। बाबा कहते हैं, जब कलयुग के अंदर रावण का श्राप मिलता है तो अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे कर्म हुए हैं जिसकी कर्म भोगना हरेक के जीवन में आती है, क्योंकि ये उल्टे कर्म का परिणाम है। परंतु बाबा कहे, तुम बच्चों को जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से खुशी आती है और खुशी में रह करके ये कर्म भोग को जब चुकतू करेंगे तो उसका दुख दर्द गम सब उसमें मर्ज हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे तुम्हें खुशी को कभी गायब नहीं होने देना है, सदा ईश्वरीय खुशी में मस्त रहो और अगर कोई भी कर्म भोग आता है खुशी खुशी उसको चुकतू करो और सहजता से उसको पार करते जाओ। दुखी होकर के चुकतू करेंगे तो कहीं न कहीं वो कर्म भोग बहुत अधिक दुख दर्द और गम की फीलिंग में ले आएगा। दूसरी बात बाबा ने आज समझाई है कि बच्चे तुम्हें कभी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना है। बाबा जो सुनाते हैं उसको सुनते जाओ और सबको बाप का पैगाम देते जाओ। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुलटी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। आज की मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। बहुत गहरी बात है कि कर्म भोग का दुख दर्द खुशी में मर्ज करते जाओ। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है, बुद्धि में रहता है अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। ऐसे ऐसे गीत बाबा कहते हैं, जब सुनते हैं तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बाबा हमें क्या से क्या बना देते हैं। कहां इस दुनिया के अंदर जमीन के टुकड़े के लिए लोग लड़ाई करते और बाबा हमें जमीन तो क्या आसमान दे देता है। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए ये खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे, बरोबर ये खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है, भारत में ही गाया जाता है। त्योहार भी जो है सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है,
मनुष्य को तो अनेक प्रकार के गम है, यहां इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। इतना खुशी में रहो जो बाबा कहे गम दुख याद भी न आए। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है, बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती है। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया है, यह है गम की दुख की दुनिया, फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। यह है तमो प्रधान दुनिया, भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है, अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्न के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है, बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है, कल्प पहले भी हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुक तो होना है, खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करते रहो, उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो। बाबा कहते उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है और पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है क्या, एक बाप को याद करना। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुक तो हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुक तो करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ, विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। जितना हो सके सबको ये समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है, मन मना भव, अर्थात हे आत्माएं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के भी कर्म भस्म होंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है, बस बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, मूंझने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है, चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इनको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का संन्यास, उन्हों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा, शरीर धारण किया फिर छोड़ा, बाबा कहते ये तो ड्रामा का पार्ट है। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है, ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म वतन वासी, फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहां बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं का रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। वाणी से परे शांति है तो शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सतयुग में है सुख और शांति संपत्ति धाम। सतयुग को कहा बाबा ने
सुख और शांति संपत्ति धाम, फिर होता है द्वापर के बाद दुख और अशांति धाम। सुख धाम में तो कारों का खजाना होता है, अथा कारों का खजाना। बाबा कहते अथा, आज क्या है कल क्या होगा, आज कलयुग का अंत कल होगा सतयुग की आदि, रात दिन का फर्क है ना। कहते भी है ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और रात, ब्राह्मणों का दिन और फिर है रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण, इस संगम युग का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सूजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है, घोर सूजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, वह हमारी राजाई कोई छीन ना सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर में, रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन की ही एफिजी बनाकर, एफिजी माना भूत बनाकर जलाते, ये बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी है रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। तो घोर अंधियारा कहेंगे ना, बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना, ज्ञान सुनाने बिगर सिद्ध कैसे हो कि वो ज्ञान का सागर है। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है, भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है, इसीलिए भक्ति का फल है ज्ञान और ज्ञान से गति। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ, बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है, बाबा को लिखते हैं बाबा माया का बहुत ऑपोजिशन होता है, सदैव तो किसको योग नहीं रहता जो माया से बच सके। देह अभिमान बहुत आता है, बाबा को सब पता है बच्चों की अवस्था कैसी कैसी होती है, बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना, अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी है। बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत, फलाने ने ऐसे कहा यह किया माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो क्या करो, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूं, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो।
इतना प्यार से बाबा कहते हैं, हे आत्माएं अब श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो, सिर्फ माँ में कम याद करो, जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, क्यों? भूली भी आत्मा है, इसलिए याद भी आत्मा को करना है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुनो, इसमें खिट-खिट की कोई बात नहीं, घोर अंधेरे में ही बाप आते हैं, इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। श्री कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं, खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को, अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? श्री कृष्ण के लिए तो खीर पूरी बनाएंगे, शिव के लिए क्या बनाएंगे? वह तो है निराकार, किसको पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्र हैं, वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। ये तो मनुष्य है ना, सदगति में पहला नंबर है ये श्री कृष्ण, वह सबको प्यारा है, क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना, बच्चा सतो प्रधान है, तो बाल अवस्था श्री कृष्ण की सतो प्रधान अवस्था है ना, इसलिए सबका प्यारा है। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है, फिर रजो तमो, श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे, भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत है, भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं तो मंदिर भी भारत में बहुत है। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे, देवताओं के कितने ढेर मंदिर है। बाप आए हैं हमको क्या बनाने? बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने, अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं, बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा के हम मददगार हैं, खुदाई खिदमतगार, तो बाबा कहे भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे हम बाप के साथ आए हैं भक्ति मार्ग में, देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्च कर बनाते हैं, उत्पत्ति कर पालना कर फिर विनाश कर देते हैं, नौ रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। नवरात्रि आती है तो नव रोज के अंदर ही डुबो देते हैं, बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है, आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, कितनी अंधश्रद्धा है, रामायण से कितना प्यार होता है, बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। कई लोग तो इतनी भावना से रामायण सुनते हैं बस आंखों से आंसू बहा देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं, तो ये सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल न जाओ, सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। मधुबन से जाओ तो पूरा रिफ्रेश होकर जाओ, अपने को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। ये सब कब्रिस्तान है, दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? भारत परिस्थान था जो धर्म राज ने स्थापन किया था, अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते
सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, ये क्या बाप की आबरू गवाते हैं। उनको कहेंगे ना, ये क्या बाप की आबरू गवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना, बेहद का बाप भी कहते हैं। तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है, बाबा कहते तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ यह नहीं दिखाया, कह देते प्रलय हो गई। अब श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया और दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। कुछ भी समझते नहीं, दोनों विरोधाभास है। एक है कि पीपल के पत्ते पर आया, दूसरा है मां के गर्भ से जन्म लिया। वहां तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़ी पत्ते पर हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये सागर में एक पत्ते के ऊपर कोई बच्चा आए तो यह सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है, मूल बात है यह। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना, बाप है ही सदगति दाता। ज्ञान का सागर नॉलेज बाप ही आकर देते हैं, ज्ञान का सागर बाबा नॉलेज आकर के देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर यहां ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं। दूसरी बात, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुल भूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है, पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है,
तो जिम्मेवारियों का भी ताज है, अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्मेंद्रियां जी हजूर करती है, जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। कोई भी कारोबारी यानी कोई भी कर्मेंद्रिया भी नहीं मानते। आज का स्लोगन है, कमजोर संकल्पी प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। कमजोर संकल्पी प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। आज का व्यक्ति इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ईश्वरीय सेवा का सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीयदान है। तो जीयदान देना है। अच्छा,